FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को हैं। हमारा आज का प्रसारण अब प्रारंभ होता है।

0: हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
2: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जनसंबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे

0: भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व पर हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव से विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें से 320 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 50 अन्य भारतीयों से भी दोबारा संपर्क हो गया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ टी20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उप कप्तान होगी। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 2 दिनों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में भी आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण अभी दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। समय श्रोताओं, भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का, पहले देश फिर हम, आइए करें नमन वंदन अपनी मातृभूमि का, इस भारत भूमि का। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत समूह स्वरों में देश वंदना के साथ।

0: ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। खेती के बात में आई श्रोताओं सुनते हैं ये जानकारी। विषय है पत्ता गोभी की उन्नत खेती। वाचन स्वर अभिनव गौराहा का है।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। मैं जीतू, प्रस्तुत है खेती के बात। आज खेती के बात में बात करबो पत्ता गोभी के उन्नत खेती। पहली तो आप मन ला पत्ता गोभी के उन्नत खेती करे बर समय के बात बता दी कि भाई बुआई हम कब कर सकत हन। ता एखर बुआई के समय है जुलाई से अगस्त और सितंबर से नवंबर के बीच में। बीज के मात्रा किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बात करी तो आधा किलो के करीब बीजा है 1 हेक्टेयर भुया में पूर जाए।

0: गोभी वर्गीय फसल की अगेती फसल लिए बर हल्का दोमट भूमि ज़्यादा उपयुक्त होते। मुख्य फसल बर बलुई दोमट माटी जेमा पोषक तत्व के मात्रा भरपूर हो उपयुक्त होते। बंधा गोभी कन्हार जमीन में भी बढ़िया पैदावार देते और ए फसल बर भूया के पीएच मान के बात करी 6 से 6.5 के बीच के पीएच मान उपयुक्त होते। अब बात आते उन्नत बढ़िया किस्म के, तब पत्ता गोभी के उन्नत किस्म के बात करी पूसा अगेती, पूसा ड्रम हेड और गोल्डन एंकर। अब भाई कोनो भी फसल ला लगाए बीज ला पहली बीजोपचार करना है तो नर्सरी में बीज बोए से पहले बीज के उपचार बावेस्टिन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से बावेस्टिन फफूंद नाशक दवाई से उपचार करना है। ओखर बाद हल्का छाँव में सुखा के एकर बुआई हमन ला कर देना है। अब आते पौधा के दूरी के, तब पंक्ति से पंक्ति के जब दूरी हमन बात करत हन तो 60 सेंटीमीटर, अब पौध से पौध के दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखना होते। खाद की मात्रा प्रति हेक्टेयर में कतका किलोग्राम रही, नत्रजन लगही उन्नत किस्म में 100 किलोग्राम, संकर किस्म है तो 120 ले 150 किलोग्राम। इस फूर के बात करें तो चाहे उन्नत हुए चाहे संकर किस्म हुए वह अपन ला 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगही। और पोटास के बात करी तो वह सामान्य किस्म में 60 किलो और संकर किस्म में 80 किलो के दर से हमन ला डालना पड़ेगी। पोटास और स्फूर के मात्रा बुआई के समय ही डाले जाते खेत तैयारी के समय। और नत्रजन मतलब यूरिया के माध्यम जिन होते ओला हमन ला समय समय में 2 से 3 पैक फसल के व्यवस्था देख के हमन ला करना चाहिए। निंदाई गुड़ाई के बात करिए फसल में रोपाई के बाद पत्ता गोभी के फसल में शुरू के 30 से 45 दिन फसल के बढ़वार के दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते। ए दिन में ही खरपतवार बड़ तेजी से बढ़ते कि कतको खेल में फसल के अपेक्षा खरपतवार ज़्यादा दिखाई देते। अब भाई कोनो भी फसल हो खरपतवार शुरुआती दिन में ही ज़्यादा दिखते और अगर बरसाती सीजन है तो बरसाती सीजन में जब कतको पैत सूरज देवता भी बढ़िया घाम कर देते और पानी तो मिलते चे है ना, त खरपतवार मन बढ़िया निकल जाते। तो खरपतवार बर हमन ला निंदाई गुराई करत रहना है, देखत रहना है। और फसल छोटे अवस्था में है तब पानी देना है और गुड़ाई करके हमन खरपतवार ला निकाल सकत हन। तो ऐसा व्यवस्था करना है कि हल्का पानी दे दी तो खरपतवार मन आसानी से निकल जाते। आजकल तो आनी बानी के दवाई घलो आगे है जेकर से हमन ला हाथ से करे के जरूरत नहीं। हाल भाई लेकिन हाथ से करबो तो ज़्यादा अच्छा से हमन खरपतवार के निकाली कर सकत हन। सिंचाई में 6 से 8 सिंचाई के जरूरत पड़ते। उपज के बात करी 250 से 350 कुंटल प्रति हेक्टेयर के ये पत्ता गोभी जब हम लगाबो तो ठंड के समय बढ़िया निकलते। तो ए हो संगवारी हो किसान भाई हो पत्ता गोभी की उन्नत खेती। राम राम जय जोहार।
1: खेती की बात में अभी हम सुन रहे थे जानकारी पत्ता गोभी के उन्नत खेती, वचन स्वर अभिनव गौरा का था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:35 हुए हैं, आइए श्रोताओं सुनते हैं तुलसीकृत रामचरित मानस गायन। गायक कलाकार हैं कविता कृष्णमूर्ति और साथ ही संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

शोक संतप्त तथा पश्चाताप की आग में झुलस रहे भरत को माता कौशल्या हृदय से लगाकर धीरज बंधा रही हैं। ज्ञान के उदय होने पर भी चाहे मन का मोह न मिटे, किंतु वो जानती हैं कि किसी अवस्था में भी भरत श्री राम से विमुख नहीं हो सकते। पुरोहित तथा कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ भरत को समयानुकूल उपदेश और लोकाचार की शिक्षा देकर दिवंगत महाराज के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए प्रवृत्त करते हैं। सरयू तट पर चंदन की सुंदर चिता सजाकर दाह संस्कार होता है और एक दिन शुभ घड़ी और लग्न देखकर राजसभा में मुनिवर वशिष्ठ मंत्रियों तथा महाजनों की उपस्थिति में युवराज भरत को नीति तथा धर्म पालन का उपदेश देते हैं।

0: तुलसी कृत रामचरित मानस गायन अभी आप सुन रहे थे। गायन स्वर कविता कृष्णमूर्ति और साथियों का था, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:45 हुए हैं। आइए श्रोताओं अब सुनते हैं चिंतन। विषय है बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। आलेख सुश्री उषा निगम का है।
1: हमारी संस्कृति में कई क्रियाएं बड़ी सीधी, सुगम और देखने में बड़े महत्व की है और उनका फल भी बड़ा विलक्षण होता है। प्रणाम तो नित्य ही अपने माता पिता गुरुजनों को किया जाता है, किंतु विशेष कार्यों के पूर्व तो उनका आशीर्वाद विशेष रूप से लिया जाता है। आदिराज मनु कहते हैं, जो नित्य अपने गुरुजनों और वृद्ध व्यक्तियों की सेवा में तत्पर रहता है और उनको प्रणाम करता है, उसकी चार वस्तुओं की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। गुरुजनों के आशीर्वाद से दुर्लभ वस्तुएं भी सुलभ हो जाती हैं। हमारी संस्कृति का यही महत्व है। पतिव्रता सावित्री को अपने पति की आयु 1 वर्ष का ज्ञान हो गया था, पर वो धैर्य से विचलित नहीं हुई और जिस दिन

उसके पति की मृत्यु निश्चित थी। उसने सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और यमराज से पति का जीवन और सास ससुर का वैभव प्राप्त कर 300 वर्षों तक पति के साथ सुख भोगा। मार्कंडेय जी की दीर्घायु में भी प्रणाम का महत्व छिपा है। उनको केवल 7 वर्ष की आयु मिली थी, पर सप्तऋषियों और ब्रह्मा जी को प्रणाम करने से 7 कल्प हो गई। श्री राम सर्वसमर्थ त्रिकालज्ञ हैं। उनके संकल्प मात्र से

0: सात कल्प हो गई। श्री राम सर्वसमर्थ त्रिकालज्ञ हैं, उनके संकल्प मात्र से राक्षसों का नाश हो सकता था, किंतु उन्होंने ऋषि मुनियों से आशीर्वाद मांगा। वे मुनियों से याचना करते हैं। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ वन में जाते समय प्रणाम करते हैं। सौंपे भूप रिपही सुत बहुविधि देह असीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पदसीस। भगवान श्री राम की बारात लेकर श्री दशरथ जनकपुर पहुंचते हैं। तब श्री राम अपने पिता गुरुजनों से आशीर्वाद लेते हैं। राम की विनम्रता अनोखी थी। पांडवों ने भी महाभारत के युद्ध में गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर विजय प्राप्त की। प्रणाम और आशीर्वाद की ये अमृतमयी परंपरा है, और इस पद्धति का अनुसरण करके अपनी अधिभौतिक दैविक और आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। किंतु आज हम अपनी पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आज हेलो हाय को आशीर्वाद अभिवादन की संज्ञा दी जाती है। बड़े बुजुर्गों के चरण छूना शर्म माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। आज हम वही हैं जो हमने कल विश्वास पूर्वक करने की कामना की थी, और भविष्य में भी हम वही बनेंगे जो आज हमारी बनने की तीव्र इच्छा और दृढ़ आस्था है। यदि सतयुग लाना चाहते हैं तो हमें अपने सुसंस्कार बनाने होंगे। जैसा हमारा आचार विचार होता है, वैसा ही हमारा युग बन जाता है। आधुनिकता और पाश्चात्य सभ्यता की चादर ओढ़कर हमारा समाज गर्त की ओर जा रहा है, और नित नई परेशानियों से दुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आज आवश्यकता है कि हम अपनी संस्कृति के पृष्ठों को पलटकर अवलोकन करें, तभी उद्धार हो सकता है। आज के जगत में ज्यों ज्यों नवीन सभ्यता का प्रचार बढ़ रहा है, त्यों त्यों मनुष्यों के जीवन में कपट और दंभ बढ़ रहा है। मन मैला तन उजला, ये आज सभ्यता की नीति है। इसलिए आज माता पिता को बच्चे अपमानित करते हैं। जिस पुरुष को वास्तविक सुख की चाह है, वो गुरुजनों का आशीर्वाद और प्रणाम करने से नहीं हिचकिचाता। और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर भगवान ने कई अवतार लिए। वे कहते हैं, निर्मल मन जन जो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रणाम और आशीर्वाद वो मंजिल है जहां से हर राह सुलभ हो जाती है। अज्ञान के तिमिर में आशीर्वाद वो दीप है, विचार बिंदुओं के लिए वो सीप है। आशीर्वाद स्व का आकलन अध्ययन है, भ्रम के भवन में आशीर्वाद द्वीप है।
1: बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, इस विषय पर चिंतन का प्रसारण अभी किया जा रहा था। आलेख सुश्री उषा निगम का था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। इस समय प्रातः के 6:50 हुए हैं। आयुष श्रोताओं, हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले आज के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम मन की बात हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। समय होगा दिन में 10:55। इसके तुरंत पश्चात कार्यक्रम मन की बात का छत्तीसगढ़ी अनुवाद रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। मन की बात का छत्तीसगढ़ी अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकेंगे रात 8 बजे से भी। इसे भी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

सुबह 7:30 पर प्रायोजक होंगे जीआई फाउंडेशन और लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर लिंक रोड बिलासपुर। इसमें चिकित्सक मनोज राय से डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। विषय होगा नियमित जांच क्यों जरूरी है। हमारे नन्हे श्रोताओं का कार्यक्रम आओ बच्चों का प्रसारण होगा दिन में 10 बजे। इसमें स्नेह की राखी विषय पर चर्चा होगी और प्रायोजित कार्यक्रम में NFB ज्ञानदीप स्पर्श कन्या विद्यालय परिसर तिफरा बिलासपुर के बच्चों की प्रस्तुति और अदिति से बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। कार्यक्रम प्रस्तुति होगी मोनाली ठाकरे की। माटी के स्वर छत्तीसगढ़ी लोक संगीत का ये फरमाइशी कार्यक्रम हम लेकर आएंगे सुबह 8:30 पर। सदाबहार नगमे सुनेंगे 7:40 से और नए तराने की बारी होगी 10:30 पर। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का प्रसारण अपने दैनिक समय 7:05 पर होगा।

बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा, इस विषय पर विशेष फोन इन कार्यक्रम में श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीन की और समय होगा सुबह 9 बजे से। प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ सुनेंगे।

शाम 5 बजे हम प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। प्रायोजक होंगे CF1 विभाग सरगुजा। शाम 7:30 से दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और थाईलैंड के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल। ये अनुप्रसारण खेल समापन की उद्घोषणा तक जारी रहेगा। ईमेल करें, गीत सुने। फरमाइशी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम हम लेकर आएंगे शाम 5:35 पर, शाम 6:20 पर और संध्या 7 बजे से भी, यानी आज 3 बार आप इसका आनंद ले सकेंगे। ग्राम सभा का प्रसारण होगा शाम 5:05 पर। बेरा के गोट में चर्चा का विषय होगा मशरूम उत्पादन कर अतिरिक्त आय कमाएं। साथ ही क्रम होगा आप मन के गीत, मंडी मौसम की जानकारी और सामयिक सुझाव भी हम साझा करेंगे। जिले की चिट्ठी रायपुर केंद्र से रिले करेंगे, समय होगा शाम 6:05 पर। साथ ही रायपुर से रिले करेंगे कानून जागरूकता का कार्यक्रम कानून की बात, इसमें सिविल प्रक्रिया संहिता में महिलाओं के अधिकार की जानकारी देंगे अधिवक्ता श्री रवि पांडे। प्रसारण समय होगा शाम 6:30 पर। श्रोताओं, ये तो थी आज के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में और ठीक 7 बजे हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: स्थापितः। मन्त्रालयः अवदत् यत् 75,000+ यावत् भारतीयाः नागरिकाः लुप्ताः इति कथ्यते। भारतीयमूलस्य प्रायः 28,000+ यावत् जनाः अपि लुप्ताः सन्ति। स्थानीय प्रशासनस्य अनुसारं गतदिनेषु चीनदेशात् 98,500 यावत् भारतीयाः नागरिकाः नेपालदेशम् आगतवन्तः। अत्रान्तरे चीनदेशात् अद्यापि निर्गन्तुं 900 भारतीयाः नागरिकाः सुरक्षिताः सन्ति। बीजिंग नगरे भारतीयदूतावासः प्रत्यक्षतया अथवा स्थानीयप्रशासनस्य माध्यमेन सह तैः सह सम्पर्करतः अस्ति। मन्त्रालयः अग्रे अवदत् यत् भारतसर्वकारः जलाप्लावनेन पीडितानां शीघ्ररक्षणार्थं साहाय्यार्थं च नेपाली चीनी अधिकारिभिः सह निकटसमन्वयेन कार्यं कुर्वन् अस्ति। विदेशमन्त्रालये 24-होरा नियन्त्रणकक्षः स्थापितः अस्ति तथा च काठमाण्डु बीजिंग नगरयोः भारतीयदूतावासयोः सहायिका सेवाः प्रचलन्ति। अत्रान्तरे विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अवदत् यत् 11 टन भारयुक्तेन चतुर्थं विमानं C-130J हर्क्युलिस इति अद्य काठमाण्डुनगरं प्रति प्रस्थितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्य अस्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 37,100 संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जाल पटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च newsonair इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धौ भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमन्त्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिन्दीभाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः क्षेत्रीयासु भाषासु अपि भविष्यति। भारत ऋतुविभागेन आगामि दिनद्वयोः ओडिशाराज्ये अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता। अद्य अरुणाचलप्रदेशस्य असमराज्यस्य मेघालयस्य छत्तीसगढस्य गांगेय पश्चिमबंगालस्य च केषुचित् स्थानेषु अपि प्रचण्डवृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानं प्रकटितम्। अद्य बिहार, पूर्वी मध्यप्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उपहिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, विदर्भ इत्येतेषु स्थानेषु अपि अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे थाईलैंड देशस्य विरुद्धं स्वस्य 20-प्रति-20 एशिया कप इत्यभियानस्य आरम्भं करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे और उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, इसके अलावा मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाशने पर दोनों देश जोर देंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और

0: प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 50 अन्य भारतीयों से दोबारा संपर्क स्थापित हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉ. भीमराव आम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 बजे से शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: संस्कृत और हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण अभी दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। निजे प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हमारे सभी सुधी श्रोताओं का। कार्यक्रम आज सुबह के इस अंक में आपके साथ हूं मैं महावीर बरगाह। कीजिए स्वीकार हमारा स्नेहिल नमस्कार। मित्रों, हमारा देश कला, संस्कृति और विभिन्न धरोहरों का देश है। वैसे भारत गांवों में बसता है और ग्रामीण जीवन में विभिन्न कलाओं की जीवंत चित्रण देखने को हमें मिलता है। मूर्तिकला,

लोहारी काम, बड़ी पापड़ अचार निर्माण, सोने चांदी के आभूषण निर्माण से लेकर बुनाई, बड़ी संख्या में छोटे छोटे ऐसे कार्य हैं जो सिर्फ कला ही नहीं बल्कि आजीविका के साधन भी हैं। इन्हें हम लघु उद्योग कहते हैं, जिसके माध्यम से सैकड़ों परिवारों को रोजगार मिलता है और स्वरोजगार भी देते हैं। देश के आर्थिक विकास में लघु उद्योगों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। भारत सरकार ने इसे व्यवस्थित करने और विस्तारित करने के लिए लघु उद्योगों के क्षेत्र में आर्थिक पैकेज की व्यवस्था की है और इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही 30 अगस्त 2001 से हम राष्ट्रीय स्तर पर लघु उद्योग दिवस मनाते आ रहे हैं। श्रोता मित्रों, लघु उद्योगों को भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। यहाँ के उत्पाद स्थानीय सीमा राज्य क्षेत्र से बढ़कर विदेशों तक पहुंच रहे हैं, जिसके कारण लघु उद्योगों से जुड़े परिवार और देश लाभान्वित हो रहे हैं। लघु उद्योगों के उत्पाद की लागत कम होती है। शासकीय अनुदान, प्रशिक्षण, बिक्री हेतु देश के विभिन्न स्थानों में प्रदर्शन, आवासी, गैर आवासी, ग्रामीण स्तरों पर प्रशिक्षण केंद्र, आसान ऋण सुविधा, कच्चे माल की आपूर्ति जैसे प्रयास ही लघु उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। हम अपने स्तर पर दैनिक आवश्यकता की चीजें अवश्य इनसे खरीद सकते हैं। स्थानीय बुने हुए कपड़े, साड़ी, मसाला, अचार, पापड़, शहद, फर्नीचर, विभिन्न सजावट और कलाकृतियां भी हम खरीदें, उपयोग करें और इसका प्रचार प्रसार भी करें। हमारा यह सकारात्मक प्रयास निश्चित ही लघु उद्योगों से जुड़े परिवार को मजबूत करेगा और हमें गुणवत्तापूर्ण उत्पाद भी मिल सकेगा। तो प्रयास जरूर किया जा सकता है।

0: जी हाँ श्रोताओं, जीवन चलने का नाम है और अब चलते हैं सड़क पर जहाँ पर सावधानी बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर।
1: नई सुबह के साथ नए संदेशों के साथ मैं हूँ उमाशंकर पांडे। यात्रा संबंधी दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर के साथ आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर की शहरी सड़कों के साथ ही शहर से बाहर भी सभी प्रमुख सड़कों में, सभी ग्रामीण सड़कों में यातायात व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। इन्हीं सड़कों के माध्यम से बिलासपुर का सभी स्थानों से यातायात संपर्क बना हुआ है। मित्रों, प्रायः देखा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग जैसी मुख्य सड़कों में होटल, ढाबा या पेट्रोल पंप के पास भारी वाहन, ट्रक, ट्रेलर, कैप्सूल आदि रात के समय देर तक खड़े रहते हैं। कई वाहनों में पार्किंग लाइट या बैक लाइट भी बंद रहती है। इनके चालक वाहन के अंदर सो रहे होते हैं।

0: इसी प्रकार लंबी दूरी के वाहन चालक भी मुख्य सड़क में वाहन का एक पहिया नीचे उतारकर बिना किसी इंडिकेटर या पार्किंग लाइट जलाए सो जाते हैं, या वाहन में कोई खराबी आ जाने से तो सड़क में ही बिना किसी संकेत के वाहन खड़ा कर देते हैं। ये वाहन बहुत अधिक घातक हुआ करते हैं। वस्तुतः इस मार्ग में दौड़ रहे अन्य वाहन के चालक को सामने से आ रहे वाहन की तेज लाइट में सामने सड़क में खड़े वाहन का ठीक से आभास नहीं हो पाता और ये वाहन पीछे से खड़े वाहन से टकरा जाते हैं। ऐसी एक नहीं अनेकों गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसी लापरवाही के चलते जाने कितने लोग काल के गाल में समा चुके हैं, अनेकों अनाथ हो चुके हैं। इस संदेश के माध्यम से पुनः ऐसे लापरवाह वाहन चालकों को हिदायत है, सड़कों में इस प्रकार खतरनाक ढंग से वाहन खड़ा ना करें। संबंधित होटल, ढाबा, पेट्रोल पंप के संचालक की भी जिम्मेदारी है कि अपने पास इस प्रकार सड़कों में वाहन को खड़ा ना होने दें। साथियों, यद्यपि यातायात के वाहन 24 घंटे सातों दिन सड़कों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं तथा ऐसे वाहनों को तत्काल हटा भी रहे हैं, फिर भी यदि आपको कहीं ऐसी स्थिति में कोई वाहन खड़ा दिखाई दे तो पुलिस कंट्रोल रूम को मोबाइल नंबर 9479193099, जी हाँ नंबर पुनः सुने 9479193099 में फौरन सूचित करें। आपका यह छोटा सा प्रयास किसी की जान भी बचा सकता है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: श्रोताओं, ये था आज का ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर। इसे आप एक बार फिर सुन सकते हैं दिन में 10:45 पर। मित्रों, आज की तारीख एक खास अंतर्राष्ट्रीय तारीख है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने संकल्प में 21 दिसंबर 2010 को इसकी घोषणा की थी और 30 अगस्त 2011 को पहली बार जबरन गुमशुदा किए व्यक्तियों के अधिकारों का दिवस मनाया गया। मित्रों, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी व्यक्ति को देश के किसी सरकार के अधिकारियों या उनके समर्थन में काम करने वालों को उनकी इच्छा के खिलाफ गिरफ्तार किया जाता है या अपहरण किया जाता है और उसके ठिकाने की या स्थिति की जानकारी देने से इनकार किया जाता है तो उसे जबरन गुमशुदी कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर इस समस्या के निवारण की आवश्यकता और जागरूकता के उद्देश्य से ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह पहल की ताकि गिरफ्तार या अपहृत व्यक्ति के मानव अधिकार की रक्षा हो सके, उचित खान पान स्वास्थ्य की देखभाल हो सके। विश्वभर में इसके समर्थन के लिए अनेक कानून अलग अलग देशों ने बनाए हैं। भारत में भी बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम लागू है जिसमें जबरन गिरफ्तार या अपहृत व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में उपस्थित करना होता है। श्रोताओं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों के लिए कई कानून बने हैं, उनमें जबरन अपहृत या गिरफ्तार व्यक्ति के संरक्षण कानून भी है। आवश्यकता है जानकारी की, सजगता की और सबसे ज्यादा सावधानी की।

0: थाईलैंड के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल। यह अनुप्रसारण खेल समापन की उद्घोषणा तक जारी रहेगा। साथी श्रोताओं, जिले की चिट्ठी हम रायपुर केंद्र से रिले करेंगे शाम 6:05 पर, और रायपुर से ही अनुप्रसारित करेंगे कानून जागरूकता का कार्यक्रम कानून की बात। इसमें सिविल प्रक्रिया संहिता में महिलाओं के अधिकार की जानकारी देंगे अधिवक्ता श्री रवि पांडे। प्रसारण समय होगा आज शाम 6:30 पर। और अब बारी है कुछ संदेशों की।
1: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, लेकिन ये सेफ है क्या?
2: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
1: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
2: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
3: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज शाम 7:30 से दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: कार्यक्रम मन की बात हम श्रोताओं दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे दिन में 10:55 पर, और उसके तुरंत पश्चात कार्यक्रम मन की बात का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद रायपुर केंद्र से हम रिले करेंगे। बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा, इस विषय पर आज हम विशेष फोन इन कार्यक्रम भी प्रसारित करेंगे। समय होगा 9:00। इसमें नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। विषय होगा बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा। अरब श्रोताओं, इन चर्चाओं और सूचनाओं के साथ ही घड़ी की सुई अब इशारा कर रही है कि कार्यक्रम आज सुबह के समापन का वक्त हो चला है। आज आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ दें कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

0: प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। इसमें आज डॉक्टर मनोज राय से डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की बातचीत और श्रोताओं दर्द को सुनाएंगे। विषय होगा नियमित जांच क्यों जरूरी है।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुरदीप इंदरजीत हेल्थ फाउंडेशन, लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर, लिंक रोड, बिलासपुर। उत्तम स्वास्थ्य और समाज समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला है। स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित करना, रोगों की रोकथाम और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना हमारा उद्देश्य है।
2: हमेशा की तरह रविवार की सुबह आज हम आपके साथ हैं, लेकर आए हैं कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। जैसा कि आप जानते हैं श्रोताओं की इतनी प्यारी जिंदगी है, इतना सुंदर जहां है, लेकिन उसका आनंद लेने के लिए सबसे जरूरी है स्वास्थ्य रूपी धन आपके पास होना चाहिए। यदि ये है तो सब कुछ है, यदि नहीं तो कुछ भी नहीं। तो बात इसी सेहत की कि इसे कैसे कायम रखा जाए कि इस खूबसूरत जहां में, इस खूबसूरत जिंदगी का आनंद हम ले सकें। तो आज विषय हमने लिया है कि नियमित जांच, यदि कोई बीमारी ना हो तो भी क्या हमें अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में नियमित जांचें कराना चाहिए और क्यों कराना चाहिए, क्या क्या कराना चाहिए और कैसे कराना चाहिए। इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं यहाँ अपोलो हॉस्पिटल्स के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मनोज राय।

0: आपका कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन।
1: धन्यवाद सुप्रिया जी, और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम।
0: डॉक्टर साहब, हमने बात की कि स्वास्थ्य अच्छा होने के बाद भी विशेष उम्र के बाद हमें नियमित जांच करानी चाहिए, तो नियमित जांच क्या है और इसकी जरूरत क्यों है?
1: ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जैसा कि श्रोतागण जानते हैं कि हम सभी विभिन्न प्रकार के वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, और जैसा कि कंपनियों द्वारा बताया जाता है कि आप हर 4-6 महीने या साल भर के अंतराल में नियमित जांच कराएं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि यह वाहन हमें अचानक से एक कोई समस्याग्रस्त न हो जाए। वैसे ही हमारे शरीर का हमको ध्यान रखना चाहिए। जब हमारा शरीर स्वस्थ भी हो तो भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको की रोकथाम करके जिनसे बचा जा सकता है। हमारी दिनचर्या में कुछ गलत आदतें जो शुमार में आ जाती हैं, जिनकी वजह से ये समस्याएं आती हैं, उनका इलाज ही उनका रोकथाम है। तो इसीलिए हमको नियमित जाँच जरूरी है ताकि हम इनके बारे में पहले से जान पाएं और उसके अनुसार हम अपनी दिनचर्या में परिवर्तन कर पाए, खान पान में परिवर्तन कर पाए, या जहाँ दवा की जरूरत हो वहाँ दवा ले सकें।
0: बहुत सुंदर। और डॉक्टर साहब, एक विशेष उम्र, जैसे युवा जो उम्र है 20-25 साल 30 साल, यदि कोई बीमारी नहीं है तो क्या नियमित जांच होनी चाहिए या किस उम्र के बाद ये शुरू होनी चाहिए?
1: हम लोग जब अपना अध्ययन चालू किए थे उस समय हमें ये पढ़ाया जाता था कि 45 साल के बाद ये सारी बीमारियां जो आजकल हम लोग जानते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट की बीमारियां, ये सब आती हैं। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं इन बीमारियों की उम्र लगातार घटती जा रही है
0: जी।
1: तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी एक वयस्क अवस्था में हम प्रवेश कर रहे हैं उस समय एक जाँच, नियमित जांच कर लें। आजकल तो जब विद्यार्थी अध्यापन के लिए जा रहे हैं, विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश ले रहे हैं, या तो एक बेसिक जांच होती है
0: जी।
1: और एक बेसिक जांच हो जानी चाहिए जब भी आप वयस्क अवस्था में जा रहे हों। उसके पश्चात नियमित जांच की उम्र सामान्यतः हम लोग 40-35-40 के आसपास आजकल रखते हैं, जिसके बाद आपको, और खास करके अगर आपके परिवार में ऐसी कोई हिस्ट्री है जहाँ पे कि बहुत सारी डिजीजेज हैं, हार्ट की या ब्रेन की या स्ट्रोक की अगर हिस्ट्री है आपके परिवार में, तो और आपको सजग होना चाहिए और उसकी नियमित जांच और जल्दी कराई जा सकती है।
0: तो 35 साल या 40 साल के बाद जो जांचें होती हैं उनमें कौन कौन सी जाँच एक आम आदमी को शामिल करनी चाहिए?
1: सामान्यतः जो हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं, जिसमें कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, और ये तीन जो बीमारियां हैं ये हम इनको स्तंभ मानते हैं आगे जो आने वाली सारी बड़ी बीमारियां हैं, चाहे वो हार्ट की बीमारियां हों, चाहे ब्रेन के स्ट्रोक हों, चाहे आंख की बीमारियां हों, चाहे नशों की बीमारियां हों, इन सब का इन्हीं के ऊपर प्रादुर्भाव होता है। तो इन सभी बीमारियों की जाँच, जिसमें कि ब्लड के द्वारा बहुत सारी जांचें होती हैं
0: जी, जी।
1: इसके अलावा कुछ जांचें हम लोग लैब में मतलब इमेजिंग के थ्रू करते हैं और कुछ अन्य जांचें भी होती हैं, ये सारी जांचें होनी चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, ये नियमित जांच से हमें फायदा क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप 35-40 साल के हैं और आप नियमित जांच कराते हैं और कोई बीमारी आपको पता चलती शुरुआती स्तर पे, तो उससे हमें किस तरह का फायदा या बचाव हो सकता है?
1: अच्छा सवाल आपने किया है। अभी के समय में इन बीमारियों के मामले में जिनको मैंने कहा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो एक दूसरे से फैलती नहीं है लेकिन समाज में इतनी फैल गई हैं कि इनकी एक पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आ गई है, जिसकी कि सुनामी जैसी सिचुएशन आ गई है, और भारतवर्ष और चीन जैसे देश खास करके इसमें लगभग दुनिया में नंबर 1 है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो शुगर हो, और इनसे होने वाली सारी बीमारियां, हार्ट की बीमारियां, ब्रेन की बीमारियां
0: जी जी।
1: तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं। कहने का मतलब है जो हमारी दिनचर्या, खान पान, रहन सहन, एक्सरसाइज, तनाव, ये जो खराबी इसमें आ गई है इसकी वजह से ही इनकी मात्रा इतनी बड़ी है। तो अगर हम जल्दी इनको पकड़ लेते हैं तो हम इसमें परिवर्तन करके इसमें बहुत हद तक रोकथाम कर सकते हैं।
0: जी जी जी, ये बहुत अच्छी बात है कि यदि समय रहते हमें इन बीमारियों का पता चलता है तो हमें बहुत ज्यादा एडवांस्ड चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हो सकता है कि जीवन शैली में बदलाव से ही हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। डॉक्टर साहब, अभी कैंसर भी बहुत ज्यादा दिखाई देने लगा है और बहुत कम उम्र में ही महिलाओं में या पुरुषों में हम देख रहे हैं, तो क्या इसके संदर्भ में भी कोई बचाव का कार्यक्रम हो सकता है यदि हम नियमित जांच कराएं?
1: जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है। इसकी भी जांच, कैंसर की भी स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कैंसर ज्यादातर जो हम सुनते हैं कि जब पता लगता है तब तक ये लाइलाज हो जाता है। कहने का मतलब कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत धीमे धीमे पैदा होती है और आपके शरीर में फैल जाती है, और जब ये पूरी तरह फैल चुकी होती है उस अवस्था में ये इलाज इसका पूर्णतया संभव नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर हम इसमें देखते हैं कि कैंसर के मरीजों को उपचार के बाद भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, इसलिए

0: जरूरी है कि कैंसर हम बहुत जल्दी अवस्था में पकड़ पाएं ताकि उसका उचित उपचार करके उसको फैलने से रोक सकें।
1: बहुत सही। और अभी बहुत डरावनी स्थिति भी है नियमित जांच के संदर्भ में, बहुत सारे लैब्स हैं जो बहुत बड़े बड़े पैकेजेस देते हैं, तो आम आदमी के मन में पहले तो डर पैदा होता है, फिर नियमित जांच के नाम पे उससे बहुत ज्यादा पैसा वसूला जाता है, तो किस तरह की जांच करनी चाहिए? क्या इस झांसे में पड़े कि पूरी जांच हर साल की जाए, या फिर हम कुछ सिलेक्टेड या कुछ चयनित रूप से कुछ जांचों को नियमित कराएं?
0: जी, बहुत जरूरी है इस चीज को जानना, क्योंकि आजकल नियमित जांच का बहुत सारा लोगों के बीच में फैलाव तो हुआ है, लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, लेकिन ये हम देखा जा रहा है कि बहुत सारी अनावश्यक जांचें, जैसा कि आपने कहा, होती है, और लोग ब्लड की जांचें खास करके बहुत फ्रीक्वेंटली करा लेते हैं, कई बार महीने, दो महीने, तीन महीने में, जिसकी कि हम लोग आवश्यकता नहीं समझते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई लाइफस्टाइल मेजर या कोई दवाई चालू करते हैं तो उसका एक कुछ निश्चित समय के अंतराल के बाद ही प्रभाव दिखता है, लेकिन डर के मारे या बहुत सारी भ्रांतियों की वजह से या कई बार ये पैकेजेस की वजह से लोग अनावश्यक बहुत जल्दी जल्दी जाँच कराते हैं, तो ये जरूरी है। और दूसरी एक बात मैंने देखा है कि ये जांचें करा के यूजुअली वो या तो अपने किसी मित्र से पूछ लेंगे या कहीं से इंटरनेट से सलाह ले लेंगे या किसी से और से, तो ये जांचों को जब भी आप कराएं आप जरूर किसी न किसी चिकित्सक से, चाहे वो सर्जिकल स्पेशलिस्ट से प्लस मेडिकल स्पेशलिस्ट से, आप एक सलाह जरूर लें कि भाई ये जांचें हैं, ये हमारे में रिस्क निकला, इसके लिए क्या करना चाहिए, और उसके उपरांत ही आप कितनी जल्दी जल्दी जांच कराना है आप उसके चिकित्सक के उस परामर्श से करें, ये नहीं कि आप बार बार जांचें कराएं और उससे अननेसेसरी पैनिक पैदा होता है, तनाव पैदा होता है, और वो भी एक बहुत बड़ी आजकल समस्या है।
1: बहुत सही डॉक्टर साहब, और आपने इतने कम समय में हमें इतने विस्तार से बताया कि एक स्वस्थ जीवन के लिए बीमारियों के होने से पहले ही यदि उसके बारे में हम पता कर लें तो हम ज्यादा अच्छे से इनसे बचाव कर सकते हैं, और यही आज के समय की मांग है। चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सतर्क रहें, नियमित जांच कराएं, और अनावश्यक जांचों से बचें और तनाव से बचें। आज के जीवन में सतर्कता तो जरूरी है, लेकिन कई लोग मैं देख रहा हूं तनाव की वजह से भी बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, इन बीमारियों के लिए सजगता और उसके ऊपर उचित कार्यवाही, दिनचर्या में उचित बदलाव आपको बहुत अच्छे स्वास्थ्य की ओर लेके जाएगा, और इसी बात की मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने आज समय निकाला हमारे इस कार्यक्रम के लिए, और श्रोताओं हम सबको ध्यान रखना है कि एक अच्छी जीवन शैली हमें एक अच्छे जीवन की ओर ले जाती है, और हमें बचना है इन सब भ्रांतियों से और एक सही डॉक्टर की सलाह से अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है। आप यहाँ आए, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ स्वास्थ्य जागरूकता, निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, समय पर जांच के साथ रोगों की शीघ्र पहचान और चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए हम प्रयासरत हैं। गुरदीप इंद्रजीत हेल्थ फाउंडेशन, लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर, लिंक रोड, बिलासपुर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गुरदीप इंद्रजीत हेल्थ फाउंडेशन, लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर, लिंक रोड, बिलासपुर।
3: सेहत की बात डॉक्टर के साथ, ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इसमें चिकित्सक मनोज राय से डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की बातचीत हमने आपको सुनवाई। विषय था नियमित जांच क्यों जरूरी है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। सुबह के 7:40 हुए हैं। आयुष्योताओं, अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम सदाबहार नगमे का।

छोटी सी बात, इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। यशोदास आशा भोसले के स्वर में, योगेश की रचना है और सलिल चौधरी का संगीत।

0: फिल्म छोटी सी बात का गीत आपने सुना, यशुदास आशा भोसले के स्वर में। योगेश की ये रचना थी और सलील चौधरी का संगीत। कार्यक्रम में आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा यह गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, सुदेश भोसले, मोहम्मद अजीज, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ें हैं, और इस गीत को हमने लिया है फिल्म हम से।
1: बम चिक चिक बम चिक बम बम बम चिक चिक।

0: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, लेकिन ये सेफ है क्या?
1: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
0: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
1: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
2: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
3: कार्यक्रम में आई श्रोताओं, आप सुनते हैं अनवर केश आवाज में ये गीत। आनंद बख्शी की शब्द रचना है, संगीत है RD बर्मन का और फिल्म है हम हैं लाजवाब।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: हाँ ये हेलमेट अच्छा है, लेकिन ये सेफ है क्या?
4: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
3: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
4: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
2: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज सुबह 10:55 पर हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम मन की बात, और उसके तुरंत पश्चात कार्यक्रम मन की बात का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 9 बजे आप सुनिए बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा विषय पर विशेष फोन इन कार्यक्रम। इसमें नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की और समय होगा सुबह 9 बजे।

हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हम दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया, बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की दो दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे। उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाश पर दोनों देश जोड़ देंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब दोनों देश मिलकर आने वाले समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहां शास्त्र स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। PM सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपये की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।
2: Every nation has a mission.
3: प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
2: So diversity has to be celebrated.
0: श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया है।
4: हमारी प्रतिबद्धता, हमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से किसी प्रकार को कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन काल में, जन्म से लेकर के उनके देहांत तक, जहां जहां जिन जिन स्थानों पर उनका स्पर्श हुआ, उस स्थान को तीर्थ का दर्जा किसने दिया है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्कॉलरशिप हो, प्रतिनिधित्व हो, संस्थान हो, हर स्थान पे यदि वाकई में सामाजिक न्याय बढ़ा है तो पिछले 12 वर्षों में बढ़ा है।
0: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दलित समुदाय के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया आई है।

0: समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला मुगलिंग काठमांडू राजमार्ग फिर खोल दिया गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने भुटेकोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रसुआ, नुवाकोट और धादिंग जिलों में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भुटेकोशी तिब्बत से निकलने वाली तेज बहाव वाली हिमालय से निकली नदी है। हाल ही में आई अचानक बाढ़ से रसुआ जिले में भारी तबाही हुई थी। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलापुझा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधा कृष्णन पत्थनमथिट्टा जिले में अरणमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। शाम को उपराष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्यटन सप्ताह के समापन समारोह की परेड को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मौजूदा 16 सितंबर की समय सीमा को 4 सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की निर्धारित तारीख 19 अक्टूबर को भी बदलने का अनुरोध किया है। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। नेपाल बाढ़ त्रासदी पर हिंदुस्तान ने लिखा है, भुटेकोशी नदी पर बनी नई झील में बढ़ रहा है पानी। अमर उजाला की सुर्खी है, जिंदगी बचाने का संघर्ष, भारत ने नेपाल के आग्रह पर भेजे 11 विशेषज्ञ। दैनिक भास्कर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मुख पृष्ठ पर छापते हुए लिखता है, भारत में मुस्लिम नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाला हिंदू नहीं।

0: पत्र ने कल जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची पर सुर्खी दी है। दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47,70,000 मतदाता बाहर, दावा आपत्ति 30 सितंबर तक। राजस्थान पत्रिका ने फोमो इकोनॉमी, दिखावे में गैर जरूरी चीजों पर भी खर्च करने की आदत को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, जरूरत नहीं, पीछे छूटने के डर से हो रही युवाओं की जेब ढीली। खरीदने से पहले खुद से पूछें 3 सवाल। क्या मुझे इसकी जरूरत है? अगर ये आज उपलब्ध नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदना चाहता? क्या मैं इसे अगले 7 दिन के बाद भी खरीदना चाहूंगा? सितारों से आगे देखने के लिए चिली में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, 260 फीट ऊंचा होगा गुंबद, 128 फीट का मुख्य लेंस, 2030 तक अंतरिक्ष में झांकने लगेगा टेलीस्कोप। नवभारत टाइम्स ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट या हाईली स्वीटेंड बेवरेज जैसी चेतावनी को पैकेट के ऊपर लाल चेतावनी वाले स्टिकर के रूप में छापने की खबर को प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने भी इस खबर पर लिखा है, FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अब दर्ज होगी चेतावनी, सावधान, इस पैकेट में नमक, शक्कर, तेल ज्यादा है।
1: धन्यवाद नवीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2,400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम माटी के स्वर सुनैया और चिट्ठी भोजैया जम्मो संगवारी मल्ला जय जोहार। कार्यक्रम में आपके संघाव में महावीर बरगा संगी हो सुनत हन। कार्यक्रम में ये पहली गीत ला और जेकर ब चिट्ठी पठोई हमें बलौदा अकलतरा ले दिलहरण गौतम अंजलि गौतम आनंद पटेल समृद्धि पटेल मन आपन हा चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले पवन कुमार सेन प्रभा देवी सेन लक्की विक्की नानू रविंद्र सेन और संग में हमें खुशी और रौनक सेन मन घलो बेलगहना ले श्याम शंकर विजय पायलट कैलाश राजकुमार श्रीवास गोलू श्यामू ठाकुर बाबा बुधगिरी ताराचंद साहू मन हमें पेंड्रा धनगांव वाले चिट्ठिया है कैलाश कुमार चंदरबाई संजना सुरेंद्र दरकेश श्याम शंकर दरक्का प्यारे लाल सोनवानी मन के और आप मन हवा कतियापारा जूना बिलासपुर ले सुशील देवांगन अखिलेश देवांगन लोकेश आशीष रवि सनी रेयांश कान्हा आदित्य देवांगन और बमहर चाटी डिले हमें गंगा देवी देवांगन पूनम देवांगन घनेश्वरी महेश्वरी कुमारी मिल्की बेबी मीनाक्षी और निधि देवांगन मन आप जमो संगी मन के पसंद में आवा सुनबो इंदिरा चंद्राकर शांति यादव के आवाज़ में ये भोजली गीतला।

कार्यक्रम में अगला गीत बा चिट्ठी पठोए हमें तेली पारा बिलासपुर ले रजन साहू बेबी ईशानी साहू संग में हमें छन्नू लाल श्रीवास और अनीता श्रीवास मन आप मन हा पटपर भाटापारा ले मोतीलाल भटपरी हा संतोष कुमार यादव मुंडोल यादव ग्राम सूरजपुरा ले सुरेंद्र यादव श्रीमती प्रीति यादव योग्य कुमार और मोक्ष कुमार यादव बुड़गहन ले ये चिट्ठी आहे राम दुलारी प्रजापति रामशरण प्रजापति चंद्रेश कुमार चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति मन के आप मन हा जिला मुंगेली सिंहनपुरी कुकुरहट्टा ले लव सिंह ठगुआ सिंह लोकू महाराज दशरथ सोनकर अनुज राम साहू सीताराम यादव तुलसी कोटवार और श्याम शंकर मन के शिवाजी चौक राजिम ले अनिल कुमार श्रीवास्तव अंजुलता श्रीवास्तव आदित्य कुमार और क्रिस कुमार श्रीवास्तव अमरपुर पिंडरा ले दीपक कुमार श्रीवास्तव रोशन कुमार बंसीलाल रेखा देवी श्वेता देवी सुरुचि देवी दिशा छुटकी दिव्यांश और लवी श्रीवास्तव आप जमो संगी मन सुनना चाहे हवा पंचराम मिर्जा कुलवंती बाई मन के गाय एक गीतला आवा सुनबो।

अगला गीत लगाए हमें भागवत सप्रे और संगवारी बन और एक चिट्ठी पठैया हमारे संगी हैं ग्राम रसेड़ा कलतरा ले मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी साहू योगेश कुमार साहू कीर्ति कुमार संध्या साहू डीकेश साहू वासु डाली पूर्वे साहू मन लूथरा खमरिया ले हमें नकुल श्याम मोहम्मद अकरम मोहम्मद अजीज सुभाष वार्ड भाटापारा ले एम एल यादव अजय कुमार यादव अमित अमीन यादव गिरीश करण युवान ढाबेश यादव हदबंद नेवधा ले सेवाक्रम यादव टुपेंद्र कुमार टुलेंद्र कुमार यादव देव कुमार यादव आप मन हवा हठौत बाजार लाहौद ले कमल

0: नाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल और राजकुमारी पटेल और गौतम नगर नांदेड़ ले प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले घलो के चिट्ठी आए हुए आवा सुन भाई गीत ला।
1: अरे लेका या बड़ रोवा था वह सुनवो नोनी।

कार्यक्रम माटी के स्वर आप मन सुना था संगी हो आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र ले एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज मा और अब जन गीत ल सुनवा थन ते करब चिट्ठी पठो हावे दतरंगी भाटा पारा ले नोखेलाल वर्मा हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा और पुष्पेंद्रमणि वर्मा मन आप मन हवा महावीर वार्ड भाटा पारा ले अमृता यादव पार्वती यादव ईश्वरी श्रीमती लक्ष्मी यादव कुमारी प्रेरणा डिम्पी यादव हदबन नेवधाले चिट्ठी हावे दुलारी यादव प्रियंका प्रीति उमेश्वरी यादव श्रीमती सुनती यादव मन के दतरंगी ले हावे भागवत वर्मा लेवई ले गुलाबदास मानिकपुरी लच्छनपुर ले विश्वनाथ साहू और चर डोंगरी पिपरिया ले दुर्गाराम साहू ए जम्मो नाम है एकठा चिट्ठी में हावे और आप मन ह ग्राम महमदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा ले रमेश केवर्त राजकुमारी केवर्त और आरती केवर्त मन आप मन सुनना चाहे हवा केदार यादव के गाए गीत ला आवा सुनबो।

0: अब ए गीत भए चिट्ठी पठो हामे दरचुराले ददुआ साहू भूरी साहू संतोषी दुलरीन साहू रेखा मोतीलाल साहू कामेश्वरी कुमारी प्रीतम कुमार साहू मन आप मन ह सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव ले मिथलेश देवांगन मधु देवांगन हिमांशु अंकित देवांगन हटरी बाजार भाटापारा ले मोतीलाल देवदास गौतम देवास देवदास मुकेश देवदास पवन गोलू देवदास ग्राम दामन बोर्डले कुमार यादव अमृत यादव कामदेव और लेखुराम यादव रुआ बांधा सनिश्री बाजार भिलाई ले हमें सुशील जैन श्रेया जैन कल्पना जैन सौर्य जैन सौरभ और शुभम जैन बेमेतरा ले सुरेश कुमार सारथी पूर्णिमा हेमलता सारथी कमलकांत सारथी बीरेंद्र ब्रजकांत सारथी और दरसिंह ले छेदूलाल यादव श्रीमती सीता यादव अर्चना अरुणा अनुराधा अल्पना यादव संतोषी नगर दुर्गापारा रायपुर ले छन्नूलाल यादव अनुराग अभिषेक अलका यादव अनामिका बलदाव यादव रानू खुशी प्रवीण साहू और सी एल यादव में
1: ए
2: का बात है
1: सुना था
2: का तेल बताबे।

ए गीत पर चार पांच ठाव चिट्ठी आवे ते हुद नाम ले पढ़ दे था। आपन हवा बचकमल मोतीलाल यादव बसंत भृगु विनय ठाकुर चोवाराम वर्मा सूरज बारेकर नारायण यदु लेखराम यदु राधे श्याम जितेन साहू जम्मूझन भाटापारले मारवाड़ी कुआं भाटापारले हा सियाराम अश्वनी पांडे सोना डीले सुब्रत चौधरी बेबी अनिसा रायपुर ले नीलू मेघमन चिट्ठी पठो हैं। बनियापारा धमतरी ले हमें रामचंद माखीजा काफिर भाई सविता माखीजा बेबी स्वाति माखीजा माही पूजा छुटकी शरद अपर जम्मू संगीमन भागवत देवांगन पदुमलाल देवांगन सुनैना पिंकी गीता यश चित्रा प्रियांशी तन्वी नीता चंद्रवती सरस्वती पुन्नी अमित नोमेश युवराज घासीराम पटेल भाई रामचंद जी देवांगन ये जतका हमें सरंगपाल ले ग्राम बठेना ले हमें बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा रेखा धनेश्वरी वर्मा चटौदा सारा गांव ले सुजान वर्मा सहोदरा वर्मा आयुषी अवकृत वर्मा मन के नाम हावे हट्री चौक बिलाईगढ़ ले खीक राम देवांगन रजनी देवांगन प्रियंका देवांगन रेणु देवांगन दतरंगी भाटापारा ले द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार वर्मा झावेन्द्र कुमार वर्मा बावली मर्रा कोनाले उत्तम कुमार कौशिक बिहारी लाल कौशिक हरीश कुमार कौशिक शिवम कुमार और शांतिनगर भाटापारा ले रमजान खान सिकंदर अशरफ खान नासिर खान अयाज अल्फेज खान सादिया खान हजरीन निशा और बिल्हा ले शेख नासिर और महजबिन बानोमन यही गीत सुनना चाहें जिला चौधरी से आओ सुनी।

0: बाबू।
1: कुलवंतिन भाई और संगीवन के गाए यही गीत के संगे संग कार्यक्रम माटी के स्वर अब यही सिरात हवे संगी हो।

छत्तीसगढ़ी लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजे हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम। इसमें बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा विषय पर नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रस्तुति है डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की।

0: श्रोताओं, आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज का हमारा विषय है बढ़ते साइबर क्राइम और हमारी सुरक्षा। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं बिलासपुर के डीआईजी और एसएसपी श्री रजनीश सिंह जी। आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार, नमस्कार सुप्रिया जी।
0: सर, आज के समय में सूरज की पहली किरण से रूबरू हम बाद में होते हैं, उससे पहले मोबाइल स्मार्टफोन की स्क्रीन के साथ हो जाते हैं। और मोबाइल ही आज हमारी दुनिया है, जिसमें हमारा बैंक है, जिसमें हमारा ऑफिस है, जिसमें हमारी सारी यादें हैं, स्मृतियों का पिटारा है। और ये दुनिया हमारी जेब में है। और जैसे जैसे इंटरनेट का विकास हुआ है, उसने हमारी दुनिया को बहुत सुंदर और आसान तो बनाया है, लेकिन एक अनजाना सा खतरा हमारे दरवाजे पर, हमारे ऊपर सदा मंडराता रहता है 24 घंटे, और वो है साइबर क्राइम का। और इस संदर्भ में अभी बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है, लोग इस खतरे में आ रहे हैं, धोखे खा रहे हैं, और साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम को लेकर अभी पूरा देश इससे निपटने की तैयारी में लगा हुआ है। तो आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि हम कैसे समझें कि साइबर क्राइम क्या होते हैं।
1: तो साइबर क्राइम को बड़ी आसान भाषा में हम समझ सकते हैं कि जब आज दुनिया में हम लोग डिजिटल उपयोग में बहुत आसान सुविधाएं हमको सबको मिल रही हैं
0: जी,
1: इसने पूरी दुनिया को बड़ा आसान बनाया है, लेकिन इसका फायदा जो है अपराधियों के द्वारा लिया जा रहा है और उनके लिए भी दरवाजे खोल रहा है
0: जी जी।
1: तो निश्चित रूप से ये सुविधाएं हमारे लिए दुविधा भी बन रही हैं। और जैसा कि आपने कहा कि साइबर क्राइम, कोई फ्रॉडस्टर, कोई साइबर ठग जो है वो किसी कंप्यूटर, किसी तकनीकी, किसी मोबाइल, किसी गैजेट्स के माध्यम से आपके पैसों को चुराता है या आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट करता है।
0: कोई ताला नहीं टूट रहा है,
1: हाँ,
0: कोई
1: कुछ
0: नहीं
1: हो रहा है, कोई चीज नहीं हो रही है। बैंक में अगर पैसे रखे हैं तो वो उसको चोरी कर लेता है।
0: हमारे एक श्रोता कॉल पे हैं, हम उनसे बात करते हैं जी। अपना नाम बताएंगे और अपना सवाल पूछेंगे।
2: हाँ, मैं उमेंद्र दास मानिकपुरी, ग्राम उच्च भट्टी सीपत से
0: जी। जी,
2: जैसे कि

0: खासकर अब आजकल पेमेंट जो है वो मतलब यूपीआई के माध्यम से ज्यादा कर रहे हैं, और एटीएम वगैरह में भी जाते हैं तो लोग वहाँ पे भीड़ लगाए रहते हैं, तो
1: पासवर्ड वगैरह आपका कहीं कोई देख ले, ऐसी चिंता होती है।
0: हाँ जी जी जी, जी। तो इनसे कैसे बचा जाए मैम? जैसे प्राइवेट बैंक वाले भी लोन के लिए वो करते हैं तो पूरा डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं, नहीं
1: सही सही,
0: तो यही सब से।
1: जी जी, आज हमारे बीच इस अंचल के डीआईजी साहब हैं रजनीश सिंह जी, वो आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं।
2: बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। तो देखिए, सबसे पहले आपको सतर्क ये रहना है कि जो साइबर ठग होते हैं, जैसा कि मैं अभी बता रहा था साइबर क्राइम के बारे में, कि साइबर ठग जो होता है न केवल आपके लिए तकनीकी रूप से खतरा है, बल्कि वो आपके दिमाग को भी मनोवैज्ञानिक रूप से भी आपको वो ठगता है, और इसी कारण हम फंसते हैं। जैसा आप बोले कि सर हम लोग लाइन में लगते हैं या फिर हम लोग कोई चीज ऑनलाइन कोई पेमेंट करते हैं, तो उस समय हमें ध्यान रखना होता है कि जैसे कोई भी ऐसी अनजान लिंक है या अनजान कोई पासवर्ड आ गया, अनजान कोई मैसेज आ गया, और उस दरमियान यदि हम रिएक्ट करते हैं तो निश्चित रूप से हम खतरे में हैं। बैंक से फोन आता है और वो आपसे कोई डिटेल मांगता है, तो ये बिल्कुल भी अब ऐसा संभव नहीं है कि बैंक आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, निजी जानकारी वो आपसे ले। आपको बैंक जाकर ही देना है। कोई भी बैंक का एम्प्लॉई अगर मांगता है तो ये गलत है और ये अपराध की श्रेणी में आएगा, इसलिए किसी को भी मत दीजिए। और इसी का फायदा उठाते रहे हैं ये लोग जो ठग हैं, वो आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। आपके मोबाइल में कोई लिंक आ जाता है, आपके मोबाइल में कोई मैसेज आ जाता है, उसको आप क्लिक करते हैं तो वो तकनीकी रूप से वो जो आपका एंड्रॉयड मोबाइल है उसको वो हैक कर लेते हैं, और वो एप्लीकेशन जो होती है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है, जिससे कि वो आपकी सारी जानकारियां उसमें देख सकता है, और जब भी आप कोई उसमें फॉर्म भरेंगे या कोई ओटीपी आएगा तो पैरेलली उसको भी पता चल जाएगा। तो पहले तो वो बेवकूफ बना के पहले ओटीपी वो लोग मांगते थे, अब तो ओटीपी भी मांगने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपका जो ओटीपी आ रहा है वो सेम टाइम पे वो अपने सिस्टम पर भी देख ले रहा है, तो इस तरह से हैक करते हैं। ठीक है, तो आपको सतर्क रहना है।
1: एक प्रश्न और इनके साथ ही जोड़ना चाहूंगी कि जैसे इन्होंने यूपीआई आईडी की बात की, अब हमने कैशलेस ट्रांजेक्शन का दौर है, तो उस समय किस तरह की सुरक्षा हमें देखनी चाहिए?
2: जब आप क्यूआर कोड से आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो क्यूआर कोड सही है कि नहीं है उसका एक यूपीआई नंबर होता है, अकाउंट से वो जनरेटेड नंबर होता है। उसमें यदि मान लीजिए कि एक मेरे नाम से, जैसे रजनीश सिंह के नाम से अकाउंट है, तो उसमें मेरे मोबाइल का @YBL होगा, @ या मेरा नाम होगा, उस तरीके से उसका एक एड्रेस होगा, तो उससे आप एक कंफर्म कर सकते हैं। साथ ही अभी बहुत सारे ऐसे टूल्स भी आ गए, उन टूल्स के जरिए भी आप क्यूआर कोड की ऑथेंटिसिटी को पता कर सकते हैं। एक मोबी आर्मोर है, अगर नोट कर लीजिए आप, MOBI ARMOUR, मोबी आर्मर। तो मोबी आर्मर आपके मोबाइल में इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और क्यूआर कोड जब भी पेमेंट कर रहे हैं तो क्यूआर कोड को देख लीजिए कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं, उसमें वो कैमरा ऑन करके, तो उसमें बता देगा यस ये आउट ऑफ रीच है।
1: बहुत सुंदर, धन्यवाद आपने कॉल किया। सर अभी जैसा हम बातें कर रहे थे कि साइबर क्राइम के खतरे क्या क्या हैं, तो इसके जो तथ्य और आंकड़े उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगी कि ये जो भयावह स्थिति हमें महसूस हो रही है, ऐसा क्यों हमें लग रहा है? नमस्कार, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है, कौन बोल रहे हैं?
3: सुप्रिया भान को हमारे वंदे मातरम
1: जी, नमस्कार, बोलिएगा।
3: मैं रामचंद मखीजा काफरे भाई बोल रहा हूँ सर, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से।
2: वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
3: मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अपना साइबर सुरक्षा के लिए कोई ऐप जैसे बनाए गए टोल फ्री नंबर, तो ईमेल, व्हाट्सएप या इस पर भी हैं, के लोगों के पास जैसे कीपैड है और अपना एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, तो वो कैसे अपना शिकायत या कंप्लेन करें ठगी होने पर? और दूसरा एक सर, चक्षु क्या होता है? चक्षु कुछ विभाग है क्या ऐप में कोई?
2: बहुत अच्छे, आपको थोड़ी थोड़ी बहुत अच्छी जानकारी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी अवेयरनेस को मैं सलाम करता हूं। तो आपने एक प्रश्न किया कि कोई इसका कोई नंबर है, टोल फ्री नंबर है, तो आपको मैं बता दूं 1930 एक टोल फ्री नंबर है एनसीआरपी पोर्टल भारत सरकार की। इसमें कोई भी आपके साथ ऐसा संदेह भी होता है कि मेरे साथ कोई साइबर ठगी हो गई, ये लगता है ऐसा कोई कॉल आया था फर्जी तरीके से, या फिर कोई गलत इलिसिट कोई फोटोग्राफ वीडियो भेज दिया है और उसके बाद वो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको कोई लिंक आ गई है, उस लिंक को आपको लग रहा है कि नहीं ये लिंक तो बिल्कुल ही अनजान व्यक्ति ने की है, तो निश्चित रूप से उसमें धोखाधड़ी हो सकती है, या फिर कोई एक एपीके फाइल होती है जो कि एंड्रॉयड फोन

0: के लिए बहुत खतरनाक है। जो ये थर्ड पार्टी एक एप्लीकेशन होता है, जो कि हम लोग आजकल ये सब इनविटेशन कार्ड बनाते हैं और ये सब चीजों को भेजते हैं ना, सभी को एक साथ भेज देते हैं आजकल
1: घर, हाँ जैसे आजकल पार्टी वगैरह
0: जी
1: घर वगैरह का सीन भी,
0: हाँ हाँ हाँ। तो वैसे ही क्या होता है कि ये लोग अपराधी जो फ्रॉडस्टर हैं, जो अपराधी है, साइबर ठग हैं, वो भेज देते हैं। अब उस लिंक में उस हिडन रूप से वो उसमें एक मालवेयर होता है, तो उससे क्या होता है कि आपका सिस्टम हैक हो जाता है एक तरीके से। उन पैरेलली वो आपके सिस्टम को वो देख सकते हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को, आपके डाटा में, आपकी गैलरी में जा सकते हैं। फिर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपका ओटीपी, आपका अकाउंट, पासवर्ड सब पता कर लेते हैं वो लोग, और आपको पता भी नहीं चलता है और आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो ये सब चीजों से सावधानी यही रखना है। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में व्हाट्सएप में आप जाकर देखेंगे सेटिंग में, तो उसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी होता है, तो उसमें जब आप जाएंगे उसमें आपका ऑटो मोड में एनेबल रहता है, डाउनलोड ऑटो मोड में रहता है
2: जी।
0: तो वो ऑटो मोड में नहीं रहना चाहिए। ऑटो मोड में है तो कोई भी चीज आएगी बिना आपके क्लिक किए भी वो ओपन हो जाएगी और आपका सिस्टम हैक हो सकता है, तो उसको हमेशा डिसेबल रखें और जब जरूरत हो तब एनेबल करके फिर उसको।
2: जिनके पास डाटा वाला मोबाइल नहीं है फिर भी उनको कोई क्राइम रिपोर्ट करना है और कोई नंबर हो,
0: किसी 1930 वो तो टोल फ्री नंबर है, आप उससे से कर सकते हैं, आप बिल्कुल टोल फ्री नंबर पे कर सकते हैं कीपैड वाले मोबाइल से।
1: ठीक है, तो जैसे कोई लिखित शिकायत देना है, जैसे गाँव में एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है,
0: तो आप 1930 पे कॉल कर दीजिए सीधा।
1: अच्छा,
0: सीधा कॉल कर दीजिए, रजिस्टर्ड हो जाएगा और संबंधित थाने को तत्काल जाके बता दीजिए कि साहब ऐसा ऐसा है, वो लोग तुरंत आपका अकाउंट को होल्ड कराएंगे। और अगर मान लीजिए कोई पैसा चला गया दुर्भाग्यजनक तरीके से, कुछ राशि निकल गई है, तो संबंधित बैंक में जाके उसको तुरंत होल्ड कराइए। जितना जल्दी आप बैंक में और पुलिस थाने में जाएंगे उतना ही जल्दी आपकी राशि होल्ड हो सकती है। अभी हम लोगों ने काफी लोगों की होल्ड कराई है और पैसे वापस भी हो जाते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद जी, आपने फोन किया।
1: वंदे मातरम डीआईजी साहब,
0: वंदे मातरम, वंदे
2: मातरम, वंदे मातरम। हम चर्चा कर रहे थे कि तथ्य और आंकड़े जो इन परिस्थितियों में हमें मिल रहे हैं वो किस तरह के।
0: देखिए, बहुत ही भयावह आंकड़े हैं, पूरी दुनिया इससे परेशान है, बट अभी जो भारत में करीब 30 लाख के आसपास साइबर क्राइम हो हुए हैं, तो आंकड़े ऐसे हैं कि अगर हम देखें तो औसतन हमारे 8000 क्राइम प्रतिदिन हो रहे हैं और हर मिनट में 4 साइबर क्राइम हो रहे हैं।
2: हमारे एक श्रोता कॉल पे हैं, हम उनसे बात करते हैं। आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं, साइबर क्राइम और सुरक्षा के संदर्भ में आज का फोन इन कार्यक्रम है, आप कौन बोल रहे हैं?
3: मैं डॉक्टर प्रेमलता वर्मा
2: जी,
3: स्वामी आत्मानंद कॉलेज से बोल रही हूँ
2: जी। बोलिएगा मैडम।
3: ये मैडम, ये ई परिवहन के विषय में बात करना था
2: जी,
3: कि मेरे द्वारा एक बार रेड लाइट वायोलेशन हुआ था, तो उसके मेरे को फाइन पटाने के लिए 5000 रुपीज का आया था
2: जी।
3: फिर मैंने उसको गूगल में जाके मैंने ई परिवहन सर्च करके, मैंने बहुत सारी साइट्स हैं तो उसमें एक इन्फो कार और एक लॉयर्ड इन ऐसे वाले साइट्स हैं, वहां जाके मैंने पेमेंट किया। उन लोग ने मेरे से कन्वीनियंस चार्ज 200 रुपए लिया, पिछले 19 जुलाई की बात है
2: जी।
3: मेरे से 5200 का चलान पटा लिया, पर एक महीने हो गए, उसके बाद मैं जब ई परिवहन के ऑफिस में गई तो बोले आपका ऐसा कोई चालान पे हुआ नहीं है। तो फिर मैंने साइबर फ्रॉड के लिए एक मैंने एप्लीकेशन दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह की जो साइट्स हैं उसमें जाकर यदि हम यूपीआई पेमेंट करते हैं तो ये कितना रिलायबल है
2: जी। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। डीआईजी साहब लाइन पे हैं।
0: मैडम, आपको जब ये चालान ई चालान आया होगा उसमें लिंक दिया होगा नीचे। कई बार ऐसा होता है कि ये साइबर फ्रॉडस्टर जो होते हैं जिसमें कि उनके फ्रॉड करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ऐसी कई मिलती जुलती लिंक को वो गूगल पे डाले रहते हैं सर। तो जो ऐसे जो भी हमारी लिंक होती हैं उसमें आपको उसमें लिखा रहता है, ई चालान में नीचे लिंक दी रहती है, उसको एक बार क्लियर कट अच्छे से पढ़कर और उसमें टाइप किया करें, क्योंकि सेम लिंक वैसी ही लिंक जिसमें कि आई एन या कोई ना कोई चीजें चेंज करके ऐसे फ्रॉडस्टर जो है वो दिए रहते हैं उसमें। तो जैसे हम गूगल पर टाइप करते हैं अचानक से हमारी क्लिक किस पे हो गई कि जो गलत है, निश्चित रूप से इसमें फ्रॉड हुआ होगा। आप एक काम करिएगा कि एक एप्लीकेशन बना के मेरे ऑफिस में भेज दीजिएगा या साइबर सेल में हमारे भेज दीजिएगा किसी के माध्यम से, या बाई पोस्ट मेरे को भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको कर दूंगा, मैं देख लूंगा उसको
3: जी,
0: और उसको पकड़ेंगे हम लोग।
3: तो, लेकिन लगातार इस तरह के मैसेजेस आते हैं सर
0: जी,
3: तो ये लोगों को कैसे पता तो चलता है कि हमारा
0: नहीं
3: हमारा
0: नहीं ये
3: ड्यू है चालान करके?
0: ये तो क्या होता है मैडम कि आपका हर चीज हर रोज ऐसे फ्रॉडस्टर जो यही काम कर रहे हैं, यही सर्च कर रहे हैं, तो उनको ये चीजें पता चल जाती हैं। जो लिंक की मैंने बात की है ना,

0: वो लिंक हमेशा ये लोग डार्क वेब पे डाले हुए हैं सभी, तो जरा सा भी मिसमैच हुआ या जरा भी आपने क्लिक किया वहां पर जो सही साइट थी वो अचानक से खुल जाती है। आप देखते होंगे गूगल में आप कोई चीज टाइप करिए वो खुल जाती है, हम लोग पूरा उसको पढ़ते नहीं है और फिर क्लिक कर देते हैं, तो इस कारण ये हो जाता है। तो मेरा यही कहना है कि सबसे पहले तो आप कोई भी लिंक को आप कर रहे हैं उसको चेक करिए, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करिए। तो मैंने अभी एक मोबी आर्मर, मैं अभी बताया हूं आपको, मोबी आर्मर MOBIARMOUR, इससे आप किसी भी लिंक को स्कैन करेंगे तो वो बता देगा कि यस ये ऑथेंटिक लिंक है या फिर ये गलत है।
1: तो ई परिवहन अपनी तरफ से किसी को असाइन नहीं करता है कि आप 200 रुपए लीजिए और हमारा काम इनके थ्रू कर दीजिए, हाँ, ऐसा कुछ नहीं
0: नहीं नहीं नथिंग नथिंग कुछ नहीं है।
2: यही हुई थी सर कि हम ऑफिशियल में नहीं जाके, हम ई परिवहन गूगल में जाके टाइप किया,
0: तो वहाँ पर ढेर सारा ये लोग ना जैसे होता है ना कि हाँ बना के फेंके रहते हैं, उसमें हमको कहीं ना कहीं भ्रम हो जाता है और कंफ्यूजन के कारण हम गलत उसको साइट को लिख,
2: और वो एड्रेस हरियाणा का दिखाता है,
0: वो यही हो जाता है।
1: जी धन्यवाद प्रेमलता जी, आपने कॉल किया,
2: बहुत सारा धन्यवाद।
1: आकाशवाणी के विशेष फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
3: मैं आस्था शर्मा बोल रही हूँ, बिलासपुर से।
1: जी जी बोलिए आस्था जी।
3: जी मुझे पूछना था रजनीश सर से। जी मेरा साइबर क्राइम में फ्रॉड हुआ था 1 साल पहले।
1: जी
3: अभी मेरा पैसे पूरे आए नहीं है,
1: क्या हुआ था?
3: मेरे ना पैसे निकल गए थे 75,000।
0: किस तरह से हुआ था आपका साइबर फ्रॉड?
3: जी व्हाट्सएप में ना यूनियन बैंक से ना एक ऐप आया हुआ था और मेरा यूनियन बैंक का ब्लॉक था, तो वो ओपन लिंक होने की वजह से फिर
0: देखिए मैं आपको बता, हाँ वो प्री एक्टिव कोई अकाउंट है या प्री एक्टिव कोई प्लान है आपका चल रहा है उसको ये लोग डीएक्टिव बता देते हैं और ऐसी लिंक भेजते हैं कि आपका ये प्लान डीएक्टिव हो गया है, आपका ये अकाउंट डीएक्टिव हो गया है या नंबर डीएक्टिव हो गया है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको वो एक फॉर्म भेज देते होंगे, तो उसके जरिए वो आपके सिस्टम को हैक कर लेते हैं, जो आप फॉर्म में भर रही हैं फिर वो सब कुछ उनको दिखाई दे रहा होता है और इधर वो कैश कटाकट विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ट्रांसफर कर लेते हैं अपने अकाउंट में, क्योंकि अब वो सारा चीज उनको दिखते, वो बोलते होंगे सबमिट करिए तो एक ओटीपी आएगा, फिर आप उसको सबमिट करती होंगी तो वो ओटीपी उनको मिल जाती है और पैसे निकल जाते हैं। तो उसमें ना देखिए क्या होता है, ये पैसे ये लोग कई लेयर में पैसे कई अकाउंट में खटाखट वो डाल देते हैं तुरंत, है ना, ट्रांसफर कर देते हैं। तो अभी आपके कुछ लेयर में पकड़े गए होंगे आरोपी और अभी और भी प्रयास कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने काफी कुछ पकड़ा, अभी 1,20,00,000 रुपए हमारे एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने ऐसे फ्रॉडस्टर को दे डाले हैं, उसमें हम लोगों ने काफी भी हमारे जो पूरी टीम ने साइबर की टीम ने बड़ी मेहनत की है, उसमें 40-50 लाख रुपए रिकवर किए हैं और आरोपी करीब 11 आरोपियों को पकड़ा गया है अलग अलग सिटीज से पूरे इंडिया में, तो इसको भी हम लोग करेंगे, आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल करेंगे।
1: धन्यवाद आस्था जी। सर जैसा अभी आप बता रहे थे कि ये भारत के अनेक शहरों में बैठकर काम हो रहा है, मतलब बिलासपुर में आपके साथ क्राइम हो रहा है, आपको लगता है कि यहीं कोई आसपास हमें ठग रहा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है।
0: नहीं नहीं, इससे और एक कदम आगे की बात कर रहा हूँ मैं, भारत के शहरों में तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि म्यूल अकाउंट के जरिए केवल एक अपने अकाउंट में पैसे को लैंड करा रहे हैं, बाकी जो इसके असली आरोपी हैं बड़े बाहर बैठे हुए हैं, अब्रॉड में हैं, जो कुछ ऐसे कंट्री हैं जहां पर ये लोग बैठ के बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं और उसमें हमारे इंडिया के बहुत से बच्चे वहां चले जाते हैं और वो वहां फंस जाते हैं।
1: हमारे एक श्रोता कॉल पे हैं, हम उनसे बात करते हैं।
4: सर नमस्कार। सर मेरे लिए ऑनलाइन फ्रॉड हो गए हैं, मेरे अकाउंट से 90,000 रुपए कट गया है।
0: कब कटा है?
4: सर 3 जून को कटा है। आप परसों अटल यूनिवर्सिटी आए थे तो मैं वही ड्यूटी करता हूँ सर, वाहन चालक हूँ, मेरा मोबाइल हैंग करके 90,000 रुपए निकाल लिए।
0: तो आपने कंप्लेन किया है वहाँ पर?
4: साइबर क्राइम में किया था साहब, साइबर वाले लोग बोले कि आप कोनी थाने में रिपोर्ट कर दो, तो लिखित
0: नहीं उसमें आपका, आपको कब पता चला कि पैसे आपके निकल गए?
4: 3 तारीख को ही पता चला था, मैं सब्जी लेने के लिए एटीएम उपयोग किया तो मेरे 90,000
0: वो लिंक, हाँ वो लिंक आया होगा उसको। अच्छा चलिए ठीक है, आपका नाम बताइए।
4: प्रदीप दुबे
0: जी, ठीक है।
4: मैं अटल यूनिवर्सिटी में नौकरी करता हूँ।
1: अच्छा, ठीक है
0: मैं इसको अभी दिखवाता हूँ। ठीक,
1: आपका धन्यवाद कॉल करने के लिए। और सर जैसे अभी इन्होंने बताया प्रदीप जी ने कि इन्हें पता भी नहीं चला कि कब इनका फोन हैक हो गया, कब इनके पैसे निकल गए, मतलब आपके फोन में जो भी मैसेजेस आ रहे हैं आपको बड़े ध्यान से उन्हें देखना है, किसी भी मैसेज या किसी भी लिंक या किसी भी इस तरह की चीजों को क्लिक करने से पहले एक बार सोचना जरूर है।
0: तो जैसा एक मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि जैसे हम सभी दरवाजे घर के खोल के और सोते हैं राम राज की कल्पना करके,

0: तो चोरी होने की संभावना है, वैसे ही हमें अवेयर होना होगा, इसलिए हमारे पुलिस अधिकारी सभी जगह अवेयर कर रहे हैं, आपके पास भी मैं आया हूं उसी के लिए, कि हमें जो हमारे फोन है उसमें कई ऐसे रास्ते हैं जिससे कि फ्रॉडस्टर घुस सकता है, वो सारा सिस्टम इनेबल रहता है तो वो एंटर कर जाते हैं उसके जरिए, आप कोई लिंक ओपन कर दोगे बिना किसी उसके तो आपके फोन को हैक कर लेंगे।
1: हमारे एक श्रोता कॉल पे हैं, हम उनसे बात करते हैं। आकाशवाणी से साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम के संदर्भ में फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं, नाम बताएंगे, गांव का नाम बताएंगे?
2: मैं अमन प्रजापति बिलासपुर त्रिपुरा से बोल रहा हूँ।
1: जी बोलिए।
2: साइबर क्राइम जो कैसे बच सकते हैं वो जानना।
0: देखिए, साइबर क्राइम से जैसा मैंने बताया कि आपको कोई भी अनजान लिंक, कोई भी ओटीपी पूछे, कोई भी आपके को फोन करके आपको बोले कि आपका फोन अकाउंट, अरे आपका ये बैंक अकाउंट बंद हो गया है, इसको चालू करने के लिए ये चीजें बताइए, आपकी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी कोई भी मांगता है, कोई फोन से आप बिल्कुल नहीं बताइए, आप बैंक जाइए या किसी भी संस्था आपको पूछती है, या कोई पुलिस का फोन भी आ जाता है कि आपको किसी को अरेस्ट कर लिया गया है, आप ये करिए, कुछ नहीं, आपको बोलिए कि आप घर आइए, हमको बताइए या फिर हम वहां आएंगे, तो इस तरह से सावधानी आप रखकर फोन में कोई भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी को ना दें, सबसे बड़ा ये।
1: आज हम देख रहे हैं कि बहुत व्यापक रूप से साइबर क्राइम हो रहे हैं और हर उम्र के लोग इससे प्रभावित हैं, कहीं गेमिंग हो रही है उससे बच्चे फंस रहे हैं, किशोर वय के बच्चे सोशल मीडिया के चलते फंस रहे हैं, बड़े लोग नौकरी पेशा लोग फंस रहे हैं, तो ये जो समस्या है इस ढंग से फैली हुई है,
0: सभी क्लास ऑफ ग्रुप ऑफ सोसाइटी के लोगों को इसमें प्रभावित कर रहा है। बच्चे जो हैं, जैसा आपने बताया कि मदर से फोन लेकर उसमें गेमिंग ऐप में, और माँ भी थोड़ा सा बच्चे उसमें बिजी रहे तो वो दे देती हैं, उसके फिर फ्रॉडस्टर क्या करता है, उसमें धीरे से उनको उसके प्रति लत लगाता है और फिर वो बोलता है कि इसमें आप ये जीत सकते हो, तो आप ये जीत सकते हो तो उसके लिए फिर आपको पैसे चाहिए, तो थोड़े से तो पैसे मम्मी से वो लेके खेल भी लेते हैं, फिर बाद में फिर बार बार मांग नहीं सकते तो वो लोन ऐप के जरिए उनको पैसे देता है और फिर उनसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेता है और फिर उनके मदर के अकाउंट पैसे खाली हो जाते हैं। इस तरह से बच्चों को बाकी और भी चीजों पे कि जो हम मॉर्फिंग टूल्स हैं, बहुत सारे AI टूल्स हो गए हैं, हमने सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म पे डाल रखा है अपने फोटो, बच्चों के फोटो, उस फोटो को चेहरे से लेकर दूसरे तरीके से इलिसिट वो सारी चीजें वो करते हैं और फिर उसको उसके जरिए ब्लैकमेल करते हैं, एक्सटॉर्ट करते हैं, तो उससे बच्चे प्रभावित होते हैं, सीनियर सिटीजन है जैसा कि रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, इनको किसी न किसी गवर्नमेंट के सर्वेंट रहे हैं तो वो कि आपने ये घोटाला किया, आपने ये ऐसा किया, आपकी ईडी में आपका वारंट निकला है, या किसी पार्सल का उसमें बता देंगे कि आपका ये पार्सल मुंबई से वहां जा रहा था, सिंगापुर जा रहा था, आपका नाम हम सब रखा है उनके पास, तो ये कंसाइनमेंट मिला है।
3: हेलो।
1: हाँ जी, आकाशवाणी के विशेष फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
3: हाँ जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, फिरवा बांधा में तरह से।
1: जी योगेश जी बोलिए।
3: तो क्या इसमें कोई ऐसा उपाय नहीं है क्या, जो अननोन नंबर हो या फिर ऐसे संदिग्ध नंबर हो जिनको पूरी तरह से ब्लॉक किया जा सके?
0: आपके फोन में इसके उपाय हैं, अपने अगर स्मार्टफोन है तो उसमें आप जाके एडवांस सिक्योरिटी में आप ऑप्शन दे सकते हैं, जिसमें कि कोई भी अननोन कॉल आएगी तो सबसे पहले आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन है, या फिर उसकी कॉल आपको रिंग नहीं आएगी और बाद में आप उसको देखकर फिर आप उसको एंटरटेन कर सकते हो कि ये मेरे कोई परिचित का है क्या। एडवांस सिक्योरिटी में जाके आप देख सकते हैं, किसी भी एंड्रॉइड फोन में या एप्पल में होगा, सभी में।
1: सिर्फ फोन कॉल उठाने से समस्या नहीं होनी चाहिए, हाँ। लेकिन उसके बाद जो फोन में,
0: हाँ,
1: आता है, जी।
0: सबसे बड़ी चीज है जैसा कि मैं बता रहा था कि ये तकनीकी का तो उपयोग फ्रॉडस्टर करते ही, हमें थोड़ा तकनीकी रूप से जानकारी भी रखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में ये साइकोलॉजिकली आपको हैक कर लेते हैं, हमको हैक कर लेंगे। आपके परिवार के किसी बच्चे के आवाज में अगर वो आपको फोन आ गया कि मेरे को पुलिस पकड़ ले गई है, पापा ऐसा कर लो, मेरे को छुड़वा लो, ये देखे, तो आप फंस जाओगे और आप सोचोगे सही में हो गया होगा। तो ऐसा, ये सब चीजें, जो भी ऐसी चीजें आती हैं, चाहे वीडियो कॉल है चाहे ऑडियो कॉल है, इसको आप पहले दिमाग थोड़ा सचेत रहें। एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि कोई चक्षु एप्लीकेशन है, तो निश्चित रूप से हाँ, I4C में एक चक्षु एप्लीकेशन है, लेकिन वो एप्लीकेशन तो ठीक है, आप उस समय एकदम एप्लीकेशन ऑन करो, ये करो, वो तो ठीक ही है जो भी है, लेकिन अपने दिमाग के चक्षु हमेशा खोल के रखिए। तो तकनीकी और मनोविज्ञान, ये दोनों काम करता है फ्रॉडस्टर के उसमें एक्ट में, तो आप अगर इसमें अवेयर रहेंगे, जिसको कि बोलते हैं हम चेतना
1: जी,
0: तो वो हम नहीं फंस पाएंगे, है ना?
1: बिल्कुल सही, ठीक है, धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए।

0: जैसे कि आप बता
1: एक पॉइंट मैं बता देता हूं कि बच्चों का जैसे मैंने बताया वैसे ही सीनियर सिटीजन होता है, वैसे ही महिलाएं हैं और बच्चियां हैं जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया, जो हमारा सोशल मीडिया में जब आप एक्टिव हैं तो आप इस साथ ही साथ अपनी सक्रियता उसमें भी बताएं, जो उसमें सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसमें कई ऑप्शंस हैं, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड, प्राइवेट एंड पब्लिक या ओनली मी, तो ऐसी कोई भी चीजें जो कि आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये फ्रेंड ही केवल मेरा ये प्रोफाइल देख पाएगा या ये फोटोग्राफ या वीडियो या कोई मैसेज, उसमें उसको चॉइस से आपको सेलेक्ट कर दीजिए। और यदि फ्रेंड सारे फ्रेंड्स आपके जो कॉन्टेक्ट में हैं, जो उसमें फ्रेंड लिस्ट में आपके हैं, सभी लोगों को देखना चाहते तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पब्लिक करते हैं उसमें विशेष तौर पर बच्चों को मैं कहता हूं या महिलाओं को कहता हूं कि आप सभी उसको जरूर चेंज कर लें। अगर आप सार्वजनिक लाइफ में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो हजारों लाखों डेली मैसेज आप देख रहे हैं क्योंकि आपको कार्यक्रमों और उनकी जानकारियों को, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और वो सारी चीजें हमको देना है। लेकिन अगर आप एक होम मेकर हैं या सर्विस क्लास हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए,
0: बहुत सही,
1: वैसे ही बच्चों को देखना चाहिए
0: बिल्कुल। और व्हाट्सएप में भी आजकल पूरा व्हाट्सएप हैक करके फिर लोगों को मैसेज चले जाते हैं कि मुझे बहुत जरूरत है,
1: और व्हाट्सएप भी हैक हो जाता है। और लगभग कम से कम कितना भी कुछ कर लें 6 दिन तक व्हाट्सएप को हम रिट्रीव नहीं कर पाते हैं, 6 दिन तक वो हैक रहता है
0: जी।
1: जब तक हमारी रिक्वेस्ट जाती है उसको बंद को लिए, लीगल एक्शन के लिए और ये सारी चीजों के लिए।
0: तो हम श्रोताओं को ये भी बताना चाहेंगे कि व्हाट्सएप में भी डबल सिक्योरिटी सिस्टम आजकल दिया
1: है
0: जी जी, तो उसका उपयोग जरूर करें कि ऐसे आपका हैक ना हो जाए, जब कोई चाहे तो आपका व्हाट्सएप हैक हो के आप परेशानी में ना पड़े।
1: तो यही अवेयरनेस हम लोग रेगुलर कर रहे हैं
0: जी जी। और अभी जो डिजिटल अरेस्ट है, वैसे तो बहुत विज्ञापन हम खुद ही उसके संदर्भ में प्रसारित कर रहे हैं कि लोग बचे रहें, लेकिन फिर भी आए दिन कहीं ना कहीं से एक डिजिटल अरेस्ट की घटना होती रहती है
1: निश्चित रूप से।
0: तो उसके बारे में
1: इसमें बताया मैं कि ये 3 चार्जेज लगा के ये लोग डिजिटल अरेस्ट ऐसे फ्रॉडस्टर करते हैं, तो उसमें ये फोन आएगा आपके पास या किसी व्यक्ति के पास आता है जो विक्टिम है कि आपके नाम से ये पार्सल था भाई, आपने वापस कर दिया है। और तो बोले नहीं, हमने तो कोई पार्सल भेजा ही नहीं है। फिर बोलता है नहीं ठीक है, मैं आपको एक हमारे दूसरे ऑफिसर्स को कॉल फॉरवर्ड करता हूँ, कॉल फॉरवर्ड का जैसी रिंग जाएगी आप उसमें 9 नंबर दबाइएगा। तो उसने कॉल फॉरवर्ड किया, 9 नंबर इन्होंने दबाया
0: जी।
1: 9 नंबर दबाया तो सामने वाले ने बोला कि भाई ये तो आपका ही नाम है, मैं स्क्रीन में देख के एक बार कंफर्म करता हूँ। तो स्क्रीन में देख के उसको कंफर्म करता है कि हाँ ये जो भी नाम है उसका एक्स और ये एज और ये एड्रेस और ये नंबर, ये सब चीजें दी हुई है आपकी, और ये तो बहुत ही खतरनाक है, इसमें तो ड्रग्स है और इसको कस्टम ने पकड़ा है और इसके संबंध में क्राइम रजिस्टर्ड है आपके मुंबई के फलाने थाने में। सामने वाला जो विक्टिम बोलता है भाई हमने तो भेजा ही नहीं है ऐसा कोई भी, हमने कोई हमारे नाम से कुछ नहीं। अब वो परेशान होता है, 9 नंबर दबा के खुद ही गया वो
0: जी जी जी,
1: काटना था कॉल को
0: हाँ।
1: ठीक है, इसके बाद फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं आपको दूसरे ऑफिसर के यहाँ भेज रहा हूँ, इसमें कॉल को ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो दूसरे अधिकारी के पास जैसी ट्रांसफर होती है तो एक वीडियो सामने दिख रहा होता है
0: जी, मैंने भी देखा है,
1: वीडियो कॉल है,
0: पुलिस वाले पुलिस है। और सब कुछ बिल्कुल सेटअप खाने का रहता है,
1: कोई किसी को कुछ पीट पाट रहा है या कुछ कर रहा है
0: जी जी जी।
1: और फिर वो डराता है कि तुम्हारी तो मतलब जेल जाने के दिन आ गए हैं और तुम्हारे नाम से ये सुप्रीम कोर्ट से वारंट निकला है। अब वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट सीधा नाम ले लेता है और उसको एक लिंक देता है वेबसाइट, मतलब उसमें क्लिक करो तुम्हारे नाम से वारंट आ जाएगा, उसको प्रिंट आउट ले लो और थाने आप समर्पण करिए आके। तो बोलता है अरे सर मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं भेजा ही नहीं हूं ऐसा कोई भी चीज, तो फिर कैसे मैं करूंगा। तो बोले नहीं, अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप समर्पण करिए या फिर डिजिटल अरेस्ट हो जाइए, वही एक सुविधा हम दे सकते हैं। कोई भी आपके मतलब नेट रहेगा ऑन और आप हमेशा डिजिटली दिखेंगे
0: जी,
1: वीडियो कॉल में रहेंगे
0: जी, जी, जी।
1: इस तरह से वो करके और फिर उससे छुटकारा पाने के लिए उनसे लाखों करोड़ों रुपए ले लेते हैं
0: और अक्सर लोग फंस जाते हैं।
1: अभी दो तीन घटनाएं तो हमारे यहाँ की केस स्टडी है अपने,
0: हमने जैसे बताया कि कोई एज ग्रुप नहीं, मतलब इसमें ये भी नहीं कि आप पढ़े लिखे
1: सब
0: पूरी तरीके से फंसा लिया जाता है
1: पूरी तरह से।
0: तो सबसे अच्छा उपाय क्या होना चाहिए, जैसे आपको थोड़ा सा भी कहीं एहसास हो कि ये
1: मेरे साथ एहसास क्या आपको बोले, कोई बोलता है कि आपने ये पार्सल भेजा है क्या, काटिए तुरंत, खत्म, ब्लॉक कर दीजिए कि ये तो साइबर फ्रॉड ही है,
0: हमने
1: तो भेजा ही नहीं है कोई। जब आपने भेजा ही नहीं है और मान लीजिए अगर आपको नहीं उस समय याद नहीं आ रहा है तो भी काट दीजिए, क्योंकि दोनों में चांसेस में आपके साथ फ्रॉड हो सकते हैं ना
0: बिल्कुल। और जैसा आपसे अभी चर्चा हो रही थी कि यदि कोई लिंक आया आपने धोखे से उसको खोल दिया, मान लीजिए एपीके फाइल है आपने खोल ही दिया, खुल गया।

0: उसके बाद तुरंत आपको सुरक्षा के लिए क्या करना,
1: तुरंत आप अपना सबसे पहले जो भी नेटवर्क आपका है उसे ऑफ कर दें, इमीडिएट वाईफाई से हो जाए डेटा बंद कर दें और फोन को भी ऑफ कर दें, फोन को भी बंद कर दें, इसके बाद फोन को चालू करके और उसका जो ऑथेंटिकेशन है, जैसे आपका ऐसा लगता है कि आपका व्हाट्सएप हैक हो गया होगा है ना, तो व्हाट्सएप का न्यू रजिस्ट्रेशन कर लें, न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाता है व्हाट्सएप का।
0: जी जी, तो बहुत ही अलग अलग ढंग से एक तरीका प्रचलित हो जाता है तो अपराधी दूसरे तरीके ढूंढने लगते हैं,
1: दूसरे तरीके
0: जी। और अब एक और एक तरीका हुआ है सर, OLX में कोई अपना सामान बेचता खरीदता है, उस दौरान भी जो QR कोड आते हैं उसमें अपन सोचते हैं कि QR कोड सिर्फ पैसा देने के लिए है, पैसा लिया भी जा सकता है, मतलब वो कैसा काम करता है?
1: हमको कोई भी पैसा देने के लिए अगर कर रहा है तो वही समझ जाइए कि फ्रॉड है, कोई भी आपको पैसा देने के लिए भेजने के लिए अगर करता है।
0: नहीं, तो OLX में आपकी डील हुई है, चलिए मैंने 10,000 रुपए में अपना सोफा बेचा है,
1: बेचा है,
0: तो उसके बाद मुझे किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं इस तरह के साइबर फ्रॉड में लाइन करूं?
1: जो जिस कस्टमर का होगा उसी से तो आप बात करेंगे ना।
0: जी जी,
1: तो वो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है वो सारा कुछ आप पहले पता कर लीजिए। आप 10,000 5,000 आपकी तो मेहनत की कमाई है, ऐसा नहीं कि किसी फ्रॉड को चली जाए या फिर आपका सोफा चला जाए और आपको पैसा ही ना मिले। इसमें अनेकों फ्रॉड हो चुके हैं कि सोफे की फोटो डाल दिया गया और रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे आपसे लेते गए कि भाई हम ये देखिए 5 लाख का सोफा है और हम 75,000 में दे रहे हैं क्योंकि ट्रांसफर हो गया है। तो पहले उसको कंफर्म कर लीजिए वो आदमी है कौन, वो आपके रेफरेंस में बात कर रहा है, आपके किसी परिचित के रेफरेंस में बात कर रहा है कि इन्होंने बताया कि आपको जरूरत है।
0: तो ये सारी बातों का श्रोताओं हमको ध्यान रखना है, अलग अलग तरीकों से फ्रॉड हो रहे हैं, कभी लोन लेने के लिए, लोन के मामले में भी कि बहुत ज्यादा लालच दिया जाता है, कभी जॉब ऑफर और इस तरह की भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं।
1: अब सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा क्राइम जो हो रहा है कि आपको 100% रिटर्न हो जाएगा आपका पैसा, मतलब डबल हो जाएगा, डबल जिसको बोलते हैं ना, डबल कर देंगे आपके। और वो अपनी मॉडस ऑपरेंडाई में ये रखते भी हैं कि आपने एक महीने पैसे कुछ लगाए तो उसमें कुछ परसेंट आपको पैसे वापस किए, 1 लाख लगाया आपने तो 1.5 लाख रुपए आपको दे दिए, फिर आपने 3 लाख लगाया तो फिर आपको 1-2 लाख दे दिए, फिर आप बढ़ते जाते हो, फिर आपसे वो 10 लाख लगवा देंगे तो 10 लाख का 12 लाख दे देंगे आपको, 13 लाख दे देंगे, इसके बाद अचानक से आपसे 25 लाख करवा देंगे, फिर अब 25 लाख कर दिए, अब वो वापस आ नहीं रहे जल्दी ना, उसको वापस लाने के लिए फिर आप बोलेंगे अच्छा हाँ वो तो वापस आपको कर रहे हैं, आपको ऐसा करना 6 लाख और देना पड़ेगा। ऐसे करते करते 1-1 करोड़, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए लोगों ने दे डाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, इसमें साइबर फ्रॉड क्या है, इसमें तो लालच है।
0: एग्जैक्टली,
1: उस लालच में लोग गए और उसमें वो किया। ऐसा कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसा नहीं पैसे देता, अगर देना रहता तो सरकार नहीं दे देती अपने नागरिकों को।
0: सही बात है, तो ये बिल्कुल समझना चाहिए कि ये जो भरोसा आप पर बनाया जा रहा है वो बाद के आपके लालच को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।
1: लालच और डर दो ही चीजें हैं।
0: जी जी,
1: दोनों में मनोवैज्ञानिक कंटेंट
0: बिल्कुल सही। तो जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है और उसी को हैक कर लिया जाता है, बहुत सही आपने बताया। और हम सभी जनरली, मैं सभी श्रोताओं की तरफ से पूछना चाहूंगी कि हमें एक स्मार्टफोन आज की जरूरत है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते कि हम फोन ना रखें, तो हम सभी को अपने फोन में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना?
1: देखिए, मैं आपको फिर इसमें भी बता रहा हूं कि आपके साथ यदि मैं कोई ऐसे व्यक्ति जो साइबर फ्रॉड करने वाला है, कर रहा है, वो क्या क्या करेगा पहले, अगर आपको आपके खिलाफ उसको साइबर फ्रॉड करना है तो सबसे पहले आपके बारे में वो बहुत सारी डिटेल लेगा, जो कि सब कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे अरे ये फेसबुक है, इंस्टा है, एक्स है, गूगल है, सब पे है, आपकी पूरी डिटेल ले लेगा। इसके बाद फिर वो आपके तक पहुंचेगा। तो मेरा यही कहना है कि सबसे पहले जितनी भी साइबर सिक्योरिटी के ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं, आपके फोन में ही है, और उनको जरूर ध्यान देकर और उनके बारे में जरूर जान लें, उसको जरूर एक्टिव कर लें, तो निश्चित रूप से वो होगा। एक दूसरा मनोविज्ञान जो है इसमें काम करता है, उसमें आप जब भी ऐसी कॉल आए तो आप सचेत हो जाइए कि सोसाइटी में अखबार, मीडिया, सोशल मीडिया, पुलिस अफसर, सभी लोग अवेयर कर रहे हैं कि आपको ऐसी किसी कॉल को एंटरटेन नहीं करना है, आपको किसी ऐसे OTP नहीं बताना है, किसी को अपनी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं बताना है, कोई जानकारी नहीं देना है।
0: थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी जानकारी आपको हो,
1: इसके लिए आपको मैं बता दूं कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक साइबर जागृति अभियान चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़।

0: इसके द्वारा जिसका कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इनॉग्रेशन किया 15 तारीख को, और साइबर जागृति के नाम एक सेल्फी भी उसको सभी उसके लिए क्यूआर कोड किया है। फिर आप बोलेंगे कि ये क्यूआर कोड में तो नहीं साइबर तो उसमें लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ पुलिस, वो आएगा तो उसके नाम से एक क्लिक करके अपनी सोशल मीडिया में डालें जिससे ज्यादा लोग अवेयर हों, हमारे सभी शहरी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक। तो इसको हम लोग बिलासपुर में भी लगातार कर रहे हैं। इसको फोकस ऐसे किया गया है कि हर सप्ताह, जैसे अभी जो पिछला सप्ताह गया है वो टोटल स्टूडेंट के लिए था, विद्यार्थी केंद्रित था। अभी जो अभी आज से हम लोग पूरे बैंकों में भी चालू है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के आड़ में जो लोग करते हैं कि बैंक से फोन आया कि ये हुआ, जैसे हमारे एक सज्जन पूछ रहे थे
1: जी
0: वो लाइन में लगना पड़ता है और ये करना, वहां भी ठग लेते हैं लोग, कोई आके दो मैं तुम्हारा एटीएम यूज
1: करने की श्रोता ने पूछा भी था।
0: तो उनके लिए है, फिर महिलाओं बच्चों के लिए अगला सप्ताह है, फिर उसके नेक्स्ट वीक में इनके लिए सीनियर सिटीजन के लिए है जो डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड है। फिर ऐसे ही हम लोग ग्रामीण और नगरी चौपाल में इसमें लोगों को जागृत करेंगे। 2 अक्टूबर को इसमें गांधी जयंती के दिन इसका समापन होगा। तो अभी तक हम लोगों ने एक क्विज भी, साइबर क्विज भी डाला है जिसको कि 1500-1600 लोगों ने किया है, जिसमें उनको सहभागिता प्रमाण पत्र भी ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है उसी में। तो ये सब चीजें जागृत अवेयरनेस के लिए पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। इसमें मैं आपके इस आकाशवाणी के कार्यक्रम के माध्यम सभी श्रोताओं से अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा स्वयं जागरूक हों और अपने परिवार, रिश्तेदार, आस पास पड़ोस सभी को इसमें आप जागृत करें। ब्रांड एम्बेसडर आप हैं, अभी सभी नागरिक यदि अवेयर हो जाएंगे तो ऐसे कोई भी साइबर फ्रॉडस्टर ये अपनी हिमाकत नहीं कर पाएगा।
1: साइबर क्राइम होने के बाद की प्रक्रिया भी मैं अपने श्रोताओं के लिए आपके द्वारा बताना चाहूंगी।
0: देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही आपके साथ यदि मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली कोई क्राइम हो ही गया, ये सारा कुछ अवेयरनेस के बावजूद भी हो गया, तो आप सबसे पहले नंबर याद रखिए, टोल फ्री नंबर है 1930, नेशनल साइबर क्राइम ये पोर्टल है जो हमारा
1: 1930
0: और इस पे आप तत्काल कंप्लेन अपनी रजिस्टर्ड करें और संबंधित थाने में रजिस्टर्ड कर लें जाके, और अपने बैंक के जो जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसमें जाके बता दें, कंप्लेन कर दें, और जिससे कि आपका अकाउंट होल्ड हो जाए और इसकी कंप्लेन FIR रजिस्टर्ड कराकर और फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन में वो जो राशि होल्ड हो जाती है उसको एक प्रक्रिया है और बहुत ही आसान प्रक्रिया के तहत वो पैसे उनको मिल सकते हैं।
1: मतलब समय बड़ा महत्वपूर्ण है, फ्रॉड होने के एक दो घंटे के अंदर ये सब हो जाना चाहिए,
0: बहुत जल्द हो जाना चाहिए। घंटे का तो प्रश्न ही नहीं उठता, बट बहुत जल्द हो जाना चाहिए, क्योंकि कॉल करने में एक 1930 जैसे ही आपको पता चला 1930 पे आप कंप्लेन रजिस्टर कर लीजिए।
1: तो श्रोताओं से ये भी अनुरोध रहेगा कि जैसे ही क्राइम हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपना अकाउंट कैसे बंद करें, कैसे अपने ATM के पासवर्ड को बदलें या तुरंत उसको ब्लॉक करें,
0: बैंक चले जाएं।
1: यदि रात का समय है तो अपने एटलीस्ट अपना अकाउंट तो आपको ब्लॉक करना आना चाहिए। इतने सारे क्रेडिट कार्ड आप लेके घूमते रहते हैं, वो सब ब्लॉक करना भी हमें सीखना पड़ेगा। सिर्फ हम सुविधाएं लेते रहें और सुरक्षा के प्रति सुरक्षा के प्रति जागरूक न रहें तो ऐसी घटनाएं घटेंगी।
0: बिल्कुल, आप अपने गैजेट्स का सावधानी से उपयोग करें। जब भी लगता है कि कोई ऐसी कॉल, ऐसा नेटवर्क से आप कनेक्ट हो गए हैं या व्हाट्सएप मैसेज आ गया है या SMS आ गया है, उधर इंक्लाइंड ना हो, विचार करें, एक क्षण रुक जाए, जैसा कि मैंने कहा कि अपने दिमाग के चक्षु को खोल के रखें कि ये मैसेज मुझे क्यों आया है, तो उसी समय तत्काल अपने देखें उसमें अपने मोबाइल में या जो भी आप गैजेट्स उपयोग कर रहे हैं उसमें आपके सब जो मोड हैं, ऑटो डाउनलोड मोड हैं, वो सब इनेबल तो नहीं है, तो ये सब ऑफ कर दें, डिसेबल कर दें। साथ ही साथ में आप यदि कॉल आपने एंटरटेन कर लिया है तो उस कॉल में आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं और क्या क्या चीजें मांगी जा रही हैं इसकी तरफ जरूर विचार करें, और अगर एक स्टेप आप और आगे चले जाते हैं वहां पर जरूर समझिए कि आप खुद एक कदम आगे बढ़कर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो बोलता है कि 9 बटन दबाइए, तो आप खुद ही दबा के वहां पहुंच रहे हैं, तब तक तो आप समझ ही जाइए कि ये आपके साथ कुछ घटना घटित होने जा रही है, तो आप बिल्कुल भी वहीं रुक जाएं। तो हर स्टेप मैंने बता दिया, हर स्टेप में आपको सोचने विचारने की आवश्यकता है और फिर आप ये बच सकते हैं। इसके अलावा उपाय उसके वही सारे चीजें हैं जो मैंने बताए हैं, कुछ टूल्स भी हैं, और सबसे बड़ा टूल्स है आपके खुद ही मोबाइल में ही है, सिक्योरिटी टूल्स।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, कितने विस्तार से उदाहरणों के साथ आज अपने हमारे श्रोताओं को ये सारी बातें बताई कि साइबर क्राइम हो रहे हैं वो हमारी लापरवाही की वजह से ज्यादा हो रहे हैं। यदि हम जागरूक रहें, सतर्क रहें और अपने आप को सुरक्षित रहें तो हम बहुत सारे साइबर अपराधों को कम कर सकते हैं और अच्छे से

इंटरनेट का उपयोग कर सुविधाजनक और सरल जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि हमें सुरक्षित रहना है, सतर्क रहना है और जागरूक रहना है कि हम इन क्राइम्स को होने से पहले ही रोक सकें। और जैसा कि डीआईजी साहब ने बताया कि ये क्राइम एक बार हो जाने के बाद इनके संदर्भ में निपटारा सिर्फ देश नहीं विदेशों तक पहुंच जाता है, तो बहुत आसान बात तो नहीं है उसके बाद की प्रक्रिया, लेकिन उसके पहले की प्रक्रिया हमारे हाथ में है, जिसे हमें देखना है और अपने आप को सुरक्षित करना है और एक अच्छी जिंदगी जीकर देश के विकास में सहभागी बनना है। आज आप आकाशवाणी आए, इतना अमूल्य समय आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए दिया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा, इस विषय पर ये विशेष फोन इन कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इसमें नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। प्रस्तुति थी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:40 होने को ही हैं। 9:55 तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण करेंगे।

शैलेंद्र के गीतों में कभी प्रेम और विरह के कोमल भाव खिल उठते हैं, तो कभी उनकी गूंज एक नारे की तरह सुनाई पड़ती है जिसमें इस देश के आम आदमी की पीड़ा बोलती है। शैलेंद्र का अपने आसपास की दुनिया से, दुनिया के बदलते घटनाक्रम से, बदलते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात से और उन हालात के असर से गहरा सरोकार था। शैलेंद्र के गीत हमारे स्नेही संगी साथी बन जाते हैं, हमसे हमारी पीड़ा और हमारे उल्लास को बांटते हैं, हमसे संवाद करते हैं।

आज हिंदी सिने गीतों का संसार बदल चुका है। कविता और गीत का धर्म शिल्प सब बदल चुका है और इसीलिए इस दौर के ज्यादातर गीतों की ध्वनियां स्मृति पटल से मिट जाती हैं। शैलेंद्र और उनके समकालीन गीतकार यदि आज भी लोकप्रिय हैं, तो उसके पीछे एक गीतकार के रूप में न केवल उनकी कविता का सौंदर्य है बल्कि उनका सरोकार भी है। शैलेंद्र के फिल्मी गीत साहित्यिक गीतों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। आमो खास सबको पसंद हैं शैलेंद्र के सहज सुरीले सजीले गीत।

हालांकि गीतकार के रूप में शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश, शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन शैलेंद्र की रचनात्मक प्रतिभा का वैविध्य और सौंदर्य अन्य संगीतकारों के सानिध्य में भी बेमिसाल बन पड़ा है। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार सचिन देव।

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958 फिल्म यहूदी।

शैलेंद्र ने पाया सर्वश्रेष्ठ गीतकार का और मुकेश ने पाया सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म अनाड़ी सब कुछ

सन 1958 में लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण अभी किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है, अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। एनटीए ने जारी की नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त CSIRUGC नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषय से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। नीट यूजी के तहत प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण के लिए सीटों का आवंटन कर दिया गया है। 3 सितंबर तक MBBS और BDS में प्रवेश लिया जा सकेगा। 29 अगस्त की स्थिति में MBBS पाठ्यक्रम में सरकारी कॉलेजों में 227 और प्राइवेट कॉलेजों में 28 विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया है। इसी तरह BDS के लिए सरकारी कॉलेजों में 3 और प्राइवेट डेंटल कॉलेज में 41 विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। इस योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा आज रायपुर के अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में नारी शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देसाय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह करेंगे। समारोह में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 15 अगस्त से शुरू किए गए साइबर जागृति अभियान का 3रा सप्ताह आज से शुरू हो रहा है। अभियान के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट से बचाव की जानकारी देने के साथ ही पुलिस अधिकारी बनकर की जाने वाली फर्जी कॉल के माध्यम से धमकी जैसे जोखिम से बचने के उपाय बताए जाएंगे। वहीं बैंकिंग संबंधी जानकारी साझा करने के जोखिम और साइबर ठगी से बचाव के उपायों के प्रति भी लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा के

0: तटों पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में बदली बारिश की स्थिति बनी हुई है। विभाग ने आज रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बेमेतरा, बालोद, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़, रायगढ़ और जशपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बीजापुर जिले में शनिवार को थाना बासागुड़ा और डीआरजी की संयुक्त टीम ने ग्राम पेगड़ापल्ली के जंगल क्षेत्र से नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। कार्रवाई के दौरान एक संदिग्ध नक्सली सदस्य को भी गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। एनटीए ने जारी की नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। इसी के साथ इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे आप शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: हिंदी में प्रादेशिक समाचार अभी हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। दिन के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है नन्हे श्रोताओं का कार्यक्रम आओ बच्चों।

बच्चों जय हिंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बच्चों को आपकी अदिति दीदी का ढेर सारा प्यार। तो बच्चों खूब मस्ती की होगी ना, आप सब भाई बहनों ने मिलकर खूब रौनक रही होगी घर में। मम्मी ने तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए होंगे और आप सभी भाई बहनों ने उन व्यंजनों का आनंद लिया होगा, खूब मस्ती की होगी, है ना बच्चों। ये त्योहार ही तो है जो हमारे जीवन में खुशियों के रंग भर जाते हैं। बच्चों त्योहार तो एक बहाना होते हैं रिश्तों के मधुर एहसास को महसूस करने का, है ना। राखी तो एक दिन कलाई पर बनती है, लेकिन भाई बहन का रिश्ता तो जिंदगी भर दिल से जुड़ा रहता है। बच्चों असली रक्षाबंधन तो तब है जब त्योहार बीत जाने के बाद भी भाई अपनी बहन की बात सुने, बहन अपने भाई का साथ दे, दोनों एक दूसरे की मदद करें और छोटी छोटी बातों पर लड़ने की बजाय समझदारी से बातों को संभालें। बच्चों भाई बहन सिर्फ एक रिश्ता ही नहीं, बल्कि बचपन की सबसे खूबसूरत याद और जिंदगी का सबसे प्यारा सहारा होते हैं। तो बच्चों राखी तो बीत गई है, लेकिन राखी की उस प्यार भरी भावना को पूरे साल अपने साथ रखें। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने भाई बहन का हमेशा साथ दीजिए। और आइए बच्चों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं NFB ज्ञानदीप स्पर्श कन्या विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम। प्रस्तुति है मोनाली ठाकरे की। हमारे बीच उपस्थित है NFB ज्ञानदीप स्पर्श कन्या विद्यालय के छात्र। तो आइए सुनते हैं NFB ज्ञानदीप स्पर्श कन्या विद्यालय के छात्रों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम। सबसे पहले सुना रही है देशभक्ति गीत प्रतिमा केवट।

0: बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया प्रतिमा केवट ने, तो जोरदार तालियां प्रतिमा के लिए। और इसके बाद भजन भी सुनाने वाली हो क्या प्रतिमा?
1: जी दीदी।
0: हाँ तो सुनाइए।

0: धन्यवाद।
1: और प्रतिमा केवट के बाद अब समूह गीत लेकर आ रही हैं शांति, नंदिनी और साथी।

जोरदार तालियां शांति, नंदिनी और नेहा और साथियों के लिए। और अब इनके बाद अगला समूह गीत लेकर आ रही हैं आरती खूटे और साथी।

बहुत बढ़िया प्रार्थना गीत प्रस्तुत किया आरती खूंटे और साथियों ने। और बच्चों, वर्षा का मौसम है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है ना, रोज बारिश हो रही है हमारे शहर में, तो क्यों ना एक हरियाली गीत सुन लिया जाए।

0: प्रतिमा नंदिनी और शांति की आवाज में अभी हमने सुना बहुत ही सुंदर और प्यारा हरियाली गीत। तो जोरदार तालियां प्रतिमा नंदिनी और शांति के लिए। बच्चों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और नेहा हमें सुना रही है हास्य कविता।
1: मेरा नाम कुमारी नेहा साहू है, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। मैं आ गई हूँ आप सबको हंसाने के लिए। आज सुबह सुबह एक सब्जी मंडी में एक टमाटर के फटने के कारण आधा दर्जन संतरे घायल हो गए तथा मौके पर ही आलू महाराज की हुई मौत। साथ में करेले और भिंडी की भी हल्की हल्की चोटी आई है। आलू की मौत और गोभी महाराज का रो रो कर हो गया बुरा हाल और लौकी बाबा मामले की जांच कर रहे हैं। कद्दू जी का कहना है कि टमाटर लाल अपनी पत्नी मुरई लाली को देखकर अत्यंत घबरा गए, जिसके कारण वह गर्म होकर फट गए। इसके कारण सब्जी मंडी में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। अभी अभी मुझे सूचना मिली है कि आज चांद दिन में दिखाई नहीं देगा क्योंकि चंदा मामा अपने भतीजे के शादी में गए हुए हैं। और आपको हम बता दें कि 45 सालों के बाद चंदा मामा की भतीजे की शादी हो रही है, इसीलिए चंदा मामा अपने भतीजे के शादी में बधाई देने के लिए गए हुए हैं। बारात जाते समय उन्होंने ये ट्वीट किया है कि आज हम छुट्टी पर हैं, सभी देशवासी मोमबत्ती का व्यवस्था कर ले, धन्यवाद।
0: नेहा के बाद आ रही है प्रीति। प्रीति हमें एक कविता सुनाई।
2: मेरा नाम प्रीति सूर्यवंशी है, मैं क्लास 3 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक देशभक्ति कविता सुनाने चाहिए। भारत देश हमारा है, यह हमको जान से प्यारा है, दुनिया में सबसे न्यारा यह सबकी आंखों का तारा, मोती इसके कण कण में बूंद बूंद में सागर है। भारत देश हमारा है, यह हमको जान से प्यारा है, पहरी बना हिमालय बैठा धरा सोने की गागर है। भूमि अमर जवानों की है, वीरों की बलिदानों की है, रत्नों के भंडार भरे गाथा स्वर्णिम खानों की, सत्य अहिंसा शांति बंधुता इसकी शांति रंगा है, गोद खेलती नटखट नदियाँ पावन यमुना गंगा है। भारत वालों का कोटि कोटि कोटि कोटि यह नंदन है, दुनिया में सबसे न्यारा यह सबकी आंखों का तारा, हमको जान से प्यारा है यह भारत देश हमारा है, धन्यवाद।
0: और इसके बाद आ रही है आरती खूटे और मोनिका सूर्यवंशी, जो हमें चुटकुले सुनाएंगी।
3: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका सूर्यवंशी, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ।
4: और मेरा नाम है आरती खूटे और मैं कक्षा 4 की छात्र हूँ।
3: डॉक्टर साहब मेरा बात सुन लियो।
4: क्या प्रॉब्लम है आपके नाले?
3: डॉक्टर साहब, जब देखो तब मुझे दिन भर नींद ही नींद आत रहती है, शाम को देखो तो शाम को नींद आत रहती है, सुबह देखो तो सुबह नींद आत रहती है, 24 घंटा नींद ही नींद आत रहती है।
4: कौन सा मोबाइल चलाते हो?
3: मोबाइल नहीं है।
4: अच्छा, हम एक एंड्रॉइड मोबाइल लिख रहे हैं और एक सिम अनलिमिटेड वाली।
3: डॉक्टर साहब, इस दवा से क्या

0: होगा।
1: अरे मोंटू, ये तो बहुत अच्छा दवा है, न रात में नींद आए न दिन में नींद आए, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ पढ़ाई लिखाई किया करो, अगर इरादे बुलंद हो तो पत्थरों से भी पानी निकाला जा सकता है।
0: सर, मैं लोहे से भी पानी निकाल सकता हूँ।
1: वो कैसे?
0: हैंडपंप और क्या। ये सुना था, मैं बड़े काबन हूँ तो लो पता है।
1: काबन बे?
0: इंजीनियर बनहा।
1: अतोला का विषय पसंद है?
0: मोला संस्कृत विषय पसंद है।
1: अच्छा, मैं एक सवाल पूछा था, ओकर जवाब देवी।
0: हाँ पूछ।
1: तुम नाम किम अस्ति?
0: माय नेम निखिल अस्ति।
1: शट अप।
0: अच्छा, तुमको अंग्रेजी आता है?
1: हाँ सर, मुझे अंग्रेजी आता है ना।
0: हाँ अच्छा, चलो ठीक है। व्हाइट माने?
1: उज्जर।
0: ब्लैक माने?
1: करिया।
0: आई ओ गॉड। डॉग माने?
1: कुकुर।
0: अच्छा चलो ठीक है, गलत हिंदी मीनिंग बताओ।
1: टूरी।
0: शट अप, बैठ जाओ, क्या टूरी बोलते रहते हो।
1: धन्यवाद।
2: आरती और मोनिका ने कितने अच्छे चुटकुले सुनाए ना, तो जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। और इसके बाद सुनते हैं एक कहानी नंदिनी से।
3: हेलो दोस्तों, मेरा नाम नंदिनी भारद्वाज है और मैं आप सभी को एक कहानी सुनाऊंगी। एक छोटे से सुंदर गांव में अवनी नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। उसे रात का तारों भरा आसमान और चमकता हुआ चांद बहुत पसंद था। हर पूर्णिमा की रात वह अपनी छत में बैठकर चांद को निहारती और मन ही मन उससे ढेर सारी बातें करती। एक दिन उसकी माँ बाजार से उसके लिए हरे कांच की चूड़ियों का एक सुंदर सेट लेकर आई। चमचमाती चूड़ियाँ देखकर अवनी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने प्यार से उन्हें पहना और पूरे घर में इठलाती हुई घूमने लगी। खेलते खेलते अचानक उसका हाथ दीवार से टकरा गया। छन्न, एक चूड़ी टूटकर बिखर गया। अवनी की आंखों में आंसू आ गए। वह उदास होकर बोली, माँ अब तो मेरी सारी चूड़ियों का सेट खराब हो गया। माँ मुस्कुराई और प्यार से बोली, उदास मत हो बेटा, आज रात मैं तुम्हें एक छोटा सा जादू दिखाऊंगी। उस रात पूर्णिमा थी, चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में मुस्कुरा रहा था। माँ अवनी को छत पर ले गई। उन्होंने चूड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा उसके हाथ में दिया और कहा, इसे चांद की ओर उठा कर देखो। अवनी ने जैसे ही चूड़ी के टुकड़े को चांद की रोशनी में देखा, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह टुकड़ा हीरे की तरह चमकने लगा। उसकी किरणें चारों ओर बिखर गई और ऐसा लगा मानो पूरा छत तारों की रोशनी से जगमगा उठा हो। अवनी आश्चर्य से बोली, वाह माँ, यह तो टूटने के बाद भी कितना सुंदर लग रहा है। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, यही तो जीवन का सबसे सुंदर सच है। हर टूटी हुई चीज बेकार नहीं होती। कई बार टूटे हुए सपने, बिखरे हुए पल और कठिन अनुभव हमें पहले से अधिक मजबूत और चमकदार बना देते हैं। बस उन्हें सही नजर और सही रोशनी से देखना आना चाहिए। उस रात अवनी ने एक अनमोल सीख सीखी। उसने समझ लिया कि जीवन में अगर कुछ टूट भी जाए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। धैर्य, आशा और सकारात्मक सोच की रोशनी उसे अर्थपूर्ण और अधिक सुंदर बना सकती है। धन्यवाद।
2: तो बच्चों, सुना आपने, कितनी प्यारी कहानी सुनाई ना नंदिनी ने। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, अब आपके सामने आ रही है शांति, ये हमें राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में कुछ जानकारी देंगी।
4: नमस्कार, NFB ज्ञानदीप स्पर्श कन्या विद्यालय से मैं शांति बिंझवार। जैसा कि आप सब जानते हैं, राष्ट्रमंडल खेल हाल ही में ग्लासगो स्कॉटलैंड में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक संपन्न हुए। उनके बारे में मैं कुछ जानकारियां साझा करना चाहती हूँ। आखिर राष्ट्रमंडल खेल क्या है? राष्ट्रमंडल खेल राष्ट्रमंडल देशों का बहुदेशीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है, जिसकी शुरुआत 1930 को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के रूप में हुई थी। यह प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित होता है तथा इसका सफल संचालन कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स द्वारा किया जाता है। इन खेलों का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच खेल भावना, मित्रता, सहयोग एवं सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना है। कॉमनवेल्थ सदस्य देशों की संख्या 74 है। वर्तमान में 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ये संचालित हुए। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर फिनी था, जो कि यूनिकॉर्न स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय पशु पर आधारित था। अगली बार भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। राष्ट्रमंडल खेल और भारत का संबंध। भारत ने पहली बार 1934 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की और 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला भारत

0: पहला दक्षिण एशियाई देश बना। भारत ने कुल 23 पदक जीते, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में भारत का स्थान 10वां था। भारत के प्रमुख पदक जीतने वाले खेल भारोत्तोलन, कुश्ती, टेबल टेनिस, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, पैरा एथलेटिक्स आदि हैं। भारत द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां। मीराबाई चानू ने लगातार तीसरा स्वर्ण पदक, पहला 2018 में, दूसरा 2022 और तीसरा 2026 में जीतकर पहली महिला भारोत्तोलक बन गई हैं। अस्मिता डे को जूडो में स्वर्ण पदक, हर्ष सिंह को जूडो में स्वर्ण पदक, शर्मिला धनकर को पैरा एथलेटिक्स में शॉट पुट में स्वर्ण पदक, दिलीप गावित को पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक, नीरज चोपड़ा को भाला फेंक में रजत पदक, ज्ञानेश्वरी यादव को 53 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि ज्ञानेश्वरी यादव पहली छत्तीसगढ़ की महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक प्राप्त किया है।
1: तो बच्चों, सुना आपने, शांति ने कितनी अच्छी जानकारी दी ना हमें राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। और आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप सभी से पहेलियां पूछ रही हैं दीपमाला।
2: मेरा नाम दीपमाला महंत है, मैं कक्षा 12वीं की छात्र हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ पहेलियां पूछना चाहती हूँ। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी, बताओ इसका आंसर।
3: मैं बताऊं।
1: कौन बताएगा?
3: मैं।
1: हाँ प्रीति, आप बताओ।
3: तो इसका उत्तर है भुट्टा।
2: हाँ, आपने सही आंसर बताया।
1: अगली पहेली कौन सी है?
2: वह क्या है जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है लेकिन अपने जगह से नहीं हिलती है?
3: मैं बताऊं।
2: हाँ बताओ।
3: इसका उत्तर है सीढ़ी।
2: सही जवाब।
1: अगली पहेली पूछो।
2: लाल डिबिया में है पीले खाने, खानों में है मीठे दाने, बताओ इसका नाम।
3: मैं बताऊं।
2: हाँ बताओ।
3: दीदी, इसका उत्तर है अनार।
2: सही उत्तर।
1: अगली पहेली कौन सी पूछ रही हो दीपमाला?
2: एक लाठी की सुनो कहानी, जिसमें भरा हो मीठा पानी, इसका उत्तर बताओ।
3: मैं बताऊं।
2: हाँ प्रीति, तुम बताओ।
3: तो इसका उत्तर है गन्ना।
2: बिल्कुल सही है उत्तर।
1: दीपमाला, और है क्या पहेली? हाँ पूछो। प्रीति और आरती यहीं पर है जवाब देने के लिए, आप पूछो।
2: ना कोई फूल ना कोई पत्ती, फिर भी है हर सब्जी की हस्ती, बताओ इसका आंसर।
1: कौन बताएगा ये वाली पहेली का आंसर?
3: दीदी, इसका उत्तर है आलू।
2: सही आंसर है आरती।
1: तो ये था बच्चों NFB ज्ञानदीप स्पर्श कन्या विद्यालय के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम। हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको ये जरूर पसंद आया होगा। और अब सुनते हैं विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती ज्योति तिवारी का संदेश।
4: नमस्कार। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ द्वारा संचालित NFB ज्ञानदीप स्पर्श कन्या विद्यालय अभिलाषा परिसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मैं ज्योति तिवारी अपनी संगीत शिक्षिका सुखविंदर कौर और साथी दीपक के साथ आप सभी का अभिनंदन करती। ज्ञानदीप स्पर्श कन्या विद्यालय विगत 20 वर्षों से दृष्टिबाधित दिव्यांगता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करता रहा है। हमारा विद्यालय अभिलाषा परिसर तिफरा में स्थित है। इस विद्यालय में लगभग 65 छात्राएं निवासरत होकर अध्ययन कर रही हैं। सभी छात्राएं हमारे विद्यालय में निवास करती हैं। इन सभी छात्राओं की व्यवस्था, फूडिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, व्हीकल और तमाम शिक्षण सामग्री विद्यालय के द्वारा, संस्था के द्वारा इन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ नई दिल्ली से 1973 से कार्य कर रही है। 1973 में इनकी स्थापना की गई थी और लगभग 54 वर्षों से दृष्टिबाधित दिव्यांगता के क्षेत्र में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ का कार्य बहुत उल्लेखनीय रहा है। हमारे विद्यालय में इन सभी छात्राओं के शिक्षा व्यवस्था के अलावा इन्हें पुनर्वास और रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों से भी जोड़ा जाता है। अभी हमारे विद्यालय में प्रवेश जारी है। प्रवेश हेतु छात्रा की विकलांगता, UDID कार्ड, जाति निवास और आमदनी के साथ आप विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। संपर्क हेतु हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7974588 024।

0: धन्यवाद।
1: बच्चों, अभी हम सुन रहे थे एनएफबी ज्ञानदीप स्पर्श कन्या विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम। प्रस्तुति थी मोनाली ठाकरे की। तो बच्चों, आज का आपका और हमारा साथ यहीं तक। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक खूब पढ़िए, खूब खेलिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। जय हिंद।

हमारे नन्हे श्रोताओं का कार्यक्रम आओ बच्चों का प्रसारण अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। दिन के 10:30 हुए हैं। समय श्रोताओं फिल्म संगीत के कार्यक्रम नए तराने का।

कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और निकिता के स्वर में इरशाद कामिल की रचना। संगीत विशाल मिश्रा का है और फिल्म है बड़े मियाँ छोटे मियाँ नीऊ।

0: बड़े मियाँ छोटे मियाँ न्यू, इस फिल्म का गीत आपने सुना अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और साथियों के स्वर में। इरशाद कामिल के ये बोल थे और विशाल मिश्रा का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत सुनने से पहले श्रोताओं, आइए जानते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर एक बार फिर से।
1: नई सुबह के साथ, नए संदेशों के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। यात्रा संबंधी दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर के साथ आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर की शहरी सड़कों के साथ ही शहर से बाहर भी सभी प्रमुख सड़कों में, सभी ग्रामीण सड़कों में यातायात व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। इन्हीं सड़कों के माध्यम से बिलासपुर का सभी स्थानों से यातायात संपर्क बना हुआ है। मित्रों, प्रायः देखा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग जैसी मुख्य सड़कों में होटल, ढाबा या पेट्रोल पंप के पास भारी वाहन, ट्रक, ट्रेलर, कैप्सूल आदि रात के समय देर तक खड़े रहते हैं। कई वाहनों में पार्किंग लाइट या बैक लाइट भी बंद रहती है। इनके चालक वाहन के अंदर सो रहे होते हैं। इसी प्रकार लंबी दूरी के वाहन चालक भी मुख्य सड़क में वाहन का एक पहिया नीचे उतारकर बिना किसी इंडिकेटर या पार्किंग लाइट जलाए सो जाते हैं। या वाहन में कोई खराबी आ जाने से तो सड़क में ही बिना किसी संकेत के वाहन खड़ा कर देते हैं। ये वाहन बहुत अधिक घातक हुआ करते हैं। वस्तुतः इस मार्ग में दौड़ रहे अन्य वाहन के चालक को सामने से आ रहे वाहन की तेज लाइट में सामने सड़क में खड़े वाहन का ठीक से आभास नहीं हो पाता और ये वाहन पीछे से खड़े वाहन से टकरा जाते हैं। ऐसी एक नहीं अनेकों गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसी लापरवाही के चलते जाने कितने लोग काल के गाल में समा चुके हैं, अनेकों अनाथ हो चुके हैं। इस संदेश के माध्यम से पुनः ऐसे लापरवाह वाहन चालकों को हिदायत है, सड़कों में इस प्रकार खतरनाक ढंग से वाहन खड़ा ना करें। संबंधित होटल, ढाबा, पेट्रोल पंप के संचालक की भी जिम्मेदारी है कि अपने पास इस प्रकार सड़कों में वाहन को खड़ा ना होने दें। साथियों, यद्यपि यातायात के वाहन 24 घंटे सातों दिन सड़कों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं तथा ऐसे वाहनों को तत्काल हटा भी रहे हैं, फिर भी यदि आपको कहीं ऐसी स्थिति में कोई वाहन खड़ा दिखाई दे तो पुलिस कंट्रोल रूम को मोबाइल नंबर 9479193099, जी हाँ नंबर पुनः सुने 9479193099 में फौरन सूचित करें। आपका यह छोटा सा प्रयास किसी की जान भी बचा सकता है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
0: श्रोताओं, यह था आज का ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर का पुनः प्रसारण। और अब कार्यक्रम नए तराने में आइए सुनते हैं फिल्म वेलकम वेडिंग से लिया हुआ ये गीत जावेद अली के स्वर में।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: स्वस्थ तन स्वस्थ मन, जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य।

0: के लिए विशेषज्ञों की सलाह सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

कार्यक्रम में आए श्रोताओं, अब सुनते हैं फिल्म भीड़ का ये गीत। रोमी और अनुराग सायका की आवाजें हैं, शकील आजमी की रचना है और अनुराग सायका का संगीत।

0: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: हाँ बेटा।
4: आप ये अपने अटैची क्यों जमा रहे हैं?
3: मैं 10 दिन के टूर पर जा रहा हूँ।
4: अच्छा, तो लौटते हुए मेरे लिए जीन्स और टॉप जरूर लाना।
3: अरे ये तो मैं तुझे यहीं से दिलवा दूंगा।
4: आप जा कहाँ रहे हैं?
3: बेटा वो जगह दूर जंगलों में है, वहाँ हमारे यहाँ जैसे बाजार नहीं है।
4: ओ, तो पापा आपने एक जरूरी चीज तो रखी ही नहीं।
3: जरूरी चीज? अरे वो क्या?
4: आप भी लाती हूँ।
3: पता नहीं क्या ला रही है।
4: ये भी रख लीजिए।
3: अरे ट्रांजिस्टर, मेरी अच्छी बिटिया, ला दे मुझे। वाह।
5: घर से दूर भी अपनों के साथ, जब हो रेडियो पास।

0: हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 10:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम मन की बात, और उसके तुरंत पश्चात रायपुर से रिले करेंगे उसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
2: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
3: महात्मा गांधी का कहना है,
4: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
5: द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शब्द कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

0: ये तुम्हारे था
1: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
0: पर दादी आपके नाम
2: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो क्या
3: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
7: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं, देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं। इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है। साथियों कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
8: नमस्ते सर। नमस्ते
7: भाई। मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
8: सर धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
7: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
8: सर अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से उसके नजरिए से सिखाया जाता है और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
7: कृष्णा जी आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ, अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात

0: द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम
2: इतनी भी क्या जल्दी थी
1: अरे और छोटी

0: करना चाहेंगे और क्यों?
1: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंड चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं, तो हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया, और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीस आर 3 इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
0: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है, और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
1: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव 2 प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको क्वेश्चन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे, या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशंस आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको किसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा, तो हमने वो फीचर इंप्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रंप कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके, तो वो हम फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो, और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास से एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
0: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप?
1: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी है सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया, इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
0: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आपने एक अच्छी शुरुआत की है, और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो

तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे, इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्य पथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती है, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती है। कई बार

बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है। जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता। इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट अब प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ। यात्रा

अयोध्या में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई, यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालु पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालु जी किसान परिवार में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालु जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल एक चौथाई एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालु जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकल कर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालु पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदू पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनुपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की

शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे, जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलैंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था, तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को

0: जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है, लीजिए सुनिए मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता के नाम संबोधन का छत्तीसगढ़ी अनुवाद।
4: मोर देश के मयारुक रवैया हो, जोहार। मन की बात के ये नवा कड़ी मा आप सबो मन के मैं एक घाव फेर स्वागत करत हूँ। आप सबो मन जानथाओ कि ये एक ठन ऐसन मंच है जिहां हम नवा प्रयास मन ल आघू मा लानथन, देशवासी मन के नवाचारी विचार ऊपर चर्चा करथन। एमेले कतकोन विचार मन ऐसन होते जेखर पाछू लोगन मन ह जिंदगी के अथक ऊर्जा लगाए होते। संगवारी हो, कुछ बखत पाछू सोशल मीडिया मा कोनो लिखे रहिस, आषाढ़ी एकादशी के पवित्र मौका मा मुला ये बतावत बहुते खुशी होवत थे कि इतिहास ल रोचक बनाए के अपन प्रयास के शुभारंभ करत हौ। ये मन आगू बताइन, ये विचार बहुते साधारण है। आप मन ये वेबसाइट मा जावाओ और कोनो भी एक ठन बछर चुनाओ। यहाँ आप मन ल सुभित्ता ले पता चल ही कि वो बखत भारत के कौन हिस्सा मा काखर शासन रहिस। मुला घलो ये बहुते रुचिकर लगिस, मैं सोचे हूँ कि एकर बारे मा और ज्यादा जानकारी ले जाए।

0: मुला पता चलिस कि ये काम मुंबई के रहैया श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी करे हैं। मजा के बात ये है कि कृष्णा जी मन ये वेबसाइट के नाव घलो बहुते साधारण रखे हैं, www.bharatraj.com। ये मन जिन प्रयास करे हैं उखर जानकारी आप लोगन मन तक घलो खचित पहुंचना चाहिए। यही पाए के मैं सोचे हूं कि का है ना सोझे श्री कृष्णा जी ले गोठ करे जाए। संगवारी हो, कृष्णा जी हमार संग फोन में जुड़त हैं। कृष्णा जी जोहार।
1: जोहार सर, जोहार।
0: भाई मुला पता चले है ना आप मन तकनीकी के दुनिया ले हाओ, ना आप मन इतिहास के शिक्षक हाओ, तभो ले आप मन तकनीकी के प्रयोग करके इतिहास के साइट बना डाले हो। तब मुला बहुते उत्सुकता है ये सब कैसे हो।
1: धन्यवाद सर, आप मन ले गोट करना मोर बहुते बड़का सौभाग्य है। तो सर मोर बारे में अगर मैं थोकिन बतावाऊं तो सर मैं एक इंजीनियर रहे हूं, फिर मैं MBA करे हूं, फिर मैं मार्केटिंग क्षेत्र में चले गए हूं, फिर जब भी मैं ये सब करत रहे हूं तब घलो मोला नानपन ले इतिहास में बहुत रुचि रहीस। तब मैं इतिहास में कुछ रुचिकर करना चाहत रहे हूं और मोला ये घलो लगीस कि हम जैसे इतिहास सिखाथन ओमे हम बहुत सुधार कर सकत हन, ओमे हम बहुत अकन बदलाव लेके आ सकत हन। इतिहास ला एक ठन कहनी बना के लोगन मन तक पहुंचा सकत हन।
0: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास के ऐसे कौन से पहलू है जेखर बारे मा आप मन ला लगीस कि एखर जानकारी ज्यादा ले ज्यादा लोगन मन ला होना चाहिए।
1: सर अगर हम भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूल कॉलेज में सिखाए जाते, जैसे आप मन देखता हो वो एक ठन कोनो एक साम्राज्य या कोनो एक राजसत्ता ओखर दृष्टिकोण ले ओखर नजरिया ले सिखो जाते और वो साम्राज्य मल्ला असीमित ध्यान आकर्षण घलो मिलते। ये चक्कर में बाकी के बहुत अकन हमर साम्राज्य जैन महान साम्राज्य रहिन जैसे चोल पल्लव कारकोटा राजवंश रहिस कश्मीर में, अहोम्स रहिस जैन मन कम से कम 600 बछर तक असम में अपन संस्कृति अपन मूल्य प्रणाली ले स्थापित रखिन। ये सबों के बारे में हमन नहीं जानन, तब मैं सोचे हूं कि कोनो ऐसन साइड बनाया जाए जैन ऐसन महान साम्राज्य मन के घलो लोगन मन ले परिचय करा सके।
0: कृष्णा जी आप मन अतका मेहनत करता हो, मैं ऐसने आपन ले काल्पनिक सवाल पूछा था। अगर आप मन ला भारतीय इतिहास के कोनो भी तीन मनखे मन ले गोट बात करे के मौका मिले तो आप मन कौन ले बात करना चाहू और काबर।
1: हाँ सर, तो पहली मैं गोट करूँ राजा राजा चोला या राजेंद्र चोला। सर ये मन चोला साम्राज्य के सबले ताकतवर या सबले महत्वपूर्ण राजा मन मले रहिन। तब मैं वो मन ले जानना चाहूँ कि पहली वो मल्ला ये दृष्टि कैसे आई, जैसे वो मन बृहदेश्वर मंदिर या गंगई कोंडा चोलापुरम जैन बड़का बड़का मंदिर है, शिव जी के मंदिर है, ओला बनाए के दृष्टिकोण कहाँ ले आईस, वो योजना कैसे बनीस, वो मल्ला वो विचार कैसे आईस कि हमन ऐसन कुछ बना के जावन जैन अवैया हजार या 2000 बच्छर तक आने लोगन मल्ला प्रेरित कर सके। तब वो मोला वो मल्ले जानना है। और दूसर व्यक्तित्व है ये सिरतोन मा मोर हिसाब ले भारतीय इतिहास मा एक बहुते कम आके गए व्यक्तित्व है। सर उखर नाव है हेमू। हमन उखर बारे में भारतीय इतिहास मा ज्यादा ले ज्यादा 2-3 लाइन पढ़थन। हमल्ला ये पता नहीं है कि वो जैन हेमू रहीस वो एक सामान्य व्यक्ति रहीस, एक साधारण इंसान रहीस, वो एक व्यापारी रहीस, वो मन वहां एक साम्राज्य खड़ा करीस और वो न सिर्फ एक साम्राज्य निर्माता रहीस भलुक एक सैन्य विचारक घलो रहीस, सैन्य विद्वान रहीस जेन अपन काल मा 23 लड़ाई लड़ीस ओमेले 22 लड़ाई वो मन जीतीन। उखर सोच प्रक्रिया कैसन रहीस और वो एक आम आदमी ले अतका बड़का राजा बनीस, उखर यात्रा ला जाने पर बहुत दिलचस्पी रखता हूं सर। और तीसर जेन है वो बहुते रुचिकर व्यक्तित्व है, वो एक जन महिला है सर, त्रिभुवन महादेवी।

0: आता ओडिशा मा एक साम्राज्य हे जेकर नाव रहिस भौमाकारा राजवंश। त इखर कहनी घलो बहुते रुचकर है। वो मन जब 850 ईस्वी के नजीक जेन बछर में उखर पड़ोसी पाला साम्राज्य है उखर साम्राज्य ऊपर धावा बोल दे रही सर, और उखर राजा जेन मन उखर पति रहिन वो मन वो लड़ाई में शहीद हो गए रहिन, और उखर कारण वो साम्राज्य बहुते छोटे हो गईस, और उखर जेन सरदार रहिस उखर जेन नेता मन रहिन वो मन साम्राज्य छोड़ के जाए लगे रहिन। ता ये जेन त्रिभुवन महादेवी जेन महिला रहिस वो मन सरकार ल संभालिन, और वो मन भारतीय इतिहास के पहली स्वतंत्र शासिका बनीन, और वो मन सरकार ला न सिर्फ स्थायी करीस भलुक ओला अतका शक्तिशाली बना देस कि वो अवैया 100 बच्छर तक कलिंगा और वो क्षेत्र में राज करत रहीस। ता ये तीन रुचिकर व्यक्तित्व मन है जेन मन ले इतिहास मा मैं भेंट करना चाहूं सर।
1: कृष्णा जी, आप मन ला अब लगते कि इतिहास ल जियत हो, आप पूरा रकम इतिहास मा बुड़ चुके हो। देखो, मैं घलो बड़ उत्सुकता के संग आपके साइट देखे हूँ, और मुला सबले रुचिकर ये लगीस कि आपके साइट मा एक ऐसन टैब है जिहां लोगन मन सुधार और सुझाव घलो दे सकत हैं। ऐसन रचनात्मक प्रतिक्रिया पर खुला रहना ये अपन आप में बहुते बड़का बात है। का आप मन ला लोगन मन ले सुझाव मिलना चालू हुए है, और आप मन ओखर ऊपर कैसे काम करत हो?
0: हाँ सर, लोगन मन ले बहुत अकन सुझाव आते सर। सुझाव दो प्रकार के आते। एक सुझाव ऐसा आते जेन हमन ला सुधार करे के सुझाव देते, ये प्रदेश मा, ये बखत मा, ये देश मा ये राजा रहिस, या ये बखत मा ये युद्ध होए रहिस। ता ऐसने कुछ सुझाव आते। दूसर सुझाव आते कि आपन ये वेबसाइट मा ये फीचर डाल सकत हो या वो फीचर डाल सकत हो। ता हमर मन करा दोनों रकम के सुझाव आते। जैसे अगर हमर बर ऐसन सुझाव आए कि ये प्रदेश मा ये राजा है ये बखत मा राज करे रहिस, ता हम वो सुझाव ला ले लेथन। ता हमर जेन स्रोत है, जैसे हमन ला कोनो सुझाव दे रहिस कि आप मन भारत ला तो दिखा दे, फिर प्रदेश स्तर में घलो दिखाते हो तो बने हो ही, तो हमन वो फीचर लागू कर देन। और फिर दूसरिया फीचर है जेमे हमन जम्मू राजवंश मन के आंकड़ा सांख्यिकी दे के एक ट्रम्प कार्ड जैसन बनाएन, ताकि वो लइका मन तक पहुंच सकाय। कोनो है एक सुझाव दे रही कि इला आप मन एक ठिया ऊपर लेके आवो जेखर ले हम सबो मन ओला डाउनलोड करके साझा कर सकन, तो हम उन वो फीचर घलो लागू करत हन। हमला अतके जानना महत्वपूर्ण है कि हम गलती करबो काहे कि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं हन, और वही जान के हमन वो सुधार वाले टेब लगाएं जेकर ले ये हम सबो मन के साइड बनाए, और आगू जाके सबो अंशदाता मन के हिसाब ले हमन एक ठन ऐसन साइड बनावन जेन अवैया कुछ बच्छर तक इतिहास ला एक मजेदार विषय बनावे।
1: कृष्णा जी, आप मन सिरतोन मा एक बहुते बड़का काम करे हो। अच्छा, इतिहास के अलावा आप मन के कईयों अकन रुचि हो ही, और बहुत कुछ करत हो आपन।
0: नहीं सर, थोकिन उबाऊ किस्म के मनखे हो मैं। मैं तकनीकी और इतिहास में बहुते दिलचस्पी रखता हूँ, और अब तकनीकी और इतिहास मिल गए यही में मैं पूरा दिन बुड़े रहता हूँ।
1: चलो कृष्णा जी, आप मन ला मोर गाढ़ा गाढ़ा शुभकामना है। आप मन एक अच्छा शुरुआत करे हो, और आपके तरीका घलो ऐसन है कि लोगन मन जुड़ ही, मुला पूरा विश्वास है। मोर कोती ले आप मन ला गाढ़ा गाढ़ा शुभकामना। संगवारी हो, कृष्णा जी के ये प्रयास खाली इतिहास के विद्यार्थी मन पर नहीं है, भलुक ये हम सबो मन ला अपन अतीत ला रोचक तरीका ले जाने मा मदद करी। आप मन करा घलो ऐसन प्रयास मन के बारे मा जानकारी होवे ता उला खचित साझा करो। मोर देश के मयारुक रवैया हो नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये अभियान ये बखत जम्मू देश में तेजी ले आगू बढ़त है। एकर लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया।

बहुत अकन लोगन मन, विशेषकर हमर युवा मन, बहुते बड़का संख्या मा एकर हिस्सा बनत हैं। आखिरकार ये भारत के युवा मन के स्वास्थ्य, उनकर खुशहाली और उज्जर भविष्य खातिर हमर सामूहिक संकल्प है। संगवारी हो, नशा के लत खाली एके मनखे ल अपन लपेटा मा नहीं लेवाए, एकर दुष्परिणाम जम्मो परिवार और समाज ल घलो झेलना पड़ते। मैं वो लोगन मन के सराहना करूं जिन मन ड्रग्स के विरुद्ध आने मन ल जागरूक करते और नशा के लत ले जूझत मनखे मन के सहायता मा आगू आते। नशा मुक्त भारत खातिर का आप मन कोनो सशक्त नारा बना सकत हो? का हमर युवा संगीतकार मन ऐसन गीत बना सकत हैं जिमे नशा मुक्त जिंदगी के संदेशा हो? का विद्यार्थी और नाट्य दल मन हृदय ल छुए वाला नाटिका लिख सकत हैं जिमे नशा के खतरा के संगे संग वहां ले बाहर निकले के रद्दा घलो होए? हमर देश मा बेहतरीन रचनाकार मन के कमी नहीं है। मोर आग्रह है कि वो मन आने आने भाखा मा ऐसन रचना करें जेखर ले ये दिशा मा समाज ल मदद मिले। आप मन अपन प्रयास मन ला हैशटैग के संग सोशल मीडिया मा खचित साझा करो। कईयों बार रचनात्मक प्रयास औपचारिक अभियान ले ज्यादा असरदार होते। आवाओ भारत के युवा मन ला नशा ले दुरिया रखे, नशा ले मुक्त रखे, ये पवित्र कार्य मा हम सबो मन अपन भूमिका निभावन। आप मन अपन प्रयास ल हैशटैग नशा मुक्त युवा के संग सोशल मीडिया मा घलो खचित साझा करो। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, अगस्त के महीना मा हमन ला हर कोती देशभक्ति के अनेक रंग देखे ल मिलते। ये बखत हर मनखे के मन मा राष्ट्र प्रेम के भावना और प्रबल हो जाते। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और भारत छोड़ो आंदोलन के वर्षगांठ ले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस एला खास बनाते। स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये मौका ता हर देशवासी ला गर्व ले भर देते। हर घर तिरंगा अभियान ये भावना ला और मजबूत करते। वंदे मातरम के 150 बछर पूरे ले ये बछर और विशेष बन गए है। ये दारी 8 करोड़ ले ज्यादा तिरंगा सेल्फी अपलोड करे गईस और तिरंगा के ये उत्सव खाली भारते तक सीमित नहीं रहीस। ये बछर सूर्य पथ तिरंगा के माध्यम ले हमर तिरंगा दुनिया भर के एक ठन अनोखा यात्रा में निकलीस। फिजी के सुआ मा सूरज के पहली किरण के संग तिरंगा फहराए गईस। एकर बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक भारतीय मिशन और पोस्ट मा तिरंगा फहराए गईस। आप मन कल्पना कर सकत हो ये दृश्य कत का अद्भुत रहे हो ही। जैसे जैसे दुनिया भर मा सूरज आगू बढ़त गईस वैसे वैसे भारतीय तिरंगा घलो लहरावत गईस। ऐसने प्रयास मन समाज ल एक सूत्र मा पिरोथे। एकर ले देश के संग घलो हमर जुड़ाव औ गहिर होते। ये प्रयास मन में सम्मिलित सबो लोगन मन ला मोर गाढ़ा गाढ़ा बधाई। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, हमर शहर औ कस्बा मन के सड़क में रोज बिहनिया ले संझा तक लाखों माई लोगिन मन अपन अपन काम में जुटे रहते। कोनो साग सब्जी बेचते, कोनो फल, कोनो चाय के ठेला लगाते, त कोनो फूल दिया और पूजा के सामान बेचते। कईयों दारी खाली थोकिन पूंजी के कमी उनकर कारोबार ला आगू बढ़े ले रोक देते। फिर अब ऐसने लाखों दाई बहिनी मन ला पीएम स्वनिधि योजना ले नवा ताकत मिलत है। महिला सशक्तिकरण के ये पहलू के उतका चर्चा नहीं होए जतका होना चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी मन मा करीबन 46% माई लोगिन मन है, माने देश भर में लगभग 35 लाख माई लोगिन मन ये योजना ले जुड़ के अपन कारोबार ल आगू बढ़ावत हैं। संगवारी हो, गाजियाबाद के बबीता

शर्मा जी एकर बहुते अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा के सामान के एक नानुक स्टाल लगावत रहिन। फूल, दिया, अगरबत्ती, नारियल जैसन जिनिस बेच के वो अपन परिवार के आजीविका में हाथ बटावत रहिन। मेहनत खूब रहिस, फिर कारोबार बढ़ाए बर पूंजी के जरूरत रहिस। पीएम स्वनिधि ले वो मन ला आर्थिक सहायता मिलिस, वो मन अपन स्टाल में जिनिस बढ़ाइन, कारोबार के विस्तार करिन, ग्राहक मन बढ़िन, आमदनी बढ़िस और धीरे धीरे सड़क किनारे के उनकर नानू की स्टाल एक दुकान में बदल गईस। संगवारी हो, बेंगलुरु के टीएस निनगम्मा जी के उदाहरण घलो बहुते प्रेरक है। निनगम्मा जी और उनकर पति मिल के इडली, डोसा और सांभर बेचे के नानू काम शुरू करिन। काम चल पड़िस, फिर एला

निनगम्मा जी के उदाहरण घलो बहुते प्रेरक हे। निनगम्मा जी और उनखर पति मिल के इडली डोसा और सांभर बेचे के नानू काम शुरू करिन। काम चल पड़िस, फिर एला आगू बढ़ाए खातिर पूंजी के जरूरत रहिस। निनगम्मा जी ला घलो पीएम स्वनिधि ले सहयोग मिलिस। वो मन अपन ठेला गाड़ी ला बेहतर करिन, सामान थोक में बिसाना शुरू करिन और मीनू में घलो कईयों नवा जिनिस जोड़िन। ग्राहक मन बाढ़िन, कमाई बाढ़िस और परिवार के आर्थिक स्थिति बेहतर होइस। आज वो मन अपन तीन ठन लइका मन ला बेहतर शिक्षा दे मा सक्षम हुए हैं। संगवारी हो, जब एक महिला के कारोबार बाढ़ते ता ओखर संग जम्मो परिवार के भविष्य आगू बाढ़ते, लइका मन के शिक्षा बेहतर होते, घर के जरूरत पूरा होते और माई लोगिन के भीतरी आत्मविश्वास और मजबूत होते। यही तो है महिला सशक्तिकरण के एक जियत जागत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम ले जुड़े जम्मो बहनी मन के उज्जर भविष्य खातिर बहुते शुभकामना देवत हूँ। मोर देश के मायारुक रवैया हो, स्वच्छता के एक बहुते बड़का खूबी होते। जब कोनो ठियाला स्वच्छ राखे के संकल्प वहां के लोगन मन के अपन संकल्प बन जाते, तब बदलाव खाली साफ सफाई तक सीमित नहीं रहे, एखर ले वो ठिया के पूरा चिन्हारी बदल जाते। देश के आने आने हिस्सा मा स्वच्छता खातिर ऐसन प्रयास हमन ला सरलग प्रेरणा देते। उत्तर प्रदेश के रामपुर मा एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाव के दू जन दोस्त मन देखिन कि उनकर तीर तखार के क्षेत्र गंदगी ले भर गए है। बस फिर का रहिस, आकाश और रोहन कचरा के झोला उठाइन और सफाई बर निकल पड़िन। धीरे धीरे दूसर युवा मन घलो उनखर संग जुड़े लागिन, एक टीम घलो बन गईस जेखर नाव है क्लीन अप पटवाई। ये युवा मन अब तक चार गंगा घाट मनला साफ कर चुके हैं, एक टन ले ज्यादा प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। वो मन कतकोस ठन तरिया और सार्वजनिक ठिया के सफाई करे हैं। संगवारी हो, ये पैत श्री अमरनाथ जी के यात्रा में घलो स्वच्छता और जनभागीदारी के ऐसने प्रेरक तस्वीर देखे ला मिलिस। कठिन रद्दा मन मा हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहिन। ये बछर यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन ले ज्यादा कचरा इकट्ठा और प्रसंस्कृत करे गईस। मुला ये प्रयास के एक ठन बात विशेष रूप ले बने लगिस, स्वच्छता के ये अभियान मा श्रद्धालु मन घलो भागीदार बनिन। 16,000 ले ज्यादा यात्री मन स्वच्छता के संकल्प लेन, 10,000 ले ज्यादा यात्री मन ला रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट घलो दे गईस। यहाँ एक बहुते अनोखा प्रयोग घलो होइस, यात्रा मा घोड़ा और खच्चर मन के गोबर ला बायोगैस मा बदले गईस और उही स्वच्छ ऊर्जा ले स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित करे गईस। माने बाबा बर्फानी के ये पवित्र यात्रा मा स्वच्छता घलो सेवा और आस्था के एक रूप बन गईस। संगवारी हो, हमर गांव हो या शहर, हमर नदिया हो या तीरथ के ठिया, इनकर चिन्हारी हमर व्यवहार ले घलो बनथे। और जब स्वच्छता ये व्यवहार में शामिल हो जाते, वो ठिया के शोभा और बाढ़ जाते। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, कभू कभू हमर एक नानकुन शौक जिंदगी मा एक बड़का संभावना के रद्दा खोल देते। नागालैंड के फेक जिला के वेसालु पुरो जी के यात्रा घलो कुछ ऐसने हैं। वेसालु जी किसान परिवार मा पलिन बढ़िन, ननपन ले वो मन अपन दाई ददा ला खेती करत देखे रहिन और वो मन ला खुदे फूल मन ले बड़ लगाव रहिस। बच्चर 2021 मा वो मन इही सौ के संग नानकुन स्तर मा फूल उगाए के शुरुआत करिन। धीरे धीरे उनला एमे एक संभावना दिखे लगिस,

मन देखिन कि बर बिहाव हो या आने तिहार, फूल के मांग हरदम बने रही थे। वेसालू जी हा अपन ये शौक ल आघू बढ़ाए के फैसला करिन। ये सफर मा उनला स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ले फूल मन के वैज्ञानिक खेती के प्रशिक्षण मिलिस। फिर वो मन खाली एक चौथाई एकड़ भुइया मा ग्लेडियोलस के हजारों पौधा लगाइन। पहलीच प्रयास मा 5000 ले ज्यादा फूल खिल उठिस। संगवारी हो, ये सफलता वेसालू जी बर एक नवा शुरुआत बन गई। वो मन फूल के खेती ला औ आगू बढ़ाइन। जेन फूल कभू स्थानीय बाजार में रही जात रहीस, आज वो नागालैंड ले निकल के दिल्ली और मुंबई जैसन शहर तक जावत है। वेसालू पुरो जी के यात्रा हमन ला बताते कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन ले जुड़ जाते तब वो नवा संभावना के रद्दा खोल सकते। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, हमार तीर तखार मा ऐसे कईयों लोगन मन हैं जेन एक नानुक प्रयास ले शुरू करते और देखते देखत उनखर प्रयास बहुत अकन लोगन के जिंदगी मा बदलाव के रद्दा बना देते। ओडिशा के देवरीगढ़ मा एक गांव है ढोड़रो कुसुम। कुछ बछर पाछू तक ही गांव के मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जावत रहिन, कभू जलावन के लकड़ी बर, कभू महुआ औ केंदु पत्ता चुने बर, त कभू बांस के कोपल औ आने वन उपज लाने बर। उनखर औ उहां के अनेक परिवार के बहुत अकन जरूरत इही जंगल ले पूरा होवत रहिस। फिर मैथिली जी देवरीगढ़ पर्यावरण हितैषी पर्यटन ले जुड़िन। यहां ले जंगल के संग उनखर नता एक नवा दिशा में बदल गीस। अब जंगल के संरक्षण घलो उनखर आजीविका के माध्यम बन गईस। संगवारी हो, मैथिली जी के जिंदगी में आए ये बदलाव है आने माई लोगिन मन ला घलो प्रेरित करिस। आज 60 ले ज्यादा माई लोगिन मन जंगल के संरक्षण में जुड़ चुके हैं। कोनो वन्य जीव मन के सुरक्षा के दायित्व तो संभालत है, कोनो घास के मैदान मन के विकास ले जुड़े है, त कुछ माई लोगिन मन पर्यावरण हितैषी पर्यटन गतिविधि मा योगदान देवत है। संगवारी हो, मैथिली जी और देवरीगढ़ के ये बहनी मन हा देखाए हैं कि प्रकृति के रक्षा घलो हो सकत है और जिंदगी मा समृद्धि घलो आ सकत है। ये जम्मो बहनी मन के प्रयास हम सबो मन बर बहुते बड़का प्रेरणा है। संगवारी हो, आज हमार बेटी मन के सपना के उड़ान धरती ले निकल के अंतरिक्ष तक पहुंचत है और आप मन ल ये जान के गर्व हो ही कि भारत ऐसे सपना देखैया दुनिया के हजारों बेटी मन ल एक सगरा जोड़त है। ये प्रयास के नाव है मिशन शक्ति सेट। एक हर माध्यम ले 108 देश मन के 12,000 छात्रा मन ल उपग्रह तकनीक सीखे और नवाचार के क्षेत्र में आगू बढ़े के मौका मिलत है। 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मा ये मिशन के एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा मा देखे ल मिलिस। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय मा मिशन शक्ति सेट के दूसरा चरण के शुरुआत होइस। ये मौका मा दुनिया के आने आने देश और भारत ले आए करीबन 100 छात्रा मन एक सगरा जुटिन। भारत के दूर दराज क्षेत्र ले चुने छात्रा मन घलो एमे हिस्सा लेवत हैं। ये जम्मो प्रयास के लक्ष्य घलो बहुत खास है। पूरा रकम ले छात्रा मन के भागीदारी ले तैयार एक ठन उपग्रह ल चंद्रमा के आर्बिट पर भेजे के तैयारी है। संगवारी हो, मोला विश्वास है कि एमे ले अनेक छात्रा मन अवैया बखत मा विज्ञान तकनीक और नवाचार के क्षेत्र मा अपन नवा पहचान बनाही। मोर देश के मायरुक रहवैया हो, आजकल एवोकाडो फल के बड़ा धूम है। ये फल ला पहली शायदे कोनो जानत हो ही, एकर मान और मांग दोनों कम रहिस। फिर आज एला डाइनिंग टेबल मा खूबे देखे जात है। आज ये स्वास्थ्य और गुणवत्ता बाजार के
पसंद बन गए हैं।

हमर किसान भाई बहिनी मन बर घलो ये बहुते मददगार हे। आंध्र प्रदेश मा कडपा के वरद राज जी के उदाहरण हे। वो मन कई बछर ले अपन खेत मा टमाटर और केला के खेती करत रहिन। एक दिन वो मन अपन दोस्त के फार्म मा एवोकाडो के फसल देखिन। एखर बाद वो मन यूट्यूब ले एखर जानकारी जुटाइन। अब तक वो मन करीबन 4 टन एवोकाडो के उत्पादन कर चुके हैं। आज वो मन सोज स्थानीय दुकान मन ला एखर सप्लाई करत हैं। नवा फसल वैज्ञानिक सलाह और सोच मार्केटिंग ले उनकर नानुक फार्म के कमाई पूरा रकम बदल गए है। तमिलनाडु के कोडाई कनाल के किसान चंद्रशेखरन जी है आधा हेक्टेयर जमीन मा एवोकाडो उगाना शुरू करिन। वो मनला एखर अच्छा दाम मिला थे और कमाई घलो बाढ़े है। कर्नाटक मा चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनी मन त काफी प्लांटेशन के बीच मा एवोकाडो लगाए हैं। एखर ले उनला काफी और काली मिर्च के संग अतिरिक्त कमाई घलो होवत है। संगवारी हो, हम शहर मन के रेस्टोरेंट मा अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनथन। फिर यही एवोकाडो के माध्यम ले हमार नवाचारी किसान मन हा कमाई के एक ठन नवा रेसिपी ढूंढ ले हैं। माने अपन देश के एवोकाडो ले आप मन के टोस्ट के स्वाद घलो बढ़िस और किसान मन के आमदनी घलो बढ़ गए है। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, कुछे दिन मा 3 सितंबर के हम महानायक उत्तम कुमार जी के जन्म शताब्दी मनाबो। संगवारी हो, उत्तम कुमार जी एक बहुमुखी अभिनेता रहिन, जेन अपन अभिनय ले लोगन मन के हृदय मा रच बस गेन। फिल्म प्रेमी मन के मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे फिल्म नायक द हीरो के जम्मो स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी ला ध्यान में रख के लिखे रहिन। श्रीमान सत्यजीत रेमन कहे रहिन कि वो मन में गरिमा के संगे संग अद्भुत भावनात्मक गहराई घलो रहिस। भूमिका ला वो मन जीवंत बनाए बर बहुत मेहनत करत रहिन। उत्तम कुमार जी अपन सहजता के संग परोपकार बर जाने जात रहिन। उनकर जिंदगी ले कभू हार नहीं माने के एक औ बड़का सीख घलो मिलते। उनकर शुरुआती फिल्म मन बहुत नहीं चलिस, फिर वो मन अपन काम में ध्यान केंद्रित रखिन। एकरे परिणाम रहिस कि वो मन अत का ऊंचाई प्राप्त करिन। संगवारी हो, मुला ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो करत रहे हूं तब मैं उत्तम कुमार जी के घर के आगूले घलो गुजरे रहे हूं। वहां मुला एक मनखे है उनकर एक तस्वीर घलो भेंट करे रहिस। मैं एक घाव फिर महानायक उत्तम कुमार जी ला श्रद्धांजलि अर्पित करत हूं। वो मन हरदम हम सब के हृदय में राज करत रही। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषेर हृदय राज कोरबेन। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, हमर परब और तिहार हमर परंपरा के संगे संग हमन ला एक दूसर ले जुड़े के मौका घलो देते। अवैया दिन मन मा हमन अपन कईयो महत्वपूर्ण परब मनाबो। 4 सितंबर के जन्माष्टमी के पवित्र परब है। सितंबरे मा हमन विश्वकर्मा पूजा घलो मनाबो। ए मौका मा अपन तीर तखार के कारीगर शिल्पकार और विश्वकर्मा संगवारी मन के सम्मान करना चाही। कुछे महीना बाद दीपावली घलो अवैया है। एकर तैयारी घलो धीरे धीरे शुरू होवत है। तिहार मन के ये मौसम मा मैं एक घाव फिर आप मन ले वोकल फॉर लोकल के आग्रह दोहराहूं। और वोकल फॉर लोकल के मतलब खाली माटी की दिया बिसाना नहीं है, एकर दृष्टि बहुते बड़का है। हम अपन घर बर जेन भी जिनिस बिसाथन ओला एक घाव जरूर देखन कि वो भारते मा बने हो। भारत के आत्मनिर्भर बने के रद्दा भारत मा बने जिनिस मा गर्व करे ले प्रशस्त होही। ये संदेशाला ज्यादा ले

0: ज्यादा लोगन मन तक पहुंचाना घलो हमर जिम्मेदारी है। हमर रचनात्मक दुनिया के संगवारी इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज मन के घलो एमे बहुते बड़का भूमिका है। मोर आप मन ले आग्रह है कि खुद घलो वोकल फॉर लोकल ला अपनावें और आने मन ला घलो एखर बर प्रेरित करें। संगवारी हो, आप मन के तीर तखार में घलो ऐसन बहुत अकन लोगन मन होही जिन अपन नान नान प्रयास ले समाज में बड़का बदलाव लावत हैं। आप मन उनकर बारे मन की बात खातिर खचित लिखाओ। आप मन के भेजे अनुभव देश के कोनो कोना मा कोनो खातिर नवा प्रेरणा बन सकत है। मुला आप मन के सुझाव और अनुभव के अगोरा है। गाड़ा गाड़ा धन्यवाद। जोहार।
1: मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश की जनता के नाम संबोधन का छत्तीसगढ़ी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे। इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुन सकेंगे आज रात 8 बजे। आकाशवाणी का ही रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
2: अभी हम रायपुर केंद्र से प्रसारित कर रहे थे कार्यक्रम मन की बात का छत्तीसगढ़ी अनुवाद। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। दोपहर के 12:05 हो चुके हैं। शाम 5 बजे तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण करेंगे।

मैंने प्यार किया इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। असद भोपाली के बोल थे, राम लक्ष्मण का संगीत था। आइए अब सुनते हैं लव स्टोरी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देवबर्मन का संगीत है।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो

0: एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनो, जरा राइमा की फीस भरने चले जाना, आज आखिरी तारीख है।
1: देखो मैं 3 बजे नहीं जा पाऊंगा।
0: क्यों, क्यों नहीं जा सकते?
1: वो मैं असल
0: वो मैं अरे क्या वो मैं साहब बताओ क्या करना है 3 बजे?
1: करना नहीं है, सुनना है।
0: ऐसा क्या सुनना है तुम्हें? पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ।
1: वो मुझे सखी सहेली सुनना है।
0: तुम्हें सखी सहेली सुनना है? पर वो तो सखियों का प्रोग्राम है।
1: सखियां ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
2: सखी सहेली।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, अब तक तो आप जान ही गए हैं कि हम हर रोज एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं। इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो चलिए हम आपको आज की इबारत पढ़कर सुना देते हैं क्या लिखा है हमने। परदेसी सजनवा की याद में सारी रैन बीत गई, आंखों में नींद आई, हाय रे वो दिन क्यों ना आए। दोस्त न रहा तो दिल के गिरह खोलने की कोई बात, कहने को कोई राह भी न बची। सजनवा बैरी हो गए हमार, फिर भी उससे मोहब्बत कम न हुई। ये दीवानापन था या मोहब्बत का सुरूर, समझ न सकी मैं कभी। दोस्त ने जाते जाते प्रेम की राह पर चलना तो सिखा दिया था, लेकिन न सिखाई होशियारी। यहाँ पर कौन सा गाना आपको याद आया है, जरा बताइएगा। कहा था तेरा मेरा प्यार अमर है, इसे वक्त कहाँ मिटा पाएगा। एहसान तेरा होगा जो लौट कर कभी मेरी चौखट पर आओगे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, और मैंने दिल की गिरह खोली तो एक अजीब दास्तान सामने आई। सूरज जरा पास था, फिर भी तेरी याद ने शाम बना दी, और ठंडी ठंडी सावन की फुहार में तेरा प्यार ही मेरा सबसे अनमोल धन बन गया। बरसात में हमसे मिले तभी तो बरखा बाहर आई, जमाना कहता रहा पते की बात, हमने सुनी दिल की बात। दोस्तों, आज भी हम यही सोच रहे हैं कि आज आप जो गाने सुझाएंगे वही गाने हम सुनवाएंगे। वैसे विविध भारती की फेसबुक पेज पर जब हम टहल रहे थे तो देखा कि बहुत सारे गाने वही हैं जो हमने सोचा था, लेकिन बाकी गाने भी आप जरा लिखिए तो हम वही गाने सुनवाएं। जैसे अभी अभी एक इबारत में लाइन है, ठंडी ठंडी सावन की फुहार, तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा गाना याद आया है जरा बताइए, ताकि हम वही गाने सुनवा सकें, ताकि आपकी भी मुराद पूरी हो जाए और हमें भी आसानी हो और खुशी भी मिले कि हमने आपके दिल की बात टटोल ली और वही गाना सुनवाया जो विविध भारती से हम सुनवाना चाहते थे। जरा सोचिए कि यही गाना सोचा था आपने, और इसमें हमें बताइए कि कौन है कलाकार, पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, फिल्म अनाड़ी।

सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। बहुत मुश्किल है होशियारी सीखना भाई, लेकिन बहुत सारे लोग पारंगत होते हैं इस गुण में। जो आज के जमाने में सीख ले होशियारी, वो समझ लीजिए कामयाब भी है। वैसे बहुत सारे श्रोता, क्या सभी श्रोताओं ने बूझ लिया है कि आज मामला क्या है? हमने इबारत में एक लाइन लिखी भी थी कि आज तो कुछ खास बात है। क्या खास है, चलिए हम भी आपको बता ही देते हैं, याद ही दिला देते हैं। गीतकार शैलेंद्र की जयंती है आज, 103 बरस पूरे हुए। आज का ये कार्यक्रम उन्हीं की याद को समर्पित है। आज की जो इबारत है, उस इबारत से आपको चुनने हैं शब्द और कुछ गाने जो शैलेंद्र के लिखे हुए गाने हैं। तो आप वो गाने चुनिए और साथ में ये भी बताइए कि शैलेंद्र की गीतों की कौन सी वानगी आपको प्रभावित करती है। दर्शन वाले गीत, आंचलिक गीत, मतलब जिसमें ग्रामीण परिवेश है, रोमांटिक गीत, या फिर स्त्री मन की पीड़ा जिसमें निहित है वो गीत। आप अपनी पसंद बताते रहिए और गाने लिखते रहिए, साथ में हमारी पहेलियां भी पूछते रहिए। आपके चुने हुए गाने हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और कुछ गाने हम जब अपनी ओर से सुनाएंगे तो देखिएगा कि वो गाने आपके दिल के करीब हैं या नहीं। एक श्रोता ने अभी अभी लिखा है, शैलेंद्र ने बेहद सरल शब्दों में जीवन के कड़वे सच को बयां किया है। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी पंक्ति इंसान की मासूमियत और उसकी लाचारी को बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। संगीत और गायकी शंकर जयकिशन का है, मुकेश की दर्द भरी आवाज मन को छूती है। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है और ये भी हमने आपसे पूछा था कौन है कलाकार, तो आप ये भी हमें बता सकते हैं। एक हमारी श्रोता है, नियमित श्रोता, जिन्होंने लिखा है कि सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, ये केवल गीत की पंक्तियां ही नहीं है, ये तो उनकी सरलता, अपनी बात को सहज रूप में लोगों के सामने रखने का अपूर्व कौशल है। उनके गीतों में एक सीख है, कर्तव्य बोध और नैतिक मापदंड की घुट्टी, सभी कुछ क्या बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कबीर सदियों पहले कह गए थे, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, जैसी पंक्तियां कबीर की ही बानी की अनुगूंज है। मगर बावजूद इसके शैलेंद्र कबीर नहीं थे, बल्कि कबीर उनमें समाहित थे। क्या बात लिखी है भाई, शैलेंद्र बड़े जीवट वाले इंसान थे, सपने देखना और उन्हें सच करना उनको आता था। ये उनके रंग बिरंगे सपने ही थे जो सैकड़ों की तादाद में गीतों की शक्ल में हवाओं में आज भी गूंज रहे हैं और इस समय विविध भारती से गूंज रहे हैं आपके रेडियो सेट तक। तो चलिए अब अगला गीत सुनते हैं, असली नकली फिल्म से। आपको बूझना है कौन है हीरो हीरोइन और साथ में संगीतकार का नाम भी बूझना है। अब गाने हमें सुझाते चलिए ताकि हम वही गाना सुनवा सकें जो आप सुनना चाहते हैं।

असली नकली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। साधना और देव आनंद इस फिल्म में हीरो हीरोइन। संगीतकार का नाम भी हमारे श्रोताओं ने बताया है, शंकर जयकिशन। फिल्म थी असली नकली। और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही है। एक श्रोता ने लिखा है कि महान गीतकार शैलेंद्र हिंदी सिनेमा के उन गिने चुने रचनाकारों में से हैं जिन्होंने फिल्मों में लोक संस्कृति आंचलिकता मतलब मिट्टी की सौंधी महक को बेहद सहजता से पिरोया। मूल रूप से बिहार के आरा जिले से ताल्लुक रखने के कारण ग्रामीण जीवन, लोक भाषा और आंचलिकता उनके रग रग में बसी है। शैलेंद्र ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ भोजपुरी की शुरुआती फिल्मों के लिए भी कई ऐतिहासिक गीत लिखे, जैसे गंगा मैया तो है पियरे चढ़ई बो। जब भी भोजपुरी भाषा की बात चलती है तो ये गीत जरूर याद किया जाता है। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमें तो उनके भोजपुरी गीत का रंग बहुत पसंद आता है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमें जो ग्रामीण अंचल दिखाई पड़ता है जिन गीतों में, वो हमें बहुत पसंद आता है। और अभी जो गाना हमने सुनवाया, तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर, इसमें भी एक स्त्री मन की बात थी। और शैलेंद्र की पूरी गीत यात्रा में हमें बहुत सारे ऐसे गाने मिल जाते हैं जिनमें उन्होंने स्त्री की बहुत ही भावनाओं को समर्पित किया, भावनाओं को उकेरा है अपने गाने में। उनके जीवन के अलग अलग मोड़ों पर दिल में उठते तूफान को गीतों में उन्होंने पिरोया है। और वो जो भाव है उनके अंतर मन के, उनके भाव उस गीत में उकेरे गए हैं और वो गीत आपके दिल में उतर जाते हैं। जैसे

कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा का वो गीत याद आता है जो अक्सर आप सुना करते हैं, और आज भी बहुत सारे श्रोताओं ने उस गाने का जिक्र किया है। तो अब सुनिए अनुराधा फिल्म का वही गाना लता मंगेशकर की आवाज में। लेकिन आपसे एक पहेली हम पूछ रहे हैं, पहेली वो ये है कि आप बूझिए किन कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया है और कैसा दर्द है उस हीरोइन के चेहरे पर और उसके मन में। बहुत अनकहा दर्द है इस फिल्म में। बूझिए जरा कौन है हीरोइन और हीरो।

अनुराधा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र की रचना थी, ये बताने की जरूरत कहाँ है, लेकिन फिर भी बता रहे, रविशंकर का संगीत था। और इसमें हमने आपसे पहली बूझी थी हीरो हीरोइन का नाम, लीला नायडू और बलराज साहनी। सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म अनुराधा का ये गीत बहुत ही मर्मस्पर्शी गीत है, एक स्त्री के अंदर के दुख को बहुत अच्छा बयां करते हैं। इसमें रविशंकर का संगीत था और लीला नायडू बलराज साहनी इसके हीरो हीरोइन थे, और अभी भट्टाचार्य का भी एक महत्वपूर्ण रोल था। हाँ, बाद में वो आते हैं और जब लीला नायडू से एक अलग स्त्री के रूप में परिवर्तित होने का आग्रह भी करते हैं और एक गाना और वो सुनने का आग्रह करते हैं जब लीला नायडू पर्दे पर गाती हैं, तो वो कौन सा गाना है, अगर आपको याद है तो जरूर बताइए हमें। एक श्रोता ने लिखा है कि 1957 में मुसाफिर और 1959 में अनाड़ी के बाद अनुराधा ऋषिकेश मुखर्जी की निर्देशित तीसरी फिल्म है। प्रेम, फिर विवाह और विवाह के बाद पति के लिए पत्नी का अपना करियर, अपनी महत्वाकांक्षा का त्याग, परिणाम स्वरूप मन में उपजी उलझन और फिर फैसला इस फिल्म का थीम है। पर क्या महिला अपने फैसले को तर्क और ठोस मानसिक धरातल पर ले जाती है? इस पर एक पहेली हमने पूछी है आपसे, जरा आप भी सुनिए और उस पहेली का जवाब दीजिए। जब लीला नायडू अनुराधा फिल्म में एक और गाना गाती है जिसमें उसकी तड़प है और

उसके मन की पीड़ा है, जरा वो गाना आप बता सकते हैं तो बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। एक श्रोता लिख रहे हैं कि पिंजरा में बंद भइल हाय राम गीत बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है कि शैलेंद्र एक मन भावनिक और भाविक चरित्र गीतकार जिनके सरल शब्दों में दुनियादारी, इंसानियत, सच्चाई की गहरी सोच दिखाई देती है। एक गाना है करमुआ बैरी हो गए हमार या मेरे साजन है उस पार जैसे गीत भावना की गहराई दिखाई देती है। और भी कुछ गाने इन्होंने लिखे हैं और बजाने के लिए अनुरोध किया है। भाई हम तो आप सभी से कह रहे हैं कि आप गाने याद करते रहिए, अपनी यादों के गलियारों में जाइए, खंगालिए अपनी यादें, और गानों से जुड़ी हुई कोई खास बात है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। और बहुत सारे श्रोता अभी भी लिखे जा रहे हैं, बलराज साहनी, लीला नायडू और अनुराधा, लीला नायडू, हीरो बलराज साहनी। और एक श्रोता लिख रहे हैं बरसात में हमसे मिले तुम सजन, ये वाला गाना भी सुनवाइएगा। और शैलेंद्र के गीतों से सजा जो प्रोग्राम चल रहा है ये तो बहुत ही सुरीला हो गया। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम यहाँ प्रसारण आपके मुंबई से हो रहा है और मैं यहाँ नोएडा में सीधे दिल्ली से इस कार्यक्रम को सुन रहा हूँ, आपकी पूरी बात भी सुन पा रहा हूँ लेकिन इसमें बीच में विज्ञापन आ जाता है तो नहीं सुन पाते। इसके लिए एक सलाह है कि आप मोबाइल के ऐप पर जाकर ये प्रोग्राम सुन सकते हैं। चलिए अब अगला गीत सुनते हैं फिल्म आम्रपाली से। आपको पूछना है फिर एक बार हीरो हीरोइन का नाम।

आम्रपाली फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है गाना। सुनील दत्त और वैजयंती माला होती हैं। यहाँ फिर एक बार स्त्री मन की पीड़ा समाहित है इस गाने में भी। इंतजार है और एक दर्द है। एक श्रोता ने लिखा है कि शैलेंद्र उस फकीर का नाम है जिसने वेल्डिंग की चिंगारियों से अपनी कलम बनाई और आम आदमी के बहते आंसुओं को गीतों में पिरो दिया। भूख, गरीबी, रेलवे वर्कशॉप की धूल में तपकर निकला ये हीरा जब राज कपूर के साथ मिला तो हिंदुस्तानी सिनेमा की रूह ही बदल गई। आवारा हूं से लेकर सजन रे झूठ मत बोलो तक उन्होंने कागज पर सिर्फ शब्द नहीं उकेरे बल्कि इंसानियत का सबसे सच्चा दर्द उड़ेल दिया। वे दिल से लिखते थे इसलिए उनकी लिखी हर एक पंक्ति में आम इंसान का दिल धड़कता है। सरल, बेहद खूबसूरत और हमेशा हमेशा के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि शैलेंद्र फिल्म असली नकली में अपार प्रेम की जो स्त्री मन की पीड़ा उकेरते हैं वहीं पर तेरा मेरा प्यार अमर फिर मुझको क्यों लगता है डर ये बात लिखते हैं। वहीं पर फिल्म रात और दिन के एक गीत में शैलेंद्र जीवन की एक अजीब उलझन में फंसी एक स्त्री के भटकाव को गीत में पिरो दिया है। आवारा है मेरे दिल जाने कहाँ है तेरी मंजिल। हिंदी सिनेमा में स्त्री मन के कुछ सबसे नाजुक गीत शैलेंद्र की कलम से निकले हैं। महिला किरदारों की तड़प, उनकी तमन्नाओं, उनके ख्वाबों के नगमे, ये बात शैलेंद्र को एक विशिष्ट गीतकार बना देती है। गाइड में विवाह से परे अपने प्रेम को स्वीकार करती एक बेबाक स्त्री की पुकार है मैं हूं गुबार या तूफान हूं, फिल्म गाइड की बात। और बहुत सारे श्रोताओं ने गाइड फिल्म के गानों की बात लिखी है, वो हम आगे कहीं सुनवाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि इबारत में जो शब्द हैं उन्हीं शब्दों से आपको खोजने हैं शैलेंद्र के लिखे गाने। अब जरा ये गाना सुनिए, फिल्म का नाम बूझिए और हीरोइन का नाम भी बूझिए। यहां पर फिर एक पुकार है।

मधुमती फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र की रचना, सलील चौधरी की धुन थी। और हमने आपसे पूछा था हीरोइन का नाम, सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया। हीरोइन का नाम तो बताए, हीरो का नाम भी, वैजंती माला और दिलीप कुमार। हमने एक सवाल आपसे पूछा था जब हमने अनुराधा फिल्म का गाना सुनवाया था कि एक और कौन सा गाना जिसमें महिला की तड़प है उस स्त्री की, लीला नायडू की। सभी श्रोताओं ने लिखा है कैसे दिन बीते कैसे बीती रहती है पिया जाने ना। सच में ये गाना गाने के बोल को ध्यान से अगर सुने और पर्दे पर अगर हीरोइन को देखें तो एक अजब सा दर्द है, जो अनकहा दर्द लीला नायडू आंखों से अभिनय करती हैं। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये गाना भी लिखा, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां। यहाँ पर एक और स्त्री मन की पीड़ा एक और गाने में है, क्या आपको याद आ रहा है? वो गाना आशा भोसले की आवाज में है और सलील चौधरी का संगीत है। फिल्म का नाम बता दें या आप खोज लेंगे वो गाना। आज की इबारत में वो लाइन भी है, सावन की फुहार। चलिए हम इतना आपको बता देते हैं, फिल्म का नाम भी नहीं बता रहे हैं। आशा भोसले की आवाज में स्त्री मन की पीड़ा है और पर्दे पर भी वो दर्दीला सा दृश्य है, एक स्त्री है जो तड़प कर अपने पति से मनुहार कर रही है। याद कीजिए वो गाना और लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता लिख रहे हैं कि शैलेंद्र जी वो अजीम शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ देश आजाद होने से पहले बल्कि देश की आजादी के बाद भी अपनी सुंदर रचनाओं से आवाम के जहन को सदैव परिष्कृत किया। शैलेंद्र जी ने अपने गीतों के जरिए आम इंसान के जज्बात, उनके एहसासात को सच्चाई के फलक पर चमकते हुए सितारे की तरह सजाया। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि शैलेंद्र जी के लिखे गीतों में चाहे जितना भी दुख या संघर्ष हो, लेकिन उसका अंत हमेशा उम्मीद और हौसले पर होता था। वे जिंदगी से हार मानने की सीख कभी नहीं देते थे। जब उन्होंने रोमांटिक गाने लिखे तो उनमें भी मर्यादा और समर्पण की भावना थी। अब बताइए आपको कौन सा गाना याद आ रहा है? हमें लगता है कि तीसरी कसम फिल्म ऐसी फिल्म है जो हम सबके जहन में बसी हुई है और आप सबके जहन में। आप बताइए आपने ये फिल्म देखी, कहाँ देखी, कब देखी, कोई खास याद हो तो वो भी साझा कीजिए। बहुत सारे श्रोताओं ने इस फिल्म का जिक्र किया है, लेकिन हाँ अलग अलग गाने सुझाए हैं श्रोताओं ने। बहरहाल देखिए हम जो गाना सुनवा रहे हैं, क्या ये गाना आप सबने सोचा था? और साथ में हमें हीरोइन और हीरो का नाम भी बताइए। एक पहेली ये हो गई, एक पहेली हमने आपसे पहले पूछी थी कि स्त्री मन की तड़प है एक गाने में, आशा भोसले की आवाज है, जिसमें फुहार शब्द आता है, सावन शब्द आता है। आज की इबारत से ही हम पूछ रहे हैं वो कौन सा गाना है, फिल्म का नाम, गाने के बोल टाइप कीजिए। फिलहाल बताइए हीरो हीरोइन के नाम, फिल्म तीसरी कसम।

तीसरी कसम फिल्म का ये गाना था, मुकेश की आवाज़, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, और जैसे दिल चीर के रख देता है ये गाना, ऐसे लगता है कि भीतर कहीं धस के स्थित हो गया है, ठहर गया है, ये गाने से बाहर हम निकल ही नहीं पाते हैं। ऐसी जज्बात साझा कर रहे हैं हमारे श्रोता भी। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में सुनती थी इस गीत को, तब भले इस गीत में छुपे भाव को इतनी समझ ना हो पर अच्छा लगता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार, बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं, सजनवा बैरी हो गए हमार। आज एक श्रोता ने लिखा है कि आज कोई गाने की फरमाइश नहीं, बस आप बजाते जाइए, आज जो भी बजेगा सब मेरी पसंद का होगा। ये बात तो बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है, और सच कहें तो आज हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि आप जो भी गाने लिखते जाएंगे सब मेरी पसंद के होंगे, और हमें खोजने में, ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही है कि कौन सा वाला गाना हम बजाएं, कौन सा वाला छोड़ दें। एक श्रोता ने लिखा है कि आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार, सली चौधरी ने इस गाने में लोक संगीत और शास्त्रीय धुन का जो मिश्रण किया है रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लता जी की सुरीली गूंज और बीच बीच में गूंजते कोरस और वाद्यों का प्रयोग सुनने वाले को एक अलग ही सम्मोहक लोक में ले जाता है। ये हिंदी सिनेमा का इतिहास का मील का पत्थर है जिसे आज भी लोग सुकून से सुनते हैं। फिर एक श्रोता लिख रहे, सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठियां हो तो हर कोई बांचे। दरअसल ये ऐसी पंक्तियां हैं जो लगता है कि बस कभी दर्द भरे क्षण रहे हो तो ये गाना हम सबके लिए ही लिखा गया हो, और ऐसा दर्द भरा लम्हा कहीं न कहीं हम सबके जीवन में आता ही है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कुछ गीत इनमें से हो सकते हैं, बरसात में हमसे मिले तुम, सनम बरखा बहार आई, अंखियों में प्यार लाई, और बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे गाने लिखे, हम कितना बताएं और कितना पढ़ें, आप खुद विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर सुन लीजिए, देख लीजिए। और हाँ, हमने आपसे सवाल पूछा था कि जो एक गाना है स्त्री मन की पीड़ा का गाना है, दिल चीर देने वाला गाना है, वो फिल्म है जागते रहो। सभी श्रोताओं ने बूझ लिया है, ठंडी ठंडी सावन की फुहार, पिया आज खिड़की खुली मत छोड़ो, सभी श्रोताओं ने, मतलब एक नहीं कई श्रोताओं ने। और तीसरी कसम फिल्म के गाने के

एक श्रोता ने लिखा है कि जी देखिए, ये एक बार थिएटर में एक बार टीवी पर राज कपूर और वहीदा रहमान होते हैं पर्दे पर, और ये हमने पहली भी आपसे पूछी थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि तुम्हें याद करते करते जाएगी रेंसारी, पर्दे पर अभिनेत्री वैजंती माला ने इस गीत को जीवंत किया है। महल के सन्नाटे, जलते हुए दियों की मध्यम रोशनी और उनके चेहरे के संयमित भाव, बिना चीखे चिल्लाए आंखों की खामोशी से बात कहना। दरअसल ये वो अभिनेत्रियां हैं जो आंखों से अभिनय करती थीं। वैसे वैजंती माला तो एक बहुत सुंदर नृत्य के लिए भी जानी जाती हैं, तो जो वाचिक अभिनय होता था उनका अलग ही होता था, मिसाल कायम करती थी। बहरहाल अब बात चली है इस गाने की, मतलब जो हमने आपसे पूछा था, ठंडी ठंडी सावन की फुहार, जागते रहो फिल्म का, तो यही गाना सुन लिया जाए। लेकिन एक कमेंट और तब तक हम पढ़ देते हैं। बिना शंकर जयकिशन के शैलेंद्र को हिंदी सिनेमा का आज तक का सबसे बड़ा गीतकार कहा जा सकता है। उनके गीतों को खुरच कर देखें तो आपको सतह के नीचे दबे नए अर्थ प्राप्त हो सकेंगे। क्या बात है भाई, खुरच कर देखें। सच में जब वो गाने लिखते हैं तो लगता है कि दिल को सचमुच खुरच दिया है। चाहे वो जब बेटी के विदा होने की बात हो, चाहे स्त्री मन की पीड़ा हो, या फिर आम जिंदगी के जीवन का दर्द हो, या आम इंसान की बात हो। चलिए, बात तो चल रही थी जागते रहो फिल्म के इस गाने की, सुनिए और बताइए किसकी है आवाज, संगीतकार का नाम भी बताइए। आपको इस गाने में क्या खास बात लगती है, फटाफट बता सकते हैं तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि मोबाइल ऐप पर हमें पहली जो होती प्रश्न देर से मिलता है, तो हम ऐसा करेंगे कि अगली बार तुरंत जवाब न देकर दो गाने के बाद देंगे।

रेशमी और जादुई आवाज ने इस गाने में जान फूंक दी है। उनकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव, मासूमियत और दर्द झलकता है, जो रात के सन्नाटे और बारिश के मौसम पर पूरी तरह फिट बैठता है। एक श्रोता ने लिखा है कि शैलेंद्र का अर्थ पर्वत का राजा होता है। ये शब्द संस्कृत के दो शब्द शैल और इंद्र से मिलकर बना है। इसे शक्ति, स्थिरता और विशालता का प्रतीक माना जाता है। शैलेंद्र के व्यक्तित्व में ये गुण पाए जाते हैं, जिसे उनके द्वारा लिखे गए गीतों में हम महसूस कर सकते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं, महान गीतकार जिनके गीत समाज को जीना सिखाते हैं, वैल्यू देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। महान गीतकार कविराज शैलेंद्र जी के 103वें जयंती पर शत शत नमन। और बहुत सारे गानों के बोल इन्होंने लिखे हैं। अब बारी है इस गाने की, जिसके लिए सभी श्रोताओं ने लिखा है, फिल्म श्री 420। बताइए कौन है कलाकार, हीरो हीरोइन का नाम बूझिए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जल्द से लिखिए।

जागते रहो फिल्म का गाना था और आशा भोसले की आवाज, सलील चौधरी का संगीत। श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आशा भोसले की

अगला गाना कौन सा सुनवाया जाए जरा ये भी आप लिख सकते हैं तो लिखिए। अभी शैलेंद्र के लिखे बहुत सारे गाने हमारे प्लेलिस्ट में शामिल हैं, कौन सा गाना सुनवाएं आप बताइए।

0: राज कपूर और नरगिस, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। फिल्म थी श्री 420 और बहुत जल्द जवाब आया श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता ने लिखा है कि गीतकार शैलेंद्र के गीत सिर्फ शब्द नहीं थे, वे आम आदमी के दिल के धड़कन थे। उनकी कलम में गांव की मिट्टी की खुशबू थी, शहर की तन्हाई का दर्द, इसलिए उनके गीत आज भी उतने ही ताज़ा लगते हैं और सुनने और गहराई से समझ सकने वाले को अपनी ही कहानी सी लगते हैं। तो अब आगे बढ़ा जाए और अगला गाना सुना जाए। बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का भी जिक्र किया है। देखिए कि आपको सुनना था या नहीं, आपके पसंद का था, जरा सुनिए और बूझिए फिल्म का नाम।
1: दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत दो।
0: फिल्म का नाम आपको बूझना है।

फिल्म थी रात और दिन, मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजें। इस फिल्म का नाम हमने पूछा था, श्रोताओं ने जल्द से जल्द बताया, सही बताया। और एक सवाल हमारे जहन में आया है, वो ये कि शैलेंद्र पर एक गाना फिल्माया गया था जिसमें जिस फिल्म में वो बैंजो बजाते हुए गाना गा रहे हैं, वो गाना आपको याद है या फिल्म का नाम याद है तो बताइए, या फिर गाना या फिर फिल्म का नाम, जो भी आपको याद हो बताइए। कि एक फिल्म है जिसमें वो बैंजो बजाते हैं, मतलब वो फिल्म में खुद है शैलेंद्र। तो ये श्रोता ने, हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है, तो हम उन्हीं की ओर से ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं, और इसका सही जवाब आप दे पाएंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्वत चट्टानों के वे समूह जो हमें अपने अडिगता सिखाते हैं, शैलेंद्र जी स्वभाव से ऐसे ही सहज और सजग इंसान थे, लेकिन वक्त ने उन्हें भी अंततः राज कपूर के दर पर लाकर खड़ा कर दिया और वो फिर अपनी ही मेहनत से अपने मुकाम को हासिल किया। एक श्रोता ने लिखा है कि गीतकार शैलेंद्र की कलम ने गीत नहीं लिखे, बल्कि उन्होंने जीवन को सुर और भावनाओं को आवाज दी। उनकी लेखनी में आम आदमी की खुशियां भी है, संघर्ष भी, और प्रेम की कोमल अनुभूति भी। अब एक ऐसा गाना आपको सुनवा रहे हैं जो आपको यादों के गलियारे में ले जाएगा, बताइए कौन सी याद ताजा हुई है गाना सुनकर, और हीरोइन का नाम जरा पूछिए। फिल्म बंदिनी, कौन सी याद ताजा हुई और कौन है हीरोइन?

बंदिनी फिल्म का ये गाना था और बहुत ही मार्मिक गाना था। नूतन होती है पर्दे पर और सभी श्रोताओं ने इसे लिखा है कि रुला देने वाला गाना है, खास तौर से लड़कियां और औरतें तो ये गाना सुनकर रोती हैं। एक हमारे श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि हर राखी पर ये गाना हमें रुला देता है, और ये गाना सुनकर स्त्रियां क्या पुरुष भी रोते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। और हमने एक पहली पूछी थी फिल्म की, कौन सी वो फिल्म है जिसमें शैलेंद्र बैंजो बजाते हुए पर्दे पर नजर आते हैं, बूट पॉलिश फिल्म चली कौन सी देश गुजरिया तू सच धज के, लेकिन ये बोल गाने के हमारे इबारत में नहीं, इसलिए ये गाना हम आपको सुनवा नहीं रहे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं संगम फिल्म का ये गाना। जरा हीरो हीरोइन का नाम पूछिए और साथ में याद कीजिए क्या किसी दोस्त ने आपके साथ किसी तरह की दगाबाजी की या किसी दोस्त ने आपका साथ निभाया। चाहें तो आप बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, टिप्पणियां आपकी सुरक्षित रहती हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर।

संगम फिल्म का गाना मुकेश की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, वैजंती मारा राजेंद्र कुमार और राज कपूर होते हैं इसमें हीरो हीरोइन। और सभी श्रोताओं ने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया, बहुत फास्ट दिया क्योंकि वक्त कम है और ये गाना हम आपको पूरा नहीं सुनवा सके हैं। और भी बहुत सारे गाने हैं जो छूट गए हैं जिसे आप सुनना चाहते थे, हम सुनवाना चाहते थे, लेकिन वक्त की पाबंदी। बस आज का सुरीला सफर बस इतना है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

दोस्तों नमस्कार। हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन ये बात भी हम सभी जानते हैं कि हमेशा खुश रहना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते रहते हैं। लेकिन हम अपने मन को अधिक शांत और खुश रखने की आदत

0: दोस्तों, जब हम खुद को खुश रखने के छोटे छोटे से तरीके अपनाते हैं तो ये हमारे मूड को भी बेहतर बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। हम नियमित व्यायाम, योग, ध्यान, भरपूर निद्रा और संतुलित भोजन की आदत बनाकर भी खुश रह सकते हैं। दूसरों की मदद करें और सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। अपनी तुलना दूसरों से करने की बजाय अपने विकास पर ध्यान दें। छोटी छोटी सफलताओं और खुशियों का आनंद लेना सीखें। यही है खुश रहने के बहाने।
1: मैं

ईश्वर में आस्था और प्रार्थना से भी मन को शांति मिलती है और जीवन में खुशियां भी इससे मिल सकती हैं। यदि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है तो प्रतिदिन वो कुछ समय अपने पूजा, जप तप या ध्यान के लिए जरूर ही निकालते हैं। लेकिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे प्यार करो, खुश रहो और कभी किसी का दिल ना दुखाओ। ये बात बड़ी छोटी सी है, पर अपने आप में ही खुश रहने का बहुत सुंदर आधार भी है। जब हम इस तरह की सोच के साथ जीते हैं और साथ ही अपनी भी देखभाल करते हैं तो मन अधिक संतुलित और प्रसन्न रहता है। याद रखिए, खुश रहने का मतलब ये नहीं कि हमें कभी दुखी ना हो। इसका मतलब है कठिन समय में भी उम्मीद, धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखने की कोशिश करते रहना।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या

0: 1734 हुई, लगभग 2500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी स्तरों की समीक्षा के लिए विदेश मंत्रियों की समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।
1: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे।
0: ताशकंद में प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ और उज्बेकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की 35वीं वर्षगांठ के सहयोग पर भी खुशी व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश इस वर्ष सामरिक भागीदारी की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। मुझे खुशी है इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं। हम इसके अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: श्री मोदी ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
1: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है, बस फिर क्या था? आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना अपने

0: साथ देशभक्ति के कई रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है।
1: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुआ में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक तिरंगा लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं।
0: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया।
1: आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2500 लोग अब भी लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज नेपाल पहुंचा। एक रिपोर्ट।
3: बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटेकाशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। भोटेकाशी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 275 भारतीय और अन्य देशों के भारतीय मूल के 128 लोग भी लापता हैं। वहीं चीन में 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पेइचिंग में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार प्रभावित लोगों के शीघ्र बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत से 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी थी। समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये वर्षा तेज हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है।
4: बालेश्वर जिले में बाढ़ का नया खतरा पैदा हो रहा है क्योंकि लगातार बारिश के बीच सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार राजघाट पर नदी का जलस्तर 8.84 मीटर था जबकि इसका खतरे का निशान 10.36 मीटर है। झारखंड में गुलडीही बैरेज के 6 गेट खोल दिए गए हैं जिससे नदी का जलस्तर और बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। जलेश्वर, भोगराई और बालियापाल के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ सकती है। IMD का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के और मजबूत होने और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्सपर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे

0: व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: ये आकाशवाणी है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। जर्मनी की टीम 2023 में जीते अपनी ट्रॉफी को बरकरार रखते हुए चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी। वहीं स्पेन अपना पहला हॉकी विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश करेगा। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मानधना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीम है। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि सरदार हुकुम सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ और उत्कृष्ट वक्ता थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि विश्वसनीयता पत्रकारिता का मुख्य नैतिक मूल्य है। उन्होंने आज केरलम के अलप्पुरा में दैनिक केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने नैतिकता का उल्लंघन किए बिना एक सदी से अधिक समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा करने के लिए केरल कौमुदी को बधाई भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। देश भर के 18 परिसरों के स्नातक छात्र इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने कानूनी मापन भारतीय मानक समय नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार भारतीय मानक समय को देश में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए एक समान समय संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये नियम राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से 180 दिन में लागू होंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण देने वाले दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य इकाई ने बताया कि यह पत्र फर्जी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्यूरेटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुँचा। और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह।

0: दिल अपना और प्रीत पराई इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। सदाबहार नगमे प्रोग्राम में हम याद कर रहे हैं जाने माने गीतकार शैलेंद्र को, आज उनकी जयंती है।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: बूट पॉलिश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और तलत महमूद की आवाजों में। रचना थी शैलेंद्र की, संगीतकार शंकर जयकिशन।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: उसने कहा था। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में। शैलेंद्र की रचना थी, सलील चौधरी की धुन थी। आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित था। आज उनकी जयंती है, उन्हीं की याद को समर्पित था ये कार्यक्रम। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और इस वक्त हाजिर हूं फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं ताजमहल फिल्म के इस गाने से। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीतकार रोशन।

ताजमहल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। साहिर लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। डॉक्टर प्रकाश पाठक, कुमारी डेल्सी पाठक, प्रिंस पाठक ने किला वार्ड बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। और फरमाइश आई थी हमारे इन श्रोताओं की लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड इंदौर से, वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक और इनका पूरा परिवार। इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी राम गाडेकर और इनके पूरे परिवार की ओर से, उमर खेड़ जिला यवतमाल से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत ये।

शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन की धुन थी, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म थी पतिता। इसे सुनने के लिए पत्र लिखा था आप सभी ने गेवराई मराठवाड़ा से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की ओर से पत्र मिला। बंगला मटिया बालोद से शिवकुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना अंशु और आशुतोष अंगारे, उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत और चेतन नाहटा की ओर से फरमाइश आई थी। और जिला वाशिम से एकनाथ काले, आशाताई काले, ज्ञानेश्वर, शिवांशु, रविंद्र पवार की ओर से फरमाइश हमें मिली। चलिए अब सुने अगला गीत, ये फिल्म आंखें, लता मंगेशकर की आवाज़।

0: कभी।
1: आंखें फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि। पसंद करने वाले हमारे श्रोता तालुका उमरखेड़ ढाड़की से राम गाडेकर, सुनीता गाडेकर, अभिजीत कोमल और अभिषेक। इसी गाने को पसंद किया था अकोला से प्रकाश खेडकर, मीराताई खेडकर, आरती, संतोष, पूजा और इनका पूरा परिवार। फरमाइश आई थी इन सभी की भी बड़वाह मध्य प्रदेश से, प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली और मुमताज मोहल्ला नौगछिया से, दूसराइल अंसारी, रहमान अंसारी, आलिया अंसारी, सीरत और इनका पूरा परिवार। आइए अब सुने अगला गीत।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गाना। संगीतकार थे राहुल देवर्मन, फिल्म थी पड़ोसन। पसंद करने वाले श्रोता, हमारे ये यवतमाल विदर्भ से चंदा किशन कुमरे, निकिता गणेश कुमरे और इनके परिजन सतीश अनेजा, विमला अनेजा, शेफाली शेफी अरोड़ा, मास्टर डेविस चंडीगढ़ से और खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, निर्मल वर्मा, अनुज, आयुषी, अर्चना, शेख, मूसा, राजकुमार और इनका पूरा परिवार।

दादा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे येसुदास की आवाज में। कुलवंत जानी के बोल थे, उषा खन्ना का संगीत था और फरमाइश थी आप सभी श्रोताओं की। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत मिथिल और प्रगति नाचानी की।

आकाशदीप फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था, चित्रगुप्त ने धुन बनाई थी और पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। गणेशपुर गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू और इनके अन्य साथी, ग्राम लुहेड़ी महोबा बुंदेलखंड से जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव की फरमाइश थी।

मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। अनजान के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, फरमाइश थी आप सभी की अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद एकमल, नफीसा परवान और जाहिदा की फरमाइश थी। इसी गीत को सुनना चाहते थे ग्राम पाहरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति, छाया और इनके परिजन, जमशेदपुर से तस्नीम कौसर, ईशिता साहनी, प्रियंका मोदी, सोनल वली और अफजल मलिक, और इसी गाने की फरमाइश आई थी कोल सिटी बरका काना से अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना और इनके मित्रगण। गजानन लिखार, मनोज लिखार, संजना लिखार ने फरमाइश भेजी थी महाराष्ट्र सामंगी से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: ये है विविध भारती। नाट्य तरंग, आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक आई लव यू, नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। मूल गुजराती लेखक हैं प्रदीप सोलंकी, हिंदी नाट्य रेडियो रूपांतरकार सुनंदा नायक, निर्देशिका तनुजा कानड़े। तो सुनते हैं नाटक आई लव यू दूसरा और अंतिम भाग।
1: यही बैठो ना, मुझे यही अच्छा लगता है।
2: All right, as you wish।
3: माफ कीजिएगा, आपको जरा डिस्टर्ब कर रहा हूं।
2: क्या है?
3: कुछ नहीं, कुछ ना होने की वजह ही मुझे यहाँ खींच लाई है।
2: ए भाई, आप क्या चाहते हैं?
3: देखो भाई, मैं समझता हूँ आप लोगों की शादी नहीं हुई है।
1: ये आपने कैसे समझ लिया?
3: जिस तरह से आप लोग प्यार भरी बातें कर रहे हैं ये देखकर।
2: मगर आप हैं कौन?
3: मैं एक लेखक हूँ, नाटक लिखता हूँ।
2: भूखे हो? पैसा चाहिए, लो।
3: मेरे युवा मित्र, मैं भूखा हूँ किंतु भावना का, पैसे का नहीं। तुम एक महीने में जितना नहीं करते उतना खर्च मैं एक दिन में करता हूँ। लेकिन बात करने की जगह नहीं।
1: आप क्या चाहते हैं?
3: लिखते लिखते मैं एक स्थान पर अटक गया हूँ।
2: स्याही खत्म हो।

0: गई? नहीं, मेरी समझ खत्म हो गई।
1: इंटरेस्टिंग, आप बैठिए ना।
0: मेरे नाटक का हीरो अमर कवि है, कलाकार है, बड़ा भावुक आदमी है। बिजली के तार पर बैठने की आदत हो जाने वाले पक्षी को जिस तरह वृक्ष की डाल पर बैठना पसंद नहीं, उसी तरह अमर को जीवन में सुखी होना पसंद नहीं। वह दुख को मानता है, सुख को सहन करता है।
2: हाँ, जैसे इस तरह हम सहन कर रहे हैं।
0: आपके रंग में भंग करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, किन मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आ गया।
1: आप जरा भी संकोच न करें वीरेन, इफ यू डोंट माइंड।
2: डार्लिंग, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है।
0: मैं आगे बढ़ूं?
1: ओह श्योर।
0: यू सी, अमर के पास सब कुछ है, लेकिन वह ऐसे जीता है जैसे उसके पास कुछ भी ना हो। वह बड़े शर्मीले किस्म का है। उसकी किसी दूसरे गांव में ट्रांसफर हो गई है। नए वातावरण में वो अटपटा सा महसूस करता है, कुछ बुझा सा जाता है। उसकी सृजन शक्ति कुंठित सी हो जाती है। अचानक नए गांव में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, सुनीता,
2: और वो उसे प्यार करने लगता है, यही ना?
0: नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि अमर और लोगों से बिल्कुल अलग किस्म का है, और उसे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। वो बरसों से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसे अपना सुख देकर उसका दुख खरीद सके।
1: सुनीता बहुत खूबसूरत थी।
0: देखने में नहीं, लेकिन दिल की बहुत सुंदर थी। अमर सुनीता से मिलता है तो उसे महसूस होता है उसकी बरसों की खोज आज पूरी हो गई, युगों की प्यास आज बुझ गई। वह सुनीता के सानिध्य में रहकर एक अमर काव्य की रचना करना चाहता है।
1: फिर?
0: लेकिन अचानक सुनीता अमर से बोलना छोड़ देती है।
1: पर क्यों?
0: बस इसी का कारण मैं दे नहीं पा रहा हूं।
1: एक आइडिया, बस आप यू दिखा दीजिए कि अमर सुनीता से कुछ नामुमकिन मांग करता है और सुनीता गुस्से से उसके साथ बोलना बंद कर देती है।
0: नहीं, अमर का करेक्टर ऐसा नहीं है।
2: तो फिर सुनीता अमर से कुछ बड़ी रकम की मांग करती है और अमर के ना देने पर वो रूठ जाती है।
0: दोस्त, इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं।
1: तो सुनीता के अहम को धक्का लगे ऐसा कुछ अमर ने किया होगा।
0: एग्जैक्टली, लेकिन उसने ऐसा क्या किया होगा, यही तो मेरी पहेली है।
2: सॉरी, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता।
0: अरे किसी को भी कुछ सुझाई नहीं देता, मैंने कितनों से पूछा।
2: अरे कुछ भी वजह बता के नाटक पूरा कर डालिए ना।
0: ऐसा नहीं किया जा सकता।
2: क्यों?
0: क्योंकि अमर सुनीता के बगैर जी नहीं सकता।
2: अब ये तो आपके हाथ में है ना, आप नाटक में थोड़ा अदल बदल कर दीजिए।
0: नाटक होता तो जरूर कर देता।
1: मतलब ये नाटक नहीं है?
0: नहीं, अमर आत्महत्या करने की सोच रहा है।
1: आत्महत्या?
0: हाँ, आज ही।
2: आज ही से क्या मतलब? वो तो आप लिखेंगे तभी ना करेगा।
0: लिखूंगा तभी नहीं, करूंगा तभी।
1: यानी कि?
0: यानी कि मैं ही अमर हूं।
2: अरे अरे सुनिए तो, अरे कहां जा रहे हैं आप?
1: अरे कहां गया? माय गॉड, कमाल का आदमी था ना।
2: मुझे तो कोई पागल लगता है, सभी लेखक थोड़े बहुत पागल होते ही हैं। जाने दो, सारा मूड बिगाड़ दिया इसने।
1: लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है कि उन दोनों के बीच दरार पड़ गई?
2: ओफ, ओफ, स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक छोटी चिंगारी भी आग बन सकती है।
1: रियली?
2: हाँ, अगर दोनों ना समझ हो तो।
1: मान लो हम दोनों के बीच कभी ऐसा हो गया तो?
2: हो ही नहीं सकता, हम दोनों इतने नादान थोड़ी हैं। तुम तो बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारी समझदारी पर तो मुझे नाज है, दैट्स व्हाई आई लव यू। डार्लिंग, तुम भी कहो ना आई लव यू। अरे कहो ना। अरे कहो ना, तुम भी मुझे चाहती हो।
1: अरे इसमें क्या बोलना,
2: एक बार, बस एक बार कह दो ना आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है।
1: मुझे इस तरह का छिजलापन पसंद नहीं। वी आर नॉट टीनेजर्स, वी आर मैच्योर्ड।
2: ओके ओके, ये तो जस्ट मेरे मन की शांति के लिए।
1: प्लीज, मुझे इस तरह बोलना नहीं पसंद।
2: अरे भले ही ना पसंद हो, लेकिन क्या मेरी खातिर तुम नहीं बोलोगी?
1: अरे लेकिन शादी के पहले सब बोलने में क्या रखा है?
2: अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ?
1: बेकार की जिद मत करो।
2: मतलब तुम नहीं बोलोगी?
1: ना,
2: मैंने कहा इसलिए नहीं बोल रही हो या तुम्हें पसंद नहीं इसलिए नहीं बोलना चाहती?
1: मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मैं ये नहीं बोलने वाली।
2: ऑल राइट, लेट अस कॉम्प्रोमाइज। मुझसे नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, बात बात में कहती जाओ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। अच्छा एक काम करो, इस पेड़ से कहो।
1: वीरेन, लगता है तुम पागल हो गए हो।
2: हाँ, तुम्हारे प्यार में।
1: चलो अब हम चलते हैं।
2: तो क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगी?
1: मुझे इस तरह की दादागिरी बिल्कुल नहीं पसंद।
2: अरे मगर इसमें दादागिरी की क्या बात है?
1: सिर्फ दादागिरी ही नहीं, जबरदस्ती है जबरदस्ती। तुम मुझे अपनी गुलाम समझते हो। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू।
2: लीना मेरी बात तो सुनो। अरे

0: उसके बाद रास्ते में तो यह जो मुंह में आया वो कहने लगी। मैं कुछ कहूं इससे पहले ही टैक्सी में बैठकर निकल गई। टैक्सी में बैठकर मुझसे पता है क्या कहा? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, हमारे संबंध खत्म। उस हरामखोर लेखक ने सारी आग लगाई है।
1: लेखक को नहीं, अपने आप को गाली दो।
0: तुम ही कहो ना मौसी, आई लव यू कहने में इसका क्या जाता है?
1: जब देखो तब लव लव लव, मत करो, मैं नहीं बोलने वाली।
2: लीना लीना, ये झूठी जिद है।
1: आप तो उसी का पक्ष लेंगे क्योंकि आप भी मर्द है ना।
0: ओहो, इसमें मर्द औरत के संबंध की बात कहाँ से आ गई? अरे ये तो आपस में रिलेशन की बात है।
1: रिलेशन की नहीं, तुम्हारी बेकार की मांग की।
0: देखो लीना, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती।
1: मगर इतना याद रखो कि एक हाथ से तमाचा जरूर पड़ सकता है।
0: तुम लड़ाई झगड़े की भाषा में बात मत करो, जरा शराफत सीखो।
1: मैं ये किसी भी जन्म में नहीं बोलने वाली। अगर शादी से पहले ही तुम अपनी मनमानी करवाना चाहते हो तो मुझे भूल जाओ।
0: अरे लीना लीना, हेलो, अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो?
3: दोनों पागल हैं।
2: तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं। कहाँ जा रही हो भाई?
3: देखू तो सही, ये लोग क्या कर रहे हैं?
2: अरे उनके रूम का दरवाजा बंद करके चली आओ, थोड़ी देर में सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।
3: क्या तुम भी? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।
2: ये साड़ी कब खरीदी?
3: कैसी लगती है?
2: समझ में नहीं आता है कि तुम साड़ी से जच रही हो या साड़ी तुमसे जच रही है।
3: ये तुम क्या कर रहे हो?
2: रेखा, इन दोनों जवान लोगों को तुमने देखा? छोटी छोटी बात में नाना करते हैं। हम दोनों भले ही चाहे जितना लड़ें झगड़ें, लेकिन एक दूसरे की बात तो रखते ही हैं। जबकि आज की ये पीढ़ी एक छोटी सी बात के लिए अपना सब कुछ खो देने के लिए तैयार हो जाती है। इसमें किसका दोष है? समाज का, समय का, या विदेशी संस्कृति का? आज भारत में
3: बस बस बस, एक मिनट, ये टेबल लो।
2: टेबल किस लिए?
3: इस पर चढ़कर फिर भाषण दो, चुनाव में खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा प्रचार करूंगा।
2: गुड जोक, गुड जोक। तुम जब इस तरह से अकलमंदी की बात बोलती हो ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है।
3: अरे मैं तो हमेशा अकलमंदी की ही बात बोलती हूँ, मगर तुम अकलमंदी से सुनते नहीं हो।
2: आओ ना, अरे आओ ना, मेरा स्वभाव जरा अजीब है, लेकिन तुम, मुझे यकीन है कि तुम मुझे सच्चे दिल से चाहती हो।
3: अब छोड़ो भी ये सब, चाचा जी आते होंगे।
2: नहीं नहीं, एक बार कह दो कि तुम मुझे चाहती हो।
3: क्या?
2: मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, आई लव यू।
3: हे भगवान, इनकी सर पे भूत कैसे सवार हो गया? छोड़ो, मैं इस तरह का उल्टा सीधा नहीं बोलने वाली।
2: पति से मैं तुम्हें चाहती हूँ, ये कहने में उल्टा सीधा क्या है?
3: उल्टा सीधा यही है कि पति जबरदस्ती ये कहने पर मजबूर कर रहा है।
2: मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ? हैं? अरे मूर्ख, मैं तो तुमसे विनती कर रहा हूँ।
3: इतने जोर से ना कहो।
2: ऑल राइट, हाथ जोड़कर कहता हूँ।
3: हाथ अपने चाचा जी के सामने जोड़ना। तुम तो उन्हें फोन करने वाले थे ना?
2: बात मत बदलो, तुम कहती हो कि नहीं?
3: छोड़ो छोड़ो, मुझे बहुत से काम है।
2: चुप रहो, मैं कहता हूँ, मेरे रोम रोम में आग लगी हुई है, मुझे और गुस्सा ना दिलाओ। मेरी खातिर बोलो कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
3: कल तुम्हें मुझे कहोगे कुएं में कूद जा तो क्या मैं कूद जाऊंगी?
2: मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ।
3: तो कितने हो?
2: इसमें कुएं में पड़ने की बात कहाँ से आ गई?
3: बात नहीं, लेकिन मैं तो हूँ ही कुएं में पड़ी हुई। तुम्हारे जैसे सिद्धि मतलब ही पति के साथ शादी करने का, गृहस्थी चलाने का मतलब ही यही है कि कुएं पड़े रहना हो।
2: जो मुंह में आए वो बकती जाती हो, एक ऐसा थप्पड़ देता हूँ मैं।
3: मारो, मार डालो मुझे। मुझे मालूम है तुम यही चाहते हो कि मैं मर जाओ।
2: लेकिन जिंदगी में मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है।
3: मैं चाहती हूँ, कई दिनों से तुम मुझे मारने की बात बहाना ढूंढ रहे हो। मारो मुझे।
2: रेखा,
3: हे भगवान, इससे अच्छा तो यही है कि तुम मुझे उठा लो।
2: मर गया, गोर मर गया। अब तो जरूर चाचा जी होंगे। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ।

0: चाची को क्यों पुकार रही हो, रोना ही है तो मन में रो, मन में रो। देखो मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ, है ए, ए, ए, ए, ए, ये लो रुमाल से आंसू पोछ डालो, है लो, लो, लो, लो। अच्छा लो, मैं ही पोछ लेता। आइए आइए चाचा जी, कैसी है चाची जी?
1: अच्छी हूँ, तुम दोनों कैसे हो?
2: अरे मनोहर, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? अरे कौन रो रहा है? अरे रेखा बेटी, क्या हुआ?
0: कुछ नहीं, कुछ नहीं चाचा जी, वो जरा दिल भराया इसका बस।
1: हमें देखकर?
0: हाँ हाँ हाँ,
1: हमें देखकर दिल क्यों भराया?
2: मनोहर सच बताओ, क्या बात है?
0: अब कुछ भी नहीं, ये तो बस ऐसे बिना वजह।
1: बिना वजह किसी को रोना नहीं आता, समझे?
2: सीमाए तुम्हारी चाची के।
1: क्या बिना वजह रोती हूँ मैं?
2: रोने के बाद तुम कुछ न कुछ वजह ढूंढ लेती हो, इसलिए बिना वजह रोने जैसा नहीं लगता। मनोहर बताओ बात क्या है?
0: अब कुछ नहीं, वो भाई रेखा पानी वानी भी लाओगी या नहीं? जाओ।
3: अच्छा हो गया आप लोग आ गए, वरना ये तो मुझे मार ही डालते।
1: मनोहर बहू को क्या शिकायत है?
0: कुछ नहीं कुछ नहीं, वो जरा जिद्दी है, बस मैंने उसे चार शब्द कहने के लिए कहा तो उसने बस ये जंग छेड़ दी।
2: ऐसा तुमने क्या कहने के लिए कहा?
0: मैं तुम्हें चाहती हूँ।
1: गधा कहीं का, इस उम्र में शर्म नहीं आती?
2: इससे पहले तुमने उसे डांटा था?
0: नहीं नहीं, गलत मत समझिए, थोड़ी देर पहले मैंने रेखा से कहा था कि एक बार कहो आई लव यू, मैं तुम्हें चाहती हूँ।
2: तुम पागल वागल तो नहीं हुए ये कहने की कोई वजह?
3: लीजिए लीजिए पानी।
0: अब इसकी बहन की बेटी लीना, लीना।
2: कौन? प्राण जीवन की बेटी?
0: लीना के नाम के आगे प्राण जीवन नाम ही लगता है, यानी कि हाँ वही होगा, वही होगा।
2: क्या कहा तुमने?
0: मैंने आपके सवाल का जवाब दिया चाचा जी।
1: ये लीना वाली बात क्या है?
0: लीना और उसके होने वाले पति में इसी बात पर झगड़ा हुआ है, वो लोग साथ वाले कमरे में बैठे हैं।
2: अब भी लग रहे हैं क्या?
0: कमरा खुलने से मालूम होगा, मैं खोल कर देखा।
1: नहीं नहीं रहने दो, इतना बड़ा हो गया अभी तक मालूम नहीं। जवान लड़के लड़की बैठे हों तो उनको बैठे रहना देना चाहिए।
2: संक्षेप में तुम दोनों इन दोनों से मैं तुम्हें चाहती हूँ कहने की मांग कर रहे हो?
0: हाँ, हमें संबोधित करके कहे ये जरूरी नहीं, बस सिर्फ कहे तो काफी है।
1: अरे पागलो, ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने?
0: हाँ? कमाल है चाची जी, ये तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक कमाल है।
2: हंसी मजाक करते करते दुखी हो गए ना, तुम्हारे इस नए जमाने से तौबा भाई। चलो रेखा बेटी
3: जी,
2: सब कुछ भूल जाओ और फर्स्ट क्लास मसाले वाली चाय बना कर लाओ।
0: हाँ, मेरे लिए भी ना भूलना है।
1: कितनी सुशील सयानी बहू है मेरी, इसे इस तरह क्यों परेशान करते हो?
0: दो दिन साथ रहकर देखो तो मालूम पड़ेगा।
2: ये बात तो सच कही।
1: क्यों, तुम क्यों दखल देते हो बीच में?
2: अरे मनोहर, खूब याद आया भाई, हर बार की तरह इस बार भी थोड़े गुलाब जामुन और रसमलाई तो ले आना। ये लो पैसे लो।
0: नहीं नहीं नहीं चाचा जी, आप ही क्या कर रहे हैं?
1: पैसे नहीं लेते हो तो हमें नहीं चाहिए।
0: अब लेकिन
1: अभी कुछ मत कहो।
0: आप भी चाची? अरे चाची की चप्पल तू ही आ जा मेरे।
1: ये मनोहर को आज क्या हो गया? तुमने देखा दरवाजे के पास रहकर कैसी कैसी हरकतें कर रहा था?
2: अरे भाई छुट्टी के मूड में होगा।
1: पागल है, मैं कहती हूँ कि आखिर ऐसा बुलवाने की क्या जरूरत थी?
2: ना समझी है और क्या, नहीं तो मैं तुम्हें चाहती हूँ ये कहने में दोनों औरतों का क्या जाता था?
1: लेकिन इससे ये बुलवा कर दोनों आदमी को क्या मिलने वाला था?
2: अरे जवान है, कभी कभी मजाक भी सूझता है, छोटी सी बातों का बतंगड़ बन जाता है। अगर बात बढ़ानी ना हो तो इन छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तुम क्या कहती हो?
1: तुम मेरी राय कब से मांगने लगे?
2: नहीं नहीं, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम कहो मैं तुम्हें चाहती हूं तो तुम एक बार नहीं 100 बार बोलोगी।
1: लेकिन तुम ऐसा कहोगे ही नहीं।
2: लेकिन मान लो कि मैं तुमसे कहूं तो मुझे यकीन है कि तुम जरूर कहोगी।
1: क्यों, तुम इतने मूर्ख हो क्या?
2: और ना कहो।

0: इतनी बेवकूफी भी तुम नहीं कर सकती।
1: आ, आ, आ, आ, आ।
2: नमस्ते चाचा जी।
1: आओ बेटा, आओ लीना, बैठो बैठो।
2: हाँ मैं चाय लेकर आती हूँ।
1: रुको, मनोहर को मैंने बाहर भेजा है, उसे आने दो, तुम भी बैठो। ये तुम्हारी भांजी लीना है ना?
2: जी, और ये वीरेंद्र, लीना का होने वाला कोई नहीं।
3: अरे
1: तुम लोग सचमुच नादान हो, मनोहर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अरे इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाते हैं। देखो अगर मैं तुम्हारी चाची से कहूं कि रेल की पटरी पर जाकर सो जाओ तो एक मिनट में सो जाएगी।
2: अगर गाड़ी आने वाली हो तो भी?
1: हाँ तो भी, इसमें कोई शक नहीं।
2: आई डोंट बिलीव।
1: रमा चलो इन सबको सबक सिखा दो, एक बार सबके सामने मुझसे कह दो कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
4: हाय हाय, कुछ लाज शर्म है, सबके सामने ये कैसे कहूँ?
1: क्योंकि क्योंकि ये मेरा हुक्म है।
4: अरे तुम्हें तो पागलों की तरह हुक्म देने की आदत पड़ गई है, लेकिन तुम्हारा हुक्म मानता कौन है?
1: तुम सबके सामने मेरे हुक्म का अनादर करती हो।
4: सबके सामने तुम खुद ही अपनी आबरू की धज्जियां उड़ा रहे हो, तो मैं क्या करूं?
1: तुम पागल हो, हमें तो बस सबको दिखाना है।
4: मैं कोई लोगों के सामने दिखाने के लिए भैंस नहीं हूँ।
1: तुम नहीं, तुम्हारी अकल भैंस जैसी है, इसमें तुम्हें दिखाने की क्या बात है?
4: चिल्लाओ मत, चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारे माथे पर बल पड़ गए हैं।
1: वो तो तुमसे शादी होते ही पड़ गए थे।
4: 100 की सीधी बात एक है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगी, समझे?
1: अरे तू तो क्या तेरा बाप भी बोलेगा।
4: खबरदार जो मेरे बाप को बीच में लाए।
1: बीच में नहीं, पीछे पीछे घुमा करता था अपना खोटा सिक्का चलाने के लिए, कहीं चला नहीं तो मेरे गले में बांध दिया।
4: तुम क्या अंधे थे?
1: अंधा नहीं, उदार था। उदार?
4: उदार नहीं, उधार थे, उधार। मेरे आने के बाद ही घर में दो वक्त का खाना पकने लगा, भूल गए क्या?
3: चाची जी प्लीज।
4: नहीं नहीं, पुरुषों से हम प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग हमसे जो चाहे कहलवा लो।
1: पागल है, कुछ समझती ही नहीं।
4: जबान संभाल कर बात करो, नहीं तो सबके सामने बेइज्जती कर दूंगी।
2: चाची जी आप जरा शांत हो जाइए।
4: अंदर चलो, मुझे इनकी शक्ल नहीं देखी जाती।
1: सुनो सुनो सुनो रामा, देखो देखो, एक बात याद रखना रामा, एक बात याद रखना।
3: लीना
2: क्या है?
3: तुम्हारे कारण ही घर में आग लगी है ये?
2: मैंने तो केवल लकड़ी लाई थी, आग तो तुम ही ने सुलगाई।
5: अरे ये सब कहाँ चले गए भाई?
2: अंदर है।
5: क्यों?
3: हम जैसा ही हाल है।
5: हैं? क्या बात करते हो, क्या हम जैसे ही ठन गई है?
3: हाँ।
5: वाह मजा आ गया।
2: आपको इसमें क्या मजा आया?
5: अरे भाई कौन कितने पानी में है ये पता चल गया ना?
2: मौसा जी सचमुच जोकर है।
3: तुम्हारे मौसा जी हैं?
2: मुझे मौसा जी कतई पसंद नहीं।
3: पसंद? ओ गॉड, मुझे आज एक फोन करना था।

0: शांति मोटर्स, आई एम वीरेंद्र मेहता स्पीकिंग। अरे भाई मेरी कार का क्या हुआ? हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और कार्ड तो मैं आपको पिछले हफ्ते ही दे गया था, देखिए। हाँ हाँ वाइट, ऑफ वाइट कलर। लीना ने आपसे कहा था ना कल, यानी कि कल डिलीवरी मिलेगी लीना। हा? अपनी कार की डिलीवरी मिलने वाली है कल।
1: रियली? ऑफ वाइट कलर की है ना?
0: एक मिनट, हेलो, ऑफ वाइट कलर ही मिलेगा ना? हाँ
1: हाँ हाउ नाइस।
0: अच्छा अच्छा, कल कब आऊं? लीना 4 बजे तुम फ्री हो ना?
1: हो यस आई एम फ्री।
0: हाँ हेलो, हम लोग 4 बजे आते हैं, सब तैयार रखिएगा। ओके ओके लीना, एट लास्ट वी गॉट इट,
1: थैंक गॉड। चलो पूरे दिन में एक तो अच्छी खबर मिली। इस मैं तुम्हें चाहती हूँ मामले में तो पूरा दिन बर्बाद हुआ था।
0: अरे कह दिया कह दिया।
1: क्या
0: आखिर लीना ने कह ही दिया कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
1: आई लव यू वीरेन, आई लव यू।
0: अरे मौसा जी, हमारा मामला तो निपट गया।
2: देखो देखो, इन लोगों का निपट गया।
1: मूर्ख लीना। अरे मौसी, तुम तो उम्र में मुझसे बड़ी हो, उल्टा तुमने मुझे शाबाशी देनी चाहिए, उसके बदले तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो।
0: चलो मौसी, तुम भी कह डालो।
1: कह दो ना, चाचा चाची को भी अच्छा लगेगा।
3: मुझे किसी को अच्छा बच्चा लगवाने की जरूरत नहीं है, और चाची जी तो मेरे ही पक्ष में है,
4: वो तो मैं हूँ ही। इनकी समस्या भी सुलझ गई।
3: अरे इस पगली ने कह दिया मैं तुम्हें चाहती हूँ।
2: चाची जी, चाचा जी, जल्दी है।

0: गया, मैं तुम्हें चाहती हूँ।
1: चलो सोफे से नीचे उतरो। लगता है तुम सब पागल हो गए हो। मैंने इस मतलब से नहीं कहा था कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
0: डियर डियर, एक बार नहीं, दो दो बार, दो दो बार।
2: क्या हुआ मनोहर, क्या बात है?
0: चाचाजी, दो बार मैं जीत गया।
3: और मैं भी दो बार जीत गया।
0: चाची चाची, हमारा निपट गया।

0: मैं भी दो बार जीत गया।
1: चाची चाची हमारा निपट गया। अब तो जीत छोड़ दो, एक बार मेरे चाचा जी की ओर तो देखो, बेचारे कितने नर्वस हो गए।
2: जाओ जाओ रहने दो, तुम दोनों ने तो अपने मन से ही लगा लिया था, जीत की झूठी डींगे हाँक रहे थे। इन दोनों ने तो जनरल बात कही थी, तुम दोनों के लिए नहीं कहा था।
3: अरे जनरल तो जनरल ही सही, रमा तुम भी एक बार कह ही डालो।
2: तुम्हारे इन मूर्खता भरी बातों में मैं आने वाली नहीं, मैं इतनी नादान नहीं हूँ।
3: नादान नहीं, तुम तो अकल की दुश्मन हो, हर तरह से समझाया लेकिन समझती ही नहीं। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं कह देता हूँ, किसी भी अर्थ में कह दो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, नहीं तो आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म समझो।
4: चाचा जी,
3: मर गया चाचा।
4: अरे ये क्या कह रहे हैं?
3: सारी दुनिया मेरी इज्जत मेरा सम्मान करती है, और ये दो कौड़ी की औरत इन बच्चों के सामने मुझे जलील करना चाहती है।
2: तुम कुछ भी कह लो, मैं टस से मस होने वाली नहीं।
4: क्या हो गया, क्या हो गया इनको, क्या हो गया, क्या हो गया? देखो तो मनोहर, देखो तो
2: क्या हो गया।
3: मनोहर
2: जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, फोन करो, जल्दी करो।
3: डॉक्टर रहने दो,
2: क्या हो गया?
3: एक बार, सिर्फ एक बार, एक बार मेरे लिए कह दो।
2: क्या कह रहे?
3: रमा सिर्फ एक बार मेरे लिए कह दो।
2: देखो मेरी तरफ देखो, आंखें खोलो। मुझसे भूल हो गई,
3: एक बार कह दो।
2: मुझसे भूल हो गई, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ।
3: खाओ मेरी कसम
2: तुम्हारी। अच्छा, इसका मतलब तुमने
3: नाटक किया था।
4: चाचा जी आप भी।
3: बच्चों, इस नाटक से तुम ये सबक ले लो कि औरतों का मन जीतने के लिए नाटक करना आना चाहिए।
5: जलेबी और बूंदी के लड्डू कहाँ रखूं?
4: अरे यार,
1: अरे भाई, ये मिठाई वाला है, जरा शौकीन मिजाज वाला है, वे खोल दो ये पैकेट और सबको जलेबी लड्डू बांटकर पार्टी बना लो।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक आई लव यू का दूसरा और अंतिम भाग। इस नाटक के मूल लेखक थे प्रवीण सोलंकी। हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया था सुनंदा नाइक ने। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है।
1: चाचा जी को क्यों पुकार रही हो? रोना ही है तो मन में रो। देखो मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। ये लो रुमाल से आंसू पोछ डालो। अच्छा मैं ही पोछ लेता। आइए आइए चाचा जी।
0: मनोहर अजय कश्मीरी।
2: चलो सोफे से नीचे उतरो। लगता है तुम सब पागल हो गए हो। मैंने इस मतलब से नहीं कहा था कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
1: डियर एक बार नहीं।
0: रेखा कामिनी कौशल।
3: मैंने तो केवल लकड़ियां लाई थी, आग तो तुम ही ने सुलगाई।
1: अरे ये सब कहाँ चले गए भाई?
3: अंदर है।
1: क्यों?
0: लीना भारती कानड़े।
4: शांति मोटर्स, आई एम वीरेंद्र मेहता स्पीकिंग। अरे भाई मेरी कार का क्या हुआ? हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और कार्ड तो मैं आपको पिछले हफ्ते ही दे गया था। देखिए, हाँ हाँ वाइट, ऑफ वाइट कलर। लीना ने आपसे कहा था ना?
0: वीरेंद्र भूपेंद्र सिंह।
5: नादान नहीं, तुम तो अकल की दुश्मन हो। हर तरह से समझाया लेकिन समझती ही नहीं। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं कह देता हूँ, किसी भी अर्थ में कह दो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। नहीं तो आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म समझो।
0: जगमोहन राजदीप।
6: जाओ जाओ रहने दो, तुम दोनों ने तो अपने मन से ही लगा लिया था। जीत की झूठी डींगे हाँक रहे थे। इन दोनों ने तो जनरल बात कही थी, तुम दोनों के लिए नहीं कहा था।
5: अरे
0: रमा लक्ष्मी शर्मा।
7: आना चाहिए।
0: और लेखक की भूमिका में थे प्रमोद दुबे। निर्माण सहयोग मेधा पिल्लई का था और इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थी तनुजा कानडे। ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: कुछ दिल ने कहा,
1: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
2: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
1: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
2: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
3: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
1: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
2: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
1: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
2: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
1: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
3: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के,
1: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
3: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
1: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका तीसरा भाग।
1: मेरे सामने एक सवाल था, मैं जिस मूवमेंट से आया हूं, जिसकी आवाज मुझे बनना है, उसकी बर्निंग समस्या जो है, आज की जो समस्या है, ज्वलंत समस्या है, उसको मुझे उठाना है। और ये मैंने जो देखा है, बचपन से भी देखा है, रिसर्च भी किया है, मॉडर्न थिएटर और नेशनल इंटरनेशनल थिएटर का एजुकेशन भी लिया है, अब ये सब अगर वो मुझे मेरी कहानी कहने के लिए उपयोग में आता है तो मैं इसके शरण जाऊंगा। अगर नहीं आता है तो आई विल रिजेक्ट एंटायर माई ट्रेनिंग एंड फाइंड आउट समथिंग एल्स। तो मुझे किसी भी फॉर्म को इमिटेट, अनुकरण नहीं करना है, किसी भी फॉर्म से ये लेके, वहां से ये लेके, वो लेके कुछ गुलदस्ता बनाना है या खिचड़ी बनानी है। सबका आदर करते हुए मैंने ये तय किया कि मुझे मेरी कहानी के लिए नई तरीके की रंग भाषा खोजने की सोचनी पड़ेगी।
2: गजब।
1: कोई ये ना कहे कि मूवमेंट वहां से लिया, कोई यह न कहे कि कॉस्ट्यूम वहां से लिया, कोई ये न कहे कि म्यूजिक यहां से उठाया, लाइटिंग वहां से उठाई, ये कुछ मेरे नाटकों पे आक्षेप नहीं आना चाहिए। इसलिए पहला मैंने टेस्टिंग ग्राउंड जो तैयार

0: किया वो था झुलवा
1: जी, जो आप वहां से लौट के आते हैं।
0: जब मैं वापस से लौट के आया और 2-3 साल यहाँ का व्यावसायिक नाटक सीखा मैंने, वो भी रह गया था मेरा सीखना
1: जी,
0: कि व्यावसायिक नाटक कैसे होता है, टूर कैसे होते हैं, हर शो ऑडियंस के साथ कैसे बदलता है। उसके लिए मैंने रिप्लेसमेंट एक्टर के हैसियत से काम किया 200-250, जिसमें लक्ष्मीकांत बेरडे से लेके वर्षा उसगांवकर से लेके सारे एक्टर थे।
1: ये एनएसजी से लौटने के बाद,
0: लौटने के बाद मैंने 3 साल के बाद नाटक किया।
1: अच्छा।
0: मुंबई में आने के बाद तो पहला जो झुलवा मैंने किया वो मेरा टेस्टिंग ग्राउंड था, वो बर्निंग इशू है
1: जी बिल्कुल।
0: महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे जो कम्युनिटी है, क्या कहते हैं, जोगते जोगतीनी कम्युनिटी है, वहां पर जो लोग मन्नत मांगते हैं यिल्लम्मा गॉडेस से कि मेरा ये होने दो, पहली जो बेटी होगी मैं तुझे दान कर दूंगी, और उससे जो कम्युनिटी तैयार हो गई है वो है देवदासी। देवदासी का ही एक अलग रूप है, टेम्पल की देवदासी अलग है, ये ग्राम की सर्विस सेंटर है वो। मतलब देवदासी जो जोगतीन है उसके पास कोई भी पुरुष अगर उसके दरवाजे पे दस्तक दे तो वो किसी भी पुरुष की सेवा करना उसका काम है, वो मना नहीं कर सकती। उसकी उम्र क्या है, उसका घुलिया क्या है, उसका पलाना, वो कुछ नहीं, सी हैज टू बी देयर फॉर डिलीवरिंग द सर्विस। तो ये इशू को लेके मैंने नाटक करने की ठान ली। ये उपन्यास था उत्तम बंडू तुपे, एक सिपाही के हैसियत से आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में पुणे के ऑफिस में काम करते थे, उन्होंने ये लिखा था उपन्यास, और इस उपन्यास पे मैंने काम करने की बात ठान ली। और पहला ही नाटक जो संगीत नाटक अकादमी के किसी एक स्कीम के लिए, असिस्टेंस टू यंग थिएटर डायरेक्टर्स के लिए मैंने किया, और उसका ओपनिंग शो भारत भवन भोपाल में हुआ।
1: वाह वाह।
0: 10 अक्टूबर 1987।
1: गजब।
0: इसलिए भारत भवन का मेरा रिश्ता अलग है
1: जी जी।
0: तो वहां पर ये पहला शो हो गया, और वहां पर कारण जी से लेके अशोक वाजपेयी से लेके ऑल हुज हु ऑफ इंडियन थिएटर वो नाटक देखने के लिए थे, और वो पहला ही शो हमारी पहली रन थ्रू थी।
1: ओहो।
0: पर वो जो गजब का शो हुआ है, उसके बाद हमने 450-450 जितने भी शो किए होंगे उससे बेहतर शो नहीं कर पाए।
1: सयाजी शिंदे थे,
0: सयाजी शिंदे, सुकन्या कुलकर्णी, आदिति देशपांडे, गौरी केंद्रे, आशा शेल, अरे सारे लोग थे।
1: वाह।
0: भारत तांडेल, तो ये सारा 42 एक्टर स्टेज पे थे, फिर बैक स्टेज में 7-8-10 और थे। तो ये मुझे लगा कि वो पहली बार ऐसा सिद्ध हुआ कि नहीं यार ये कहीं से कुछ नहीं लिया है, उनका कोई ना आपका म्यूजिक है ना डांस है, जो जैसा उसका अंग चलन होगा वैसा वो नाचता है। तो फिर सयाजी को जैसा अंग चलन था सयाजी नाचता था, सुकन्या का जैसा था वो वैसा नाचती, तो कुल मिलाकर एक नया एक्सपेरिमेंट हो गया कि एक बर्निंग ज्वलन समस्या है आज महाराष्ट्र और कर्नाटक के सामने। हर साल कितना भी कानून किया जाए तभी 2-2.5 हजार बेटियां भगवान को चढ़ाई जाती, समर्पित की जाती है, और फिर उनका भविष्य किसी को नहीं मालूम। तो वो नाटक का पहले शो से लेके निरंतर हर शो में पूरा हंगामा जहां हुआ हुआ। नामदेव ढसाड़ जो मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, वो पहली बार जब देखने आए उन्होंने देखा, नारायण सुर्वे देखा, पुल देशपांडे, जितने भी महाराष्ट्र में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है जिसने वो नाटक नहीं देखा
1: जी।
0: या इवन देश में भी हर जगह वो चला गया। तो नामदेव ढसाड़ ने मुझे फोन किया कि मुझे तेरा नाटक देखना है, मैंने बहुत सुना है उसके बारे में, आइए। तो मुझे लगता है रविंद्र नाट्य मंदिर में आए थे वो। वो जब देखा उन्होंने तो वो खुद रोते हुए अंदर आ गए बैक स्टेज में
1: जी,
0: और उन्होंने गले लगाया और बोला कि तूने तो मेरी ही कहानी यहां मेरे सामने रखी है, एंड ही वाज इन टीयर्स
1: जी।
0: उन्होंने उसके बाद भी 14 शो देखे, हर बार वो उसी माइंड सेट में आते थे। उन्होंने उसमें से कुछ शो इंटरनेशनल कोई साहित्य का करते थे उसमें लगाया, माधव गडकरी और दया पवार, और इन्होंने एक जागतिक मराठी परिषद हुई उसमें वो जानबूझ के शो रुका हुआ था तो करवाया। तो ये था कि उन्होंने एक वाक्य जो कहा तो मुझे बहुत पसंद आया, जो बहुत फेमस भी है, नामदेव जी ने जो कहा कि हम दलित पैंथर लगभग 35-40 साल होने को आए थे जो भी, कि जो इतना नहीं कर पाए ये नाटक उससे 2 कदम आगे चला गया।
1: वाह क्या बात है, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: पु ल देशपांडे ने भी कहा था कि जब वो मेरे बॉस थे एनसीपीए में, मैं जब एनसीपीए नौकरी कर रहा था तो तब मैंने वो नाटक किया था, तो उन्होंने देखा और उस समय तो मिलने नहीं आए, यूजली बैक स्टेज में मिलने आते हैं लोग नाटक खत्म होने के बाद, वो आए नहीं। पर दूसरे दिन जैसे मैं ऑफिस गया तो सुबह इतने लोग मुझे बोल रहे थे, साहब आपका इंतजार कर रहे, इंतजार कर रहे। मैं गया, मुझे लगा कि क्या बोलेंगे, और आते ही उठ के खड़े हो गए बॉस पु ल देशपांडे, क्या कहते हमारे सबके आदर्श
1: जी,
0: और गले लगाया और बोले, रात भर नहीं सोया हूं, ना मैं सोया हूं ना उनकी पत्नी मिसेस देशपांडे, वो नहीं सोई, बोले हम रात भर तुम्हारी नाटक के बारे में बातें कर रहे हैं।
1: क्या बात है,
0: सोने ही नहीं दे रहा है तुम्हारा नाटक। तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक वाक्य कहा कि आज नहीं तुम्हें पता होगा कि तुमने क्या किया है, पता चलेगा कि तुमने एक भारतीय रंगमंच पे एक नई रंग भाषा का नया आइकॉनिक एग्जाम्पल पेश किया है। तो ये सारा का सारा कहने का तात्पर्य इतना था कि जो मेरा चिंतन था या मेरी सोच थी कि मुझे कोई भी फॉर्म से कुछ भी उधार नहीं लेना है,
1: अपनी धारा बनानी,
0: मेरी धारा बनानी है, और वो देखने के बाद, समझने के बाद, उस अनुभूति को पचाने के बाद लोगों को ये लगना चाहिए ये भारतीय है।
1: जी,
0: जो मेरी खोज थी टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर, वो मेरे हर नाटक में वो भारतीय तो लगता है पर कहीं भी उसके रूट्स नहीं मिलते, और कुल मिला के लगता है ये तो भारतीय है सब। आई थिंक ये चाहे वो गजब तेरी आधा या गजब तीचे आधा देखने के बाद की विमेन अगेंस्ट वॉर वो नाटक था।
1: जी जी,
0: अब मैं ये सोच रहा था कि मुझे ये औरतों ने युद्धखोर जो पुरुष है उनके विचार के खिलाफ किया हुआ विद्रोह है, एक निषेध है, तो उनके लिए मैं औरत को किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिप्रेजेंट करूं। मैं 2.5 साल खोज रहा था कि फेमिनिटी किस इंस्ट्रूमेंट से मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा या ऑडियंस कर पाएगी। सारे इंस्ट्रूमेंट खंगाल

0: के देखे पूरे देश के, एक भी औरत को रिप्रेजेंट नहीं करता। हारमोनियम पुरुष, तबला पुरुष, ढोलकी पुरुष, ढोल पुरुष, जितना भी है।
1: फिर
0: घुंघरू एक है, पर घुंघरू औरत ने खुद नहीं पहने हैं, वो भी पुरुष ने अपने जाने के लिए उसके पैर में बांधे हुए है। तो मैंने कहा ये भी तो नहीं हो रहा है,
1: जी
0: फिर क्या होगा? तो मेरी पत्नी गौरी केंद्रे घर में किचन में ये कोई उनका छोटा सा एक भगवान के दो तीन ये रखे हैं, उन्होंने अपना आरती कर रही थी, तो छोटी जो घंटी है हाथ में लेके टिंग टिंग टिंग कुछ सुनाई दिया, और वो क्लिक हो गया, यार जिसकी मैं खोज कर रहा था
1: वो
0: शायद यही है।
1: वाह।
0: और वहां से पता चला कि जो हमारी वाग्या मुरली की परंपरा है उसके हाथ में भी घंटी दे देते हैं।
1: हाँ।
0: तो फिर उस घंटी को मंगाया हमने 10-12 घंटियां, फिर बजाने वाले को बुलाया, सुर वाले को बजाया, और अलग अलग तालों में सिर्फ 12 लड़कियों के हाथ में वो घंटियां देके हमने दिन भर बजवाया, और हमें लगा कि इससे हमारा नाटक हो जाएगा।
1: क्या बात है,
0: वो पूरा का पूरा नाटक उस घंटियों से बंधा हुआ है। वो जो औरतें हैं जो अपनी कहानी बता रही है, उनके प्रोटेस्ट की कहानी बता रही है, युद्ध जो आज की तारीख में तो बहुत रेलेवेंट है वो नाटक, उसकी कहानी बता रही है, और वो कहानी बता रही है वो उसका जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो बेल है।
1: वाह वाह।
0: वो श्रृंगार का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, वो गुस्से का भी होता है, वो विद्रोह भी करती है वो बेल, और सबके हाथ में बेल है, और उसमें 12 ही औरतें रही, 12 पुरुष 12 औरतें, 25 लोग ऑन स्टेज है। तो फॉर्म इवॉल्व करने की मैं जो बोल रहा था आपको कि रंग भाषा को ढूंढने का जो स्वभाव मेरा बन गया, फिर वो हर नाटक में रिफ्लेक्ट हो गया। रणांगण किया उसमें अलग तरीके से हो गया, 4 दिवस प्रेमाचे किया उसको अलग तरीके से हुआ, झुलवा में अलग था, जाने मन जो पूरा इतना फेमस नाटक जो किन्नरों के जीवन पे आधारित था, जो NSD रेपेटी ने, उसने तो पूरा देश में हंगामा कर दिया, उसके लिए उसका फॉर्म अपना अलग है। मेरे एक नाटक का फॉर्म दूसरे नाटक के लिए बेकार है।
1: अच्छा मुझे एक बात बताइए, झुलवा ने जिस तरह का हंगामा किया था, क्या आपके लिए अगला नाटक करने से पहले इतनी बड़ी लकीर नहीं खींच गई थी जो आपको रोक
0: रही थी? ज्यादा था। मैं कुछ लोगों के नाम बता देता हूं, जैसे दुबे जी ने कहा था, सत्यदेव दुबे जी, पंडित सत्यदेव दुबे जी ने मुझे नहीं कहा था, उनके जो शागिर्द है उनसे कहा था कि झुलवा देखने के बाद बोले इस लड़के ने झुलवा तो बहुत अच्छा किया, पर इसको जो डायरेक्शन की जितनी भी व्याकरण आता था, जादू आती थी, डिवाइस ऐसे थे, सब इसने दांव पे लगा दिए, अब आगे क्या करेगा ये, आगे कुछ नहीं कर पाएगा ये। तो मैंने जैसे सुना, बहुत सीरियसली लेता हूं ऐसे क्रिटिसिज्म को, क्योंकि बहुत पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है वो, तो मैंने ये कसम खाई थी कि फिर ऐसा दोबारा नाटक नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा। और फिर एक साल के बाद एक झुंझवारिया से नाटक किया मैंने, जो डेड सीरियस और रियलिस्टिक नाटक था, जो पुल देशपांडे जी ने ही उसका रशियन नाटक का एडाप्टेशन करके मुझे दिया, और वो देखने के बाद लोगों को लगा ये और कुछ है यार। फिर 2-4-5-10 नाटक होने के बाद सत्यदेव दुबे ही बोले नहीं यार, उस डायरेक्टर को ताड़ना संभव नहीं है, उसके पोटली में बहुत ज्यादा जादू है।
1: वाह वाह वाह वाह, सुंदर बात है। इतनी जादुई बात है, यहाँ एक गाना सुनते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं।

0: वामन केंद्र जी, बहुत ही दिलचस्प बातें आपकी इस पूरी यात्रा की हो रही हैं। मैं केरल प्रवास पर वापस लौटना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बिंदु वहां पर छूट गए। 2 बरस आपने वहां बिताए
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: भाषाई समस्या जरूर आई होगी, उससे आप कैसे निपटे?
1: मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या तो भाषा की थी
0: जी,
1: क्योंकि जिन लोगों के साथ हमें काम करना था
0: जी
1: वो देहाती लोग थे वहां के।
0: जी जी बिल्कुल।
1: खासकर तैयम, मुड़िए टू और पड़ेनी, मतलब जैसे शहर में जाते थे, त्रिचूर में गए तो वहां अंग्रेजी तो समझने वाले लोग थे, तो हिंदी थोड़ी बहुत समझ लेते थे, लेकिन ये गांव में ठेठ जाके जो काम करना था वो तो सारे मलयालम स्टैंडर्ड, जो मलयालम है, प्रमाण मलयालम है, वो भी नहीं बोल पाते थे। उनकी अपनी एक बोली, डायलेक्ट होती थी मलयालम की। तो इनसे कैसे निपटाया जाए? पहले 4 महीना तो हर दिन तकलीफ होती थी, मैं और मेरा एक मित्र था, मेरा क्लासमेट हॉरेन भट्टाचार्य, क्योंकि वो इतनी दिन भर मलयालम या साउथ इंडियन भाषा सुनने की आदत नहीं थी
0: जी।
1: मुझे भाषा तो भाषा होती है, उसका अनादर करने की कोई बात नहीं है, पर आपके कानों को वो भाषा सुनने की आदत ना हो और दिन भर केवल मलयालम मलयालम मलयालम, और वो भी आपको पकड़ में नहीं आ रही है, तो
0: जी,
1: ऐसा
0: जी।
1: लगता हर दिन शाम को सर में दर्द होने लगता था, वो फोनेटिकल एक्सपीरियंस कानों को ना होने की वजह से। तो वाकई हम उसकी तकलीफ झेल रहे थे कि क्या किया जाए। तो फिर थोड़ा थोड़ा कभी चाय वाले के पास, कभी हमारे जो साथ में काम करती थी, जो हमारी दुभाषी जो थी, वो महिला से हम एक एक एक एक एक, एक शब्द, या हमारे साथ काम करने वाले दूसरे भी 2-3 वहां के जो स्कॉलर्स थे उनके साथ बैठ के, तुम्हारा नाम क्या है, फलाना क्या है, जो डे टू डे की लगने वाली भी 10-20 लाइनें रट लिए, याद कर लिए। और इसी तरीके से फिर वो जो कलाकारों की, और खासकर जिनका मैंने थोड़ी देर पहले वर्णन किया, वो कलाकारों के साथ काम करते समय जो गीता नाम की हमारी एक दुभाषी थी, वो हमारे साथ रहती थी, वो 2 रोल करती थी, वो रिसर्चर भी थी और हमारे लिए भाषांतर करने वाली भी रिसोर्स थी। उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, उसकी भी अंग्रेजी और हम सबकी अंग्रेजी उतनी कमांडेबल अंग्रेजी तो थी नहीं, पर जितना टूटा फूटा होता था वो होता था। तो जैसे तैसे वो कलाकारों से थोड़ी थोड़ी, एक एक, दो दो, हर बार 4-4, 5-5, 10-10 सेंटेंस। तो हमने ये तय किया था कि एवरीडे 10 वर्ड्स नया सीखना है फोनेटिकली, मतलब उच्चारण के तौर पर। और ऐसे करते करते इतना सा एक 100-200 शब्दों का संचय हुआ जिसमें से हम अपना काम निकालते थे उन कलाकारों से। पर ऐसा होता था कि चलो ये बात तो हो रही, उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहे, शूट हो रहा है या पिक्चर निकाल रहे हम उनके, पर लिपि समझ में नहीं आती थी। तो हमारी जर्नी जो होती थी उसमें कौन सी गाड़ी किधर जा रही है, कौन से दुकान का क्या नाम है, वो नहीं होता था, समझ में नहीं आता था। तो एक दिन हम कहीं कैननोर में, गांव में, कैननोर जिला है उसके, गांव में तैयम देखने गए थे। और शाम को हम खाना वाना खा के, जो हमारी दुभाषी लड़की थी उन्हीं के घर में, उन्होंने हमको बहुत अच्छा मलयालम व्यंजनों का खाना खिलाया, और हम चल पड़े बस पकड़ने के लिए। हमको जाना था कैननोर, हम कैननोर में होटल में रुके थे। तो चलते चलते आप आके वो छोड़ के चली गए सब उनके घर वाले, और एक होटल वहां, एक

0: छोटा सा झोपड़ी टाइप होटल था, तो उसको हमने मलयालम में, टूटी फूटी मलयालम में कहा कि भाई जो कैनोनोर में आने वाली बस है, जाने वाली यहां से, वो आते ही हमको इन्फॉर्म कीजिए। तो उसने हाँ ऐसे कह दिया और वो अपना काम में लग गया। एक बस आ गई, दूसरी चली गई, कोई इधर से आई, कोई उधर से आई, और एक बस आई और वो चली गई। तो ये सब पतेले बर्तन समेटने लगा। तो हमने कहा कि तुम क्यों समेट रहे हो, हमारी बस कहाँ है, कैनोनोर जाने वाली बस कहाँ है? तो उसने कहा वो पोई,
1: मतलब गई
0: गई वो चली गई अभी। अब वो लगभग एक फरलांग दूर चली गई थी, तो हम भाग के भी उसका पीछा नहीं कर पा रहे थे। तो बड़े हम निराश हो गए, डिप्रेस होने की स्थिति आ गई कि ये क्या है यार। मैं इसको समझाया तो शायद वो समझ नहीं पाया होगा ढंग से। तो अब क्या किया जाए, कहाँ रुके? रात को 9:30 बज गए और गांव में, देहात में 9-9:30 बजे तो मध्य रात से ज्यादा हो जाता है। अब जाए तो कहाँ गए? तो मैं और हॉरेन, हमारे पास कैमरे होते थे, दो दो टेप रिकॉर्डर होते थे, पर वहां ऐसा कुछ डर नहीं था। केरल में लोग बहुत साफ सुथरे और अच्छे थे। अब धीरे धीरे हमने कहा अब कहाँ, यहाँ तो रुक नहीं पाएंगे रात भर। तो चलो जहां जिस घर में हमको खाना खिलाया है और हमारी जो दुभाषी रहती है उसी के घर वापस जाते। वो 3.5 किलोमीटर दूर था वहां से, और वो भी भात की खेती से, पैडी फील्ड से ढूंढते ढूंढते, ज्योग्राफी ढूंढते वहां तक जैसे तैसे पहुंच गए। तब 11:30 बज रहे थे।
1: और चावल के खेत तो गीले,
0: चावल के खेत तो गीले होते हैं, बहुत खुशबूदार होते हैं। जब उसकी फूल गंध ये सब अनुभव करते जा रहे थे,
1: वाह।
0: तो वहां चले गए तो हमारे कपड़ों को भी उसकी गंध आ रही थी, क्योंकि उसके बीच में से जैसे लगते हैं ना फ्लावर्स।
1: जी जी।
0: तो वहां पहुंचे और नॉक करते समय 10 बार सोचा यार ये लोग क्या समझेंगे,
1: क्योंकि उनकी आधी रात हो,
0: वो तो हम निकलते ही सो गए होंगे।
1: जी।
0: नॉक किया और सौभाग्य से वो जो हमारी दुभाषी लड़की थी वही बाहर आ गई, गीता नाम था उसका। तो गीता को बोला सॉरी गीता यार ऐसा ऐसा हो गया, दिस इज व्हाट हैपेंड विद अस एंड नाउ वी डोंट हैव। तो ये लास्ट बस वाली हमने उसको बोला, और जो जाने के बाद उसने कहा बस पोई,
1: बस पोई। हाँ।
0: तो बोली अब क्या करोगे? तो हमने कहा कि आप घर वालों को डिस्टर्ब मत करो यार, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, ये तो हमको देखना पड़ेगा। तो हमने कहा ये वरांडा है, इसमें हम रुकेंगे। तो उसने बोला नहीं नहीं मैं आपके लिए चाय बनाऊं, कॉफी बनाऊं। मैंने कहा कुछ मत बनाओ। तो मैंने कहा एक ही अगर आपको मदद करनी है हमको, तो ये काम करो, एक घंटा आपकी जिंदगी का दे दो और एक नई किताब दे दो, कोई नोटबुक दे दो। वो आई और मैंने कहा इस नोटबुक पे जितने मलयालम भाषा में अल्फाबेट्स है, स्वर है, व्यंजन है, उसके आकार उकार इकार सारे है, वो लिख लो। तो उसने वो सब लिख लिए और मैंने कहा इसमें अंग्रेजी में भी लिखो, इसका मतलब क्या है। तो जब वो बोल रही थी तो मैं अंग्रेजी में भी लिख रहा था और बीच बीच में मराठी में भी लिख रहा था उसको, ताकि ये मुझे याद हो जाए। और जैसे हो गया तो मैंने 1.25 घंटा लगा उसको ये सब करने के लिए। मैंने कहा आप जाके सो जाओ आप। सो हरेन भट्टाचार्य जो मेरा दोस्त था एनएसडी वाला, तो वो भी थोड़ा सा झपकी लेने लगा। मुझे गुस्सा आया, वो बस चली गई क्यों? कि हमें लिपि नहीं आती। क्योंकि केरल में जितने भी बसेस दुकानों की बोर्ड्स होते थे वो सब असल मलयालम लिपि में होते थे। तो फिर वो रात भर में लिखता रहा, ओ क्या है, ब क्या है, क क्या है, ड क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लिखता रहा और पूरी किताब खत्म हो गई, वो नोटबुक खत्म हो गई।
1: अरे बाप रे।
0: हाँ, तब 4:30-5 बजने वाले थे। तो अब आइडिया आया कि सब तो सारा सब बालू ही है, यहाँ सैंड है। तो एक डंडा ले लिया और उसमें से लिखना शुरू कर दिया,
1: रेत के ऊपर।
0: रेत के ऊपर पहला नाम लिखा वामन, मुझे याद है अभी भी।
1: वाह वाह।
0: हाँ, और फिर सुबह उठते ही उसको हमने ये लिखना शुरू कर दिया। और कम से कम अब मेरी बस नहीं छूटेगी इतना तो मैंने अनुमान किया। एक रात में 56 अल्फाबेट्स याद कर लिए, लिख लिख के याद कर लिए, वो भी गुस्से में कि बस गई ना। इसका बहुत अहंकार को भी ठेस पहुंची। और हम ऐसा कैसा, ये दूसरे शहर में आए हैं, दूसरे प्रांत में आए हैं, हमको पहले तो लिपि सीखना चाहिए था, भाषा सीखनी चाहिए। तो भाषा तो हमने बोलचाल की तो सीख ली थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी, पर लिपि सीखना रह गया। सो एक रात में लिखा, फिर आगे प्रैक्टिस क्या करता रहा, जो भी बोर्ड आएगा उसको पढ़ना, ट्रेन में जाए, बस में जाए, जो बोर्ड आते थे वो पढ़ते जाता था। और फिर जब कैनोनोर पहुंचा, वहां से त्रिचूर पहुंचा, तो पूरी दूसरी एक कॉपी ले ली और वो सब लिखता गया।
1: अच्छा।
0: अंत में इतना हमने पढ़ना शुरू कर दिया कि मलयालम मनोरमा जो डेली न्यूज़पेपर आता था उसको भी हमने खरीदना शुरू कर दिया, ताकि

0: वो जो दिमाग में बैठा है थोड़ा बहुत वो वापस इरेज ना हो जाए।
1: वाह वाह,
0: तो ऐसे करके उस लिपि को एक रात में सीखा और फिर इसके बाद हमारी कोई बस पोई नहीं, साथ
1: क्या
0: रही।
1: सुंदर बात
0: और
1: है।
0: ये ऐसा अब मुझे लगता है कि जब आप आपके प्रांत के बाहर जाते हो, आपके कंफर्टेबल जोन से बाहर जाते हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो मैंने कहा ना कि डिटर्मिनेशन अगर आपका होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
1: लेकिन ये आपके भीतर जो डिटरमिनेशन है, लोगों के भीतर चिंगारी होती है, आपके भीतर आ गए।
0: हाँ, मतलब वो पहले से ही है, क्योंकि नहीं होती तो फिर जिस गांव से मैं निकला हूं और जो आपके सामने बैठा हूं, ये जर्नी शायद कहीं आधे अधूरे में ही छूट जाती।
1: जी बिल्कुल,
0: यहां तक आना, और अभी भी वो चिंगारी बुझी नहीं है, वो आग बुझी नहीं है, अभी भी कुछ बहुत कुछ ऐसा लगता है कि अभी तो एक चौराहा पार कर लिया है यार, अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है और बहुत कुछ मीनिंगफुल करना बाकी है,
1: जी
0: उसकी तलाश में है तो ढूंढ रहे हैं,
1: जी
0: यही बात है वो।
1: यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: गया।
1: आपके नाटकों की बातें चल रही थी, वो बात अभी थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ और मैं उस चैप्टर की तरफ जा रहा हूँ जीवन के, जो बहुत सुनहरा और जज्बाती है, जहाँ आप नाटकों का प्रशिक्षण करने जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि कोई बुजुर्ग आएगा और वहाँ आता एक नवयुवक है जिसकी एक नवयुवती से मुलाकात होती है।
2: ओ, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं मैं समझ गया हूँ। तो मैं यहाँ जब आया, मुंबई वापस आ गया, मेरा सारा रिसर्च का प्रोडक्शन भी किया, रिसर्च भी किया, एग्जीबिशन लगा उसके ऊपर, मेरे रिसर्च मेथोडोलॉजी पे एग्जीबिशन लगा।

0: उसके ऊपर हमने कुछ साउंड एंड लाइट इफेक्ट से और स्लाइड शो किया
1: जी।
0: मेरे पश्चात मैं जब दिल्ली में नहीं था तो वो एग्जीबिशन एक महीना भर चालू रहा, क्योंकि मैं मेरा काम होते ही वापस मुंबई पहुंच गया
1: जी।
0: तो वो एग्जीबिशन रतन थियाम जी ने देखा, शो जो पल्स पे किया था ऑटोमेटिक डबिंग और ये करके, उस समय की जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी थी
1: जी।
0: तो उन्होंने डायरेक्टर को, एनएसडी डायरेक्टर जब जो भी रहे हो, शायद मोहन महर्षि थे, उन्होंने कहा कि ये अद्भुत एग्जीबिशन है और मैं इसको इम्फाल ले जाना चाहता हूं। और उन्होंने वो सब जब खत्म हो गया दिल्ली का, वो पैक करके पूरा इम्फाल में ले गए और इम्फाल में एक महीना वो सारे जो आर्टिफैक्ट्स थे, कॉस्ट्यूम्स थे, प्रॉपर्टी थी, जो हमने फोटोग्राफ्स लिए थे, उसके ब्लोअप थे, वो सारा एग्जीबिशन उन्होंने जाके मणिपुर में एक महीने के लिए लगाया।
1: वाह वाह,
0: ये भी उसका एक साइड इफेक्ट रहा। दूसरी एक बात है उससे संबंधित है, ये सब देखने के बाद, ये सारा जो काम देखने के बाद, हमारे जेएन कौशल साहब थे जो बहुत बड़े राइटर भी रहे हैं और जर्नलिस्ट भी रहे हैं और थिएटर हमारे एनएसडी के एल्यूमिनाई भी रहे हैं, उन्होंने ये सारा जो काम देखा मेरा, रिसर्च का देखा, फोटो देखी, ये देखी, वो देखी, एल्बम्स देखे, उन्होंने एक दिन अलका जी साहब से जिक्र किया कि मैंने ऐसा कोई एक अद्भुत काम देखा है और मैं चाहता हूं कि आप उसको देखिए। तो उन्होंने कहा मैं देखना चाहूंगा। तो अलका जी साहब ने कहा मैं तो उसके ऊपर किताब निकालना चाहूंगा, पब्लिश करना चाहूंगा, अगर ऐसा कोई अनयूजुअल काम है। तो खैर कुछ दिनों बाद अलका जी साहब का मुझे मैसेज उन्हीं के द्वारा कि भाई अलका जी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अलका जी साहब से मिलने का मतलब तो बहुत बड़ा सपना हो गया, कि मैं जब एनएसडी में गया तब तो अलका जी साहब वहां नहीं थे, वो तो इंग्लैंड चले गए थे या जहां भी और कहीं जगह जहां उनकी सिटीजनशिप है वहां गए थे। तो गया मैं, जब उन्होंने बुलाया तो उस समय वो सारे एल्बम तो एनएसडी के पास थे, वो एल्बम उन्होंने देख लिए थे और सामने रख कर बैठे थे। और जाते ही मुझे बुलाया और बोले यार क्या काम किया आपने, अद्भुत काम किया, ये क्या है, एक एक फोटो की तारीफ करते रहे और बोले मुझे इसके ऊपर किताब छापनी है। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया कि मैंने कहा यार इतनी बड़ा अपॉर्चुनिटी कि अलका जी साहब खुद उसको छापेंगे, उनकी पब्लिकेशन हाउस की तरफ से, उन्होंने उसके पहले एक ही किताब छापी थी उनकी मिसेस की थी, मिसेस अलका जी की, जो कॉस्ट्यूम के ऊपर थी और बहुत गजब की किताब छापी थी उन्होंने, और बोले मुझे दूसरी किताब ये छापनी है। तो एक तरफ ऐसा लगा कि क्या कहते मन में लड्डू फूट रहे थे, पर दूसरी तरफ ये सारा तो सारे प्रॉपर्टी तो एनएसडी की है, उन्होंने एनएसडी का ये सब खर्चा किया है। तो मैंने बड़ा डर डर से वो कहा कि सर ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन ये सारा का सारा इसके जो राइट्स है, जो मैंने थेसिस सबमिट की है, ये फोटोग्राफ सबमिट की है, ये तो एनएसडी के पास राइट है, आप उनसे बात कर लीजिए, वो परमिशन देते तो मेरे जैसा खुश नसीब आदमी नहीं होगा। खैर उन्होंने कुछ बात की और फिर उनको जवाब दिया गया कि नहीं हम खुद छाप रहे हैं, उसके लिए हमने 80,000 रुपया अलग से रखा है बजट, 1984 की बात है
1: जी।
0: तो अगर किताब छप जाती तो अब तक तो बहुत बड़ी हो जाती, पर बाद में वो हुआ नहीं, जो भी होना होता है। अब वहां से हम चल पड़े मुंबई की तरफ और यहां आ गए तो रोजी रोटी के चक्कर में एक दिन कमलाकर सोनटक्के जी, यहां पर सांस्कृतिक विभाग के संचालक थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा वामन आपको एक महीने के लिए अकोला जाना है, वहां पर हम ये कार्यशाला जो स्टेट कंपटीशन में जिनको पहले आते हैं मेडल मिलता है उनके लिए कार्यशाला करना चाहते हैं ऐसे एक्टर्स के लिए, और आप उसके लिए काबिल है मुझे पता है। तो हमने कहा चलो चल, हमें क्या काम मिल रहा है, तो हम चले गए अकोला में। तो वहां के जितने भी ये सारे विद्यार्थी थे जिसमें गौरी पढ़ते ये भी विद्यार्थिनी थी, तो उनको लगा था कि भाई अब ये वर्कशॉप करने कोई आ रहा है तो बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, और जब मुझे इंट्रोड्यूस किया वहां के हमारे बड़े रंगकर्मी रहे हैं तो वहां कोई गवर्नमेंट का जो आदमी था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये भाई वामन केंद्रे हैं और ये आपकी कार्यशाला लेने वाले एक महीना भर। तो कुछ लोग हंस पड़े,
1: दुबले पतले वामन
0: पतले वामन के बहुत सारे लंबे लंबे बाल है
1: जी,
0: हीरो टाइप या उस टाइप का हुलिया है,
1: दाढ़ी वाड़ी थी
0: थोड़ी बहुत
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है
1: जी।
0: तो कुछ लोगों ने ये तय किया, जिसमें से पहली महिला थी या विद्यार्थिनी थी, वो तब सौभाग्यवती नहीं थी
1: जी,
0: कुमारी गौरी पढ़ते थी, सरनेम था उनका। तो उन्होंने कहा कि आज का एक सेशन अटेंड करेंगे और कल से इस बच्चे से क्या सीखना है,
1: ओके
0: ये क्या सिखाएगा हमको। उद्घाटन वगैरह होना था, हो गए सब चले गए और क्लास

0: शुरू हो गई और 1-1.5 घंटे के बाद वो क्लास रुक गई। तब तक मैंने देखा कि सब हिप्नोटाइज्ड है कि क्लास की वजह से, जिस तरीके से मुझे पढ़ाने का थोड़ा बहुत तजुर्बा था, वहां केरल में भी मैंने कुछ किया था, फिर दिल्ली आके भी पढ़ाया था बच्चों के साथ, एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ मेरे रिसर्च बेस पे एक प्रोडक्शन भी किया था जिसमें पीयूष मिश्रा जिस बैच के विद्यार्थी है उस बैच के साथ मैंने नाटक किया था, या विभा चिब्बर जो एक्ट्रेस है वो भी उस बैच की थी, या दिनेश खन्ना है उस बैच के थे, तो उसके साथ मैंने उस रिसर्च बेस पे प्रोडक्शन किया था। तो उसका भी एक तजुर्बा था थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करने का, और जो लीडरशिप या स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या करना चाहिए वो सब मालूम था।
1: बिल्कुल
0: तो इन्होंने तय किया था कि हम इंटरवल के बाद जैसे होगा उसके बाद कल से नहीं आएंगे, पर वो जिस तरीके से क्लास हो गई, जिस तरीके से वो वर्कशॉप हो गई, तो फिर उन्होंने घर जाना तो छोड़ दो। तो अंतिम दिन उन्होंने ये कहा कि हम मुंबई आना चाहते हैं,
1: ये बात
0: उसका अंदरूनी करंट पकड़ के जो पूछना चाह रहे। तो और बाद में वो गौरी पढ़ते जो थी, कुमारी थी वो, कुछ सालों बाद सौभाग्यवती गौरी वामन केंद्रे हो गई।
1: लेकिन इसमें एक बहुत दिलचस्प किस्सा मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आप उन दिनों में जब शादी नहीं हुई थी तब भी उनको भूल गए और प्रैक्टिस करने चले गए नाटक की। मतलब जीनियस लोग इतने भुलक्कड़
0: नहीं,
1: होते हैं
0: वो
1: उसकी
0: क्या हो गया कि हम वो
1: दिशा।
0: सांस्कृतिक कार्य संचालनालय में कुछ मैं काम करने गया था, और वहां से मुझे फिर शाम को रविंद्र नाट्य मंदिर में रिहर्सल थी। तो उनको मैंने कहा कि मैं इस कार्यालय में जाता हूं, तब तक आप जहांगीर आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन वगैरह देख लीजिए, 1.5-2 घंटे बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा, वैसे मैं आपको वहां से पिकअप करूंगा, या जैसे भी हम फिर चर्चगेट जाएंगे और सीधा रविंद्र चले जाएंगे। पर ये काम करते करते ऐसा हो गया कि मेरे रिहर्सल में देर हो रही थी, तो मैं तो चला गया कहां, रविंद्र नाट्य मंदिर, और मैं ये भूल गया कि मुझे किसी को पिकअप करना था या मैंने किसी को बोला है कि वहां पर खड़े रहो। तो 1-2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, उसके बाद अचानक रविंद्र नाट्य मंदिर के वहां जो गेस्ट हाउस था वहां पर फोन आया कि वामन केंद्रे को बुलाइए। तो मैं वहां पहुंचा, वो गौरी केंद्रे थी, मतलब गौरी पढ़ते थी तब। तो उन्होंने कहा, सर आपने ये क्या किया? मैंने कहा क्या किया? नहीं, आप मुझे बोलने वाले थे, मुझे साथ में ले जाने वाले थे। अरे, मैंने कहा मैं भूल गया।
1: यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि जो मैं भूलता हूँ।
1: आपकी भुलक्कड़ी के और भी किस्से हैं?
0: बहुत है, मतलब क्या है ऐसा होता है ना, मैं जन्मदिन मुझे याद नहीं रहता।
1: हे भगवान, अपना नहीं कि दूसरों का?
0: मुझे मेरा जन्मदिन मालूम नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जाके उसकी खोजबीन करने की कोशिश की, मेरे माताजी से, पिताजी से, मेरे दादी से, मेरे बचपन के दोस्तों से। कुछ लोगों ने मेरी एस्ट्रोलॉजी की जो साइन होती है वो निकालने की कोशिश की, पर आज तक कोई कुछ पता नहीं चल पाया। तो मेरा जो साइन है वो जो उस दिन का जो बेस्ट होता है वो मैं मान लेता हूँ, ये मेरा भविष्य है आज।
1: जो जो सबसे अच्छा है,
0: जो सबसे अच्छा है।
1: पर गौरी जी का जन्मदिन भूल चुके हैं आप?
0: हाँ, मैं कई बार भूल चुका
1: हूँ भगवान।
0: क्योंकि जन्मदिन होता है और वो सेलिब्रेट करना होता है, ये मुझे लगता है कि बहुत सालों तक हमारे संस्कार में ही नहीं था। वो दिल्ली में भी मैं था तब भी नहीं था ऐसा कुछ, वो माहौल ही नहीं होता था हमारे यहाँ। घर में कुछ होता होगा, थोड़ा बहुत टीका विका लगा के कुछ उसको आरती उतारते होंगे, लेकिन ये बर्थडे मुझे लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने हमारे ऊपर लादा हुआ कार्यक्रम है। उनकी मार्केटिंग के लिए है ये, रिसेंटली बहुत पॉपुलर हो गया
1: जी।
0: तो पहले होता होगा राजा महाराजाओं का, गरीब का, श्रमिक का, किसान का, कहां बर्थडे होता है उसको कहां मालूम है। था, मेरे पिताजी चौथी क्लास पढ़े हुए थे, पर बर्थडे वगैरह मेंशन करना होता है, रिक्के रखना होता है, ये नहीं मालूम था। वो तो किसान है। वो जब कभी एक महीना दो महीने के बाद आपको बेटा पैदा हो गया, चलो भाई वहां के अपने पुरोहित के पास जाओ और फिर उसको पूछा कब पैदा हो गया। वो सूरज जो है ना वो कासरा भर वर आला होता,
1: लो
0: मतलब जो कासरा होता है बैलों को वो पकड़ने का, जकड़ने का, उसकी लंबाई है ना उतना सूरज ऊपर आया था आकाश में। मेरा जन्म तो सूरज से पहले हुआ है, सूरज उगने से पहले। तो वो सेवन स्टार होते हैं ना, सप्तर्षि, चलो उसको गांव की भाषा में तिकाट न बोलते हैं, वो तिकाट न कासरा भर वर आलेले होते। अब वो उसको भी काम आता ज्योग्राफी कब कितना कहां ऊपर आया, उसको जो लगेगा वो इंपल्सिवली उसके आपका ये जन्म नाम है और आपकी ये जन्म राशि है कुछ ऐसा कह दिया होगा
1: जी।
0: तो वो भी करना होता है, इसलिए फॉर्मेलिटी थी। इसलिए मुझे मेरा जन्मदिन नहीं मालूम है। तो स्कूल में जब कोई ले गया होगा, पिताजी ले गए होंगे, तो मास्टर जी को जो इंपल्सिवली लगा वो मेरी जन्म तारीख है।
1: वाह वाह।
0: और वो है 17 जनवरी।
1: अच्छा, वो मास्टर जी की मर्जी?
0: हाँ, मास्टर जी का पेन से जो उतरा वो मेरा जन्मदिन है।
1: गजब।
0: तो मैंने कहा वही मान लो ना, वही है, क्या मालूम है
1: जी जी।
0: तो उसके बाद मेरे साथ इतने सारे दोस्त गांव आए जो इनको एस्ट्रोलॉजी में है, कि फिर उन्होंने बहुत ज्यादा पूरा गांव खंगालने की कोशिश की। घर तो खंगाल लिया, फिर उनको इससे ज्यादा कुछ पता नहीं लगा कि गुरुवार को इसका जन्म हुआ है और सूरज होने से पहले हुआ है, उषक काल के समय से पहले हुआ है, इतना ही पता लगा। अब उससे वो मेरा ये तुम्हारी ये राशि है, तुम्हारी वो राशि है, तुम्हारा फलाना है। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, उससे क्या फर्क पड़ा। तो ये है मेरे जन्मदिन की कहानी
1: जी। और गौरी जी के जन्मदिन भूलने की कहानी?
0: भूलने की कहानी तो हर साल होती है, उनको मैं बोलता हूँ एक हफ्ता पहले से बोलना शुरू करो।
1: अरे भगवान,
0: मेरा जन्मदिन आ रहा है, मेरा जन्मदिन आ रहा है। तो अब ऋत्विक देखता है ये सारा
1: जी,
0: गिफ्ट विफ्ट लाना, गिफ्ट देना माताजी को, पिताजी को, जो भी है। तो ऋत्विक उसमें बहुत, क्योंकि वो अगली जनरेशन का है तो उसको सब संस्कार है
1: जी,
0: तो उसका जन्मदिन हम सबको मालूम है।
1: हाँ।
0: जब ऑपरेशन हुआ वो कितने बजे पहला टै बोला तो वो सब हमने लिख के रखा, पर वो मेरे समय पे अभी कुछ नहीं मालूम है कि मेरा जन्मदिन वाकई कौन सा है
1: जी जी जी,
0: ये किसी को भी नहीं मालूम।
1: अच्छा, जीवन का वो कौन सा पल था जब आपने तय किया कि गौरी जी आपकी जीवन संगिनी होंगी?
0: मुझे लगा कि जब वर्कशॉप खत्म होके वापस निकल रहा था और मैं अकोला के प्लेटफॉर्म में आ गया ट्रेन पकड़ने के लिए मुंबई की, मेरा रिजर्वेशन था, तो सारे ही बच्चे आए उन्हीं के साथ, और उसमें आधे से

0: दादा रो रहे थे पर सबसे ज्यादा गौरी जी रो रही थी और ये कह रहे थे कि आज के दिन रुक जाइए।
1: ओके
0: तो मैंने कहा एक दिन रुकने से क्या होगा। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया कि नहीं यार इतने दिन का महीना सवा महीने का सबका साथ है। तो सभी गांव गांव जाने वाले थे, पूरे महाराष्ट्र से आए हुए थे, बोले सर हम भी आज एक दिन रुकेंगे, आप रुकेंगे तो फिर मैं उतरा। वाकई उन्होंने मुझे उतारा नीचे,
1: अरे कैसे,
0: और फिर मैं रुका और फिर दूसरे दिन वही सिलसिला हो गया। मैंने कहा अब नहीं रुकूंगा, अब जिनको आना है वो मुंबई आए।
1: वाह।
0: और कुछ दिनों बाद गौरी पड़ते जी की चिट्ठी आई मुझे कि मैं 3 महीने के बाद मुंबई आ रही हूँ।
1: ओहो हो।
0: और मैं करियर करना चाहती हूँ नाटक में और आपके साथ काम करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतना सीरियसली नहीं ली बात को, पर वाकई वो जब एक दिन आके सामने खड़ी हो गई, मैं आ गई हूँ सर।
1: अरे बाप रे।
0: तो मैंने कहा ये तो धर्म संकट आ गया। पर वो अपनी बहन के पास रहती थी आयरोली में, रबा ले वहां रहती थी और वो हर दिन जाती आती थी। तो मैंने देखा साल हो गया, 2 साल हो गया, वो थकती नहीं है। तो हर बार वो आती है, साथ में काम भी करती है, फिर वापस जाती है। मुझे मालूम था कि वो शादी करना चाहती है, वो तो हमारे दोस्त बोलते थे। तो एक दिन मैंने कहा चलो 6 जून को शादी कर लेते हैं, रैंडमली बोला 6 जून को शादी करते हैं, 7 जून को बारिश आती है तो बारिश के आगमन के साथ हमारी भी शादी हो जाएगी। ऐसे करके बोल दिया। फिर घर में बता दिया, मेरे घर में, कि माताजी पिताजी चाचा जी लोग आ गए, भाई और एक बहन आ गई। फिर उसके घर में बोला तो उसके भी माताजी पिताजी और उसकी बहनें तो यहाँ, लगभग 2-3 बहनें तो यहीं थी, मुंबई में थी, कुछ लोग अकोला से आ गए। तो कुल मिला के दोनों साइड से 10-12 लोग थे। देवदत्त सावड़े हमारे जो मित्र हैं, उन्होंने ये दोनों फैमिली को अपने गाड़ी में डाला। हमारी शादी हो गई फिल्म सिटी में,
1: अरे
0: स्टूडियो नंबर 1 में।
1: ऐसा क्यों,
0: क्या कहते हो, नोटिस देना पड़ता है 1 महीने पहले। हमने बांद्रा कोर्ट में जाके जो भी होता है उसका रजिस्ट्रेशन का 1 महीने का बोल दिया। हमारे मित्र जो एक वहां के अधिकारी थे मोपलवार, बहुत अजीज दोस्त थे हमारे, तो उन्होंने कहा तुम्हारी शादी जब भी होगी वो मेरे घर में होगी, मतलब जहां मैं रहूंगा। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी और वो बार बार ये कह रहे थे कि नहीं तुम्हारी शादी तो मेरे यहाँ होगी, और वो फिल्म सिटी में अधिकारी थे तब। तो हमने कहा कि चलो कोर्ट में करने के बजाय, तो उन्होंने कहा कोर्ट की क्या बात करते, हम रजिस्ट्रार को यहीं बुलाएंगे। तो रजिस्ट्रार को फिल्म सिटी में बुलाने के लिए पहले जाके हम रजिस्ट्रार से मिले, तो उसने कहा कि मुझे अंधेरी से पिकअप करना होगा, अंधेरी वेस्ट में कई शादी है, मैं वहां जा रहा हूं, वहां से पिकअप करने आऊं। तो ये सारे बाराती तो वहां पहुंचे हैं स्टूडियो नंबर 1 में,
1: और दूल्हा,
0: हाँ दूल्हा रजिस्ट्रार को ढूंढने गया है। मेरे साथ एक मेरे मित्र विनोद पवार
1: जी,
0: जो प्रमोद पवार के भाई भी है और अपने आप में बहुत बड़े आदमी हैं, जिन्होंने झुलवा उपन्यास मुझे लाके दिया था
1: जी,
0: वो और हम दोनों रजिस्ट्रार को ढूंढने गए और रजिस्ट्रार वहां आया ही नहीं है।
1: अरे
0: हम वहां 1 घंटा इंतजार कर रहे, 2 घंटा इंतजार कर रहे, वो शादी वाले बोले शायद वो नहीं आएंगे।
1: लो
0: अब उनको कहां ढूंढे, 2-3 घंटा हो गए हम यही ढूंढ रहे, इस गली में उस गली में, यहाँ इस शादी में आने वाला था, इस शादी में भी आने वाला था, तो कहीं आया ही नहीं वो रजिस्ट्रार। तो आप करे तो क्या करे। अच्छा तब कोई मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन टू लैंडलाइन ऐसा कम्युनिकेशन था। तो हम दोनों ने तय कर लिया चलो यार रिक्शा में बैठो और जो यहां पहुंचे हैं बाराती वहां तो चलो, नहीं तो तब तक उनको लगेगा कि दूल्हा भाग गया। इसके मन में ही नहीं है। तो वहां वही माहौल हो गया था कि गौरी और उनके माताजी पिताजी में आपस में यही चर्चा कर रहे थे ना कि भाई वामन ने सही हाँ कहा था ना तुम्हें, क्या ये तुम्हारी अपने मन की कुछ धारणा ही थी। तो वहां हम गए और आत्मा बंसोड़े हमारे मित्र है वो वहां अधिकारी थे, वो भी ढूंढ रहे हैं उसको। मैंने आत्मा को फोन किया यार रजिस्ट्रार यहाँ नहीं है, वहां देखो कहीं आया वो। तो वहां पहुंचे हम तब पता नहीं चला कि रजिस्ट्रार कहाँ है। अब शादी करे तो कैसे करे। कोई 2 मालाएं लाई थी
1: जी,
0: जो उन्होंने मोपलवार जी ने, तो वो माला एक दूसरे को पहनाएंगे तो क्या करिए। तो किसी ने बोला नहीं वो रजिस्ट्रार आया हुआ है कोई एक आदमी अधिकारी तहसील से या जो कोर्ट से आता है वो। तब तेजाब की शूटिंग चल रही वो वहां पर बैठा हुआ है, वो शूटिंग देख रहा है। फिर ये आत्मा बुनसुड़े गए, उसको पकड़ के स्टूडियो में लाया, फिर उसने हमारी दस्तखत कर दी।
1: वाह वाह।

0: माता पिताजी गांव से आए हुए हैं, उनको तो ढोल बाजा ढमका ढमका सब वो अपने मन में देख रहे हैं। एक तो एक आदमी आया, उसने साइन करवा लिया, उसने मेरी साइन उसकी साइन हो गया, दफ्तर बंद किया, उसको आने जाने का पैसा दे दिया, वो निकल गया,
1: हो गई शादी।
0: 42 रुपए में हमारी शादी हो गई।
1: वाह वाह,
0: 42 रुपीज।
1: जी जी,
0: वो ये रिकॉर्ड है दुनिया का।
1: दुनिया की सबसे सस्ती शादी।
0: सस्ती शादी। और फिर 20-25 लोग जो थे मित्र थे, श्रीराम बड़े भी थे और ये मुपलवाद की फैमिली थी, और ये सब कुल मिला के 25-30 लोग होंगे हम। तो उनके लिए उन्होंने खाने का इंतजाम किया था मुपलवार जी ने, वहां पर बहुत बढ़िया ज्वार की रोटी, बेसन पिठल, झुनका खेचा और भी कुछ कुछ ऐसा खा पी के लोग अपने अपने घर चले गए। उसके बाद हम भी अपने घर चले गए। मैंने गौरी को बोला तुम अपने घर चले जाओ।
1: अरे बाप रे,
0: क्योंकि हम एक कमरे में रहते थे, माता जी पिताजी चाचा जी बहन और ये सारे लोग आ गए वहां सोने।

0: और भी कुछ कुछ ऐसा खा पी के लोग अपने अपने घर चले गए। उसके बाद हम भी अपने घर चले गए। मैंने गौरी को बोला तुम अपने घर चले जाओ,
1: अरे बाप रे,
0: क्योंकि हम एक कमरे में रहते थे, माताजी, पिताजी, चाचा जी, बहन और ये सारे लोग आ गए वहां सोने के लिए जगह का। तो बोले आप कहां जाओगे? मैंने कहा मेरा क्लास है साहित्य संघ में, मैं वहां जाके क्लास कर लूंगा अभी।
1: ओहो,
0: ऐसा करके वो कहीं और अपने रिश्तेदार के पास चली गई, मैं क्लास में गया। फिर शाम को कहीं हमारे एक मित्र यहाँ सांता क्रूज में रहते थे, उन्होंने कहा आप दोनों हमारे पास यहाँ आइए, हम यहाँ पार्टी देते हैं आप लोगों को। ऐसा करके हमारी शादी हो गई।
1: गजब गजब गजब, ये तो बड़ा अद्भुत किस्सा है भाई शादी का। और चूंकि आपने तेजाब की बात की तो
0: तेजाब का गाना बनता है।
1: ये गाना सुनते

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का तीसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

अभी आप विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर शाम के 5 बजे हैं। और अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: ही बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा रमकोला भेलकक्ष बड़वारी धुरिया अरचोका बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये टुकुडाण सिलफिली कनक नगर करसी बूढ़ाडाण गणेशपुर गुड़गवा मदन नगर सिंघरा दलदली भरदा गौरा धर्मपुर सरहरी केवरा करंजवार सेमई दरहोरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के राजपुर धमनी वाड्रफ नगर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 19 है। ये दुप्पी चौरा मरकाडाण लोधीडाण आबादी बिशुनपुर सिलाजू पेंडा दारी कोटराही पोखरा गुरमुटी चिनिया महावीरगंज कनक पुर रामपुर बगरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंडरा उदयपुर और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये उदारी असकला दोरना जरहाडी चकेरी बासेन परोगिया घाटबर्रा घासीडी सरगा बोड़ाझरिया सिहारजोर शिवनाथपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये मयूर चुंदी कुंजारा पाकर टोली श्री टोली उपका पानी बंदर चुआ लोढ़ा आंबा डोडा पानी शाही डांड गजरा नंदो ओली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल धर्मजयगढ़ बोरो बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 109 है। ये आम गाँव गेरसा उदा पोटिया आमापाली नागदरहा कुड़ेकेला छाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये कांसी पानी जाम पानी साजा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा

0: वनमंडल की पसान, जडगा, एतमानगर और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 52 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, सिटी पखना, फुलसर, कोरबी, झुनकीडीह, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 57 है। ये बंगूरसिया, बरकछार, चक्रधरपुर, धुमा बहाल, नागदरहा, कया, कमतरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी, देवपुर और बार में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये हरदी, गुड़ागढ़, अचानकपुर, तेंदुचुआ, पकरीद के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारीपानी, कोनारी, बुड़ार, जिडार, पायलीखंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। शाम के 5:05 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए किसान भाई बहनों का कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा के सुनैया जम्मो संगवारी मनला नंदू भैया के राम राम जय जोहार। तो संगवारी हो देखो बढ़िया तिहार उहार मनायन और तिहार के बिहान भाई भोजली तिहार भी मनायन। संगवारी हो हमर जीवन में एकर अब बड़े महात्म रही थे। जम्मो मनखे मन आपस में जूर मिल के रही थे, सहयोग भावना से रही थे संगवारी हो तो बने रही थे। ऐसने हमन जौन फसल हवय तेकर सुरक्षा करे बर घलो खेती किसानी के जौन काम बूता है ओला करथन। वैसने जौन भोजली मैया है ओकर से अन्न के उपज होते जेला जम्मो मनखे जीव जंतु मन सब खाते तो ओकर हमन बढ़िया से पूजा पाठ करके ये भोजली तिहार ला मनाथन। संगवारी हो देखा हमन बात करे हन अपन फसल के खेती किसानी के तो ओहू में हमन ला बढ़िया चेत रखे बर पड़ते। संगे संग नवा नवा रोजगार के जौन साधन है जेला आसानी ले मनखे मन कर सकते तेनो हमन बढ़िया ले गोठ बात करबो संगवारी हो। जेमा मशरूम उत्पादन आते ओकर ले अक्तहा आमदनी किसान भाई मन ला हमन ला होते संगवारी हो। संगवारी हो ये काम ला करे बर ना हमन ला चेत रखे पड़ते कि जगह जौन है तेन हर बढ़िया साफ सुथरा रहे, छावदार रहे बढ़िया उमा तो बढ़िया होती। भूसा तैयारी करे के व्यवस्था घलो होते जौन हमन गहूँ लगाए रिथन धान लगाए रिथन ओकर भूसा रहते ना तेनो मा बढ़िया ले हर बन जाते। वो भूसा मन ला पानी में भिगो के तैयार करे पड़ते ओकर बाद ओला निथार ले तहां बढ़िया सुघर हो जाती। भूसा के उपचार करे बर घलो पड़ते संगवारी हो। अगर मशरूम के उत्पादन करत हन तो गर्म पानी है के भाप है ओकर द्वारा हमन भूसा ला उपचारित कर सकत हन। जेकर बाद हमन इस्पान लेबो जौन प्रमाणित मशरूम इस्पान हवय ओई ला खरीद के लात हन ना तो बढ़िया रही। बेग में ओला भर दिहिन उपचारित जौन भूसा है और इस्पान के जौन परत है ओला बना के टोड़कू करके पाली बैग में भरत हन तो बढ़िया रही थी। बैग में रखे के व्यवस्था घला ओला कर लीहिन जेकर बार कमरा में उचित दूरिया रहे और साफ सफाई के विशेष ध्यान रखत हन तो बने रही थी। नमी बनाए बर घलो पड़ते संगवारी हो। कमरा में पर्याप्त

नमी रहे जेकर ले मशरूम के उत्पादन ह बढ़िया ले हो सके और तापमान के घलाव चेत रखे बर पड़ही। मशरूम के किस्म के अनुसार हमन तापमान ल रखत हन तो बढ़िया माने जाते। आयस्टर है, बटन है, मिल्की मशरूम है, ये हर प्रमुख प्रकार होते मशरूम के और एकर उत्पादन लेके हमन अक्तहा आमदनी ला कर सकत हन। संगवारी हो गोठ बात हो आवाओ चलत हन संदेशा कति। संगवारी हो संदेशा सुनबो फिर आप मन के अगोरा रही थे फरमाइसी लोकगीत है आज के तो आप मन के गीत के जेमा आप मन बढ़िया सुघर सुघर चिट्ठी पाती भेजे रही था संगवारी हो और हमार मयारो संगवारी मन के बढ़िया चिट्ठी पाती आए तो हमन पढ़े ले शुरू करथन। महावीर वार्ड भाटा पारा ले आप मन हो श्रीमती अमृता यादव जी, श्रीमती पार्वती ईश्वरी लक्ष्मी और डिम्पी यादव जी मन हथ बंद नेवधा ले आप मन हाव श्रीमती दुलारी यादव जी, प्रियंका प्रीति उमेश्वरी सुनती यादव जी मन। संगवारी हो देवरी भाटा पारा ले आप मन हाव गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश जी, मयाराम रजक, पुनेश्वर फानेश्वर रजक जी मन और नीचे में घलाओ आप मन लिखे हो काव्या रजक हवय टानिया एमन बढ़िया चिट्ठी पाती भेजे संगवारी हो। संगवारी हो आओ चिट्ठी पाती में हम देखा था तो भागवत वर्मा जी दतरंगी से आप मन हो, गुलाब दास मानिकपुरी लेवई से हो आप मन, विश्वनाथ साहू जी लछनपुर से हो और दुर्गा प्रसाद साहू जी आप मन हो चर डोंगरी पिपरिया ले। संगवारी हो अतिक बढ़िया चिट्ठी पाते आप मन भेजे हो जेमा हमन नाम पढ़थन कतिया पारा जूना बिलासपुर ले आप मन हो, सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा, आदित्य देवांगन जी मन। यहीं चले बमहर चांटीडी ले आप मन हो, गंगा देवी देवांगन, पूनम धनेश्वरी, महेश्वरी, मिल्की, बेबी मीनाक्षी, निधि देवांगन जी मन। संगवारी हो तो आवाओ आप मन के ये पसंदीदा गीत ला हमन सुनथन जेला स्वर देते तीरथ राम गढ़ेवाल जी मन।

हाँ संगवारी हो, बढ़िया गुत्तूर गीत ल सुनिन। पानी ले जिंदगानी तीरथ राम गढ़ेवाल जी ओकर संगवारी मन के स्वर में। देखो संगवारी हो, पानी के बात करीन तो सबो जीव जंतु और पेड़ पौधा के जीवन के आधार होते और जरूरी घलो होते जीवन भर। मनुष्य के पिए बर, खाए बर और दैनिक जीवन में पानी के बड़े महत्व हवे। ऐसने हमार फसल घलो बर हवे संगवारी हो, ड्रिप स्प्रिंकलर है, पानी के सुग्घर हमन प्रयोग करके और बरसात में भी पानी ला हमन डबरी है, तालाब है बना के उपयोग करत हन तो फसल बर घलो काम आही, जीव जंतु बर घलो काम आही और मनखे घलो बर काम आही संगवारी हो। तो ये बढ़िया गुत्तूर गीत ल सुने ना, आप मन के चिट्ठी कति हमार ध्यान जात हवे। आप मन हो बलौदा अकलतरा ले दिलहरण गौतम जी, अंजलि आनंद पटेल, समृद्धि पटेल जी मन संगवारी हो। आप मन चिट्ठी पाती भेजे हो भाटापारा ले दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत जी मन संगवारी हो। आप मन हो रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा जी, करुणा वर्मा जी और ग्राम खैरा डगनिया ले आप मन हो केशव साहू, कृष्ण कुमार साहू, ओम प्रकाश, कमलेश, विद्यांशु, दीपेश, मुकेश साहू, मानस कश्यप, विक्की साहू, सुनील, शिवा, छोटू, मनीन यादव जी मन संगवारी हो। आप मन हो हथनी पारा भांठा पारा ले दुर्गा, दुर्गेश्वरी, गिर, मुकेश वर्मा, हरीश, किरण वर्मा जी मन आप मन के सुघर पसंद महामन गीत सुनथन जिला स्वर देते केदार यादव और संगवारी मन।

संगवारी हो ये गुत्तूर गीत ल स्वर देत रहिच केदार यादव अउ ओकर संगवारी मन। और सिरतो बाते संगवारी हो बागे बगीचा रहे कि हमर जौन पेड़ पौधा रहे ओला बचा के रखना जरूरी होते। पेड़ घलौ हर पानी जैसे एकदम जीवनदायिनी होते संगवारी हो। रूख राई नहीं रही तो पानी घलौ नहीं गिरही। जीवन धन्य होते तो पानी के सेतीर अउ पेड़ पौधा के सेतीर। काबर के ऑक्सीजन तो देते छे है ना। संगे संग जौन हमन मनखे मनखे ल समय नहीं मिल पावे काम बूता में ड्यूटी जाए में नौकरी चाकरी खेती खार करे में तो पेड़ पौधा लगा दे रही बिना तो चिराई चुरगुन मन आ के उमर रही थे। तो हमू मन हमर जौन सहयोग के भावना है तेन पेड़ पौधा के माध्यम ले जम्मो जीव जंतु ल मिलत रही थे और अपन काम बूता घलो हमन बढ़िया ले करत रही थन। तो पर्यावरण ल स्वच्छ रखे बर और एक ठीन सहयोगात्मक भावना बर पेड़ पौधा लगाना जरूरी होते। और आप मन के चिट्ठी पढ़ना घलो जरूरी हवा संगवारी हो। सुभाष वार्ड भाटा पारा ले आप मन हो एम एल यादव जी अजय कुमार अमित अमीन गिरीश इवान ढाबेस यादव जी मन हथ बंद न्योधा ले आप मन हो सेवकराम टुपेंद्र कुमार तुलेंद्र कुमार देव कुमार यादव जी मन चिट्ठी पाती भेजे हवा भैया। और नकुल श्याम मोहरम मोहम्मद अकरम मोहम्मद अजीज आप मन लूतरा खमहरिया ले हो संगवारी हो। चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले आप मन हो पवन कुमार सेन प्रभा देवी सेन लक्की विक्की नानू रविंद्र सेन जी मन और यहाँ चले आप मन भेजत हो खुशी हो पप्पू लता ये मन चिट्ठी पाती भेजे है। ग्राम बंगला मटिया ले बालौद पढ़ते संगवारी हो आप मन हो शिव कुमार अंगारे अंजनी त्रैम्बिका लीना अंशु आशुतोष अंगारे जी मन। तो अव संगवारी हो आप मन के जौन चिट्ठी पाती है आप मन के गीत पर वो कर पसंद में आप मन ला सुना थन रामायण वस्त्रकार जी मन के स्वर में ये गीत ला।

0: संगवारी मन के स्वर मा अब आवा सुनाथन संदेशाला।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
4: पुलिस?
5: मिस सीमा
4: जी,
5: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
4: क्यों? लेकिन मैं
5: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
4: डिजिटल अरेस्ट?
5: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
4: इतने पैसे?
5: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
4: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
6: हेलो मम्मा।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हाँ संगवारी हो, देखो बढ़िया हमन संदेशा सुने न, और बढ़िया बढ़िया रंग बिरंगे राखी तिहार मनाए, वैसे रंग बिरंगे आप मन चिट्ठी पाती भेजे हो, तो आओ हमन आप मन की चिट्ठी पाती ला पढ़ा थन संगवारी हो। शांति नगर भाटा पारा ले आप मन हो, रमजान खान, सिकंदर, अशरफ, नासिर, अयाज, अल्फैज, सादिया, हजीरून, और बिल्हा से आप मन हो शेख नासिर, महजबीन बानो जी। संगवारी हो छत्तीसगढ़ भाटा पारा दतिरंगी ले आप मन हो, द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा जी मन। बावली मर्रा कोना छत्तीसगढ़ से आप मन हो, उत्तम कुमार कौशिक, बिहारी लाल, हरीश कुमार, शिवम कौशिक जी मन। संगवारी हो दतरंगी भाटा पारा ले आप मन हो, नोखे लाल वर्मा जी, हीरामढ़ी, पारसमढ़ी, पुष्पेंद्र मढ़ी वर्मा जी। संगवारी हो छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा ले आप मन हो, चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी, नोमेश, नेहा, वान्या सिंगरौल जी मन। बढ़िया से चिट्ठी पाती रंग बिरंगे भेजे हो संगवारी हो, और आपो मल्ला हमन सुघर गुत्तूर गीत सुनाथन, जिला स्वर देते हुए अनुराग ठाकुर और कविता हिरकने साधना यादव जी मन।

हाँ संगवारी हो, सुघ्घर गीत ला सुनेन अनुराग ठाकुर कविता हिरकने ओकर संगवारी मन के स्वर म। अउ देखो संगवारी हो, गोठियात गोठियात आप मन की चिट्ठी पाती पढ़त बेरा हर होगे। अउ हमार तो यही संदेश रहते जी के गाय गरुआ जौन है ओकर बढ़िया हमन देख रेख करीन, मुर्गी पालन करत हन तो टीका लगवाए के सोचिन, और जौन पेड़ पौधा है रूख राई है अभी के बेरा में लगाए के सोचिन, जौन रूख राई लग गए है ओकर बचाव करे के सोचिन, पानी घलाओ है ओकरो बचाइन संगवारी हो, और घर परिवार ला घलाओ बढ़िया ले रखिन, मेल मिलाप जौन है वो सब बढ़िया रहे। और एक संग हम यही कहथन कि जैसे किसान तय लेहे दे वैसे झोंक आशीष जी, अन्न धन से तुहर घर भरे जुग जियो लाख बरीस जी। एकरे संग ग्राम सभा ले नंदू भैया के राम राम जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। शाम के 5:35 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए, ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुनें। और पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश राहुल साहू, सहारनपुर से आशु मोची, कस्बा गुनैर से नसीमुल इस्लाम गुनैरी, फरहीन अब्बासी, दानिश गुनैरी, रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला ओम कुमार सुरलकर, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, भागलपुर से कमल किशोर साहू, अश्विनी अमरदीप, पशुपति सा, टिंकू मुस्कान, महाराष्ट्र से रूपेश संघई, मक्के महेश संघई, प्रज्ञेश प्रीतेश संघई, नागरकोरा राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या साहू, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम, राकेश कुमार, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेराय, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रियांश, कान्हा, आदित्य देवांगन, और जलगांव जंक्शन से हैं दिनेश काले, वंदना, आदेश कुमार काले और वसुधा वज्रसेन, ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लव्या, आरव खुराना, एसके पप्पी। तो आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

0: फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर, उदित नारायण की आवाज़ों की, आनंद बख्शी के ही बोल और जतिन ललित का संगीत। अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं, इस गीत के लिए फरमाइश भेजने वाले
1: दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर, उदित नारायण की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के लिखे बोल और जतिन ललित का संगीत। अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं और इस गीत की फरमाइश भेज

वाले हमारे श्रोता साथी हैं। पंजौनिया जिला जलौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया, राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू, हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, धुरा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा, बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, यश, प्रयाण, शिवम, रेखा, धनेश्वरी वर्मा, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, भिलाई से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला, आसमा श्याम कुंवर, गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरी बाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ, रीचा देवांगन, कुमार हिणा, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना, हसन, नाजिया, इब्राहिम, सनावत से हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शकील, मोहम्मद अल्तमस, मोहम्मद अलकमा खत्री, रमेश कोड़, मोहम्मद शादाब खत्री, लुत्रा खमरिया से अक्रम अमीन, अर्श, कितिका, लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, रिगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

अहो ना प्यार है इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इस गीत में आवाज़ें थी उदित नारायण, अलका याग्निक की, इब्राहिम अश्क के लिखे बोल थे और राजेश रोशन का संगीत। अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं अहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गावड़कर, सरिता प्रिंस, एकांश गावड़कर, टी मल्होत्रा, डी ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल, राजेश, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा साहू, लछनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश साहू, डोमराव से वलीउल्लाह अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत मोदी और इफ़ज़ाल ताज, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित राय, हैप्पी राय, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावरकर, निर्मला, विशाल नावरकर, सोंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन, कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत दले, रोहिणी ऋषिकेश, जीविका दले, कर्मा चौक लोहरीडी जिला कवर्धा से हैं अशोक कुमार साहू।

ईश्वरी सुशांत निशांत साहू, रोहासी से मुकेश साहू, नंदिनी मनीष मयंक जानकी, गावना थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी सीता और गीता, चिरमीर कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालंदी लहरे और मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधुसागर बालूजा। आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

0: कबूल और नदीम शर्मा का संगीत।
1: नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रमाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
2: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
3: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
2: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
4: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
1: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रमाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

شدن. شانزده تا 20 نفر اپلای نمیدادی که این سه ایلای شد که چون که دیگه پروگرامی 2000 تا 2000 تا مارا دا کنید که دوبای ایتوناشن کدی استیدیم میکنی داره به نیچ با اندرمی کنید. 7:30 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और थाईलैंड के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल। रात 8 बजे रायपुर केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम मन की बात के छत्तीसगढ़ी अनुवाद का पुनः प्रसारण। रात 8:30 पर दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। रात 9:15 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। शाम 6:30 पर रायपुर केंद्र से आप सुनेंगे कानून की बात में सिविल प्रक्रिया संहिता बंटवारा नामांतरण सीमांकन कब्जा बेदखली संपत्ति में महिलाओं का अधिकार श्री रवि पांडे सचिव अधिवक्ता संघ बिलासपुर। शाम 7 बजे आप सुनेंगे ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग। दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या आप सुनेंगे रात 8:45 पर और अंग्रेजी में समाचार रात 9 बजे। आइए आपको जानकारी दे दें कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। शाम सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आराधना। 6:45 का समय होगा नवविहान फ्लैगशिप में पीएम गति शक्ति बहु मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर जानकारी। सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह आप सुनेंगे रोज की तरह सुबह 7:05 पर और सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों के झरोखों से। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम अमराई आप सुनेंगे। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मदन मेहर और मुसेरी सिंह के साथियों के गीत। सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद। सुबह 10 बजे का समय होगा छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीआरटी आप सुनेंगे सुबह 11 बजे और विविध भारतीय प्रसारण सेवा से हम जुड़ेंगे सुबह 11:30 पर। 11:55 पर रायपुर केंद्र से होंगे प्रादेशिक समाचार और दोपहर 12 बजे हम दोबारा जुड़ेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से। शाम की सभा में आप 7:30 पर सुनेंगे ग्राम सभा कार्यक्रम जिसमें बेरा के गोठ का विषय होगा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन और कृषि स्टार्टअप। भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी रेशम कीट पालन के लाभ। श्री अनिल कुमार कश्यप कार्यकाल सहायक संचालक रेशम जांजगीर, श्रीमती सौद्रा बाई कंवर ग्राम कटघरी विकास खंड अकलतरा जिला जांजगीर चांपा, रिकॉर्डिंग व संपादन पंचु भैया का, प्रस्तुति व संयोजन डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन का। इसके साथ ही क्रम होगा गीत संगीत मौसम मंडी भाव और सामायिक सुझाव का। सुगम संगीत में आप सुनेंगे सुखदेव के गीत और 8:15 पर हम हाजिर होंगे आपके साथ

रजनीगंधा कार्यक्रम लेकर। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे ईमेल करें गीत सुने, और शाम 7 भी आप सुनेंगे इसी कार्यक्रम का शेष भाग। शाम 5:35 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युवा जगत और साइबर जागृति अभियान। युवा जगत का विषय होगा, आज की बात का विषय होगा, नशा से खुद को कैसे बचाएं। इसके साथ ही क्रम होगा कैरियर मार्गदर्शन, प्रस्तुति नेमी चंद साहू की। 7:45 पर समाचार संध्या आप सुनेंगे, और 9:00 अंग्रेजी में समाचार। 9:15 पर हम जुड़ेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 6:05 होने वाले हैं। और अब रायपुर केंद्र से आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम में सुनिए कांकेर जिले की चिट्ठी। आलेख विजय पांडे का है।
1: श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं कांकेर जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष में बीते 27 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को संकल्पित है। खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में भी युवाओं ने प्रधानमंत्री के भाषण को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना। प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए कांकेर जिले के सिंगारभाट स्थित रामप्रसाद पोटाई कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र में विशेष व्यवस्था की गई थी। इस कार्यक्रम में सांसद भोजराज नाग और विधायक आशाराम नेताम शामिल हुए। श्रोताओं, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए कलेक्टर कुंदन कुमार ने जिला स्तरीय निगरानी समिति गठित की है। जिला पंचायत सीईओ हरेश मंडावी और अपर कलेक्टर जितेंद्र कुर्रे को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं बिजली विभाग के 3 कार्यपालन अभियंताओं को समिति का सचिव नियुक्त किया गया है। कलेक्टर ने अधिकारियों को इस योजना का लक्ष्य समय पर पूरा करने और प्रगति की नियमित जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 15 अगस्त से शुरू किए गए साइबर जागृति अभियान का तीसरा सप्ताह आज से शुरू हो गया है। अभियान के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट से बचाव की जानकारी देने के साथ ही पुलिस अधिकारी बनकर की जाने वाली फर्जी कॉल के माध्यम से धमकी जैसे जोखिम से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। वहीं बैंकिंग संबंधी जानकारी साझा करने के जोखिम और साइबर ठगी से बचाव के उपायों के प्रति भी लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। श्रोताओं, प्रदेश में 1 सितंबर से सभी श्रेणी के बिजली कनेक्शनों की ईकेवाईसी की प्रक्रिया शुरू होगी। ईकेवाईसी के लिए आधार कार्ड और बिजली बिल में दर्ज नाम का मिलान अनिवार्य होगा। उपभोक्ता घर बैठे मोर बिजली ऐप के जरिए अपनी ईकेवाईसी करा सकेंगे। इसके लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। श्रोताओं, कांकेर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में 19 से 21 अगस्त तक ग्राफ्टिंग तकनीक विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में किसानों को कम लागत में हीलिंग चैम्बर तैयार कर स्थानीय स्तर पर ग्राफ्टेड पौधे तैयार करने की तकनीक सिखाई गई। साथ ही किसानों को टमाटर और बैंगन के ग्राफ्टेड पौधे तैयार करने, उनकी देखभाल, रोग प्रबंधन और यंत्रीकरण की जानकारी भी दी गई। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि कम लागत में ग्राफ्टेड पौधे तैयार कर किसान इसे व्यावसायिक उद्यम के रूप में अपना सकते हैं। प्रशिक्षण में नरहरपुर विकासखंड के विभिन्न गांवों के 30 किसानों सहित स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। श्रोताओं, जिले के बाबू दबेना स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बीते 27 अगस्त को नशामुक्ति और साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम

0: का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों और विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों और इससे दूर रहने के उपाय बताए। साथ ही ऑनलाइन ठगी से बचने, फर्जी लिंक पर क्लिक नहीं करने, ओटीपी साझा नहीं करने और सोशल मीडिया का सावधानी से उपयोग करने की जानकारी भी दी। श्रोताओं, भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त को कांकेर जिले में भी उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। भानुप्रतापुर क्षेत्र के ग्राम चौगेल स्थित पुनर्वास केंद्र में आत्मसमर्पित माओवादियों ने जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस मौके पर आत्मसमर्पित महिला माओवादियों ने बताया कि वे पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार मना रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से उन्होंने राखी बनाना सीखा और आज उन्हीं हाथों से तैयार की गई राखी पुलिस जवानों की कलाई पर बांधना खास और भावुक अनुभव है। पुनर्वास केंद्र में इन महिलाओं को सिलाई, काष्ठ शिल्प कला और राखी निर्माण सहित विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी कार्यक्रम में आप सुन रहे थे कांकेर जिले की चिट्ठी। आलेख विजय पांडे का था। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में प्रसारित किए जाएंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अनुरिमा शर्मा की जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। आकाशवाणी ले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह कहिन कि विकसित भारत बर नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत ए अभियान ह देश भर में सल्लग बाढ़त ही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में राखे गे नारी शक्ति सम्मान समारोह में शामिल हुईन। आने आने क्षेत्र में सुघर योगदान देवैया नारी परानी मल्ला करिन सम्मानित। और राजधानी रायपुर समेत कतकोन जगह में रही रही के पानी गिरत है। मौसम विभाग अवैया चार दिन तक प्रदेश के कोनो कोनो जगह में जोरदारहा वर्षा होए के देहे चेतावनी। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हकीन है कि विकसित भारत बर नशा मुक्त युवा अभियान देश भर में सल्लग बाढ़त ही। आकाशवाणी ले मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी हकीन कि बड़कन मनखे और खासकर जवान लड़का मन नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान के हिस्सा बनत है। प्रधानमंत्री हा लोगन मन ले नशा मुक्त भारत बर बढ़िया नारा तैयार करे के संगे युवा संगीतकार मन ले ऐसा गाना बनाए बर कहिन जौन हा जीवन बर आरो दे। संगे ओमन यहू कहिन कि हमर देश मा सुघर कंटेंट क्रिएटर के कमी नहीं है। ओखर मन ले मोर आग्रह है कि ओमन आने आने भाखा मा ऐसन कंटेंट बनाए जेखर ले एसो समाज ला मदद मिले। प्रधानमंत्री हा कहिन कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम ले लाखों नारी परानी मल्ला नवा शक्ति मिलत है। संगे श्री मोदी हा कहिन कि आज देश के नूनी मन के सपना की उड़ान हा अंतरिक्ष तक पहुंचा थे। ओमन कहिन कि आप सब ला ये जान के गर्व होही कि भारत हा दुनिया के ऐसा सपना दिखैया हजारों बेटी ला एक संग जोड़ा थे और ये प्रयास के नाव है मिशन शक्ति सेट। एकर माध्यम ले 108 देश के 12,000 पढ़ैया नोनी मल्ला सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखे के संगे इनोवेशन के क्षेत्र में आगू बढ़े के मौका मिला थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर स्थित निरंजन धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम ला सुनिन। ए मौका में ओमन कहिन कि प्रधानमंत्री हा मन की बात में अंतरिक्ष विज्ञान ले जुड़े मिशन शक्ति से पहल के उल्लेख करिन जेमा छत्तीसगढ़ के महिमा राजपूत घलो शामिल है। मुख्यमंत्री हा महिमा ला बधाई देवत कहिन कि प्रदेश के बेटी मन कई ठीन जगह में सहराय के लिए काम करत उपलब्धि हासिल करत है। मुख्यमंत्री हा बतैन कि मन की बात में बस्तर ओलंपिक मल्हार के जुन्ना ताम्रपत्र और काला हिरण संरक्षण असन छत्तीसगढ़ के ऐसा प्रयास के उल्लेख प्रदेश भर गौरव के बात है। मुख्यमंत्री हा यहू कहिन कि प्रधानमंत्री हा हर घर तिरंगा अभियान भर देशवासी मन के उत्साह के बड़े मारिन और कहिन कि तिरंगा संग 8 करोड़ ले ज्यादा सेल्फी अपलोड होना घलो राष्ट्र प्रेम के चिन्हारी है। देशभरमा आज कड़ा सुरक्षा औ निगरानी बीच नीट पीजी परीक्षा राखे गे रहिस। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड के मुताबिक ये परीक्षा 36 ठिन राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश मन के 339 शहर मन में 1111 ठिन केन्द्र में हुईस, जेमा 2,65,000 ले ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुईन। फिर जयपुर के सीतापुरा स्थित

0: दूठिन परीक्षा केंद्र में तकनीकी बाधा के सेती 2445 झीन उम्मीदवार मन के परीक्षा पूरा नहीं हो सकीस। ए उम्मीदवार मन बर 5 सितंबर के जयपुर में पुनः परीक्षा राखे जाही। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA हा आज संयुक्त CSIR UGC नेट परीक्षा के सबो 5 विषय के अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दे है। ये परीक्षा में शामिल हो उम्मीदवार मन अपन पहचान पत्र ले लॉगिन करके अपन विषय वाले अंतिम उत्तर कुंजी ला देख सकत हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में राखे गए नारी शक्ति सम्मान समारोह में शामिल हुई। ए दौरान उमन आने आने क्षेत्र में सुघर योगदान देवैया नारी प्राणी मन ला सम्मानित करीन। समारोह में बोलत श्री साय हकीन कि नारी के सुरक्षा और स्वावलंबन से ही समृद्ध छत्तीसगढ़ बनी। उमन यहू कहीन कि राज्य सरकार ए बछर ला महतारी गौरव बछर के रूप में मनाए के निर्णय ले है। संगे कहीन कि माइलोगिन मन ला पढ़े लिखई रोजगार उद्यमिता और सुरक्षा खातिर सुघर मौका दे के उमन ला विकास के मुख्य धारा ले जोड़े जाते। श्री साहा कहिन की प्रदेश में 13,85,000 ले ज्यादा नारी पनारी मन लखपति दीदी बन गए हवे। उन्हें महिला स्व सहायता समूह ला सहूलियत दे खातिर 481 छीन महतारी सदन बनाए जाते। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के एक दिवसीय बैठक काली 31 अगस्त के रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में रखे जाये। उद्घाटन सत्र के शुभारंभ कृषि मंत्री रामविचार नेताम करही। बैठक प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू समेत बड़का नेता और कार्यकर्ता मन एमा मार्गदर्शन देही। समापन बेरा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुई। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आपमन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावे। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़वो बाचे समाचार डहार। बस्तर संभाग के सुकमा नारायणपुर और बीजापुर जिला मन में सुरक्षा बल मन माओवादी डहार ले डंप करेगे हथियार और विस्फोटक जिनिस बरामद करे हैं। सुकमा जिला के कोंटा थाना क्षेत्र में आज बेलपोच्चा ले गोमपाट रद्दा तीर के जंगल और पहाड़ी इलाका में जिला पुलिस बल DRG और बस्तर फाइटर्स के जवान मन संग्रह सर्चिंग अभियान चलाई। ये दौरान 8 किलो वजनी 2 ठिन टिफिन बम समेत 4 बंडल कोर्डेक्स वायर 10 ठिन डेटोनेटर 17 ठिन जिलेटिन फ्यूज वायर और बिजली के तार बरामद करेगी। नारायणपुर जिला में जिला पुलिस बल और BSF के संग्रह टीम काली अदनार के जंगल में सर्चिंग बेरा माओवादी मंडहार ले लुका के रखे गए डंप मेले 10 ठिन राइफल 2 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर 13 ठिन BGL सेल 16 ठिन कारतूस और करीबन 2 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद करे है। इसने बीजापुर जिला में सुरक्षा बल मन काली थाना बासागुड़ा DRG के संग्रह टीम गाँव तेगड़ापल्ली के जंगल क्षेत्र ले माओवादी मंडहार ले लुका के रखे गए भारी मात्रा में विस्फोटक जिनिस बरामद करे है। उन्हें कार्रवाई बेरा एक जिन संदिग्ध माओवादी सदस्य ला घलो गिरफ्तार करेगी है। नेपाल में हुरहा आए बाढ़ ले मौत हुए मन के मन के संख्या बाढ़ के 768 हो गए है। आपदा के 5वां दिन घलो 2,500 ले ज्यादा मन के लापता है। उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार नेपाल में आए विनाशकारी बाढ़ के बाद लापता यहाँ के मन के मल्ला सुरक्षित वापिस लाए बर विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास ले संपर्क में है। केंद्र सरकार कहीन है कि ए बच्छर जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के चलत 115 लाख हेक्टेयर खेती भूयाला लघु सिंचाई सिस्टम में लगाई गई है। ये योजना के उद्देश्य खेती स्तर में पानी के बौरैला सुघर बनाना और सुधार करना है। ये योजना ला जनवरी 2006 में केंद्र सरकार लघु सिंचाई बर शुरू करे रहीस। अब सुनो मौसम के हाल। राजधानी रायपुर समेत कतकुन जगह में रही के पानी गिरत है जेखर ले नरवा नदियां उफनावत है। यही बीच मौसम विभाग अवैया 4 दिन तक प्रदेश के कोनो कोनो जगह में जोरदारा वर्षा होए के चेतावनी दे है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम बंगाल के खाड़ी और उखरने लगे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा के तट में कमती दबाव के क्षेत्र बने हैं। एकर असर ले प्रदेश में बादर पानी की स्थिति बने हुए हैं। विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान रायपुर दुर्ग धमतरी बेमेतरा बालोद, महासमुंद, गरियाबंद, बलोद।

0: बाजार, जांजगीर चांपा, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़, रायगढ़ और जसपुर जिला पर येलो अलर्ट जारी करे है। प्रदेश की लोक संस्कृति, पारंपरिक संगीत और आधुनिक सुरतान के अनोखा संगमला मंच दे के उद्देश्य ले अवैया 1 ले 3 सितंबर तक रायपुर में रंग तरंग कार्यक्रम रखे जाही। संस्कृति विभाग डहर ले होइया एक कार्यक्रम रोजीना संध्या 7 बजे ले महंत घासीदास संग्रहालय परिसर सिविल लाइन में होही। छत्तीसगढ़ पुलिस डहर ले 15 अगस्त ले शुरू करेगे साइबर जागृति अभियान के 3रा हफ्ता आज ले शुरू हो गए है। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घाव फेर। आकाशवाणी ले मन की बात कार्यक्रम मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा कहिन कि विकसित भारत पर नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत ये अभियान हा देश भर मा सल्लग बढ़त है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर मा राखे गे नारी शक्ति सम्मान समारोह मा शामिल हुईन। आने आने क्षेत्र मा सुघर योगदान देवैया नारी परानी मल्ला करिन सम्मानित। और राजधानी रायपुर समेत कतकोन जगह मा रही रही के पानी गिरत है। मौसम विभाग अवैया 4 दिन तक प्रदेश के कोनो कोनो जगह मा जोरदार हा वर्षा होए के देहे चेतावनी। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में अभी आप रायपुर केंद्र से सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। FM 103.2 MHz पर 6:20 हुए हैं। और अब आइए सुनते हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग। पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं और इस गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं सरगांव से राजेश वर्मा, हीरामन पल्लवी राजेश्वरी वर्मा, पटियाला से मुकेश बत्ता नीलम, और यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन रोशनी, प्रियांशी मनवर, दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका भानु, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद, कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वयाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, गांव जाखो से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश दीपक, पूजा खटक।

शालीमार फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़, आनंद बख्शी के लिखे बोल और आर डी बर्मन का संगीत। अगला गीत सुनिए। इस गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना, तखतपुर से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, लोरमी चचेड़ी से कमल कांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी, सौरंग जिला धमतरी से कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक सेन, कुम्हार गली कोलगांव से पांडुचंदन, ऊषा प्रतीक्षा, प्रथमेश चंदन और रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान, आदर्श नगर मलौत पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरभ, शैन शर्मा, मैंडी शर्मा, नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और अयान, और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया नारंग, बुलढाणा से अमोल मानकर, वर्णिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

0: तेरी पुत्री। तथा यदि पुत्र अथवा पुत्री की मृत्यु हो गई है तो उनका संतान जो है इस वाद में पक्षकार बनेंगे और उसके पश्चात न्यायालय में वाद प्रस्तुत होगा और वाद प्रस्तुत होने के बाद न्यायालय जो है समुचित सुनवाई करने के पश्चात डिक्री का आदेश पारित करता है। अब यदि मान लीजिए कि संपत्ति जो है पैतृक है, तो पैतृक है मतलब पिता की 3 पीढ़ियों के अनुगत संपत्ति होना चाहिए, तो पिता उसमें सहभागीदार की हैसियत से अंश रखेगा तथा पिता की मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र एवं पुत्रियां तथा उनकी मृत्यु होने पर उनके पुत्र एवं पुत्रियां अधिकारी होंगे जो व्यवहार न्यायालय से वाद प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके बाद उसका निराकरण व्यवहार न्यायालय के द्वारा किया जाए।
1: पांडे जी, आपने बताया बंटवारा के संबंध में और आपने ये भी बताया कि संपत्ति 2 प्रकार की होती है, या तो पैतृक और या फिर स्व अर्जित। तो ये जो बंटवारा के संबंध में आपने जानकारी दी, ये पैतृक संपत्ति के बंटवारे में किस प्रकार से कार्यवाही की जाएगी, इस बारे में आपने हमारे श्रोताओं को बताया
0: जी।
1: अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि नामांतरण क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती।
0: देखिए, किसी भी भूमि की खरीदी पर या पिता की मृत्यु पर उक्त संपत्ति को राजस्व अभिलेख में अपने नाम पर दर्ज कराया जाना नामांतरण कहलाता है। यदि किसी विक्रेता के द्वारा अपनी संपत्ति किसी क्रेता को बेची गई है तो क्रेता जो है विक्रेता के नाम के विलोपित कराकर अपना नाम उस संपत्ति को राजस्व अभिलेख में दर्ज कराएगा और वही नामांतरण की प्रक्रिया होगी। अब यदि यह प्रक्रिया पिता की मृत्यु या जो भूमि स्वामी है उसकी मृत्यु के पश्चात उसके वारिसानों के द्वारा कराया जाता है तो वो फौती नामांतरण की प्रक्रिया कहलाती है।
1: फौती नामांतरण, पांडे जी आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि या तो भूमि स्वामी की मृत्यु हो जाए तो ऐसी दशा में उसके जो विधिक उत्तराधिकारी हैं वो राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराते हैं बतौर

0: भूमि स्वामी, और या फिर दूसरी परिस्थिति में आपने बताया कि कोई भूखंड यदि किसी क्रेता के द्वारा क्रय किया जाता है तो ऐसा क्रेता जिस विक्रेता से संपत्ति का क्रय करता है उसे अपना नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर भूमि स्वामी दर्ज कराना होता है और इसी प्रक्रिया को नामांतरण कहते हैं, ऐसा आपने बताया। अब हमें बताएं कि यदि कोई व्यक्ति नामांतरण कराना चाहता है तो उसे क्या करना होगा?
1: सबसे पहले तो जो व्यक्ति अपना नामांतरण कराना चाहता है
0: जी,
1: उसे तहसीलदार के न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा और 110 छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के तहत उसको आवेदन पत्र देना पड़ेगा और उस आवेदन के लिए उसको बतौर साक्ष्य B1 खसरा और नक्शा अधिकार अभिलेख संबंधित दस्तावेज पेश करना पड़ेगा। यदि वह पैतृक है, पिता की संपत्ति है तो, और यदि वह खरीदी गई है तो उसको पंजीकृत विक्रय विलेख पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिसके आधार पर तहसीलदार जो है उस आवेदन को स्वीकार करेगा और फिर वो पटवारी से विधिवत जांच करने के लिए प्रतिवेदन मंगाएगा और जो पक्षकार हैं उनसे बयान होगी और फिर उस प्रकरण को वो नामांतरण के लिए आदेशित करेगा, जिस आदेश के पश्चात पटवारी जो है राजस्व अभिलेख में उसका नाम दर्ज करे। ये जो है नामांतरण की प्रक्रिया संपूर्ण माना जाएगा।
0: बड़े ही सरल शब्दों में आपने हमारे श्रोताओं को नामांतरण की विधिक प्रक्रिया के संबंध में बताया। पांडे जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने देखा है गांवों में अक्सर छोटे छोटे जो विवाद होते हैं वो सीमा को लेकर होते हैं, तो इन विवादों की रोकथाम के लिए या ऐसे विवाद उत्पन्न ना हो, और ऐसे विवाद यदि उत्पन्न होते हैं तो उनके निराकरण के लिए किस प्रकार की व्यवस्था विधि में है, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: इसके लिए भी सीमांकन की जो प्रक्रिया होती है वह हमारे छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता में स्पष्ट इसका प्रावधान है कि आप तहसीलदार के न्यायालय में सीमांकन के लिए आवेदन पत्र लगाएंगे और उस आवेदन पत्र में संबंधित भूमि का खसरा B1 के साथ निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 129 के तहत किया जाता है। इसके पश्चात जिस भी भूमि का सीमांकन कराया जाना है
0: जी,
1: उस पर तहसीलदार के द्वारा पटवारी अथवा राजस्व निरीक्षक को नोटिस दी जाती है कि संबंधित भूमि के आसपास के भूमि स्वामियों को आप सूचना देकर उस भूमि का नापजोक करेंगे। नापजोक करने के पश्चात मौके पर ही झंडी गड़ाकर सीमांकन करते हैं और उसके पश्चात जो भूमि स्वामी ने आवेदन किया है वह और उस भूमि के आसपास में जिनकी भूमियां लगी हुई हैं वे वहां उपस्थित होते हैं, उन सभी को बैठाकर एक पंचनामा तैयार किया जाए। पंचनामा जो होता है कि जो सीमांकन की कार्यवाही जो की गई है उसका वो उल्लेख करते हुए पंचनामा तैयार करते हैं और उसी समय वे नक्शा बनाते हैं। ये नक्शा और पंचनामा की कार्यवाही संपूर्ण करके राजस्व निरीक्षक या पटवारी के द्वारा अपना प्रतिवेदन जो है तहसीलदार के कार्यालय में जमा किया जाता है और जिसके पश्चात तहसीलदार जो है उस भूमि का सीमांकन होने के पश्चात उस भूमि स्वामी को उस भूमि का सीमांकित रेखा से अवगत कराता है।
0: बहुत ही सरल शब्दों में आपने छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 129 के तहत सीमांकन की प्रक्रिया की जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। रवि पांडे जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि यदि किसी भू स्वामी के भूखंड का सीमांकन किया जाता है और ऐसे सीमांकन किए गए भूखंड पर ये पता चलता है कि किसी गैर व्यक्ति ने आवेदक भूमि स्वामी का जिसने सीमांकन हेतु आवेदन दिया है ऐसे भूमि स्वामी के भूखंड पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा यदि सीमांकन में ज्ञात होता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या प्रावधान विधि में निहित है?
1: जो भूमि किसी स्वामी के नाम पर दर्ज है और भू राजस्व संहिता के अनुसार उन्होंने सीमांकन की कार्यवाही कराई, राजस्व अभिलेख में उनके नाम पर सारे दस्तावेज हैं, फिर भी मौके पर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा यदि कब्जा कर लिया गया है तो छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 250 के अंतर्गत उसको कब्जा दिलाने के लिए या जो कब्जा किया है उसको बेदखल करने के लिए एक आवेदन पत्र तहसीलदार के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है। किसी भूमि स्वामी के भूमि पर किसी दिगर व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया जाता है तो उसके लिए भू राजस्व संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रावधानित किए गए।
0: तो ऐसा व्यक्ति अपना कब्जा प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति को किस प्रक्रिया के तहत कार्यवाही करनी होगी और वो कार्यवाही कहाँ से शुरू होगी, इस बाबत आप

0: हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: अगर किसी व्यक्ति के निजी भूमि पर
0: जी
1: किसी गैर व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया गया है तो उसके लिए उसे संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार के समक्ष छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 250 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। आवेदन पेश करने के पश्चात तहसीलदार के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित सारे प्रतिवेदन जो हैं राजस्व के जो अधिकारी हैं उनको भेजकर मंगवाया जाएगा। इसके पश्चात जो पटवारी और आरआई के द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त होगा उस आधार पर उस अवैध कब्जादारी को हटाने के लिए तहसीलदार के द्वारा आदेश किया जाएगा और उस आदेश में तहसीलदार के द्वारा अवैध कब्जाधारी को दिन प्रतिदिन जुर्माना देना ये आदेश कर सकते हैं और अगर वह कब्जा नहीं हटाते हैं तो उन्हें बलपूर्वक हटाए जाने का आदेश कार्यवाही करते हैं। उसमें भी यदि वो व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो उन्हें जेल भेजने संबंधी कार्यवाही भी किए जाने का आदेश तहसीलदार के द्वारा दिया जा सकता है।
0: अनाधिकृत कब्जे को हटाने के संदर्भ में आपने बहुत ही सारगर्भित जानकारी हमारे श्रोताओं को दी और कई बार ये देखने में आया है कि लोग शासकीय भूखंडों पर अवैध रूप से कब्जा कर लेते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि समय आने पर उनको बेदखल करने के लिए कार्यवाही की जानी पड़ती है। तो इस संदर्भ में आप हमारे श्रोताओं को बताएं शासकीय भूमि से बेदखली के लिए विधि में कौन सी प्रक्रिया है।
1: जैसे कि ये निजी भूमि में हुआ वैसी शासकीय भूमि में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और वो बेजा कब्जा कहलाता है तो उसके लिए छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही निहित की गई है। इस बेजा कब्जा को हटाने के लिए शासन के द्वारा बेजा कब्जाधारी को नोटिस जारी की जाती है और पटवारी को निर्देशित किया जाता है कि वो उक्त भूमि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करे। रिपोर्ट मिलने के पश्चात बेजा कब्जाधारी को तहसीलदार के द्वारा बेजा कब्जा हटाने के लिए निर्धारित अवधि में समय दिया जाता है। तहसीलदार के द्वारा बेजा कब्जाधारी को नोटिस दिया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता है। सुनवाई के अवसर प्रदान करने के पश्चात तहसीलदार उक्त भूमि पर यदि यह पाता है कि संबंधित व्यक्ति बेजा कब्जा करके जबरदस्ती उसमें काबिज है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसमें आदेश पारित करते हैं कि उसे बेदखली किया जाए और इस बेदखली के दौरान भी उनके द्वारा कब्जाधारी के विरुद्ध जुर्माना राशि पटाने का भी आदेश किया जाता है जो कि जो कब्जाधारी है उसके ऊपर बाध्य है। यदि वह नहीं मानता है तो उसे सिविल जेल की सजा या उस जगह से बेदखली करने के बाद जुर्माना का अदा नहीं करने पर सिविल जेल भेजने की प्रावधान है। और तहसीलदार के द्वारा जो बेजा कब्जाधारी है उसने यदि उस भूमि पर कोई निर्माण कार्य कर लिया गया है तो उसको वह उस जगह को ध्वस्त कराकर यथावत करेंगे और उस ध्वस्त कराने में जो भी राशि खर्च होगी उसको उस बेजा कब्जाधारी से वसूल किया जाएगा।
0: बहुत ही सरल शब्दों में सारगर्भित जानकारी आपने हमें दी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि संपत्ति में महिलाओं के अधिकार किस प्रकार निहित हैं, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: देखिए संपत्ति में महिलाओं के अधिकार के संबंध में हिंदू उत्तराधिकार धारा 6 में 2005 का संशोधन जिसमें पुत्रियों को सहभागीदार बनाया गया है यह जो है 20 दिसंबर 2004 के पश्चात से लागू होगा। इसमें वह भूमि आएगी जो कि 20 दिसंबर 2004 के पूर्व रजिस्टर्ड बंटवारा नामा रजिस्टर्ड वसीयत नामा अथवा रजिस्टर्ड पंजीकृत विलेख के से अंतरण किया गया है तो पुत्रियों को उक्त संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इससे पूर्व वर्ष 2004 में महिलाओं का जो अधिकार था वह सीमित था।
0: आगामी लोक अदालत कब आयोजित होनी है?
1: आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत जो है 12 सितंबर 2026 को आयोजित होगी।
0: रवि पांडे जी, बंटवारा नामांतरण सीमांकन कब्जा बेदखली और संपत्ति में महिलाओं के अधिकार से संबंधित विषय पर इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: कार्यक्रम के इस अंक में ध्वन्यांकन सहयोग दिया सौरभ केशरवानी ने, कार्यक्रम संयोजन किया डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन ने, और अब कानून की बात कार्यक्रम से अनुमति दीजिए मानस तिवारी को। नमस्कार।

0: कानून की बात इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सिविल प्रक्रिया संहिता विषय पर श्री रवि पांडे सचिव अधिवक्ता संघ बिलासपुर से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता थे श्री मानस तिवारी, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। ये आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति थी। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: इतनी रात में SMS? KYC अपडेट कीजिए, नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
2: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना से 35 लाख महिलाओं को मिला लाभ, मिशन शक्ति सेट और नशा मुक्त भारत अभियान का भी किया उल्लेख। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नारी शक्ति सम्मान समारोह में हुए शामिल, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को किया सम्मानित। सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा डंप किए गए हथियार और विस्फोटक बरामद किए और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त

0: भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों को ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दे।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों को उड़ान अंतरिक्ष तक पहुँच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर स्थित निरंजन धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी मिशन शक्ति सेट पहल का उल्लेख किया है जिसमें छत्तीसगढ़ की महिमा राजपूत भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने महिमा को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश की बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात में बस्तर ओलंपिक, मल्हार के प्राचीन ताम्रपत्र और काले हिरण संरक्षण जैसे छत्तीसगढ़ के प्रयासों का उल्लेख प्रदेश के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान के प्रति देशवासियों से उत्साह की सराहना की और कहा कि तिरंगे के 8 करोड़ से अधिक सेल्फी अपलोड होना राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री साय ने कहा कि नारी के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन से ही समृद्ध छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।
2: छत्तीसगढ़ में हम लोग हमारी माता बहनों को सशक्त करने के लिए महतारी बंधन योजना ये चला रहे हैं। आज 13,85,000 बहनों को लखपति बना चुके हैं। आज यहाँ पर महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण, और आज हमारे प्रदेश में 12 जिले में कलेक्टर महिला हैं और इस साल को हम लोग महिला गौरव, महतारी गौरव वर्ष के रूप में भी हम लोग 26 को मना रहे हैं। हम लोग नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरस्वती साइकिल योजना वो चलाते हैं, हमारी बेटियों को साइकिल दे रहे हैं।
0: बस्तर संभाग के सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा डंप किए गए हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुकमा जिले के कोंटा थाना क्षेत्र में आज बेलपोच्चा से गोमपाड़ मार्ग के पास जंगल और पहाड़ी इलाके में जिला पुलिस बल डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के जवानों ने संयुक्त सर्चिंग अभियान चलाया। इस दौरान 8 किलो वजनी 2 टिफिन बम सहित 4 बंडल कोडेक्स वायर, 10 डेटोनेटर, 17 जिलेटिन, फ्यूज वायर और बिजली के तार बरामद किए गए। वहीं नारायणपुर जिले में जिला पुलिस बल और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने कल अदनार के जंगल में सर्चिंग के दौरान माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए डंप से 10 राइफल, 2 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 13 BGL शेल, 16 कारतूस और करीब 2 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किए हैं। इसी तरह बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने कल शाम बासागुड़ा और डीआरजी की संयुक्त टीम ने ग्राम बेगड़ा पल्ली के जंगल क्षेत्र से नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। कार्रवाई के दौरान एक संदिग्ध नक्सली सदस्य को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। देश भर में आज कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच नीट पीजी परीक्षा आयोजित की गई। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड के मुताबिक परीक्षा 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 339 शहरों में 1111 केंद्रों पर आयोजित हुई। इस परीक्षा में 265,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए। हालांकि जयपुर के सीतापुरा स्थित

परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी व्यवधान के कारण 2445 उम्मीदवारों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी। इन उम्मीदवारों के लिए 5 सितंबर को जयपुर में पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र और अन्य निर्देश संबंधित उम्मीदवारों को अलग से बताए जाएंगे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 768 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटी हुई है। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद लापता लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास के संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की एक दिवसीय बैठक कल 31 अगस्त को रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित की जाएगी। उद्घाटन सत्र का शुभारंभ कृषि मंत्री रामविचार नेताम करेंगे। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू सहित वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। समापन सत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं, संगठनात्मक विस्तार और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। इससे कई नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा के तटों पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में बदली बारिश की स्थिति बनी हुई है। विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बेमेतरा, बालोद, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़, रायगढ़ और जशपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 15 अगस्त से शुरू किए गए साइबर जागृति अभियान का तीसरा सप्ताह आज से शुरू हो गया। अभियान के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट से बचाव की जानकारी देने के साथ ही पुलिस अधिकारी बनकर की जाने वाली फर्जी कॉल के माध्यम से धमकी जैसे जोखिम से बचने के उपाय बताए जाएंगे। वहीं बैंकिंग संबंधी जानकारी साझा करने के जोखिम और साइबर ठगी से बचाव के उपायों के प्रति भी लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। समान नागरिक संहिता UCC को लेकर रायपुर के गुरु घासीदास ऑडिटोरियम में 1 सितंबर को मुस्लिम समाज की बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें बुद्धिजीवियों से UCC के संबंध में सुझाव लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने बताया कि प्राप्त सुझावों को राज्य स्तरीय UCC समिति के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदेश की लोक सांस्कृतिक पारंपरिक संगीत और आधुनिक सुरों के अनूठे संगम को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से 1 से 3 सितंबर तक रायपुर के रंग तरंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 7 बजे से महंत घासीदास संग्रहालय परिसर सिविल लाइंस में होगा। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों की प्रस्तुतियों के साथ ही आधुनिक संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना से 35 लाख महिलाओं को मिला लाभ। मिशन शक्ति सेट और नशा मुक्त भारत अभियान का भी किया उल्लेख। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नारी शक्ति सम्मान समारोह में हुए शामिल। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को किया सम्मानित। सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा डंप किए गए हथियार और विस्फोटक बरामद किए। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: वह उठती हूँ तो पैसे जमा कराती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
2: प्रादेशिक समाचार आप रायपुर केंद्र से सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। शाम के 7 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग, और इस क्रम में पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं। इस गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेराय, लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम, राकेश कुमार, नागरकोरा राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या साहू, महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई, प्रीतेश संघई, भागलपुर से कमल किशोर साहू, अश्विनी, अमरदीप, पशुपति, टिंकू और मुस्कान, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। आइए सुनते हैं इस क्रम का ये पहला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का।

0: किधर है?
1: बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट।
0: ये तो झटपट काम है।
1: कैसे?
0: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
1: और बाकी चेंजेस?
0: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
1: आरबीआई कहता है
2: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
3: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है।

उस्ताद राशिद खान की आवाज़, इरशाद कामिल के लिखी बोल और संदेश हैंडल का संगीत, फिल्म जब वी मीट। इस गीत के बाद अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं। इस गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं कतिया बारा जूना बिलासपुर से, सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रियांश, कान्हा, आदित्य देवांगन, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना, आदेश कुमार काले और वसुधा वज्रसेन, ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आरव खुराना, एसके पप्पी, सहारनपुर से आशु मोची, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, ओमकार सुरलकर और जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दुर्रा बांधा, भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार, रायगढ़ बिहार से उमा राज, पवन, संजय, दीपक और कमल उमा, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, अड़ार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता, समडिल नवापारा से हैं मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु और राघव गुप्ता। आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत, फिल्म सिर्फ तुमसे। राधा पौडवाल हरिहरन की आवाज़ी इस गीत।

0: सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप। भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुने। इस क्रम में अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं और इस गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत कावड़कर, सरिता प्रिंस, एकांश कावड़कर। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टी मल्होत्रा, डी ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा साहू। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत मोदी और इफ्जाल ताज। कुठवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित राय, हैप्पी राय। नरवेल महाराष्ट्र से PS नावरकर, निर्मला, विशाल नावरकर। सौंगा मगरलोर से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन। कर्मा चौक लोहारीडी जिला कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, खुशांत, निशांत। रोहासी से मुकेश साहू, नंदिनी, मनीष, मयंक, जानकी साहू। और चिरमरी कुलरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद और कालिंदी लहरे। आइए सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये अगला गीत।

इस गीत में आवाज़ थी किशोर कुमार की, बप्पी लहरी का संगीत और अमित खन्ना के लिखे बोल। अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं और इस गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं। सावतपुर से ऋषि सिंह, रितेश कंचन, माही सिंह, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पप्पी भाटिया, मुंबई से अदीबा नाज, फातिमा, नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी, जालंधर से संदीप जतौलिया, देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश, टुक टुक प्रिंस एकांत, सुमित गावड़कर, ध्वनि गावड़कर, जालंधर से मीना कौर, मन्नत नूर, यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा श्रव्या रामटेके, भाटापारा से बचकमल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चुवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, भुवन कामरी, अवरौठी पारा भाटापारा से हैं अनीता साहू, वीना, नेहा, मोनिशा साहू, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब, अब्दुल हक, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे, कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत, सोनम वर्मा, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरित रमेश, कैदीमुड़ा रायगढ़ से हैं पुरुषोत्तम सिंह, ऊषा, ऋषभ सिंह, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना भगत, चेतन भगत, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाण, चंद्रकला रेवाण, दिल्ली शहर से अस्मा परवीन, आमना परवीन और वली भाई अंसारी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, नांदघाट कातलबोर से हैं भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वरी, रितु राजपूत, डोंगरगांव से राजपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये, कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत, सोनम वर्मा, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरित रमेश साहू। आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत। इस गीत में आवाज़ है शान और श्रेया घोषाल की, स्वानंद किरकिरे के लिखे बोल और शांतनु मोइत्रा का संगीत।

ईमेल करें, गीत सुनें। इस क्रम में अभी आपने सुना फिल्म पीके का ये गीत। इस गीत में आवाज़ें थी शान और श्रेया घोषाल की, स्वानंद किरकिरे के लिखे बोल और शांतनु मोइत्रा का संगीत, फिल्म पीके। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। 7:30 होने वाले हैं और अब दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और थाईलैंड के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल।

0: एमएस एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और थाईलैंड के बीच खेले जाने वाले टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
1: दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द टी20 क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड ऑफ द वुमेन्स एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026। Before that, listen to a special program, First Ball 20.
2: First Ball 20.
3: Having crashed out of the group stage of the T20 World Cup, nothing less than the title would be the target as India start their campaign in the Asia Cup against Thailand. Hello and welcome to First Ball 20. I am Megha and join me in the studio as my co-host is Gautam.
0: वेल एशिया कप और निगाहें जरूर रहेंगी बिकॉज अगर विमेंस क्रिकेट की बात करें तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल किया है और आज का ये मुकाबला काफ़ी अहम होने वाला है बिकॉज एक तरफ है थाईलैंड और दूसरी तरफ है भारत और मेरा साथ देने के लिए हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं दो ऐसी पर्सनैलिटी जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता है नहीं। फॉर्मर विमेन इंडियन क्रिकेटर लतिका कुमारी हमारे साथ हैं एंड एक वरिष्ठ स्पोर्ट्स पत्रकार हमारे साथ हैं मिस्टर राकेश थपलियाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। ये मुकाबला कितना अहम होगा सबसे पहले हम बात स्ट्रक्चर की भी करेंगे
3: और इस बीच टॉस के लिए दोनों कप्तान तैयार हैं, चलते हैं टॉस पे।
4: टेल्स इट इज कांग्रेचुलेशंस थाईलैंड, यू वन द टॉस, व्हाट्स योर डिसीजन एंड व्हाई?
5: वी डिसाइड टू बॉल फर्स्ट।
6: बॉल फर्स्ट, या बॉल फर्स्ट।
4: या पाचा, इफ आई कुड रिक्वेस्ट यू टू कम फॉरवर्ड, वेल यू आर बॉलिंग फर्स्ट, what sort of a target would you be looking to restrict India to?
5: Yeah, I think not more than 120. Yeah.
4: Tell us a little bit about your designated captain Narumol Choibai, who is out injured.

मुकाबले से पहले एक झटका लगा है कि उनकी कप्तान जो है वो चोटिल होने के कारण इस मैच में नहीं खेल पा रही हैं। जो स्टैंडिंग कैप्टन है थिटचाप्पा पोर्तेगोंग, वो एक बड़ी मतलब अच्छी क्रिकेटर हैं, उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और जो उनका क्वालिफाइंग टूर्नामेंट हुआ था उसमें बहुत सक्सेसफुल रही थी, 16 विकेट उन्होंने लिए थे, तो आज कप्तानी का भार शायद उनको दिया गया क्योंकि टॉस करने वो आई थी। तो पहला झटका तो थाईलैंड को लग गया है, लेकिन अब टॉस जीत के उन्होंने जो पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम के पास एक मौका रहेगा। बल्लेबाजी हमारी थोड़ी डावाडोल चली रही है T20 के अंदर, तो देखते हैं कि किस तरीके का उनका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि ऐसी टीम जिसके साथ आप ज़्यादा खेलते नहीं हैं, आपको बरसों बरस हो जाते हैं उनके साथ खेले हुए, उनके खिलाफ खेलना थोड़ा सा एक वो रहता है कि कैसे बॉलर होंगे उनके, किस तरह का वो करते हैं, तो देखते हैं कैसा करते हैं। उम्मीद है

0: आज उनको ये बेहतर मौका मिलने वाला है। आज पहली बार वो T20 में आ रही हैं, किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे, और भारतीय टीम के लिए बहुत ज़रूरी है ये एशिया कप, क्योंकि लास्ट कुछ समय से जो T20 का जो सफ़र रहा है भारतीय टीम का, वो मैं ये कहूँगी कि 50-50 रहा है। तो यहाँ पर हरमनप्रीत की जो फौज है वो ये कोशिश ज़रूर करेगी कि एशिया कप से वो एक कॉन्फिडेंस लेके जाएं, और जो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी हम फॉर्मेट्स खेल रहे हैं T20s में, वहाँ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं।
1: और सबसे बड़ी बात है, अगर दुबई की बात करें तो स्पिनर्स को कितना सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा, बिकॉज उनका एक्शन भी काफ़ी कमाल का रहना चाहिए आज की शाम।
2: देखिए, काफ़ी सपोर्ट मिलने की उम्मीद की जा रही है। कुछ जो कोच हैं अमोल मजुमदार, उन्होंने बोला भी है कल कि स्पिनर्स के लिए मदद दिखाई दे रही है, तो इसीलिए दोनों टीमों में जो है स्पिनर्स की भरमार है वैसे भी, क्योंकि दुबई में टूर्नामेंट हो रहा है, तो और दोनों टीमों के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, लेग स्पिनर्स भी हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी हैं, ऑफ स्पिनर्स भी हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं हमारे पास। लेकिन यह है कि बात के हमारी टीम क्लिक नहीं कर रही। एक अच्छी बात मुझे सबसे अच्छी लगी BCCI की, कि इस टूर्नामेंट की तैयारी के लिए 15 दिन का कैंप लगाया गया। उस कैंप में जो हमारी वीकनेसेस थी, जो वर्ल्ड कप के अंदर भी नज़र आई कि जिसमें हमने कैचेस बहुत ड्रॉप किए, फील्डिंग हमारी ख़राब थी, उस पर इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दिया गया, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश की गई है। खेल हम भले ही एशिया कप में रहे हैं, लेकिन जो हमारी निगाहें हैं ना, वो 2 साल आगे तक के लिए गई हुई हैं, क्योंकि T20 के बड़े इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होने हैं। एशिया कप होगा, उसके बाद एशियन गेम्स होने हैं सितंबर में, उसमें T20 फॉर्मेट होना है, फिर T20 के चैंपियंस ट्रॉफी होनी है 2027 की शुरुआत में, उसके बाद ओलंपिक्स होना है 2028 में लॉस एंजलिस का, वो भी T20 होगा, और उसके बाद भी T20 का वर्ल्ड कप भी होना है 2028 में। तो निगाहें हमारी आगे के टूर्नामेंट में है। प्रतीका रावल को टीम में रखना तो वो थोड़ी सी जेमिमा रॉड्रिक्स की वजह से, लेकिन खिलाड़ियों को आजमाया जाएगा, मौके मिलेंगे। हमने वर्ल्ड कप में भी देखा कि हमारे 16 खिलाड़ियों को आजमाया गया था, तो यहाँ भी मैक्सिमम खिलाड़ियों को मौके दिए जाएंगे। और अगर थाईलैंड के खिलाफ आप किसी नई खिलाड़ी को मौका नहीं देंगे, तो फिर किस टीम के खिलाफ देंगे? तो एक अच्छा डिसीजन, खिलाड़ियों को यहाँ मौके दिए जाएंगे। इस टूर्नामेंट को जीतना, हम डोमिनेट किया हमने एशिया कप में, चाहे वो 50 ओवर के फॉर्मेट से 2004 में शुरू हुआ, 2012 में जब वो T20 फॉर्मेट आया तभी थाईलैंड की टीम ने डेब्यू किया था। तो एक ऐसी चीज़ें हैं, T20 फॉर्मेट में आने के बाद हम इसमें हारे भी हैं 2 बार, लेकिन एक बड़ी बात

0: चाहे 50 ओवर फॉर्मेट रहा चाहे T20 का, हमने हर फाइनल खेला है
1: जी।
0: ये एक बड़ी हमारे पास बात है, हमारा डोमिनेंस है, उसको हमारे खिलाड़ी भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जो आपके साथ जो आपकी लेगेसी चलती है उसको आगे बढ़ा के रखना। और इस समय सबसे अनुभवी कप्तान हरमनप्रीत कौर हमारे पास हैं, उन्होंने 25 जो खेले हैं मैचेस उसमें से 23 में उन्होंने कप्तानी की है, एक अनुभवी कप्तान। और थाईलैंड के पास एकदम कम अनुभवी, जिसको कप्तानी का अनुभव नहीं होगा उतना मुझे लगता है, तो वो देखना होगा कि दोनों कप्तान किस तरीके से इस मैच को लेते हैं
1: जी। और 2024 में श्रीलंका से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, T20 का ही फॉर्मेट था एशिया कप का, उस बार भी हम नंबर 3 का यहाँ पर जिक्र कर रहे थे। समहाउ भारत की तरफ से उस पोजीशन पे काफी एक्सपेरिमेंटेशन होते रहा है इस फॉर्मेट में, खास करके जब कोई बड़ा टूर्नामेंट शुरू हो जाता है तब।
2: मुझे लगता है कि ये एक सही टाइम भी बोलूँगी कि एक्सपेरिमेंट आपको करना है, क्योंकि आप अभी वर्ल्ड कप से निकल के आए हैं, आपको अपनी टीम की खामियां भी पता है, आपको ये भी पता है कि आपको कहाँ काम करना है। और मुझे लगता है कि प्रतिका रावल जिस तरीके के सिलेक्शन किया गया है, उनको ये चांस दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन इन फ्यूचर आती है, कोई प्लेयर इंजर्ड होता है या किसी वजह से अनअवेलेबल उस टाइम पर है, तो आप क्या उस टाइम पे प्लेयर्स को रखते हैं वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि ये एशिया कप बड़ा क्रूशल होने वाला है भारतीय टीम की, अगर सोच के हिसाब से मैं बात करूँ। और आई होप मैनेजमेंट कोचिज सब इस चीज़ को देख रहे हैं कि यहाँ से आगे का सफ़र आप किस तरीके से तय कर सकते हैं। भारतीय टीम में बहुत ऐसे प्लेयर्स की खोज हुई है पिछले कुछ टाइम से, और उन सभी को हम जानते भी हैं, बहुत अच्छा वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ये एशिया कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कुछ प्लेयर्स के लिए कि यहाँ से वो अपनी जर्नी को और लंबा कर सकते हैं भारतीय टीम में।
3: देखिए, सबसे बड़ी बात है अगर स्ट्रक्चर की बात करें, खासकर वर्ल्ड कप के बाद जो है और स्टेट में अगर हम देखें तो फिर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है कि विमेंस बढ़ चढ़ के आई हैं। वहीं अगर थाईलैंड की बात करें तो शुरुआत आगाज अच्छा हुआ है, लेकिन हाँ अगर कंपेरिजन इस चीज़ में करें कि वहाँ पर कितना डेवलप्ड है क्रिकेट और इंडिया उस मामले में भी आगे है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे कंपैरिजन जो हम बातें करते आए हैं शुरुआती दौर में, वो क्वेश्चन मार्क क्या आज लगेगा आज के मुकाबले पे कि थाईलैंड शुरुआत अच्छी हुई, ये भी अहम होगा मुकाबले।
0: देखिए, दोनों का कंपैरिजन तो कर नहीं सकते, हिंदुस्तान में जितनी क्रिकेट होती है उतनी तो वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के अंदर नहीं होती, चाहे वो मेंस क्रिकेट की बात करें चाहे विमेंस क्रिकेट की बात करें। और विमेंस क्रिकेट को जो इतना बढ़ावा दिया गया है कि तमाम स्टेटों में अब तो T20 की जो लीग्स भी हो रही हैं और उनके जो टूर्नामेंट्स हैं नेशनल लेवल के, वो भी बड़े मतलब ध्यान से हो रहे हैं, पहले की तरह नहीं हो रहे। मैंने तो एक ज़माना जो 90s का देखा, जब डायना डुलजी हिंदुस्तान की कप्तान होती थी और किस तरह से विमेन क्रिकेट चलता था, और आज जो मैं देखता हूँ जिस तरह से शॉट्स लड़कियाँ खेल रही हैं, तो मुझे तो भरोसा नहीं होता कि किस तरीके से 1-2-3 करके स्टेप आउट करके सिक्स मारना लॉन्ग ऑफ के ऊपर, तो बहुत मतलब गजब का लगता है वो शॉट्स, उस तरीके से उनका खेलना, उनके अच्छा स्किलफुल भी हैं अच्छे, जैसे दिल्ली प्रीमियर लीग में हम देख रहे हैं कभी कल ही एक लड़की ने पूनिया ने सेंचुरी बनाई है, पहली बार सीजन में सेंचुरी भी बनी। और एक लड़की रावल, उसने मेडन ओवर भी फेंका T20 के अंदर, मेडन ओवर फेंकना जबकि एक लड़की इतनी आपकी पिटाई कर रही हो कि वो सेंचुरी बना रही हो उसके खिलाफ आप मगर मेडन ओवर फेंकते हैं, तो ये बड़ी चीज़ है। दोनों तरह की हमारे जो खिलाड़ियों की प्रतिभा वो निखर रही है, तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है ऐसे पुल शॉट्स खेलना उनके, बहुत ज़बरदस्त। और फास्ट बॉलर्स को आगे निकल के स्टेप आउट करके मारना, वो ऐसा तो मैंने विमेंस क्रिकेट में पहले कभी नहीं देखा। हमारी बड़ी ग्रेट खिलाड़ी पहले भी हुई हैं, संध्या अग्रवाल जैसी बल्लेबाज हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त वो खेलती थी, सब कुछ था, लेकिन जिस तरह की अब बल्लेबाजी हो रही है तो बहुत अटैकिंग हो रही है। लड़के और लड़कियों के मैच में थोड़ा सा अंतर नज़र आता है ताकत का, लेकिन जो जिगरा है ना वो लड़कियों का बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है जो पहले नहीं दिखाई देता था। और वही चीज़ आप देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी, जब हम हरमनप्रीत को देखते थे कुछ साल पहले भी, कि जिस तरीके के वो शॉट्स मारती थी, जिस तरीके के उनके पुल शॉट्स होते थे, बहुत गजब के होते थे, आज भी वो 37 साल की उम्र में हिंदुस्तान की कप्तानी कर रही है, और मौका मिलने पर T20 इसमें तो एक प्लेयर आपको बदल के रख देता है। लेकिन मैं ये देखना चाहूंगा, मुझे बैटर के साथ उतनी दिक्कत नहीं, कि हमारे जो गेंदबाज हैं वो किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि जब आपको अनुभवी स्पिनर्स आपके पास मौजूद हैं, फास्ट बॉलर्स आपके पास बहुत है, वैरायटी बहुत है हमारी टीम के अंदर, और कोच को थोड़ी 11 चुनने में दिक्कत भी आती होगी कि भाई किसको रखें बाहर किसको अंदर करें टीम के अंदर, लेकिन जब आपके पास इतने वेरिएशन वाले खिलाड़ी हैं, अब तो आपके पास लेग स्पिनर भी एक आ गई है टीम के अंदर, तो ये काफी चीजें हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छे हैं आपके पास, ऑफ स्पिनर्स अच्छे हैं, वो फील्डिंग वाला जो डिपार्टमेंट है मुझे लग रहा है उसकी मजबूती वो दिखाई देगी पहले मैच से ही कि भाई हमने जो कैंप लगाया उसमें किस तरह की तैयारी की।
3: देखिए पावर हिटिंग की आपने बात की और एक पावर

0: हिटर हमारे साथ भी बैठी हुई हैं, लतिका कुमारी, उनसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से कप्तान ने कहा, भारतीय कप्तान ने कहा है कि कमबैक करने का सही समय है, यहां पर वो गैप जो हम देखते हैं ना कि पिछले 3 मैचेस हुए हैं थाईलैंड के अगेंस्ट और जो जीत का फर्क है वो 74-66 इतना ज्यादा फर्क है, वो आज भी देखने को मिलेगा?
1: देखिए मुझे लगता है कि बिल्कुल देखने को मिलेगा और जो स्टैंडर्ड हाई किया है भारतीय टीम ने पिछले कुछ सालों में वो हमने देखा भी है और सर ने भी बिल्कुल सही कहा कि ग्राउंड लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे बहुत अच्छा क्रिकेट आज के टाइम पे चल रहा है। अगर हम वुमेंस की बात करें ऑलमोस्ट हर स्टेट में आपकी लीग स्टार्ट हो चुकी है और ये एक जगह है जहाँ पर आप पीछे से प्लेयर्स तैयार कर रहे हैं, वो एक कॉन्फिडेंस देता है कि आपकी मेन टीम जो है वहाँ पर अगर कभी भी कुछ, जैसे कि अभी जमीमा रॉड्रिक्स इंजर्ड हुई तो प्रतिका रावल वहाँ तैयार रही हैं, तो ये बैकअप आपके पास हमेशा रहता है और इसकी वजह से क्या है, हेल्दी कॉम्पिटिशन डोमेस्टिक सर्किट में चलता रहता है और तो हमारे जो इंडिया प्लेयर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि आपको परफॉर्म करते रहना होगा और T20 जैसा जो फॉर्मेट है वहाँ पर जिगरे की भी ज़रूरत है, ताकत की भी जरूरत है और स्ट्रेटजीज की भी जरूरत है, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है एशिया कप जहां से हम इन सब चीजें हैं जो हमें पिछले कुछ मैचेस में परेशान किया है उनको किस तरीके से ओवरकम करें, जो कैंप लगा है वहाँ किस तरीके की तैयारियां हैं वो आज के मैच में पता चलेगा, उनकी प्लानिंग्स, उनके एग्जीक्यूशंस क्या करना चाहते हैं, गेंदबाजी जिस तरीके सर ने कहा कि अच्छे कॉम्बिनेशन है हमारे पास लेकिन थोड़ा सा अगर पेस की बात करूँ तो वहाँ थोड़ी तकलीफ नज़र आती है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हमें कोई ऐसा इफेक्टिव गेंदबाज वहाँ नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से अच्छी शुरुआत कर पाएँ। T20 मैचेस में हमारे रन्स लीक्स होते हैं जब इनिंग की शुरुआत होती है, तो वो एक थोड़ा सा मुझे लगता है कंसर्न है भारतीय टीम के पास के किस तरीके से अटैक वो गेंदबाजी में देखते हैं, किन को अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मिलने वाली है, तो वो सारी चीज़ रहेंगी। ये पूरा एशिया कप अगर मैं पर्सनली देखना चाहूँगी तो मैं गेंदबाजी पे ज़्यादा फोकस करूँगी क्योंकि बल्लेबाजी मुझे लगता है हम सक्षम हैं किसी भी तरीके का स्कोर खड़ा करने के लिए या किसी भी स्कोर को हम चेज करने के लिए।
2: बिल्कुल, और इस बीच हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि अगर वो हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 011-234-21084 और 1085। इस बीच राकेश, चर्चा चल रही थी पेस डिपार्टमेंट पर और हमने देखा है कि वर्ल्ड कप में तो खास करके केवल 5 विकेट निकाले पेसर्स ने, लगातार चॉपिंग एंड चेंजिंग हो रही थी उसमें और जिस कारण भी इफेक्टिवनेस उतनी नहीं देखने को मिली, सबसे कम थे 5 विकेट।
3: नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो हमारा तेज बॉलिंग का डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा अनसेटल्ड लगता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये मैच, इस मैच से पता चलेगा आपको क्योंकि जो कैंप लगाया गया, तैयारी की गई, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पहले ये परंपरा थी कि किसी बड़े टूर्नामेंट, बड़ी सीरीज से पहले तैयारी की जाती थी, तो तैयारी के साथ टीम यहाँ पर उतर रही है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से जो कमियाँ रही हैं तेज गेंदबाजी की भी उसके ऊपर ध्यान दिया गया होगा।
0: बिल्कुल, और प्लेइंग 11 की भी बात करेंगे, खासकर ग्रुप ए की भी बात करेंगे, उस पर भी निगाहें काफ़ी टिकी हुई हैं बिकॉज आने वाले मुकाबले तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, और सबसे ज़्यादा अगर निगाहें होंगी तो वो पूथा वॉन्ग पर होंगी जिन्होंने 10 मैचों में 20 विकेट लिए हैं, तो यस, वो गेंदबाजी की धार क्या थाईलैंड की तरफ से देखने को मिलेगी? लतिका मैम,
1: देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से थाईलैंड ने पिछला मैच खेला है और वहाँ उनकी गेंदबाजी हुई है, उनके स्पिनर्स का जो दबदबा रहा है, सिर्फ एक ही मीडियम पेसर को उन्होंने अपनी टीम में रखा, अपनी गेंदबाजी में रखा और बाकी के ऑफ स्पिनर भी, लेग स्पिनर भी, लेफ्ट आर्म सब वहाँ रहे और विकेट लेने ले पाए उस मैच में, तो थोड़ा सा ये चीज़ देखनी होगी कि हमारे बल्लेबाज, जो कि हम कहते हैं कि अगर भारतीय टीम होती है तो स्पिन अच्छा खेलते हैं क्योंकि हमारे पास भी वो बेहतर स्पिन अटैक है, तो ये थोड़ा सा मैं देखना चाहूँगी कि हमारे बल्लेबाज उन स्पिनर्स को कैसे टैकल करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि एक छोर से पेसर अगर आ रहे हैं तो दूसरे छोर से आपको स्पिन अटैक ज़रूर मिलेगा
2: और अटैक में विविधता बहुत जरूरी है, इसीलिए प्रश्नों में भी विविधता के लिए हम अपने श्रोताओं से जुड़ते हैं। तो पहले श्रोता,
4: आइए सुनते हैं अब इस गीत को फिल्म छोटी सी बात से, आवाजें यशुदास और आशा भोसले की, गीत के बोल योगेश के और संगीत सलील चौधरी का।

0: अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: नमस्कार, भारत और थाईलैंड के बीच विमेन्स एशिया कप 2026 में आज मुकाबला खेला जा रहा है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर, और ये इस टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला है। भारत अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर उतर रहा है और इस मुकाबले में टॉस जीता है थाईलैंड की कप्तान ने, और टॉस जीत करके उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। इस लाइव कमेंट्री के साथ मैं हूं मोहम्मद इकबाल, मेरे साथ अंग्रेजी में आंखों देखा हाल सुनाएंगे पंकज अठावले, स्कोरर हैं रजत सिन्हा और स्टैटिस्टिशियन हैं ओपी शर्मा। आप तमाम साथियों का, आप तमाम श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। फिलहाल भारतीय प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी इस वक्त मैदान पर पहुंच रही है, और आज भारतीय टीम जिस प्रकार से इस प्लेइंग 11 का अगर हम जिक्र करें तो भारतीय टीम में आज स्मृति मंदाना, शिफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर कप्तान, भारती फूलमली, ऋचा घोष विकेटकीपर, दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़ और नंदनी शर्मा, ये भारत की प्लेइंग 11 है आज के मुकाबले में। प्रतिका रावल आज अपना पदार्पण कर रही हैं भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में, और ये पहला मुकाबला होगा उनका भारत की जानिब से। भारतीय टीम की तरफ से प्रारंभिक जोड़ी स्मृति मंदाना और शिफाली वर्मा मैदान की तरफ पहुंच रही हैं, और इस वक्त समय है अपने साथी कमेंटेटर पंकज अठावले का स्वागत करने का। पंकज, बहुत बहुत स्वागत।
2: Thank you very much. Good evening to all our listeners on Akashwani. What a day it is as Panita Maya for Thailand will be starting the proceedings. Thailand women winning the toss and deciding to bowl first at this wonderful and a very iconic venue, the Dubai International Stadium. The Ring of Fire, Iqbal, is ready, and the Indians will be up there. The most important point here is Thailand, the girls are giant killers. They have done something big in the past, and this will be a fantastic experience for them as the evening sun sets down on the western horizon in Dubai.
1: Smriti Mandana, 172वां मुकाबला, 4538 रन, और वहीं शिफाली वर्मा 112वां मुकाबला खेल रही हैं, 2901 रन उन्होंने बनाए हैं, और बेहतरीन स्ट्राइक रेट रही है स्मृति मंदाना के साथ साथ शिफाली वर्मा का भी। इस वक्त तमाम जो फील्डर्स हैं उनमें से ज्यादातर फील्डर्स 30 गज के, जो कि वुमेन्स क्रिकेट में 25 गज का दायरा होता है, वो 25 गज के दायरे के अंदर नजर आ रही हैं, और सिर्फ दो खिलाड़ी हैं जो बाउंड्री लाइन पर नजर आ रही है। पहली बॉल के साथ तैयार है गेंदबाज, पहली गेंद लेग और मिडिल स्टंप पर थी, और इस पहली बॉल को बल्लेबाज ने
3: अनक्लेम डिपॉजिट का।
4: अनक्लेम डिपॉजिट मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
3: RBI कहता है जानकार बनिए,
4: सतर्क रहिए।
5: मोर देश के मयारुक रवैया हो, जोहार। मन की बात के ये नवा कड़ी मा आप सबो मन के मैं एक घाव फेर स्वागत करत हूँ। आप सबो मन जानता हो कि ये एक ठन ऐसन मंच है

0: यहाँ हम नवा प्रयास मन ल आघूम लांथन, देशवासी मन के नवाचारी विचार ऊपर चर्चा करथन। एमेले कतकोन विचार मन ऐसन होते जेखर पाछू लोगन मन ह जिंदगी के अथक ऊर्जा लगाए होते। संगवारी हो, कुछ बखत पाछू सोशल मीडिया मा कोनो लिखे रहिस, आषाढ़ी एकादशी के पवित्र मौका मा मुला ये बतावत बहुते खुशी होवत है कि इतिहास ल रोचक बनाए के अपन प्रयास के शुभारंभ करत हूँ। ये मन आगू बताइन, ये विचार बहुते साधारण है। आप मन ये वेबसाइट में जावाओ और कोनो भी एक ठन बछर चुनाओ। यहाँ आप मन ल सुभित्ता ले पता चलही कि वो बखत भारत के कौन हिस्सा मा काखर शासन रहिस। मुला घलो ये बहुते रुचिकर लगिस। मैं सोचे हूँ कि एकर बारे मा और ज्यादा जानकारी ले जाए। मुला पता चलिस कि ये काम मुंबई के रहैया श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी करे हैं। मजा के बात ये है कि कृष्णा जी मन ये वेबसाइट के नाव घलो बहुते साधारण रखे हैं, www.bharatraj.com। ये मन जिन प्रयास करे हैं उखर जानकारी आप लोगन मन तक घलो खचित पहुंचना चाहिए। यही पाए के मैं सोचे हूँ कि का है ना सोझे श्री कृष्णा जी ले गोट करे जाए। संगवारी हो, कृष्णा जी हमार संग फोन में जुड़त हैं। कृष्णा जी जोहार।
1: जोहार सर, जोहार।
0: भाई मुला पता चले है ना आप मन तकनीकी के दुनिया ले हाओ, ना आप मन इतिहास के शिक्षक हाओ, तभो ले आप मन तकनीकी के प्रयोग करके इतिहास के साइट बना डाले हो। तब मुला बहुते उत्सुकता है ये सब कैसे होइस।
1: धन्यवाद सर, आप मन ले गोट करना मोर बहुते बड़का सौभाग्य है। तो सर मोर बारे में अगर मैं थोकिन बतावाऊं तो सर मैं एक इंजीनियर रहे हूं, फिर मैं MBA करे हूं, फिर मैं मार्केटिंग क्षेत्र में चले गए हूं, फिर जब भी मैं ये सब करत रहे हूं तब घलो मोला नानपन ले इतिहास में बहुत रुचि रहिस। तो मैं इतिहास में कुछ रुचिकर करना चाहत रहे हूं और मोला ये घलो लगिस कि हम जैसे इतिहास सिखाथन ओमें हम बहुत सुधार कर सकत हन, ओमे हम बहुत अकन बदलाव लेके आ सकत हन। इतिहास ला एक ठन कहनी बना के लोगन मन तक पहुंचा सकत हन।
0: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास के ऐसे कौन से पहलू है जेखर बारे मा आप मन ला लगीस कि एखर जानकारी ज्यादा ले ज्यादा लोगन मन ला होना चाहिए।
1: सर अगर हम भारतीय इतिहास जैसे हमारी स्कूल कॉलेज में सिखाए जाते, जैसे आप मन देखता हो वो एक ठन कोनो एक साम्राज्य या कोनो एक राजसत्ता ओखर दृष्टिकोण ले ओखर नजरिया ले सिखो जाते और वो साम्राज्य मल्ला असीमित ध्यान आकर्षण घलो मिलते। ये चक्कर में बाकी के बहुत अकन हमर साम्राज्य जैन महान साम्राज्य रहिन जैसे चोल पल्लव कारकोटा राजवंश रहिस कश्मीर में, अहोम्स रहिस जैन मन कम से कम 600 बछर तक असम में अपन संस्कृति अपन मूल्य प्रणाली ले स्थापित रखिन। ये सबों के बारे में हमन नहीं जानन, तब मैं सोचे हूं कि कोनो ऐसन साइड बनाया जाए जैन ऐसन महान साम्राज्य मन के घलो लोगन मन ले परिचय करा सके।
0: कृष्णा जी आप मन अतका मेहनत करत हो, मैं ऐसने आपन ले काल्पनिक सवाल पूछत हूं। अगर आप मन ल भारतीय इतिहास के कोनो भी तीन मनखे मन ले गोट बात करे के मौका मिले तो आप मन कौन ले बात करना चाहू और काबर।
1: हाँ सर, तो पहली मैं गोट करूं राजा राजा चोला या राजेंद्र चोला। सर ये मन चोला साम्राज्य के सबले ताकतवर या सबले महत्वपूर्ण राजा मन मले रहिन। तब मैं वो मल्ले जानना चाहूं कि पहली वो मल्ला ये दृष्टि कैसे आईस, जैसे वो मन बृहदेश्वर मंदिर या गंगई कोंडा चोलापुरम जैन बड़का बड़का मंदिर है, शिव जी के मंदिर है, ओला बनाए के दृष्टिकोण कहाँ ले आईस, वो योजना कैसे बनीस, वो मल्ला वो विचार कैसे आईस कि हमन ऐसन कुछ बना के जावन जैन अवैया हजार या 2000 बच्छर तक आने लोगन मल्ला प्रेरित कर सके। तब वो मोला वो मल्ले जानना है। और दूसर व्यक्तित्व है

0: ये सिरतोन मा मोर हिसाब ले भारतीय इतिहास मा एक बहुते कम आके गे व्यक्तित्व है। सर ओखर नाव है हेमू। हमन उखर बारे में भारतीय इतिहास में ज्यादा ले ज्यादा दुवे तीन लाइन पढ़थन। हमन ला ये पता नहीं है कि वो जेन हेमू रहीस वो एक सामान्य व्यक्ति रहीस, एक साधारण इंसान रहीस, वो एक व्यापारी रहीस। वो मन वहां एक साम्राज्य खड़ा करीस और वो न सिर्फ एक साम्राज्य निर्माता रहीस, भलुक एक सैन्य विचारक घलो रहीस, सैन्य विद्वान रहीस, जेन अपन काल मा 23 लड़ाई लड़ीस, ओमेले 22 लड़ाई वो मन जीतीन। उखर सोच प्रक्रिया कैसन रहीस और वो एक आम आदमी ले अतका बड़का राजा बनीस। उखर यात्रा ला जाने बर बहुत दिलचस्पी रखता हूं सर। और तीसर जेन है वो बहुते रुचिकर व्यक्तित्व है, वो एक जन महिला है सर, त्रिभुवन महादेवी। ता ओडिशा मा एक साम्राज्य है जेकर नाव रहीस भौमाकारा राजवंश। ता इखर कहनी घलो बहुते रुचिकर है। वो मन जब 850 ईस्वी के नजीक जेन बछर में उखर पड़ोसी पाला साम्राज्य है उखर साम्राज्य ऊपर धावा बोल दे रही सर, और उखर राजा जेन मन उखर पति रहिन वो मन वो लड़ाई में शहीद हो गए रहिन, और उखर कारण वो साम्राज्य बहुते छोटे हो गईस। और उखर जेन सरदार रहिस, उखर जेन नेता मन रहिन, वो मन साम्राज्य छोड़ के जाए लगे रहिन। ता ये जेन त्रिभुवन महादेवी जेन महिला रहिस वो मन सरकार ला संभालिन, और वो मन भारतीय इतिहास के पहली स्वतंत्र शासिका बनीन। और वो मन सरकार ला न सिर्फ स्थायी करीस भलु कोला अतका शक्तिशाली बना देस कि वो अवैया 100 बच्छर तक कलिंगा और वो क्षेत्र में राज करत रहीस। ता ये तीन रुचिकर व्यक्तित्व मन है जेन मन ले इतिहास मा मैं भेंट करना चाहूं सर।
1: कृष्णा जी आप मन ला अब लगते कि इतिहास ल जियत हो, आप पूरा रकम इतिहास मा बुड़ चुके हो। देखो मैं घलो बड़ उत्सुकता के संग आपके साइड देखे हाँ, और मुला सबले रुचिकर ये लगीस कि आपके साइट मा एक ऐसन टैब है जिहां लोगन मन सुधार और सुझाव घलो दे सकत हैं। ऐसन रचनात्मक प्रतिक्रिया बर खुला रहना ये अपन आप मा बहुते बड़का बात है। का आप मन ला लोगन मन ले सुझाव मिलना चालू हुए है, और आप मन ओखर ऊपर कैसे काम करत हो?
0: हाँ सर, लोगन मन ले बहुत अकन सुझाव आते सर। सुझाव दो प्रकार के आते। एक सुझाव वैसन आते जेन हमन ला सुधार करे के सुझाव देते, ये प्रदेश मा, ये बखत मा, ये देश मा ये राजा रहीस, या ये बखत मा ये युद्ध होए रहीस। ता ऐसने कुछ सुझाव आते। दूसर सुझाव आते कि आपन ये वेबसाइट में ये फीचर डाल सकत हो या वो फीचर डाल सकत हो। तो हमर मन करा दोनों रकम के सुझाव आते। जैसे अगर हमर बर ऐसन सुझाव आए कि ये प्रदेश में ये राजा है ये बखत में राज करे रहीस, तो हम वो सुझाव ला ले लेथन। तो हमर जेन स्रोत है, जैसे हमर ला कोनो सुझाव दे रहीस कि आप मन भारत ला तो दिखा दे, फिर प्रदेश स्तर में घलो दिखाते हो तो बने हो ही, तो हमन वो फीचर लागू कर देन। और फिर दूसरा फीचर है जेमे हमन जम्मू राजवंश मन के आंकड़ा सांख्यिकी दे के एक ट्रम्प कार्ड जैसन बनाएन, ताकि वो लड़का मन तक पहुंच सके। कोनो है एक सुझाव दे रही कि एला आप मन एक ठिया ऊपर लेके आवो जेखर ले हम सबो मन ओला डाउनलोड करके साझा कर सकन, तो हमन वो फीचर घलो लागू करथन। हमन ला अतके जानना महत्वपूर्ण है कि हम गलती करबो, काहे कि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं हन, और वही जान के हमन वो सुधार वाले टेब लगाएं जेकर ले ये हम सब्बो मन के साइड बनाए, और आगू जाके सब्बो अंशदाता मन के हिसाब ले हमन एक ठन ऐसन साइड बनावन जेन अवैया कुछ बच्छर तक इतिहास ला एक मजेदार विषय बनावे।
1: कृष्णा जी आप मन सिरतोन मा एक बहुते बड़का काम करे हो। अच्छा इतिहास के अलावा आप मन के कईयों अकन रुचि हो ही, और बहुत कुछ करत हो आपन?
0: नहीं सर, थोकिन उबाऊ किस्म के मनखे हो मैं। मैं तकनीकी और इतिहास में बहुते दिलचस्पी रखता हूँ, और अब

0: तकनीकी अउ इतिहास मिल गे, इही में मैं पूरा दिन बुढ़े रही थो।
1: चलो कृष्णा जी, आप मन ला मोर गाढ़ा गाढ़ा शुभकामना है। आप मन एक अच्छा शुरुआत करे हो, और आपके तरीका घलो ऐसन है कि लोगन मन जुड़ी, मोला पूरा विश्वास है। मोर कोती ले आप मन ला गाढ़ा गाढ़ा शुभकामना। संगवारी हो, कृष्णा जी के ये प्रयास खाली इतिहासे के विद्यार्थी मन पर नहीं है, भलुक ये हम सबो मन ला अपन अतीत ला रोचक तरीका ले जाने में मदद करी। आप मन करा घलो ऐसन प्रयास मन के बारे में जानकारी होवे तो उला खचित साझा करो। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये अभियान ये बखत जम्मो देश में तेजी ले आगू बढ़त है। एकर लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत अकन लोगन मन, विशेषकर हमर युवा मन, बहुते बड़का संख्या में एकर हिस्सा बनत हैं। आखिरकार ये भारत के युवा मन के स्वास्थ्य, उनकर खुशहाली और उज्जर भविष्य खातिर हमर सामूहिक संकल्प है। संगवारी हो, नशा के लत खाली एक मन के ला अपन लपेटा में नहीं लेवे, एकर दुष्परिणाम जम्मो परिवार और समाज ला घलो झेलना पड़ते। मैं वो लोगन मन के सराहना करूं जिन मन ड्रग्स के विरुद्ध आने मन ला जागरूक करते और नशा के लत ले जूझत मन के सहायता में आगू आते। नशा मुक्त भारत खातिर का आप मन कोनो सशक्त नारा बना सकत हो? का हमर युवा संगीतकार मन ऐसन गीत बना सकत हैं जिमें नशा मुक्त जिंदगी के संदेशा हो? का विद्यार्थी और नाट्य दल मन हृदय ल छुए वाला नाटिका लिख सकत हैं जिमें नशा के खतरा के संगे संग वहां ले बाहर निकले के रद्दा घलो होए? हमर देश में बेहतरीन रचनाकार मन के कमी नहीं है। मोर आग्रह है कि वो मन आने आने भाखा में ऐसन रचना करें जेखर ले ये दिशा में समाज ल मदद मिले। आप मन अपन प्रयास मन ला हैशटैग के संग सोशल मीडिया में खचित साझा करो। कईयों बार रचनात्मक प्रयास औपचारिक अभियान ले ज्यादा असरदार होते। आवाओ भारत के युवा मन ला नशा ले दुरिया रखे, नशा ले मुक्त रखे, ये पवित्र कार्य में हम सबो मन अपन भूमिका निभावन। आप मन अपन प्रयास ल हैशटैग नशा मुक्त युवा के संग सोशल मीडिया में घलो खचित साझा करो। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, अगस्त के महीना में हमन ला हर कोती देशभक्ति के अनेक रंग देखे ला मिलते। ये बखत हर मनखे के मन में राष्ट्र प्रेम के भावना औ प्रबल हो जाते। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और भारत छोड़ो आंदोलन के वर्षगांठ ले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इला खास बनाते। स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये मौका त हर देशवासी ल गर्व ले भर देते। हर घर तिरंगा अभियान ये भावना ल और मजबूत करते। वंदे मातरम के 150 बछर पूरे ले ये बछर और विशेष बन गए है। ये दारी 8 करोड़ ले ज्यादा तिरंगा सेल्फी अपलोड करेगी इस, और तिरंगा के ये उत्सव खाली भारते तक सीमित नहीं रहीस। ये बछर सूर्य पथ तिरंगा के माध्यम ले हमर तिरंगा दुनिया भर के एक ठन अनोखा यात्रा में निकलीस। फिजी के सुआ में सूरज के पहली किरण के संग तिरंगा फहराए गईस। एकर बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक भारतीय मिशन और पोस्ट में तिरंगा फहराए गईस। आप मन कल्पना कर सकत हो ये दृश्य कथ का अद्भुत रहे हो ही। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगू बढ़त गईस, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा घलो लहरावत गईस। ऐसने प्रयास मन समाज ल एक सूत्र में पिरोथे। एकर ले देश के संग घलो हमर जुड़ाव औ गहिर होते। ये प्रयास मन में सम्मिलित सबो लोगन मन ल मोर गाढ़ा गाढ़ा बधाई। मोर देश के

मयारुक रहवैया हो। हमर शहर और कस्बा मन के सड़क मा रोज बिहनिया ले संझा तक लाखों माई लोगिन मन अपन अपन काम में जुटे रहते। कोनो साग सब्जी बेचते, कोनो फल, कोनो चाय के ठेला लगाते, त कोनो फूल दिया और पूजा के सामान बेचते। कईयों दारी खाली थोकिन पूंजी के कमी उनकर कारोबार ला आगू बढ़े ले रोक देते। फिर अब ऐसने लाखों दाई बहिनी मन ला पीएम स्वनिधि योजना ले नवा ताकत मिलत है। महिला सशक्तिकरण के ये पहलू के उतका चर्चा नहीं होए जतका होना चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी मन मा करीबन 46% माई लोगिन मन है, माने देश भर मा लगभग 35 लाख माई लोगिन मन ये योजना ले जुड़ के अपन कारोबार ल आगू बढ़ावत हैं। संगवारी हो, गाजियाबाद के बबीता शर्मा जी एकर बहुते अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा के सामान के एक नानुक स्टाल लगावत रहें। फूल दिया अगरबत्ती नारियल जैसन जिनिस बेच के वो अपन परिवार के आजीविका मा हाथ बटावत रहें। मेहनत खूब रहिस, फिर कारोबार बढ़ाए बर पूंजी के जरूरत रहिस। पीएम स्वनिधि ले वो मन ला आर्थिक सहायता मिलिस, वो मन अपन स्टाल मा जिनिस बढ़ाइन, कारोबार के विस्तार करिन, ग्राहक मन बढ़िन, आमदनी बढ़िस और धीरे धीरे सड़क किनारे के उनकर नानू की स्टाल एक दुकान में बदल गईस। संगवारी हो, बेंगलुरु के टीएस निनगम्मा जी के उदाहरण घलो बहुते प्रेरक है। निनगम्मा जी और उनकर पति मिल के इडली डोसा और सांभर बेचे के नानू काम शुरू करिन। काम चल पड़िस, फिर एला आगू बढ़ाए खातिर पूंजी के जरूरत रहिस। निनगम्मा जी ला घलो पीएम स्वनिधि ले सहयोग मिलिस। वो मन अपन ठेला गाड़ी ला बेहतर करिन, सामान थोक में बिसाना शुरू करिन और मीनू मा घलो कईयों नवा जिनिस जोड़िन। ग्राहक मन बाढ़िन, कमाई बाढ़िस और परिवार के आर्थिक स्थिति बेहतर होइस। आज वो मन अपन 3 ठन लड़का मन ला बेहतर शिक्षा दे मा सक्षम हुए हैं। संगवारी हो, जब एक महिला के कारोबार बाढ़ते ता ओखर संग जम्मो परिवार के भविष्य आगू बाढ़ते। लड़का मन के शिक्षा बेहतर होते, घर के जरूरत पूरा होते और माई लोगिन के भीतरी आत्मविश्वास और मजबूत होते। यही त है महिला सशक्तिकरण के एक जियत जागत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम ले जुड़े जम्मो बहनी मन के उज्जर भविष्य खातिर बहुते शुभकामना देवत हूँ। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, स्वच्छता के एक बहुते बड़का खूबी होते। जब कोनो ठियाला स्वच्छ राखे के संकल्प वहां के लोगन मन के अपन संकल्प बन जाते, तब बदलाव खाली साफ सफाई तक सीमित नहीं रहे, एकर ले वो ठिया के पूरा चिन्हारी बदल जाते। देश के आने आने हिस्सा मा स्वच्छता खातिर ऐसन प्रयास हमन ला सरलग प्रेरणा देते। उत्तर प्रदेश के रामपुर मा एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाव के 2 जन दोस्त मन देखिन कि उनकर तीर तखार के क्षेत्र गंदगी ले भर गए है। बस फिर का रहिस, आकाश और रोहन कचरा के झोला उठाइन और सफाई बर निकल पड़िन। धीरे धीरे दूसर युवा मन घलो उनकर संग जुड़े लागिन। एक टीम घलो बन गईस जेखर नाव है क्लीन अप पटवाई। ये युवा मन अब तक 4 गंगा घाट मन ला साफ कर चुके हैं, 1 टन ले ज्यादा प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। वो मन कतकोष ठन तरिया और सार्वजनिक ठिया के सफाई करे हैं। संगवारी हो, ये पैत श्री अमरनाथ जी के यात्रा में घलो स्वच्छता और जनभागीदारी के ऐसने प्रेरक तस्वीर देखे ला मिलिस। कठिन रद्दा मन मा हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहिन। ये बछर यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन ले ज्यादा कचरा इकट्ठा और प्रसंस्कृत करे गेस।

मोला ये प्रयास के एक ठन बात विशेष रूप ले बने लगिस। स्वच्छता के ये अभियान मा श्रद्धालु मन घलो भागीदार बनिन। 16,000 ले ज्यादा यात्री मन स्वच्छता के संकल्प लेन। 10,000 ले ज्यादा यात्री मन ला रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट घलो दे गईस। यहाँ एक बहुते अनोखा प्रयोग घलो होइस। यात्रा मा घोड़ा और खच्चर मन के गोबर ल बायोगैस में बदले गईस और उही स्वच्छ ऊर्जा ले स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित करे गईस। माने बाबा बर्फानी के ये पवित्र यात्रा मा स्वच्छता घलो सेवा और आस्था के एक रूप बन गईस। संगवारी हो, हमर गांव हो या शहर, हमर नदिया हो या तीरथ के ठिया, इनकर चिन्हारी हमर व्यवहार ले घलो बन थे। और जब स्वच्छता ये व्यवहार में शामिल हो जाते, वो ठिया के शोभा और बाढ़ जाते। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, कभू कभू हमर एक नानकुन शौक जिंदगी मा एक बड़का संभावना के रद्दा खोल देते। नागालैंड के फेक जिला के वेसालु पुरो जी के यात्रा घलो कुछ ऐसने हैं। वेसालु जी किसान परिवार मा पलिन बढ़िन। ननपन ले वो मन अपन दाई ददा ला खेती करत देखे रहिन और वो मन ला खुदे फूल मन ले बड़ लगाव रहिस। बच्चर 2021 मा वो मन इही सौ के संग नानकुन स्तर मा फूल उगाए के शुरुआत करिन। धीरे धीरे उनला एमे एक संभावना दिखे लगिस। वो मन देखिन कि बर बिहाव हो या आने तिहार, फूल के मांग हरदम बने रही थे। वे सालू जी हा अपन ये सौक ल आघू बढ़ाए के फैसला करिन। ये सफर मा उनला स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ले फूल मन के वैज्ञानिक खेती के प्रशिक्षण मिलिस। फिर वो मन खाली 1/4 एकड़ भुइया मा ग्लेडियोलस के हजारों पौधा लगाइन। पहलीच प्रयास मा 5,000 ले ज्यादा फूल खिल उठिस। संगवारी हो, ये सफलता वेसालु जी बर एक नवा शुरुआत बन गईस। वो मन फूल के खेती ला औ आगू बढ़ाइन। जेन फूल कभू स्थानीय बाजार में रही जात रहीस, आज वो नागालैंड ले निकल के दिल्ली और मुंबई जैसन शहर तक जावत है। वेसालु पुरो जी के यात्रा हमन ला बताते कि सौंक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन ले जुड़ जाते, तब वो नवा संभावना के रद्दा खोल सकते। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, हमर तीर तखार मा ऐसे कईयों लोगन मन हैं जेन एक नानुक प्रयास ले शुरू करते और देखते देखत उनखर प्रयास बहुत अकन लोगन के जिंदगी में बदलाव के रद्दा बना देते। ओडिशा के देवरीगढ़ मा एक गांव है ढोड़रो कुसुम। कुछ बछर पाछू तक ही गांव के मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जावत रहिन, कभू जलावन के लकड़ी बर, कभू महुआ और केंदु पत्ता चुने बर, त कभू बांस के कोपल और आने वन उपज लाने बर। उनखर और उहां के अनेक परिवार के बहुत अकन जरूरत इही जंगल ले पूरा होवत रहिस। फिर मैथिली जी देवरीगढ़ पर्यावरण हितैषी पर्यटन ले जुड़िन। यहां ले जंगल के संग उनखर नता एक नवा दिशा में बदल गईस। अब जंगल के संरक्षण घलो उनखर आजीविका के माध्यम बन गईस। संगवारी हो, मैथिली जी के जिंदगी में आए ये बदलाव है आने माई लोगिन मन ला घलो प्रेरित करिस। आज 60 ले ज्यादा माई लोगिन मन जंगल के संरक्षण में जुड़ चुके हैं। कोनो वन्य जीव मन के सुरक्षा के दायित्व संभालत है, कोनो घास के मैदान मन के विकास ले जुड़े है, त कुछ माई लोगिन मन पर्यावरण हितैषी पर्यटन गतिविधि में योगदान देवत है। संगवारी हो, मैथिली जी और देवरीगढ़ के ये बहनी मन है देखाए हैं कि प्रकृति के रक्षा घलो हो सकत है और जिंदगी में समृद्धि घलो आ सकत है। ये जम्मो बहनी मन के प्रयास हम सबो मन बर बहुते बड़का प्रेरणा है। संगवारी हो, आज हमार बेटी मन के सपना के उड़ान धरती ले निकल के अंतरिक्ष तक पहुंचत।

और आप मन ल ये जान के गर्व हो ही कि भारत ऐसे सपना देखैया दुनिया के हजारों बेटी मन ला एक सगरा जोड़त है। ये प्रयास के नाव है मिशन शक्ति सेट। एकर माध्यम ले 108 देश मन के 12,000 छात्रा मन ला उपग्रह तकनीक सीखे और नवाचार के क्षेत्र में आगू बढ़े के मौका मिला थे। 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस में ये मिशन के एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखे ल मिलिस। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरा चरण के शुरुआत होइस। ये मौका में दुनिया के आने आने देश और भारत ले आए करीबन 100 छात्रा मन एक सगरा जुटिन। भारत के दूर दराज क्षेत्र ले चुने छात्रा मन घलो एमे हिस्सा लेवत हैं। ये जम्मू प्रयास के लक्ष्य घलो बहुत खास है। पूरा रकम ले छात्रा मन के भागीदारी ले तैयार एक ठन उपग्रह ल चंद्रमा के आर्बिट पर भेजे के तैयारी है। संगवारी हो, मोला विश्वास है कि एमएलए अनेक छात्रा मन अवैया बखत मा विज्ञान तकनीक और नवाचार के क्षेत्र मा अपन नवा पहचान बनाही। मोर देश के मायरुक रहवैया हो, आजकल एवोकाडो फल के बड़ा धूम है। ये फल ला पहली शायदे कोनो जानत हो ही। एकर मान और मांग दोनों कम रहिस, फिर आज एला डाइनिंग टेबल मा खूबे देखे जात है। आज ये स्वास्थ्य और गुणवत्ता बाजार के पसंद बन गए है। हमर किसान भाई बहनी मन पर घलो ये बहुते मददगार है। आंध्र प्रदेश मा कडपा के वरद राज जी के उदाहरण है। वो मन कई बछर ले अपन खेत मा टमाटर और केला के खेती करत रहिन। एक दिन वो मन अपन दोस्त के फार्म मा एवोकाडो के फसल देखिन। एकर बाद वो मन यूट्यूब ले एकर जानकारी जुटाइन। अब तक वो मन करीबन 4 टन एवोकाडो के उत्पादन कर चुके हैं। आज वो मन सोज स्थानीय दुकान मन ला एकर सप्लाई करत हैं। नवा फसल वैज्ञानिक सलाह और सोच मार्केटिंग ले उनकर नानुक फार्म के कमाई पूरा रकम बदल गए है। तमिलनाडु के कोडाई कनाल के किसान चंद्रशेखरन जी है आधा हेक्टेयर जमीन मा एवोकाडो उगाना शुरू करिन। वो मन ला एकर अच्छा दाम मिला थे और कमाई घलो बाढ़े है। कर्नाटक मा चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनी मन ता काफी प्लांटेशन के बीच मा एवोकाडो लगाए हैं। एकर ले उनला काफी और काली मिर्च के संग अतिरिक्त कमाई घलो होवत है। संगवारी हो, हम शहर मन के रेस्टोरेंट मा अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे मा सुनथन। फिर यही एवोकाडो के माध्यम ले हमार नवाचारी किसान मन हा कमाई के एक ठन नवा रेसिपी ढूंढ ले हैं। माने अपन देश के एवोकाडो ले आप मन के टोस्ट के स्वाद घलो बढ़िस और किसान मन के आमदनी घलो बढ़ गए है। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, कुछे दिन मा 3 सितंबर के हम महानायक उत्तम कुमार जी के जन्म शताब्दी मनाबो। संगवारी हो, उत्तम कुमार जी एक बहुमुखी अभिनेता रहिन, जेन अपन अभिनय ले लोगन मन के हृदय मा रच बस गेन। फिल्म प्रेमी मन के मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे फिल्म नायक द हीरो के जम्मो स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी ला ध्यान में रख के लिखे रहिन। श्रीमान सत्यजीत रेमन कहे रहिन कि वो मन में गरिमा के संगे संग अद्भुत भावनात्मक गहराई घलो रहिस। भूमिका ला वो मन जीवंत बनाए बर बहुत मेहनत करत रहिन। उत्तम कुमार जी अपन सहजता के संग परोपकार बर जाने जात रहिन। उनकर जिंदगी ले कभू हार नहीं माने के एक औ बड़का सीख घलो मिलते। उनकर शुरुआती फिल्म मन बहुत नहीं चलिस, फिर वो मन अपन काम मा ध्यान केंद्रित रखिन। एकरे परिणाम रहिस कि वो मन अत का ऊंचाई प्राप्त करिन।

0: संगवारी हो, मोला ध्यान है कि जब मैं कोलकाता मा रोड शो करत रहे हो तब मैं उत्तम कुमार जी के घर के आगूले घलो गुजरे रहे हो। वहां मोला एक मनखे है उनकर एक तस्वीर घलो भेंट करे रहिस। मैं एक घाव फेर महानायक उत्तम कुमार जी ला श्रद्धांजलि अर्पित करत हूं। वो मन हरदम हम सब के हृदय में राज करत रही। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषेर हृदय राज कोरबेन। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, हमर परब और तिहार हमर परंपरा के संगे संग हमन ला एक दूसर ले जुड़े के मौका घलो देते। अवैया दिन मन मा हमन अपन कईयो महत्वपूर्ण परब मनाबो। 4 सितंबर के जन्माष्टमी के पवित्र परब है। सितंबरे मा हमन विश्वकर्मा पूजा घलो मनाबो। ए मौका मा अपन तीर तखार के कारीगर शिल्पकार और विश्वकर्मा संगवारी मन के सम्मान करना चाही। कुछे महीना बाद दीपावली घलो अवैया है। एकर तैयारी घलो धीरे धीरे शुरू होवत है। तिहार मन के ये मौसम मा मैं एक घाव फिर आप मन ले वोकल फॉर लोकल के आग्रह दोहराहूं। और वोकल फॉर लोकल के मतलब खाली माटी की दिया बिसाना नहीं है, एकर दृष्टि बहुते बड़का है। हम अपन घर पर जेन भी जिनिस बिसाथन ओला एक घाव जरूर देखन कि वो भारते मा बने हो। भारत के आत्मनिर्भर बने के रद्दा भारत मा बने जिनिस मा गर्व करे ले प्रशस्त हो ही। ये संदेशाला ज्यादा ले ज्यादा लोगन मन तक पहुंचाना घलो हमर जिम्मेदारी है। हमर रचनात्मक दुनिया के संगवारी इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज मन के घलो एमें बहुते बड़का भूमिका है। मोर आप मन ले आग्रह है कि खुद घलो वोकल फॉर लोकल ला अपनावें और आने मन ला घलो एखर बर प्रेरित करें। संगवारी हो, आप मन के तीर तखार में घलो ऐसन बहुत अकन लोगन मन हो ही जिन अपन नान नान प्रयास ले समाज में बड़का बदलाव लावत हैं। आप मन उनकर बारे में मन की बात खातिर खचित लिखाओ। आप मन के भेजे अनुभव देश के कोनो कोना में कोनो खातिर नवा प्रेरणा बन सकत हैं। मुला आप मन के सुझाव और अनुभव के अगोरा है। गाड़ा गाड़ा धन्यवाद। जोहार।
1: रायपुर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद का पुनः प्रसारण। और अब लीजिए सुनिए साइबर जागृति अभियान।
2: नमस्कार। छत्तीसगढ़ पुलिस के साइबर जागृति अभियान के संबंध में प्रस्तुत है आम जनों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां। दोस्तों, हमारे जमा धन पर बैंक के 7-8% वार्षिक ब्याज के स्थान पर यदि कोई 50% या 100% ब्याज देकर हमारे धन को 2 गुना कर दे, ऐसी योजना को कौन स्वीकार नहीं करेगा। बस इसी प्रकार के आकर्षक लुभावने प्रलोभन देकर नित्य लोगों की पसीने की कमाई ये साइबर अपराधी हड़प रहे हैं। लोगों को रिझाने ये ठग पहले बहुत छोटी रकम लेकर जल्दी ही 2 गुना कर वापस कर देते हैं और लोग इसी लालच के जाल में उलझकर अपना सब कुछ गंवा देते हैं। ध्यान रहे, इस प्रकार इतनी जल्दी धन 2 गुना कर वापस करने वाला भारत में कोई भी बैंक नहीं है। ये साइबर अपराधियों की काली करतूतें हैं, धोखा है। ऐसी गलती कभी ना करें। आवश्यकता पड़ने पर तत्काल डायल 1930 या पुलिस थाने में संपर्क करें। जनहित में सदैव बिलासपुर पुलिस छत्तीसगढ़। धन्यवाद।
1: साइबर जागृति अभियान अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। और अब लीजिए सुनिए दिल्ली केंद्र से महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और थाईलैंड के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल।
3: शी वाज अ स्टैटिक एंड शी हैज गॉट अ बिग बिग विकेट व्हेन वी वर जस्ट सेलिब्रेटिंग द हाफ सेंचुरी ऑफ शेफाली वर्मा एट द अदर एंड प्रतिका रावल इज आउट ऑन 22। इंडिया लूजिंग देयर सेकंड विकेट।

0: wicket at the score of 91. And India, of course, have done a very, very good job. But Thailand, the way they're kind of coming back again and again at crucial moments is something very, very impressive. Mind you, young girls, new team. We won't call them a weak team. We will call them a lesser-known team because these teams in a multi-team format always create all sorts of problem. And also, for Team India, this is a completely different experience as long as they're playing the big teams like the Australias and the New Zealand and the South Africas. But Harmanpreet Kaur now in the middle, in the 10th over of this particular match. It's a big round, Iqbal. India have done well, but the way, in fact, the Thailand girls and the fielders have persisted with and persevered is something very important, as Harmanpreet Kaur would be. She is a big hitter, no doubt about it. But will she take the risk at this particular point? Mind you, we don't have Jemima Rodrigues at number 3. Pratika Rawal did a good job, had a very good start, couldn't really continue. But the ball kept low from this particular end, and that is going to be very crucial as the match progresses. Onicha, now from the other end, she's been bowling really very well. This time played in the air and just short of that fielder at short extra cover. It was uppishly played by Shefali, and that was very close, a boundary there nevertheless. But things are suddenly changing, and if Thailand are lucky, they might just run through the Indian middle order.
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी थाईलैंड की गेंदबाज कर रही हैं, और ये किस्मत अच्छी है शेफाली वर्मा की कि इस बार उनका कैच एक्स्ट्रा कवर पर पकड़ा नहीं गया, अन्यथा वो आउट हो जाती। फिलहाल एक बार फिर से ओनिचा तैयार, अगली गेंद फ्लाइटेड, और इस बार इस गेंद को ऑन साइड में मोड़ा, स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक पीछे गेंद जा रही है, सिंगल मिला। भारत का स्कोर बढ़ता हुआ अब हो गया है 96 दो विकेट के नुकसान पर। शेफाली वर्मा ने ये 19वां अर्धशतक पूरा किया है, और उन्होंने अपनी कप्तान हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ा। हरमनप्रीत कौर के 18 अर्धशतक हैं T20 क्रिकेट में, और सबसे ज़्यादा अर्धशतक जो हैं वो स्मृति मंदाना के हैं, 35 अर्धशतक उन्होंने T20 क्रिकेट में लगाए हैं।
0: Harmanpreet on strike this time. Oh, bit of bounce there. Now, the end from which Onicha is bowling, the ball is bouncing a bit more after pitching. But from the other end, when Lavi got the wicket, so this dual bounce on either side is going to be interesting. Harmanpreet as captain will have to keep a watch on the ends so that then she can use her bowlers later on with proper effect. They're trying to go for an expansive cover drive straight to the fielder at extra cover. India 96 for the loss of 2 wickets. India have done well, about 10 runs per over, pretty good, no doubt about it. But when you talk about a big victory, Iqbal, you need to get 200, 220 plus in fact against a team like Thailand. But cricket is a funny game. Onicha bowls. Oh, bit of bounce, trying to cut that ball, not coming on the bat completely. Harman will get her run, her first run of the innings, and in fact Shefali Verma has been playing really very well. 7 hits to the boundary, 3 huge sixers, and she has kept one end really scrolling fast, very, very good. But the fact that Onicha, when she bowls, she has a slight sling arm action, and this time going down on one knee, a cross batted straight down the ground over the bowler, a very innovative stroke that was for 4 runs. She could have hit it anywhere from point to long on. What she chose was a cross-batted straight shot over the bowler. I guess I have described it properly.
1: बिल्कुल, और सबसे सुरक्षित स्ट्रोक भी है ये। ठीक गेंदबाज के पीछे कोई फील्डर नहीं रहता अमूमन, और ऐसे में वहां पर एक सेफ जोन उन्होंने चुना। और जैसा हम कह रहे हैं कि शेफाली वर्मा बहुत ही ताकतवर खिलाड़ी हैं, वीरेंद्र सहवाग से इंस्पायर नजर आती हैं, और आज बल्लेबाजी भी कुछ वैसी ही कर रही हैं वो। एक छोर से वो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन गेंदबाजी कर रहा है, किस तरह की गेंदबाजी हो रही है, गेंदें क्या हरकत कर रही हैं। शेफाली वर्मा के लिए ये तमाम चीजें कोई मायने नहीं रख रही हैं, और उन्होंने 29 गेंदों पर 59 रनों की एक बहुत ही जोरदार पारी खेली है। 8 चौके और 3 छक्के उन्होंने लगाए हैं इस मुकाबले में। 10 ओवर का खेल खत्म हुआ है, और 10 ओवरों में भारत ने 101 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। आज इस मुकाबले में जिन श्रोताओं ने हमें देर से सुनना शुरू किया, उनको बता दें कि टॉस जीता है आज थाईलैंड की कप्तान ने, और टॉस जीत करके उन्होंने पहले भारत को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा ने पारी की शुरुआत की और दोनों

0: बल्लेबाजों ने एक बेहतरीन आगाज दिया भारतीय टीम को और भारत ने 38 रन पर पहला विकेट गंवाया और ये 38 रन भारत ने मात्र 3 ओवर में बनाए थे। स्मृति मंदाना अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश तरीके से वो 19 रन बना करके रन आउट हुई। 10 गेंदों पर 4 चौके लगाए थे उन्होंने। इसके बाद डेब्यूटेंट प्रतीका रावल आई बैटिंग करने के लिए। प्रतीका रावल ने 22 रन बनाए, 18 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया। और फिलहाल शिफाली वर्मा 59 पर और हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तान 1 रन बना करके बल्लेबाजी कर रही हैं। गेंदबाजी का जिक्र करें तो माया ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है, 25 रन दिए हैं, कोई सफलता नहीं। थिपाचा ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है, 22 रन दिए हैं और कोई कामयाबी उनको भी प्राप्त नहीं हुई है। सुनीता ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है, 27 रन उन्होंने खर्च किए हैं और कोई सफलता उनको भी प्राप्त नहीं हुई है। ओनिचा ने 3 ओवर डाले हैं और इन 3 ओवरों में ओनिचा ने 19 रन दिए हैं और कोई सफलता उनको भी प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन सबसे किफायती गेंदबाजी ओनिचा ने की है, 3 ओवर 19 रन और कोई कामयाबी नहीं। 6.30 का उनका इकोनॉमी है। और इसके अलावा लाउमी ने आते ही पहले ही ओवर में थाईलैंड को विकेट दिलाया, उन्होंने 1 ओवर की गेंदबाजी की है, 8 रन दिए हैं और 1 सफलता उनको प्राप्त हुई है। पहला विकेट भारत का 38 पर गिरा, दूसरा विकेट 91 पर गिरा और इस वक्त कप्तान हरमनप्रीत कौर और उनके साथ शिफाली वर्मा मैदान पर भारतीय टीम को आगे बढ़ा रही हैं। जिस तरीके से शिफाली वर्मा ने बैटिंग की है उनको कॉम्प्लीमेंट करना होगा हरमनप्रीत कौर को पंकज, क्योंकि हरमनप्रीत कौर की बल्लेबाजी T20 क्रिकेट में लेकर के ऑफ लेट काफी चर्चा में रही है और काफी स्क्रूटनी में रही है कि क्या हरमनप्रीत कौर की बल्लेबाजी T20 क्रिकेट को सूट करती है। ये बात और है कि उनकी कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता।
1: No doubt about it, as Laumi starts a new over, the 11th of the innings, a cheeky sweep from outside the off stump by Harmanpreet. She'll get a couple of runs as the ball trickles over towards fine leg. And it's a very important point that you made about Harmanpreet. And the fact remains that every player goes through different phases in his or her life. And Harmanpreet has a good opportunity to actually play in the shadow of Shefali and kind of get back to what she is good at. But the Thailand girls would be looking forward to exploit this particular situation. And instead of targeting Shefali, they would try and target Harmanpreet and get wickets at one end. 103 for the loss of 2 wickets.
0: एक बार फिर से लाउमी लेग ब्रेक गेंदबाज, अगली गेंद और इस बार टर्न के सहारे इस गेंद को कट किया लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन बनाने का कोई मौका नहीं है हरमनप्रीत कौर के पास। हरमनप्रीत कौर इस वक्त 1 रन बनाकर खेल रही हैं और उनके साथ 59 पर शिफाली वर्मा बैटिंग कर रही हैं। फिलहाल एक बार फिर से तैयार गेंदबाज लाउमी, सामने है हरमनप्रीत कौर। ये गेंद फ्लाइटेड और इस बार इस गेंद को उछाल कर खेला, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद लेकिन ठीक पहले फील्डर के गेंद टप्पा खाई और ऐसे में बाल बाल बच गई हैं कप्तान हरमनप्रीत कौर।
1: You mentioned it right, she's not really getting the shots or the timing really very well. She wanted to go for that expansive drive over the covers and there was Onicha who was there at long off and Laumi would be very very devastated. This would have been a big big wicket.
0: हरमनप्रीत कौर को सिंगल मिला लेकिन एक जीवनदान भी आप कह सकते हैं, 4 रन और 6 गेंदों पर ये 4 रन उन्होंने बनाए हैं। फिलहाल लाउमी एक बार फिर से चली ये गेंद और इस बार इस गेंद को बैकफुट पर ऑन साइड में मोड़ा मिड विकेट पर शेफाली ने, खुद गेंदबाज गई हैं फील्ड करने के लिए। 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन की मदद से भारत का स्कोर 105 रन 2 विकेट के।
2: आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिल्ली केंद्र से अब आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 780 से अधिक हुई। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने $1.5 लाख की आपातकालीन सहायता जारी की। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए $10 लाख का अनुदान देने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों देशों के युवाओं, विशेषकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच एक्सचेंज को बढ़ावा देना हमारी उच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच टूरिज्म बढ़ाने के लिए आज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। मुझे खुशी है कि उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए आज हम स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक

0: पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2017 से एससीओ का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे संगठन के मंच पर सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर एससीओ के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपनी बिश्केक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का उत्सव है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी के कूटनीतिक सिद्धांतों से नए मार्ग खुल रहे हैं और वे ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि श्री मोदी का ये 36वां वैश्विक सम्मान है। इससे पता चलता है कि उनके नेतृत्व को दुनिया भर में सराहना मिल रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा, गीत और संदेश तैयार करने की अपील की।
3: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
3: पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मिशन शक्ति सेट के माध्यम से हजारों देश की बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं।
3: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में पीएम सेतु इंडस्ट्री

0: कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि देश अपनी रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी में बुनियादी कायाकल्प का साक्षी बन रहा है।
1: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जब मैं मिनिस्टर बना था तो डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। आपको जानकर खुशी होगी अब हम लोग 1,80,000 करोड़ के आसपास हैं। हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़ था, आज हमारा एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हम इंडिजिनस डिजाइन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं।

0: करोड़ था, आज हमारा एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हम इंडिजिनस डिजाइन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर तथा एमएसएमई की भागीदारी बढ़ा रहे हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। अब तक प्रभावित इलाकों से 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित है। पेचिंग में भारतीय दूतावास उनसे संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंची। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। इस बीच भारत से भेजी गई विशेष सुरंग बचाव टीम ने आज नेपाली सेना की टीम के साथ मिलकर चिलिमे और लांगटांग क्षेत्र की जल विद्युत सुरंगों में खोज और बचाव अभियान चलाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 150,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद या ब्लॉकेड नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला वर्तमान चैंपियन जर्मनी और स्पेन के बीच जारी है। दो क्वार्टर की समाप्ति तक मुकाबला गोल रहित बराबरी पर है। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। और एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत और थाईलैंड के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 14वें ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक 5 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Uzbekistan elevate bilateral ties to comprehensive strategic

0: partnership seal long-term uranium supply pact and set $5 billion trade target by 2030. Prime Minister Narendra Modi conferred Uzbekistan's highest state honor, reaches Kyrgyz Republic to take part in 26th SCO summit at Bishkek. Prime Minister Modi warns of perils of drug abuse in Mann Ki Baat program, celebrates women's economic empowerment, girls entering space industry and agricultural innovation. Nepal issues fresh flood alert along Bhote Koshi River. 149 Indians rescued so far as death toll crosses 780. WHO releases $150,000 emergency aid. And in men's hockey, Germany and Spain locking horns for coveted World Cup title in Belgium. And now the news in detail. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have also set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 memoranda of understandings aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In its remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress, and prosperity in Central Asia.
1: This year, our strategic partnership has been 15 years. इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
0: Later, at a joint press conference with the Uzbekistan president following the talks, Prime Minister Modi said maintaining a zero-tolerance policy towards terrorism, extremism and separatism will remain their shared resolve.
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को-प्रोडक्शन और को-डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती हैं। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: Mr. Modi said India and Uzbekistan will jointly organize a business summit involving business leaders from both the countries.
1: दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोडमैप बनाना चाहिए।
0: प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड द टू कंट्रीज विल आल्सो सेट अप कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स।
1: स्पोर्ट्स भी हमारे सहयोग के महत्वपूर्ण आयाम के रूप में उभर रहा है। पिछले वर्ष गोवा में 20 वर्षीय उज्बेक ग्रैंड मास्टर सिंदारोव ने वर्ल्ड कप जीता। अब नवंबर में उनका मुकाबला भारत के 20 वर्षीय चेस चैंपियन गुकेश के साथ होने वाला है। एक बिसात पर जब ये दो युवा सितारे आमने सामने होंगे तो जाहिर है इस मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजर होगी।
0: Mr. Modi announced 100 Lal Bahadur Shastri scholarships for Uzbek students to promote the Hindi language in the Central Asian country, along with the establishment of a Sanskrit chair at Tashkent State University of Oriental Studies, India has pledged $1 million for afforestation in the Aral Sea region. The two sides also agreed on an arrangement allowing Indian UPI apps to scan Uzbekistan's national UZ QR codes for merchant payments. A letter of intent was also signed for the restoration and conservation of the Buddhist sites of Fayaz Tepa and Kara Tepa in Uzbekistan. On the occasion, Prime Minister Modi was

0: क्या जबरदस्त गेंदबाजी। आज जितनी प्रशंसा की जाए थाईलैंड की गेंदबाजों की उतनी कम है। थाईलैंड इस मंच को उन्होंने चुना है ये स्टेटमेंट जारी करने के लिए कि भारत बेशक T20 क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन होगी, लेकिन हमने भी कुछ इरादे लेकर के इस मंच पर कदम रखा है और कुछ बड़ा करने के इरादे से इस एशिया कप में वो आई हैं। जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया है, और आसान नहीं होता पंकज जिस तरह की वापसी करना जब आपने 10 ओवर में लगभग 100 रन बनवा दिए और सिर्फ 2 विकेटें गिरी हैं, और इसके बाद से वापसी निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल काम होता है किसी भी टीम के लिए।
1: नो डाउट अबाउट इट। एंड इंडियंस रशिंग थ्रू देयर शॉट्स, क्रांति गौड़ हियर द लास्ट बैटर इन द मिडल एंड इंडिया नीड to play 20 overs. It's a psychological mark, but Thailand today have done a phenomenal job and they might just create history at the Dubai International Stadium. Chani Dabo.

0: श्रोता ने गीत आपने सुना फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से, आवाज देव नेगी और पायल देव की थी। गीत के बोल वायु के और संगीत विशाल एन शेखर का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोता, ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म अतरंगी रे से। आवाज़ें अरिजीत सिंह और शाशा तिरुपति की है। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

30 अगस्त सन 1921 को विभाजन पूर्व के रावलपिंडी में जन्मे शंकरदास केसरीलाल कालांतर में बने भारतीय सिनेमा के एक बेहद सफल और लोकप्रिय गीतकार शैलेन

शैलेंद्र का जन्म बेशक रावलपिंडी में हुआ, लेकिन वो पले बढ़े मथुरा में। हालांकि उनके पुरखों का घर आरा जिले के अख्तियारपुर में था। स्कूल के दिनों में शैलेंद्र की घनिष्ठता हो गई इंद्र बहादुर खरी से। मथुरा के उन दिनों में शैलेंद्र और इंद्र बहादुर रेलवे कॉलोनी के नजदीक मौजूद एक तालाब के किनारे की शिला पर बैठकर कविता रचना सीख रहे थे। बहरहाल समय ने करवट ली और सन 1947 के आसपास मुंबई के

शैलेंद्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और इप्टा के एक सक्रिय सदस्य थे। उनकी कविताओं में जोश और जुनून था, मजदूरों, कामगारों, किसानों के लिए गहरा सरोकार। उन्हीं दिनों मुंबई में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शैलेंद्र ने अपनी एक मार्मिक कविता पढ़ी। राज कपूर भी मौजूद थे। शैलेंद्र की कविता ने राज कपूर पर गहरा असर डाला और उन्होंने शैलेंद्र से उनकी उस कविता को अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करने के लिए बात की। लेकिन शैलेंद्र उन दिनों सिनेमा के बहुत करीब नहीं थे। उन्होंने राज कपूर को कविता देने से मना कर दिया। आग के रूप में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अग्नि प्रज्वलित कर राज कपूर अब सिने प्रेमियों को भिगोना चाहते थे अपने निर्देशन की बरसात से। वो शायद 1949 का बरस था और शैलेंद्र पैसे की तंगी से गुजर रहे थे। हालात कुछ ऐसे थे कि शैलेंद्र को विवश होकर राज कपूर के पास जाना पड़ा। राज कपूर प्रतिभा के कद्रदान थे और गीतकार के रूप में जो हीरा शैलेंद्र के भीतर मौजूद था उसे उन्होंने परख लिया था। राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म बरसात के दो गीत लिखने के लिए 500 रुपए दिए। उन गीतों में से एक था फिल्म बरसात का ये शीर्षक गीत।

शैलेंद्र भाषा के धनी थे, शब्द और भाव संपदा के सम्राट थे। शब्दों का उनका संधान ऐसा था कि बहुत सरल और साधारण शब्दों में भी वो असाधारण बात कहना जानते थे।

0: शैलेंद्र के गीतों में कभी प्रेम और विरह के कोमल भाव खिलते हैं, तो कभी उनकी गूंज एक नारे की तरह सुनाई पड़ती है जिसमें इस देश के आम आदमी की पीड़ा बोलती है। शैलेंद्र का अपने आसपास की दुनिया से, दुनिया के बदलते घटनाक्रम से, बदलते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात से और उन हालात के असर से गहरा सरोकार था। शैलेंद्र के गीत हमारे स्नेही संगी साथी बन जाते हैं, हमसे हमारी पीड़ा और हमारे उल्लास को बांटते हैं, हमसे संवाद करते हैं।
1: नैना लगे रे, जाने क्या हो अब।

आज हिंदी सिने गीतों का संसार बदल चुका है, कविता और गीत का धर्म शिल्प सब बदल चुका है, और इसीलिए इस दौर के ज्यादातर गीतों की ध्वनियां स्मृति पटल से मिट जाती हैं। शैलेंद्र और उनके समकालीन गीतकार यदि आज भी लोकप्रिय हैं, तो उसके पीछे एक गीतकार के रूप में न केवल उनकी कविता का सौंदर्य है बल्कि उनका सरोकार भी है। शैलेंद्र के फिल्मी गीत साहित्यिक गीतों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। आमो खास सबको पसंद हैं शैलेंद्र के सहज सुरीले सजीले गीत।

हरियाणा के गीतकार के रूप में शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश, शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन शैलेंद्र की रचनात्मक प्रतिभा का वैविध्य और सौंदर्य अन्य संगीतकारों के सानिध्य में भी बेमिसाल बन पड़ा है। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार सचिन देव

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958 फिल्म यहूदी।

0: शैलेंद्र ने पाया सर्वश्रेष्ठ गीतकार का और मुकेश ने पाया सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म अनाड़ी।
1: सब कुछ सी

सन 1958 में लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का ये

0: शैलेंद्र ने उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्ध कृति मारे गए गुलफाम पर फिल्म तीसरी कसम का निर्माण किया।
1: सजन रे झूठ मत बोल।

0: ही जाना।
1: इस फिल्म के निर्माण के दौरान शैलेंद्र को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। शैलेंद्र सदमे से उबर नहीं पाए और 14 दिसंबर सन 1966 को 45 बरस की आयु में हमें अपने अनमोल गीतों की संपदा सौंप कर चले गए महायात्रा पर। उनकी मृत्यु

शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। गीतकार शैलेंद्र ने हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने वाले गीत, जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते

हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने वाले गीत, जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते हैं प्रेम, शांति, आनंद, खोजते हैं हाथ से छूटा हुआ बचपन, जवानी और बिछड़े हुए लोग।

0: आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, शोध स्वर और आलेख कमल शर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ हैं।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में एक बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: हाय हाय,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। लोग भले कहते हों कि प्यार महकती खुशबू है, प्यार है एक खिलता हुआ बाग, पर ये साहब मानते हैं कि प्यार है एक जलती हुई आग, और प्यार की आग में सब जल जाता है, खत्म हो जाता है, खाक हो जाता है। तो सुनिए प्यार की ये धधकती हुई कहानी इन साहब की जबानी।

दुनिया ने फिर क्यों रुलाती है दुनिया मुझे प्यार की आग में तन बदन जल गया प्यार की आग में तन बदन

0: जल गया मेरे दिल का जहां, जाने फिर क्यों जाने फिर क्यों सताती है दुनिया मुझे, प्यार की आग में तन बदन जल गया।
1: कुछ लोग दीवाने होते हैं प्यार में, पर कुछ लोगों का पैशन होता है फैशन। फैशन वो आग है जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। कैसा है जमाना, हर शख्स फैशन का दीवाना। तो चलिए सुना जाए फैशन का तराना।
2: अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िये है जापानी, अरे फैशन की

कभी मिल सका है क्या आग और पानी? अब जरा सोचिए, जब मिल जाए एक ठेठ हिंदुस्तानी और एक फैशन की दीवानी, तो बनती है कैसी कहानी। एक तरफ संस्कारों का राजा, दूसरी तरफ सजावट की रानी, दोनों को ही है सुनानी अपनी अपनी कहानी।

0: चाय या गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
1: भूस भर दिया मेरी चाहत में।
0: हम अभी हाजिर हुए

0: प्यार की दुनिया में होते हैं कांटे ही कांटे, कभी कभी तो चांटे ही चांटे। प्यार का रास्ता नहीं है आसान, कभी मुश्किलें तो कभी घमासान। चाहत की दुनिया में सोच समझ कर घुस, ये दुनिया भर देती है चाहत में भुस। सारे सपने हो जाते हैं फुस, प्यार का महल भर भरा कर हो जाता है ठुस।
1: भुस भर दिया अयो, भुस भर दिया मेरी चाहत में,

रोटी कपड़ा और मकान मिल जाएं तो हो जिंदगी आसान। घर मिलता नहीं सब लोगों को, ये सारा है बड़ा उलझा हुआ चक्कर। बड़े शहरों में प्यार करने वालों को नहीं मिलता किराए का घर, ऐसे में कोई क्या करे पहल, कैसे बने हमारे सपनों का महल।

0: दो, रहने को घर दो, छत पे हो फर्श या फर्श पे छत।
1: प्यार की राह नहीं है आसान, पर इस पर चलते हैं हिम्मत वाले, आसानी से नहीं हारते ये चाहत वाले। हो कैसी भी राहें, प्यार करने वाले हार क्यों माने, वो तो गाएंगे ऐसे ऐसे गाने, आप माने या ना माने, प्यार अपना रास्ता बनाना जाने।

0: करना क्यों?
1: छाया गीत में आज थे मन्ना डे के कुछ मजाहिया नगमे, फिल्मों के नाम।
2: प्यार की आग में तन बदन जल गया,
1: फिल्म जिद्दी।
3: अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िये हैं जापानी,
1: फिल्म अधिकार।
4: जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जाने, जोड़ी हमारी।
1: फिल्म औलाद।
5: भूस भर दिया मेरी चाहत में,
1: फिल्म अमानत।
6: रहने को घर दो,
1: फिल्म बीवी और मकान।
7: प्यार किया तो मरना क्यों, जब प्यार किया तो मरना क्यों।
1: और फिल्म राज। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

0: बॉक्स हम टिक करते हैं। तो आज मैं ये कहूँगी कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने एक अच्छा क्रिकेट खेला है, एग्जीक्यूशन अच्छे हुए हैं, बट फिर भी यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि आपका मिडल ऑर्डर कैसा खेल रहा है, कि लास्ट में आके जो रन्स आने चाहिए वो आज के मैच में उतने आए नहीं है। तो मुझे लगता है कि बैटिंग में अभी भी काम करना बाकी है।
1: बिल्कुल। और राकेश, अगर हम यहाँ पर फील्डिंग की बात करें तो जब दीप्ति शर्मा ने स्लिप्स में वो कैच छोड़ा, डेजा वू सा लग रहा था, लेकिन उसके बाद से काफी इम्प्रूव फील्डिंग शो देखने को मिला। मंदाना का डायरेक्ट हिट, शिफाली वर्मा का वो डाइव, इस तरह के कई एफर्ट्स देखने को मिले।
2: देखिए, अच्छी चीज़ है, ये लग रहा है कि भाई कैंप के अंदर जो काम हुआ है फील्डिंग के ऊपर वो दिखाई दे रहा है, बॉलिंग पे काम दिखाई दे रहा है। हालांकि जो आपके बैटर्स हैं वो ऐसे इतने बड़े लेवल के नहीं थे कि जिसमें हमारी बॉलिंग की परीक्षा हो, लेकिन जो लाइन और लेंथ की बात है वो उसमें अच्छे हमारे बॉलर्स रहे हैं। और आपने देखे 9 ओवर में 44 रन पे 6 विकेट उनके गिर गए थे, तो मैच तो वहीं ख़त्म हो गया था पहले 10 ओवर में।
3: दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और थाईलैंड के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 11 बजे हैं। और अब दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार।

0: भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए

0: गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलेक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।
2: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। नेपाल सरकार ने भोटेकोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बेल्जियम में खेले गए फाइनल मुकाबले के 44वें मिनट में जर्मनी के मिशेल स्ट्रोथॉफ ने एकमात्र गोल किया। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have also set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 Memoranda of Understanding (MOUs) aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia. Later, at a joint press conference with the Uzbekistan President, Prime Minister Modi said maintaining a zero-tolerance policy towards terrorism, extremism and separatism will remain their shared resolve.
0: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपस

0: representation.
1: Well, जीत लो हर लम्हा, बीच जाने से पहले लौट कर फिर यादें आती हैं, वक्त नहीं और वक्त हमारा है। ये कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी हमने देखा कि किस तरीके से कमाल किया है शेफाली वर्मा ने 64 रनों की पारी खेली। और शुरुआती दौर में जब आपको पता है कि एक खिलाड़ी जो आपके साथ ओपनर आया रन आउट होकर चला गया, तो ऐसे में दबाव कितना होता है, कितना प्रेशर होता है?
2: देखिए, दबाव ये कहते हैं इस मैटर ऑफ इंजॉयमेंट है। क्रिकेट आप खेल रहे हैं इंजॉयमेंट के लिए, दबाव के लिए कोई नहीं खेलता। और जब एक बड़ी प्लेयर आउट होती है तो दूसरी प्लेयर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आगे आती है, और शेफाली वर्मा ने वो दिखाया राइट फ्रॉम द 50 ओवर वर्ल्ड कप। हम देख रहे हैं कैसे उनको सेमीफाइनल में लाया गया था, सेमीफाइनल फाइनल में उन्होंने अच्छे ही प्रदर्शन किया, इसी वजह से आज वो इस टीम का हिस्सा है। और इतना बड़ा उनका नाम है, जिस तरह के शॉट्स उन्होंने खेले तो बड़े इंटरेस्टिंग शॉट्स खेले उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त, अच्छा लग रहा था कि अच्छे निक में लग रही थी शुरू से ही। और लेकिन वो आउट जो हुई है, आउट बहुत ख़राब हुई है। आज उनके पास मौका था, जब एक टीम में आप सेट हो जाते हैं उसके बाद आपको बड़े स्कोर खेलने की आदत डालनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि 50-60 रन बना के आपके अंदर एक कंप्लेसेंसी आ जाती है, या उस बॉलर को बहुत लाइटली आप लेने लगते हैं। तो जिस तरीके से वो आउट हुई, वो आउट होना उनका बहुत ख़राब था, लेकिन इनिंग उन्होंने बहुत अच्छी खेली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेली। पारी को जो संवारना उन्हें आता है वो एक आर्ट है। देखिए, वो आर्ट थाईलैंड के बल्लेबाजों में कहीं नज़र नहीं आई, उनके एक बल्लेबाज को छोड़कर बाकी किसी के अंदर वो चीज़ नज़र नहीं आई। और शेफाली वर्मा तो देखिए, अच्छी फील्डिंग में भी वो अच्छा प्रदर्शन करती हैं, बल्लेबाजी में जिस तरह और जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ शॉट खेलती हैं ना, उनके शॉट्स गेंदबाजों के हौसले पस्त करने वाले होते हैं। वो एक बड़ी चीज़ है कि किस तरीके से आपको फ़ायदा उठाना है पावर प्ले का, कैसे जो है आप पिच ड्राइव खेलने हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई दी। और उनके शॉट्स में अच्छी इंटरटेनमेंट भी होती है, क्योंकि लोग तो स्टेडियम में ज़्यादा नहीं थे, लेकिन क्रिकेट जो है वो इंटरटेनमेंट भी है, आपको इंटरटेन भी करना है। तो ऐसे आपने इनिंग खेली कि जिसमें लोग इंटरटेन भी हुए, आपकी टीम को भी फ़ायदा मिला, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी आप खेले, अच्छी एक पार्टनरशिप आपने लगाई प्रतीका रावल के साथ, तो वो एक टीम के लिए बड़ा योगदान देके गई। वरना बड़ा लॉस हो सकता था, 10 ओवर में हम 100 रन पे कुछ ज़्यादा रन बना पाए थे, उसके बाद अगले 10 ओवर में हम बिल्कुल ढह गए।
3: जी बिल्कुल। और 19-30-20 आई अर्धशतक उन्होंने जड़ा, एक बात कही वहां पर दोनों कप्तान हरमन और उसके अलावा शेफाली वर्मा ने भी कि देयर वाज होल्ड इन द विकेट। लतिका, उसके बाद लगा ऐसे जो बल्लेबाज आए हैं, कंडीशन का क्या सही उन्होंने आकलन किया था, क्योंकि दे वर गोइंग फॉर देयर शॉट्स?
4: बिल्कुल। और देखिए, हम भी ये बात कर रहे थे कि मैच देख रहे थे जब के थोड़ा सा ग्रिप कर रहा है बॉल वहां पर, और जो हमारे बल्लेबाज हैं या तो वो बॉल को जज नहीं कर पा रहे थे और बॉल थोड़ा डिप करके जा रहा था। तो डिप जब बॉल करता है ना, तो थोड़ा कदमों की चहलकर्मी दिखानी पड़ती है, तो वहाँ मुझे लगता है कि जजमेंट थोड़ा सा वीक लग रहा था बल्लेबाजों का, जिसकी वजह से डॉट बॉल्स का प्रेशर उनके ऊपर आ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बॉल को सही तरीके से आप जज करते हैं, डिसीजन सही तरीके से लेते हैं किसी भी शॉट को सिलेक्ट करने के लिए, तो वो आपको आगे आने वाले इनिंग्स में भी हेल्प करेगा। तो स्पिनर्स जब बॉल डाल रहे हैं, बॉल होल्ड कर रहा है, तो उस टाइम पे आपको अटैक करेंगे स्पिनर पे, तो ज़्यादा आसानी होती है खेलने में, रादर देन आप विकेट में रहकर, क्रीज में रहकर गेंदबाजों को खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो ग्रिप कर रही है सतह, जो ग्रिप करती है गेंद को, तो वो कहीं ना कहीं हलचल करती है, और वो हलचल बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान करती है।
1: देखिए, हलचल काफ़ी अच्छी है, लेकिन आने वाले मुकाबलों की अगर बात करें तो वहाँ पर भी मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा और क्लिक करना पड़ेगा। एंड आई थिंक ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके जहन में भी होंगे, उनके जवाब शायद राकेश जी बेटर तरीके से दे सके कि आज शेफाली वर्मा चली बहुत बढ़िया था, लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे जितने भी हमारे श्रोता थे या जितने भी मैच लोग देख रहे होंगे, कि हाँ किसी और का क्लिक होना भी बहुत ज़रूरी था?
2: देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ हमेशा से कि आप वक्त की नज़ाकत के हिसाब से खेलें। आप वक्त की टीम को ज़रूरत क्या है उसके हिसाब से आपको खेलना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बताया कि क्रिकेट में कहते हैं कि दो विकेट जल्दी जल्दी मत जाने दो। हमारे साथ दो बार ऐसा वाकया हुआ कि एक एक ओवर में हमारे दो दो विकेट गिरे, और वो ख़राब शॉट सिलेक्शन था। हरमनप्रीत जो हमारी कप्तान है, उन्होंने भी बोला कि खराब शॉट्स हमने खेले जिसकी वजह से विकेट गंवाए। तो आपको इंटरटेनिंग खेलनी है प्लस टीम की ज़रूरत के हिसाब से। तो जो ये नए खिलाड़ी आए थे क्रिकेट के अंदर, देखिए टैलेंटर एक बहुत पुरानी चीज़ है, आज वो चीज़ मुझे तो ख़त्म होती दिखती है। हम किसी को टैलेंटर नहीं मानते, टैलेंटर कहना पहले एक थोड़ा सा खिलाड़ी का एक अपमान सा माना जाता था, लेकिन आज हर खिलाड़ी को योगदान देना है। जो निचले क्रम का गेंदबाज भी है तो उसको भी तैयारी कराई जाती है कि आपको 10-15 रन का योगदान

0: कैसे आप दे सकते हैं, जरूरत के हिसाब से खेलना है। दूसरा बल्लेबाज अच्छा कर रहा तो आप उसको चांस दीजिए, सिंगल लेके उसको मौका दीजिए। ये सारी चीजें जो पारी को संवारने में काम आती हैं वो हर खिलाड़ी को दिखानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर टीम के लिए खेलना है प्लस अपनी इंडिविजुअल एबिलिटी को भी दिखाना है। अगर आप अच्छी एबिलिटी के साथ प्रदर्शन करेंगे तो उसका टीम को भी फायदा मिलेगा, लेकिन आप अच्छी एबिलिटी पिच पे जाके नहीं दिखाएंगे तो वहां आपको कहीं ना कहीं आपको भी नुकसान होगा, टीम को भी नुकसान होगा।
1: और लतिका, जितनी बल्लेबाजी डीप हो, मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज होते हैं या टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज होते हैं, उनके पास भी कॉन्फिडेंस होता है अपनी रणनीति बनाने का कि कुछ अगर जरूरत पड़े तो नीचे से कंट्रीब्यूशन आ सकता है।
2: देखिए बिल्कुल, आपके पास प्लेटफॉर्म एकदम सज गया था, ऊपर जो आपके ओपनर्स थे उन्होंने अच्छी खासी वहाँ पे बल्लेबाजी की, आपको ये दिखाया कि इस विकेट पे किस तरह की शॉर्ट सिलेक्शन जो है आप करके इनिंग को आगे लेके जा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब ऐसे बॉल थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप स्ट्राइक रोटेट इनिंग के बीच में कर सकते हैं, तो डॉट बॉल्स का प्रेशर आपके ऊपर नहीं आएगा और आप बड़े शॉट्स की तरफ नहीं देखेंगे उस टाइम पे। क्योंकि जितने भी हमारे, अगर फुल मल्ली की बात कर ले हम, दीप्ति शर्मा हो गई, ऋचा घोष हो गई, ये सब एक बड़े हिट को लगाने के वजह से जो है अपना विकेट गवाया इन्होंने। तो मुझे लगता है जब आपके पास ऋचा घोष 13वां ओवर में आ गई थी अंदर, उनके पास 7 ओवर थे वहां से, अराउंड 40-40 बॉल्स उनके पास थी खेलने के लिए, तो मुझे लगता है कि आपको वहां इनिंग बिल्ड करना आना चाहिए अपने पार्टनर के साथ बात करके। क्योंकि जिस तरह गेंदबाजी हो रही थी, कहीं ना कहीं आपको एक या दो गेंदें ऐसी मिल रही थी जो आप बड़े शॉट में उन गेंदों को कन्वर्ट कर सकते थे। तो एक टेम्परामेंट आपका कैसा है उस टाइम पर बल्लेबाजी करते हुए, और किस तरीके से, जैसा कि हरमन ने भी कहा कि आपके शॉट सिलेक्शन क्या है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एक गेम को एक अच्छे नोट पर फिनिश करने के लिए, जहां हम 20-25 रन थोड़ा पीछे रह गए।
3: और सबसे बड़ी बात पता है क्या, मौके जरूर मिले थे थाईलैंड को कैचेस के, लेकिन वहां पर वो कैचेस ड्रॉप हुए थे और वो सीधे सीधे कैचेस थे। राकेश जी कुछ कहेंगे इस बारे में?
0: देखिए वो उतना उनको एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर उस तरीके का होता कि क्या होता है कि आउटफील्ड में जब आप खड़े हैं या इनर सर्कल में खड़े हैं, थोड़ा स्टार्ट आपको लेना पड़ता है, थोड़ा झुक के चलना पड़ता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोचिंग स्टाफ उन तक वैसी उनको कोचिंग उस तरह की नहीं दे पाया, या उनको बताया गया तो वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए। क्योंकि एक प्रैक्टिस में चीज़ें करना अलग बात होती है, और मैच के अंदर जब बड़ी खिलाड़ी जिनका नाम हो, जिनके पास एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा होता है, तो उनके खिलाफ जब आप फील्डिंग कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी उस चीज़ का दबाव रहता है। तो वैसे ही मतलब फुर्ती इतनी उनमें नज़र नहीं है, लेकिन आप देखिए जब सेकेंड हाफ में वो कैच पकड़ने लगे तो उन्होंने कैच पकड़े, बाद में उन्होंने दिखाया, हालांकि वो थोड़े आसान कैच थे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर डिफिकल्ट कैचेस भी आपको पकड़ने पड़ते हैं।
1: लतिका, अब हम शो के समापन की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो वापस से भारतीय गेंदबाजी पर जिक्र करते हुए चलते हैं, खास करके पेस अटैक जिसपे बहुत सवाल उठ रहे थे। आज जो जवाब मिले हैं शायद कंक्लूसिव जवाब नहीं है, लेकिन जिस तरह से नंदिनी ने शुरुआती स्पेल में मूवमेंट का इस्तेमाल किया और उसके बाद समझदारी से स्लो ओवर्स का इस्तेमाल किया,
2: देखिए बिल्कुल, और काफ़ी काम करना पड़ेगा अभी भी। अगर आप इससे बेहतर किसी टीम के सामने गेंदबाजी करने आते हैं, क्रांति गौड़ जिस तरह की गेंदबाजी करती है, नंदिनी जिस तरह की गेंदबाजी करती है, मुझे लगता है कि नंदिनी के पास जो है स्विंग करने की जो कला है उसकी वजह से वो विकेट लेने में कामयाब होती रही हैं। सही लाइन और लेंथ पे अगर गेंदबाजी करते रहेंगे, वहाँ मेहनत करते रहेंगे, तो आपको और सफलताएं मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि आज विकेट उनके खाते में आए, और बहुत टाइम के बाद ये विकेट देखा है हमने एक पेस बॉलर्स के, चाहे वो क्रांति गौड़ हो चाहे वो नंदिनी हो, तो अच्छा लगता है कि जब आपके अपफ्रंट आकर जो गेंदबाज हैं जो इनिंग की शुरुआत करते हैं वो गेंद विकेट लेने में कामयाब रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले मैचेस में और अच्छे इनके जो स्टैट्स हैं वो हम देखने को मिलेंगे।
3: बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है कि जीत के लिए बस जुनून चाहिए, जिसमें आग हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, इरादों में जीत की गूंज चाहिए। शंखनाद कमाल का हो गया, शुरुआत काफी भली हो गई है, लेकिन आने वाले सफर में और भी सारे हर्डल आने वाले हैं। लेकिन बहरहाल मुझे पता है कि पल पल की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, लेकिन पल पल की अपडेट्स के लिए आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी समय हो गया है कि हमें जाना पड़ेगा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
1: जी बिल्कुल, और अगली चुनौती भारत को मिलनी है 3 तारीख को हांगकांग के रूप में, हमारे विशेषज्ञों का आपका गौतम बहुत बहुत धन्यवाद, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी प्रोडक्शन टीम का भी, माधवी, वंदना भारद्वाज, स्वाति कपूर, हमारे प्रोड्यूसर हैं शाहनवाज खान, टेक्निकल टीम है हमारी अजय राणा, जयराम, सुशील कुमार और सचिन वत्स की, और इसके साथ

0: हम आपको धन्यवाद देते हैं और वापस आने के वादे के साथ यहां से साइन ऑफ करते हैं।
1: प्लेयर ऑफ द मैच।
2: अभी आप विमेंस एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और थाईलैंड के बीच खेले गए T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
3: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द T20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड ऑफ द विमेंस एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
4: दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और थाईलैंड के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 11:22 हुए हैं और हमारा आज का प्रसारण अब समाप्त होता है। कल प्रातः अपने विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद।